0: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
0: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
2: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है। युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
2: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
3: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
2: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1,00,000 से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1,00,000 से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
3: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है, न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
4: स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
4: पूरा पैसा जो कमाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जेन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
5: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है। कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
6: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं, छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
7: मैं तो पहले बोल चुकी
8: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट लेट आता है। इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए,
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
9: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी। जहां 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की, जबकि 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी 1 पद भी नहीं जीत सका।
10: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
11: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
7: काफी टफ था। जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
12: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
13: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
12: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेंजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेंजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
14: मैं AVBP के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
15: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
12: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में ABVP का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
9: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
16: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डवास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं सब चीजों?
13: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
16: देखा जा रहा राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच ABVP की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा ABVP का दिल्ली के अंदर?
13: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
16: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
13: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
16: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो ABVP के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
13: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
16: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां ABVP ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने VP की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी ABVP में सेफ चल रही थी।
17: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं ABVP में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से ABVP में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने हम पे और ABVP अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज ABVP 3 सीटों पर जीती हुई है।
16: रिया, आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि एनएसयूआई ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे। अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
17: हमारी एबीपी लेट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
16: यह देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, एनएसयूआई और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
17: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रीलबाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
16: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया या बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही
17: वो, तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीतती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
16: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया इस बार, जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
7: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
16: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
18: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
16: दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
18: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
16: एनएसयूआई से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या एनएसयूआई से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
18: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
16: दीपांशु, एनएसयूआई में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
18: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
16: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 2 रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि एबीवीपी एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
9: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
4: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
19: जिंदगी एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम, कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं।
4: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए। मगर देश में उल्टा हो रहा है, पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
9: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर, सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
20: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है, पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, अब दो साइन बोर्ड दो साइन बोर्ड अपने आप को सही एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधानडे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का

0: खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
1: अरे सिंबल बच्चे ना कुर्मी दर के जुदे में ना पैदा भुगता कुर्बो के नहीं सिंबल टाउ तो फैक्टर हाँ सिंबल और फैक्टर सिंबल चिनाबो की करे खुल नोटों सिंबल
2: कोनो की चापा से बारे थे का अपना
1: ना ना बारे से बारे
2: कुर्मी दर ऊपर कोनो चाप
1: हाँ कुर्मी दर ऊपर चाप आपना अरे सिद्धांत तो शेगला बोल चित नोटों पोते कुर्मी दर तो खुन कुर्मी दर के भालो जगह चले एकुन कुर्मी दर के आर कोनो जगह नहीं आते पाते
2: सिद्धांत नहीं चल पुतला करो
1: मोटा मोटी ताई
0: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा। आज तक
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

इंदौर में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट्स नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनावों को लेकर सियासत तेज, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे, ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी के मामले में एफआईआर दर्ज, मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित।

सच तो कर आपके साथ मैं हूँ शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, एयर इंडिया को लेकर है, दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-219 ने अचानक से तकनीकी खराबी का मामला उसमें सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि एयरबस A320 विमान जैसे ही उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद

0: स्पॉट पर सुरक्षित उतर गया है और सभी यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया गया। एयर इंडिया का कहना यह है कि यात्रियों को दूसरी वैकल्पिक फ्लाइट से काठमांडू भेज दिया गया है, जिसने शाम 6:39 पर उड़ान भरी, रात 8:09 पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, फ्लाइट की इमरजेंसी वापसी हुई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं, दूसरी फ्लाइट से काठमांडू इन तमाम यात्रियों को सुरक्षित भेज दिया गया है। अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी दीपक सिंह मारा गया और जांच के मुताबिक दीपक सिंह पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल के संपर्क में था। आरोपी है कि इसी आतंकी नेटवर्क ने एएसआई हरजीत सिंह को टारगेट किलिंग करवाई और शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर पंजाब में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के पहले भी आरोप सामने आ चुके हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को आतंकवादी घोषित किया है। आप दीपक के एनकाउंटर के बाद इस पूरे आतंकी नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर के बाद तमाम जो आतंकी नेटवर्क है उसे अब खंगाला जा रहा है।
1: ये जो हमारा एक 18 तारीख को शहीद हरजीत सिंह एएसआई का मर्डर हुआ था, तो उसके चलते हम इसको काफी जो है संजीदगी से इस पे सारे ऑफिसर्स जो हैं वो वर्क कर रहे थे। वो जो भी उस पे वर्क चल रहा था, तो आज जो थांदा रोड है इस पे हमने नाकाबंदी की हुई थी, सारे शहर में नाकाबंदी थी, और इस नाकाबंदी के दौरान एक नाके पे जो थांदे रोड पे नाका था, वहां एक जो ये सस्पेक्ट से हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये इलाके में घूम रहे हैं और ये दोबारा किसी को टारगेट करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पुख्ता थी। तो हमने दोपहर से ही रेड अलर्ट किया हुआ था, हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारे जवान, मैं खुद, हम सब बाहर थे। और जब इसको एक नाके पे रुकने का इशारा किया, इसने नाके पे फायरिंग की, हमारी चेजिंग पार्टीज इनके पीछे लग गई। इस स्पॉट पे आके इन्होंने अपना स्कूटर जो है वो खड़ा करके पुलिस पे जो है फिर दोबारा फायरिंग की, जो चेजिंग पार्टी थी। दो गोली हमारे जो गाड़ी थी उसमें लगी, एक गोली जो हमारा लड़का सीआईए का था उसके चेस्ट पे लगी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, और एक गोली है जो वो साइड से निकल गई। तो इन्होंने चार फायर किए, और जब हमने रिटेलिएट किया इन सेल्फ डिफेंस, तो छह फायर हुए हमारी तरफ से। इसके एक फायर लगा, हमने इसको इंजर्ड था तो इसको हमने उसी वक्त हॉस्पिटल में पहुंचाया फर्स्ट एड के लिए, और जब ये वहां लेकर गए तो उसके रास्ते में ही जो है ही एक्सपायर्ड, और जो डॉक्टर्स उन्होंने बताया कि ही इज ब्रॉड डेड। तो इस पे हम आगे फर्दर जो है, जो एक सस्पेक्ट इसके साथ और था, वो जो था वो डार्कनेस का, अंधेरे का फायदा उठाते हुए यहां से भाग गया।
0: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। नलखेड़ा स्थित श्री बंगलामुखी माता के दर्शनों के लिए मन्नत मांगने आए श्रद्धालुओं की खुशियां अचानक से मातम में बदल गई, क्योंकि तेज बारिश के बाद उफनते हुए नाले को पार करने के दौरान श्रद्धालुओं से भरी हुई कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी बताए जा रहे हैं। इस हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में खौफनाक पल कैद हो गया है, जब कार नाले की तरफ बढ़ रही थी और हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
2: मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के बाद उफनते नाले में श्रद्धालुओं से भरी कार बह गई। कार में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कार में सवार 7 लोग ओडिशा के थे, जबकि ड्राइवर आगर मालवा का रहने वाला था।
3: वो कैसे गई, क्योंकि उसकी जो दूरी है लोकेशन है, वो ब्रिज से भी लगभग 100 मीटर दूर है, और ब्रिज पे भी दोनों तरफ परमानेंट आयरन बैरिकेड है, जिससे क्या है कि ब्रिज से भी नहीं जा सकती, और वो दूर भी है, तो थोड़ा सा जोर का बचा को प्लीज गांव कर लिए।
2: तेज बारिश के बाद मंदिर के पास नाले का पानी अचानक बढ़ गया। कार पुलिया से बहकर करीब 100 मीटर दूर चली गई। सुबह लोगों ने नाले में कार देखी और पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ की मदद से कार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और बाद में लोगों ने चक्का जाम भी किया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं उड़ीसा के सीएम ने त्वरित कार्रवाई की बात कही है।
4: इस घटना में हमारा जो 8 आदमियों का डेथ हो गया, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। उसके ऊपर हमने तुरंत हमारा चीफ सेक्रेटरी को और डिपार्टमेंट को मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए और पूरा सहयोग से डेड बॉडी कैसे सम्मान के साथ उड़ीसा आए, इसी आधार पर उनके साथ कनेक्टिंग हुआ।
2: हादसे के बाद मिली कार ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।
5: इतनी छोटी हैचबैक गाड़ी में 8 लोग किस तरह से सवार थे, क्योंकि जो मृतक हैं उसमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और 3 बच्चे हैं। ये 8 लोग एक गाड़ी में बैठकर इस यात्रा को तय कर रहे थे। ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये ट्रू लेयर ट्रेवल्स से कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड होती तो इस पे पीली प्लेट होती है, व्हाइट प्लेट है। इससे तात्पर्य है कि ये गाड़ी निजी है और कोई व्यक्ति इसे चला रहा था। अब यह गाड़ी पूरी तरह से बाहर निकाल ली गई है। जो मृतक हैं उन लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, आज तक।
0: और अब बात करेंगे सऊदी अरब की राजधानी रियाद से। इस वक्त बड़ी और अहम खबर सामने आई है। रियाद एयरपोर्ट के पास आग की लपटें और धुएं का बड़ा गुबार देखा गया। इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने राजधानी और आसपास के इलाकों में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद के संवेदनशील ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया है। सऊदी गठबंधन के मुताबिक रियाद की ओर आने वाली एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार ये हमले सऊदी अरब में जारी हैं। जानकारी ये मिली है कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था रियाद की ओर जो आ रही थी। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में सुरक्षा हालात बेहद जटिल बने हुए हैं और अचानक से तनाव बढ़ने की वजह से इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि नुकसान ज्यादा होगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से आसपास के हालात को लेकर सावधानी बरतने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तैयार रहने के लिए कहा है। बढ़ते हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच इस अलर्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह खबर है गुजरात से बिहार तक आग की, क्योंकि देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जबरदस्त तरीके से आग की वजह से हड़कंप मचा है। कच्छ के भुज में खनिज मिल में भीषण आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। और आपको बता दें कि वलसाड के धोबी तालाब इलाके में भी ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लगी थी और बिजली गुल हो गई थी, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। उधर समस्तीपुर में NH-28 पर कॉस्मेटिक के सामान से भरे हुए कंटेनर में भीषण आग लगी। चालक और खलासी ने कूद कर अपनी जान बचाई है। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं जेन ज़ी की, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया है। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर है जेन ज़ी वोट बैंक पर भी। और जेन ज़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और पेपर लीक जैसी समस्या, जिसके समाधान का भरोसा हर कोई देने की कोशिश में जुटा हुआ है।
2: एक ही दिन में आई ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जेन ज़ी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं, भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेएनजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
6: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
6: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
2: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
7: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
2: रोजगार पर रण जारी है। युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
7: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
8: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
2: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
7: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे, 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
8: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे, जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है, न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करते हो?
2: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
9: स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
2: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
9: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
2: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जेन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
10: इंडिया का नया चैप्टर यहां पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहां पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
11: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं, छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
12: मैं तो पहले बोल चुकी हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट लेट आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
2: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बात की है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा।
13: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डवास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
14: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से दूसू से बाहर कर दिया है।
13: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच ABVP की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा ABVP का दिल्ली के अंदर?
14: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
14: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो ABVP के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
14: देखिए विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां ABVP ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने VP की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी ABVP में सेफ चल रही थी।
16: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं ABVP में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से ABVP में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और ABVP अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज ABVP 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, ABVP ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे। अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
16: हमारे ABVP लड्डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो। हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा, खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
15: यह देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
16: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो। तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
16: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है, और पर एंड में तो जीती ABVP ही जो हर बार जीती है। पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का ABVP ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो ABVP का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं ABVP की परफॉर्मेंस?
17: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है,
18: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आप?
18: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं लेके जाऊंगा
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
18: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
18: अभी हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत करा है। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
20: राहु की दशा चलने पर चीजें अचानक घटने लगती हैं, क्या राहु की दशा चलने पर अचानक उतार चढ़ाव होने लगता है? क्या राहु की दशा चलने पर फिल्मी दुनिया में और राजनीति में फायदा होता है? क्या है राहु की दशा का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

जैसे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद एयरस्पेस में पहुंचा था, पायलट को किसी तकनीकी दिक्कत का शक हुआ। उसके बाद एहतियात के तौर पर फ्लाइट को तुरंत ही दिल्ली वापस मोड़ दिया गया। गनीमत यह रही कि विमान दिल्ली

छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट्स नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनावों को लेकर सियासत हुई तेज, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा है जवाब। और यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी पर किया बड़ा हमला, राजधानी रियाद को बनाया निशाना, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट हुआ धुआं धुआं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सबसे पहले आपको बता दें, रियाद एयरपोर्ट के पास आग और लपटें देखी गई हैं, धुएं का बड़ा गुबार देखा गया है। इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने राजधानी और आसपास के इलाकों में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद में संवेदनशील ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इस तरह की जानकारी है। सऊदी गठबंधन के मुताबिक रियाद की ओर आने वाली एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। तो काले धुएं का गुबार जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे अलग अलग जगहों पर जबरदस्त तरीके से हूती विद्रोहियों की तरफ से ये हमले जारी हैं सऊदी अरब में। और आपको बता दें कि इन तमाम हमलों के पीछे आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान है। यह खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी माता के दर्शनों और मन्नत मांगने आए श्रद्धालुओं की खुशियां अचानक से मातम में बदल गईं। तेज बारिश के बाद उफनते हुए नाले को पार करने के दौरान श्रद्धालुओं से भरी हुई कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 3 मासूम बच्चे इसमें शामिल हैं। अब इस हादसे के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। तस्वीरों में वो खौफनाक पल कैद हुआ है जब कार नाले की तरफ बढ़ रही थी। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें वाकई में दिल को दहलाने वाली हैं। और आपको बता दें कि बगलामुखी दर्शनों के लिए हजारों हजार लोग पहुंचते हैं।
1: मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के बाद उफनते नाले में श्रद्धालुओं से भरी कार बह गई। कार में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कार में सवार 7 लोग ओडिशा के थे, जबकि ड्राइवर आगर मालवा का रहने वाला था।
2: वो कैसे गई, क्योंकि उसकी जो दूरी है लोकेशन है वो ब्रिज से भी लगभग 100 मीटर दूर है, और ब्रिज पे भी दोनों तरफ परमानेंट आयरन बैरिकेड है, जिससे क्या है कि ब्रिज से भी नहीं जा सकती, और वो दूर भी है, थोड़ा सा घर का इस गांव का ही।
1: तेज बारिश के बाद मंदिर के पास नाले का पानी अचानक बढ़ गया। कार पुलिया से बहकर करीब 100 मीटर दूर चली गई। सुबह लोगों ने नाले में कार देखी और पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ की मदद से कार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और बाद में लोगों ने चक्का जाम भी किया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं उड़ीसा के सीएम ने त्वरित कार्रवाई की बात कही है।
3: इस घटना में हमारा जो 8 आदमियों का डेथ हो गया, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। उसके ऊपर हमने तुरंत हमारा चीफ सेक्रेटरी को और डिपार्टमेंट को मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए और पूरा सहयोग से डेड बॉडी कैसे सम्मान के साथ उड़ीसा आए, इसी आधार पर उनके साथ कनेक्टिंग हुआ।
1: हादसे के बाद मिली कार ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।
4: इतनी छोटी हैचबैक गाड़ी में 8 लोग किस तरह से सवार थे, क्योंकि जो मृतक हैं उसमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष और 3 बच्चे हैं। ये 8 लोग एक गाड़ी में बैठकर इस यात्रा को तय कर रहे थे। ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये ट्रू लेयर ट्रेवल्स से कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड होती तो इस पे पीली प्लेट होती है, व्हाइट प्लेट है। इससे तात्पर्य है कि ये गाड़ी निजी है और कोई व्यक्ति इसे चला रहा था। अब यह गाड़ी पूरी तरह से बाहर निकाल ली गई है। जो मृतक हैं उन लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा। आज
0: देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं जेन ज़ी की, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया है। धर्म, जाति, महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर है जेन ज़ी वोट बैंक पर, और जेन ज़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और पेपर लीक जैसी समस्या, जिसके समाधान का भरोसा हर कोई देने की कोशिश कर रहा है।
1: एक ही दिन में आई ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जेन ज़ी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेएनजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
5: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
5: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
6: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है। युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
6: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
7: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जेएनजी है। मुद्दा जेन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
6: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
7: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे, जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है, न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
8: स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
8: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जेन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
9: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है, और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है। कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जाता है।
10: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं, छात्रों के पक्ष में रखने आए, और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
11: मैं तो पहले बोल चुकी हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान है। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट ले आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बात की है, आपको सुनवाते हैं।
12: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डवास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों?
13: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से दूसू से बाहर कर दिया है।
12: देखा जा रहा राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच ABVP की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा ABVP का दिल्ली के अंदर?
13: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
14: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
13: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है। तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
14: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो ABVP के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
13: देखिए विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए। अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
14: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां ABVP ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने VP की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी ABVP में सेफ चल रही थी।
15: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं ABVP में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से ABVP में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और ABVP अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज ABVP 3 सीटों पर जीती हुई है।
14: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, ABVP ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे। अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
15: हमारे ABVP लड्डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामे का वैन चलवाई थी। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर, कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
14: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखते हैं?
15: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पे जीते हैं।
14: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया यह बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
15: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है, और पर एंड में तो जीती ABVP ही जो हर बार जीती है। पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का ABVP ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
14: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया इस बार, जो ABVP का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं ABVP की परफॉर्मेंस?
16: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
14: लक्ष्य मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है,
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
14: तो 2 रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
14: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
14: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा, क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
14: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: बात करेंगे IIT बॉम्बे के बारे में, जहां सेकंड ईयर के एक छात्र ने आत्महत्या की और उसके बाद जबरदस्त हंगामा उस पर जारी है। कैंपस में छात्रों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है, उसके बाद मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है।
18: IIT बॉम्बे में हंगामे की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारी एक छात्र के सुसाइड को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुंबई के IIT बॉम्बे परिसर में शुक्रवार शाम सेकेंड ईयर के छात्र साहिल वाकोड़े ने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। साहिल महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला था, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। घटना से कुछ घंटे पहले वह परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। आरोप है कि उसने क्वेश्चन पेपर की तस्वीर ChatGPT पर अपलोड कर नकल करने की कोशिश की थी।
19: जिसने ये थ्रेट दिया है, धमकी दी है, उसको उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए।
20: एक साल में 4 सुसाइड और 0 चेंज अभी तक, और ये 1 महीने को हंस के टाल देते हैं। हमें मीडिया के सामने जवाब चाहिए, वरना ये ऐसी टाल देते हंस के कोई भी चीज हो। ये लोग, इन्होंने मजाक बना रखे, 4 सुसाइड हो चुके हैं एक साल में, कोई रिस्पॉन्स नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।
18: मामले को देखते हुए कैंपस में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जहां पुलिस और छात्रों के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई।
21: क्या इनके पिताजी की नहीं है IIT, आप भी आ सकते हो, क्यों रोक रहे हैं? ये कुछ छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं? ये बस कुर्सी पे बैठ के खुद को राजा समझते, भगवान समझते, डायरेक्टर डीन लोग।
22: पुलिस वालों को यहाँ पे डंडा अलाउड नहीं है, बकायदा ये लोग डंडे लेकर के
21: एक लड़की के सर पे डंडे की बैंकी मारी इन्होंने,
22: धक्का मुक्की कर रहे हैं ये लोग, ठीक है।
18: हंगामा बढ़ता देख डायरेक्टर छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन छात्र शांत होने को तैयार ही नहीं थे। प्रशासन का कहना है कि घटना के बाद छात्र की काउंसलिंग की गई थी और उसे साफ तौर पर आश्वस्त किया गया था कि उसके खिलाफ कोई कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। छात्रों का आरोप है कि सच्चाई छिपाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक नकल के आरोप के बाद छात्र को 1 साल के निलंबन की धमकी दी गई थी। साहिल के परिवार ने मामले को लेकर FIR दर्ज कराई है, जिन्होंने IIT प्रशासन पर साहिल को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है।
23: कल IIT के एक हॉस्टल में बीटेक सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करने की एक घटना हुई थी। इसी घटना के संबंध में जो डिसीज स्टूडेंट है, उनके पिताजी की कंप्लेंट पे ओवी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन ओवी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
18: पिछले 7 महीने में IIT बॉम्बे कैंपस में सुसाइड का यह तीसरा मामला बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: सितंबर के महीने में मौसम ने अचानक से करवट ली है, पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी जारी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
18: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा
1: बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद आज तक।
0: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: क्या राहु की दशा चलने पर चीजें अचानक घटने लगती हैं? क्या राहु की दशा चलने पर अचानक उतार चढ़ाव होने लगता है? क्या राहु की दशा चलने पर फिल्मी दुनिया में और राजनीति में फायदा होता है? क्या है राहु की दशा का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

इंदौर में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एवीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। अमृतसर में एसआई मर्डर केस में खुलासा, पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने करवाई हत्या, पुलिस का खुलासा लगातार भट्टी के संपर्क में था, एनकाउंटर में ढेर आरोपी। और यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किया बड़ा हमला, राजधानी रियाद में कई संवेदनशील ठिकानों को बनाया निशाना, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से हमले में एयरपोर्ट धुआं धुआं।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग ग्रहों की दशाएं जीवन पर अलग अलग प्रभाव पैदा करती हैं। आज हम बात करेंगे राहु की दशा के बारे में और राहु की दशा के प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:51 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं राहु की दशा के बारे में। राहु की दशा का कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि राहु किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, राहु की जो गणना की जाती है वो सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के आधार पर की जाती है। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है। राहु इसी मन का और इसी प्राण का रह

हास्य है। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। और केतु जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। राहु भी रहस्य बता सकता है, इसलिए सामान्यतः राहु को और केतु को भी रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। राहु का संबंध जीवन की आकस्मिकताओं से होता है। जो घटनाएं, जो चीजें जीवन में आकस्मिक रूप से घटती हैं, उसके पीछे ज्यादातर राहु होता है। इसीलिए राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, उसमें आकस्मिक प्रभाव, आकस्मिक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु की स्थिति को समझकर अगर उपाय किए जाएं तो राहु की बुरी दशा को शांत कर सकते हैं। राहु की दशा अगर अशुभ प्रभाव दे रही है तो उस अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, और जब इस स्थिति को समझ करके आप उपाय करेंगे तो राहु के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। राहु की दशा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, अगर राहु आपकी कुंडली में प्रतिकूल है, निगेटिव है, तो राहु की दशा का प्रभाव कैसा पड़ सकता है? अगर राहु आपका निगेटिव है तो राहु की दशा में भय की और वहम की समस्या हो जाती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से डरने लगता है और उसके मन में वहम और चिंता आ जाती है। राहु अगर आपका शुभ नहीं है और राहु की दशा चलने लगे तो जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान, पैसे रुपए की सडन दिक्कतें, अचानक आर्थिक नुकसान जरूर हो जाता है। राहु अगर निगेटिव हो और राहु की दशा चलने लगे तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि बीमारी का कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। बीमारी क्यों हुई और कैसे दूर होगी इसका रास्ता नहीं मिलता। राहु अगर निगेटिव हो और राहु की दशा चलने लगे तो वैवाहिक जीवन में वहम और शक पैदा होता है। पति पत्नी का आपसी भरोसा कमजोर हो जाता है। और राहु की अगर निगेटिव दशा चले तो बिना कारण के वैवाहिक जीवन टूट जाता है। बिना कारण के वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ जाती है। तो अगर राहु नकारात्मक होगा कुंडली में और राहु की महादशा या अंतर दशा चलेगी तो इसके परिणाम सामान्यतः खराब होंगे। राहु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे

इनका शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पीयूष जी ने हमें लिखा है, पुणे महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मई 1990। जन्म का समय सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। पीयूष लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पीयूष, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है। साल 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी परिवार वालों के प्रयास से, और कुल मिला के आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है, अनुकूल स्थिति में है, आपके लिए फायदेमंद है और राहु की महादशा या अंतर दशा चले तो इसका प्रभाव क्या होगा। अगर राहु शुभ है और राहु की दशा चलने लगे तो आकस्मिक रूप से आपके काम बनने लगते हैं, अचानक से काम सफल होने लगते हैं। राहु की अनुकूल दशा चले तो राजनीति में और फिल्म आदि क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है। राहु अगर शुभ हो और उसकी दशा चले तो व्यक्ति आकस्मिक रूप से अचानक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। राहु की शुभ दशा चले तो आकस्मिक धन का या आकस्मिक संपत्ति का लाभ होता है, और अचानक धन मिलने वाले क्षेत्रों में फायदा हो जाता है। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, इन क्षेत्रों में धन मिलने की संभावना बन जाती है। लेकिन याद रखिए कि राहु की दशा में जो उपलब्धियां मिलती हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती। राहु आकस्मिक सफलता देता है और समय बीत जाने पर सफलता को वापस ले लेता है। राहु की दशा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की नकारात्मक दशा चल रही है, राहु की निगेटिव दशा है, राहु की दशा में आपके कष्ट बढ़ रहे हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करें? घर की नियमित रूप से साफ सफाई करिए, घर में बिना वजह अनुपयोगी चीजें, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए, महीने में एक दिन घर की थोरो सफाई करिए और घर से अनुपयोगी चीजों को, कूड़े कबाड़ को हटाते रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य की रोशनी आती हो। अगर सूर्य की रोशनी ना आती हो तो रोशनदान, दरवाजों को, शीशे को ऐसा लगाइए कि घर में सूर्य की रोशनी आए। रोज सवेरे जल में एक ढक्कन या जरा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के दो पत्ते जरूर खाइए। राहु की दशा अगर निगेटिव है और वो दशा चल रही है तो मांस मदिरा तामसिक आहार से परहेज करिए। मांस मदिरा पूरी तरह से त्याग दीजिए, अन्यथा राहु और निगेटिव होगा, आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करिए या नियमित रूप से अपने माथे पर या कंठ पर चंदन का तिलक लगाइए। महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन दोपहर के समय में निर्धनों को भोजन कराइए और राहु के मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः
इस मंत्र का जप करिएगा। अगर रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि राहु की महादशा शुरू होने के साथ बहुत सारे लोग गोमेद पहन लेते हैं, या कुछ ज्योतिषी राहु की दशा शुरू होने पर आंख मूंद करके गोमेद पहना देते हैं। ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि राहु की दशा चले तो गोमेद जरूर पहन लेना चाहिए। याद रखिए, अगर कुंडली में राहु फेवरेबल है, अगर कुंडली में राहु अनुकूल है और तब आप गोमेद पहनते हैं, तब राहु की दशा में आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है और राहु की दशा चलने पर आप गोमेद पहन लेते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं, आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो राहु की दशा चलने पर गोमेद तभी पहनिएगा जब राहु आपकी कुंडली में अनुकूल हो, जब राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल हो। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः किसी ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किसी देवी देवता की उपासना की जाती है, तो राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। देखिए, राहु का संबंध माना जाता है भगवान भैरव से। अगर राहु की दशा अच्छी नहीं है या राहु आपको अशुभ फल दे रहा है, नियमित रूप से रोज शाम को अगर आप भगवान भैरव की उपासना करें
काल भैरव अष्टक का पाठ करें या भैरव मंदिर में जा करके भगवान भैरव का दर्शन करें तो राहु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, निर्णयों में सावधानी रखें। और नंबर 9, करियर में आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

धनु राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए, करियर की समस्या दूर होगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा, क्योंकि आज की तिथि रिक्ता तिथि है। आज सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम में संदेश, देश के सिस्टम पर कब्जा, छात्रों को सवाल पूछने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने अंधभक्त शब्द के जरिए बीजेपी समर्थकों पर साधा निशाना, बोले देश से नफरत सिर्फ छात्र ही खत्म कर सकते हैं। छात्रों के मन से राहुल गांधी ने उठाए रोजगार और शिक्षा के सवाल, अडानी अंबानी से लेकर जय शाह तक का किया जिक्र। राहुल गांधी ने इंदौर में सीएम मोहन यादव पर पलटवार किया, बोला कार्यक्रम में बच्चों के सवालों के बजाय कांग्रेस का एजेंडा चलाया गया। राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, मोहन यादव बोले मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। सीएम धामी का राहुल गांधी पर निशाना, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां की टिप्पणी को लेकर बोले राजनीतिक विरोध में मर्यादाएं सीमा लांघना स्वीकार्य नहीं। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के दौरे से पहले पोस्ट अवार्ड, नेता प्रतिपक्ष के विरोध में शहर में लगे झूठ की गूंज के होर्डिंग्स। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े का बीजेपी सरकार पर आरोप, कहा राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने लगाए झूठ की गूंज के पोस्टर्स। विपिन वानखेड़े ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताते हुए इसे कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय राजनीतिक दलों को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा राहुल गांधी के बयानों के विरोध में देश प्रेमियों ने लगाए थे पोस्टर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत। नए डुसू अध्यक्ष बने हैं यश डबा, सचिन पर रिया छाबड़ी ने जीत दर्ज की है। सहसचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की शानदार विजय। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की हुई जीत, उन्हें मिले 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई दी, पोस्ट में ज्ञानशील और एकता की जीत को करार दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी एबीवीपी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, पोस्टर में लिखा ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा दावा, बोले दिल्ली विश्वविद्यालय चुनावों में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ता तो भारी बहुमत से जीतता। बीजेपी ने डुसू चुनाव में नतीजे को राहुल गांधी के लिए करारा झटका और झूठ की राजनीति का पुलिंदा बताया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एबीवीपी और डुसू जीत को नेशन फर्स्ट की भावना की जीत बताया। जेपी नड्डा ने डुसू के नतीजों पर आज तक से बातचीत करते हुए कहा यह छात्रों की गूंज नहीं बल्कि छात्रों का धमाका है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम झूठ की गूंज करार देते हुए कहा कि वो सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानते हैं, वो नहीं करते कुछ और। आमिद अंसारी के बयान पर देश में सियासी घमासान, हिंदू दक्षिण पंथ को लेकर टिप्पणी पर बीजेपी और बीएचपी ने जताई है कड़ी आपत्ति। नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देकर आमिद अंसारी ने छेड़ी है नई बहस, हिंदू दक्षिण पंथ और सांप्रदायिक पर गरमाई है राजनीति। आमिद अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, केशव मौर्य बोले ऐसे बयान समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाते हैं। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़, ममता बनर्जी गुट ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया, उम्मीदवार की गिरफ्तारी से बढ़ गया है विवाद। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर घमासान, पार्टी ने कार्रवाई के समय पर उठाए हैं सवाल, बीजेपी ने पूछा गिरफ्तारी किन आरोपों में की गई। नंदीग्राम में बहुकोणीय मुकाबले का तस्वीर साफ हो गई है, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के अलग अलग धड़ों के बीच होगा चुनावी संघर्ष। देशीनगर उपचुनाव में आखिरी वक्त पर बड़ा यूटर्न, टीएमसी उम्मीदवार ने पहले नाम वापस लेने की बात कही और फिर मैदान में लौटे। ममता बनर्जी ने टाइमिंग पर उठाए हैं गंभीर सवाल, पूछे नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन के तुरंत बाद गिरफ्तारी। केसी वेणुगोपाल का बड़ा हमला, नंदीग्राम में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस नहीं होगी। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बढ़ गया है सियासी पारा, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, नंदीग्राम में सनातन और राष्ट्रवादी ताकतों की जीत होगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले रोजगार के नाम पर फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और महंगाई से जनता परेशान। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले बीजेपी अंतिम दौर में है, एसआईआर को लेकर कांग्रेस के और बीएसपी के और साथ ही एसपी के कार्यकर्ताओं को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया।
सपा सांसद पप्पू निषाद पर कथित हमले को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल। आईआईटी बॉम्बे छात्र की खुदकुशी के मामले में जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, मां का आरोप है बेटे को प्रताड़ित किया गया था। ग्रेटर नोएडा हिट एंड रन मामले में आरोपी मनीष गिरफ्तार, पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। लुधियाना में रमीत पिट्टू को हिरासत में लेने पर सियासी बवाल मचा, सीएम भगवंत मान के काफिले के बाहर हंगामा। सीएम मान के काफिले के बाहर अंडे टमाटर फेंकने के आरोप हैं, बीजेपी नेता रमीत पिट्टू को लेकर पंजाब में बढ़ गया है सियासी तनाव। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हुई, आम आदमी पार्टी ने मान के मुनाफिस अभियान के साथ शुरू किया है घर घर जनसंपर्क। आपका मिशन 2027 शुरू, भगवंत मान सरकार के कामकाज की पर्चा लेकर अब हर घर पहुंचेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और परिवार को वोटर लिस्ट के लिए नोटिस, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर उठाए हैं सवाल। टीम इंडिया की दिल्ली काठमांडू फ्लाइट में तकनीकी खराबी, फरुखाबाद एयर स्पेस से विमान दिल्ली लौटा, सभी यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रवेश के लिए एक ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर 5 अभ्यर्थियों के फर्जी दावे का खुलासा, एफआईआर के बाद डोमिसाइल पर भी उठे सवाल। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन का, सभी की आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अमृतसर में एसआई हरजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी दीपक पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ। एएसआई अजीत सिंह का टारगेट किलिंग में आतंकी नेटवर्क की भूमिका की जांच तेज, दीपक सिंह के एनकाउंटर के बाद शहजाद भट्टी मॉड्यूल की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिशूल से मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर किया दौरा, मिस्र के नौसैनिक जहाज अल कदीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आईएनएस त्रिशूल के क्रू के चैटवी वॉर मेमोरियल में दोनों ही विश्व युद्धों के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा के काकापुरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजामों की पुख्ता परख। मॉक ड्रिल में पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया था, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां तेज की गई। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीत कर लौटी भारतीय टीम की सदस्य मधु पटेल का भव्य स्वागत, फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मत्था टेका। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात। एमबीए मेधावी छात्रों को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को बांटी स्कूटी। आईआईटी रुड़की में वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, पहले दिन एनएसएजी डोभाल ने 1277 ग्रेजुएट मेधावी छात्रों को डिग्रियां बांटी। आज दूसरे दिन पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट्स को बांटी जाएंगी उपाधियां, कुल 2701 मेधावी छात्रों को सौंपी जाएंगी डिग्रियां। एमपी के आगर मालवा में उफनते हुए नाले में बह गई थी श्रद्धालुओं से भरी हुई कार, 8 की मौत हुई। सभी श्रद्धालु उज्जैन से कार के किराए को लेकर बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, मृतकों में 3 बच्चे 2 महिलाएं शामिल हैं, 3 पुरुष हैं जिसमें 7 लोग उड़ीसा के रहने वाले थे। आगर मालवा हादसे में 8 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजे का ऐलान। आगर मालवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया शोक, परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने आगर मालवा हादसे पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मोतिहारी में गणपति उत्सव की धूम है, कोलकाता थीम पर बप्पा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार से अंगदान का संदेश, ऑर्गन डोनेशन की थीम पर सजाया है पंडाल। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी, गणपति के भव्य और दिव्य सजावट, गजानन की आस्था और भक्ति में पूरी तरह से सराबोर नजर आए भक्त। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किए बप्पा के दर्शन, श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी और गणपति पंडाल में महाआरती में शामिल हुए।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: एक तो एक
5: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: ओह सॉरी।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: बंगाल में उपचुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन दो सीटों पर सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने चुनावी मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। 18 सितंबर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी से पहले उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के क्राइम के पुराने पन्ने शुभेंदु की पुलिस ने पलट दिया और ममता के समर्थन के महज चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सियासी पटकथा एक और जगह लिखी जा रही थी। रेजीनगर सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। नॉमिनेशन वापस लेने की बात करने वाले रबीउल आलम चौधरी ने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे लेकिन शर्तों के साथ।
1: ভেবেছিলাম যে এই অবস্থা দলের এই অবস্থা নতুন প্রতীক হ্যান্ডার, তার এই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম। এখন আমরা এই নতুন প্রতীকই মানুষকে বুঝিয়ে ভোটটা করা।
0: एक तरफ नाम वापसी, दूसरी तरफ यूटर्न। जिस चुनाव में अभी वोटिंग भी नहीं हुई वहां उम्मीदवारों के फैसले ही सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये महज इत्तेफाक है या बंगाल में कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है। क्या नंदीग्राम और रेजीनगर में उम्मीदवारों का नाम वापस लेना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है? क्या बंगाल में उपचुनाव की लड़ाई अब सीटों से आगे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? आखिर इन दो सीटों पर उपचुनाव की नौबत क्यों आई? अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटें 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और रेजीनगर से हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी। दोनों नेताओं ने दो दो सीटों से चुनाव जीता और बाद में एक एक सीट छोड़ दी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर अपने पास रखी, जबकि हुमायूं कबीर ने रेजीनगर छोड़कर नाउदा सीट अपने पास रखी। इसी वजह से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को मतगणना होनी है, लेकिन इन दोनों उपचुनावों का महत्व सिर्फ दो सीटों को भरने तक सीमित नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दोनों सीटें बंगाल की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक अहम चुनावी परीक्षा बन गई है। नंदीग्राम बंगाल की सियासत का वो अध्याय है जिसे मिटाकर कोई नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। 2007 का भूमि आंदोलन, तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ विरोध और उसी आंदोलन से ममता बनर्जी के राजनीतिक उभार को ताकत मिली। कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी इसी राजनीतिक संघर्ष के सहयोगी थे, लेकिन वक्त ने करवट ली, रिश्ते बदले और नंदीग्राम दोनों नेताओं के बीच सियासी प्रतिष्ठा का मैदान बन गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। 2026 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से जीत दर्ज की, लेकिन भवानीपुर अपने पास रखने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब सवाल है कि नंदीग्राम में होने वाला उपचुनाव क्या उस राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय बनेगा, या फिर पुराने प्रतीकों और पुराने संघर्षों के बीच मतदाता कोई नई कहानी लिखेंगे? इतिहास रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जरा देश की इबारत हमेशा वर्तमान में लिखी जाती है। वहीं रेजीनगर की लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं, पहचान की भी है। तो बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर की कहानी अब सिर्फ दो सीटों की कहानी नहीं रह गई है। एक तरफ इतिहास का बोझ है, दूसरी तरफ भविष्य की चुनौती। एक तरफ पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का विवाद है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने से पैदा हुए सवाल। एक तरफ सत्ता का दावा है, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है। लेकिन इन तमाम सियासी शोर के बीच एक आवाज ऐसी है जिसे दबना नहीं चाहिए। वो आवाज है मतदाता की, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आवाज किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती है, किसी मंत्री की नहीं होती है, किसी पार्टी अध्यक्ष की भी नहीं होती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम अंधभक्त पैदा कर रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी अगवा बोला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बंपर जीत पर बोले नितिन नवीन। अमित शाह राष्ट्र प्रथम भावना की जी जेपी नड्डा ने कहा ये

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। अमृतसर में एएसआई की हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया गया है और अमृतसर पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को ढेर कर दिया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक फोन मिला है और उस फोन से बड़ा खुलासा हुआ है कि हमलावर दीपक सिंह पाकिस्तानी हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में था। आतंकी शहजाद भट्टी गैंग के लिए वो काम करता था। आतंकी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए उसने एएसआई की हत्या कर डाली। शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर पंजाब में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के पहले भी आरोप लगे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित कर दिया था। अब दीपक के एनकाउंटर के बाद इस पूरे आतंकी नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। तो अमृतसर में एएसआई की हत्या के बाद बड़ा खुलासा हुआ है और आपको बता दें कि एनकाउंटर में इस आतंकी का खात्मा किया गया है। और आप जरा देखिए कि किस तरीके से बड़ा पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ लगातार ये संपर्क में था, साथ ही साथ उन्हें खुश करने के लिए ही इसने एएसआई को मार डाला था। और इतना ही नहीं, लगातार पिछले कुछ समय से पंजाब के भीतर अलग अलग जगहों पर पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर यह हत्या की गई थी। शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा हुआ था हमलावर, लगातार उसके साथ संपर्क में था और उसके फोन के तार जो लगातार अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। अब पूरे के पूरे आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। वफादारी साबित करने के लिए ही इसने एएसआई को मार डाला था। और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस एनकाउंटर के दौरान भी ताबड़तोड़ इसकी तरफ से फायरिंग की गई थी। आपको यह भी बता दें कि हमलावर ने एएसआई की हत्या का वीडियो भी बनाया था और वो वीडियो भी सामने आया है। इस फोन से एक के बाद एक तमाम खुलासे हुए हैं। पुलिस का कहना यह है कि अब इसके जरिए पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। ये वीडियो भी पुलिस के हाथ लग चुका है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए पहले मर्डर किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया। आपको बता दें कि हमलावर ने पाकिस्तानी हैंडलर का जो ये वीडियो बनाया था, उस पाकिस्तानी हैंडलर को इस वीडियो को भेजा भी और पुलिस ने मुठभेड़ में इस हमलावर को ढेर कर दिया है। हमलावर के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कई खुलासे हुए हैं। इससे पहले ही उसे केंद्र की तरफ से आतंकवादी घोषित किया गया था। और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना यह है कि कई और बड़े खुलासे इस रैकेट से जुड़े अभी बहुत जल्द होंगे।
1: जो बाहर बैठा है पाकिस्तान का आदमी, उसने ही इनको अपने झांसे में लिया था और इनको उसने पैसे भी देने का कहा था और आगे इनके साथ चिट्टे का व्यापार करने का भी प्रॉमिस किया था। एक तरह का वो सर्टिफिकेट मांगते हैं इनसे, ये हमारे बंदे पूरे हमारे बन चुके हैं और आगे जाके भी इन पे प्रेशर रहे वो उनको टारगेट करवाते हैं स्पेशल पुलिस वाले का, जो अकेला हो और जिसको जिसको मार के इनको वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है। 30-40 सेकंड का वीडियो इस पे भी बनाया था इन्होंने, वो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो बिल्कुल क्लियर आ गया है। ये वापस मार

0: करने के बाद फिर स्पॉट पर आए हैं, जब वो हरजीत सिंह घिरा पड़ा था उसकी उन्होंने वीडियो बनाई और फिर ये वीडियो उन्होंने आगे भेजी है उस साइड पे।
1: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, ये तमाम जो खुलासे हैं बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पुलिस वालों पर हमला करना, मार डालना, वीडियोस बनाना और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजना। अब सवाल ये है कि इस रैकेट में खूंखार आतंकवादी गैंग में और कौन कौन है, इस रैकेट के बारे में ज्यादा खुलासा हो पाया है?
2: देखिए, ये शहजाद भट्टी जो पाकिस्तानी गैंगस्टर था जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रिक्रूट किया और अब गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी घोषित कर दिया है। शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जो इनकाउंटर में कल देर रात मारा गया दीपक, और दीपक के मोबाइल फोन से कई खुलासे हुए हैं कि जो शहजाद भट्टी का नेटवर्क है उससे दीपक जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ ये टारगेट किलिंग की वारदात थी। दीपक के मोबाइल से जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है हरजीत सिंह, उनकी रेकी का वीडियो भी मिला है, वो वीडियो पाकिस्तान भेजा गया था। ये एक सेट पैटर्न है सती, इसके पहले भी पंजाब में कुछ पुलिस कर्मियों की टारगेट किलिंग करवाई गई, उनकी हत्या करवाई गई और उसमें भी शहजाद भट्टी का रोल सामने आया था। तो ये एक अपने आप में बड़ा खुलासा है, चिंता वाली खबर है, क्योंकि पहले भी पंजाब में अलग अलग जगहों पर पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है।
1: और इसी के बारे में पुलिस की तरफ से जिक्र किया गया है कि इससे पहले भी टारगेट किलिंग हुई है पंजाब के भीतर अलग अलग इलाकों में पुलिस वालों की। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सऊदी अरब की राजधानी रियाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। रियाद एयरपोर्ट के पास आग की लपटें और धुएं का बड़ा गुबार देखा गया और इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने राजधानी और आसपास के इलाकों में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। आपको बता दें कि इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद के संवेदनशील ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया है। कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया और हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी के कई इलाकों को निशाना बनाया है। तो सऊदी गठबंधन के मुताबिक रियाद की ओर आने वाले एक और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, लेकिन तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। हालांकि ये कोई पहला हमला नहीं है जो हूतियों की तरफ से किया गया हो। इससे पहले भी लगातार सऊदी अरब में अलग अलग जगहों पर हूती विद्रोहियों के टारगेट्स और अलग अलग जगहों पर हमले जारी हैं। बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में और राहुल गांधी की छात्र गूंज कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से हंगामा मचाया उसके बारे में, क्योंकि इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर अब सियासत तेज हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मंच पर एक एक मिमिक्री आर्टिस्ट को बुलाया और प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने को कहा। बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो चुकी है, इसे अपमानजनक बताया जा रहा है। कुछ बीजेपी नेता इसे प्रधानमंत्री की मां का अपमान भी कह रहे हैं।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
4: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
3: ग्रेट हैरेसमेंट, मां को कुर्सी दो, मां माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
4: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
3: ग्रेट हैरेसमेंट, माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
1: तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम की आलोचना की है। वहीं बीजेपी नेताओं की आपत्तियों के बाद अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
5: राहुल गांधी जी का सवाल है,
6: आज इंदौर में
5: अंडरस्टैंडिंग यूथ
6: ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता है, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है, लेकिन जैसा होता है कि कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपनी युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी भी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
5: राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सबने देखा है। ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने अब जो विपक्ष का नेता 7.8% ग्रोथ रेट पर हम चल रहे हों क्वार्टर पे, और वो नेता डेड इकोनॉमी कहे, तो आपके समझ में इतना ही आना चाहिए कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, वो इकोनॉमिक्स का ई समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको अगर ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब बात करेंगे ड्यू छात्र संघ चुनावों के नतीजों के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी देश के अलग अलग शहरों में छात्र गूंज कर रहे हैं और यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई का सफाया हो गया है। ड्यू चुनाव में एक बार फिर एबीवीपी ने बाजी मारी है। 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा है तो वहीं 1 पद गया है निर्दलीय उम्मीदवार को।
7: ये टूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की, जबकि 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी 1 पद भी नहीं जीत सका।
8: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो।
7: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
9: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी 3 जगह बटी हुई थी, 3 लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
7: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन एनएसयूआई से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर एनएसयूआई ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
10: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
7: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेंजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेंजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए। डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था, इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
1: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ चुका है। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं।
11: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
1: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। अंसारी ने एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने कथन का हवाला देते हुए हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए खतरा बताया। हामिद अंसारी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
12: उनके द्वारा जब इस प्रकार की घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
1: यूपी के हाथरस से एक बड़ी और अहम खबर आई है जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी थी और हादसा थाना सहपाऊ क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर भारत पेट्रोल पंप के सामने हुआ है। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार तीनों ही लोग करीब 10 फीट हवा में उछल गए, 20 से 30 फीट दूर जा गिरे। हादसे में एक मासूम बच्ची, महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें कैद हुई है। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। गुजरात और बिहार से आग की 3 घटनाएं सामने आई हैं जहां हड़कंप मच गया। कच्छ के भुज में खनिज मिल में भीषण आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। जो दूसरी आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है वलसाड के धोबी तालाब इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी हुई आग की। और आपको बता दें कि आसपास की बिजली गुल हो गई थी, इस आग के बाद अफरा तफरी मच गई थी। उधर समस्तीपुर में भी NH-28 पर कॉस्मेटिक सामान से भरे हुए कंटेनर में भीषण आग लगी थी। अच्छी बात यह रही कि चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Oh no, बहुत bore लग रहा है.
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: GK Max.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: GK Max. Best putty.
7: JK Wall Max.
5: Best paint.
8: JK Max.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
5: जेके मैक्स पेंट्स.
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
12: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा. जिवोरा, सफलता का शंखनाद.
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायबिटीज जूस.
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
18: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
19: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
18: असली शहद, असली स्वाद.
20: In association with
21: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
22: There is a very famous quote ki history repeat itself.
23: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
24: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
23: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bichara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ...2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा फूल फ्रीज हो गया।
2: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
3: हिंदू धर्म के गंदा धर्म बोला, महाकुंभ के मृत्यु कुंभ बोला, और राम मंदिर उद्बोधन दिन राम मंदिर मानिना बोले मिचिल करा आछेन तो भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज अभिशापे ही सब ध्वंस हो गए।
1: स्वेंदु अधिकारी की खाली सीट नंदीग्राम और हुमायूं कबीर की खाली सीट रेजी नगर पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से 3-3 पसंदीदा विकल्प पूछे थे। उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बाकी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
4: इंटरिम ऑर्डर इससे साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
1: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान स्वेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है। ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
2: इन्होंने क्या किया? हाईजैक किया है टोटल। इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
1: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो

PFO में नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव आया है। वेज सीलिंग बढ़ने से कई कर्मचारियों के लिए PF और पेंशन का दायरा बदल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका फायदा किसे मिलेगा और आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है। नए नियमों के मुताबिक EPFO की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रूपए से बढ़कर 25,000 रूपए कर दी गई है। सरकार के मुताबिक इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं। EPS में पेंशन का हिसाब पेंशन योग्य सैलरी और नौकरी की अवधि से जुड़ा है और पेंशन योग्य सैलरी को पेंशन योग्य सेवा से गुणा करके 70 से भाग देने पर मासिक पेंशन का हिसाब निकलता है। इस हिसाब से 25,000 की पेंशन योग्य सैलरी माने तो 10 साल की सेवा पर करीब 3,571 और 15 साल पर करीब 5,357 की पेंशन बनती है। जानकारों के मुताबिक इसका असर हर नौकरी पेशा पर पड़ना तय है। लंबी नौकरी में ये अंतर और बड़ा हो सकता है। 20 साल की पात्र सेवा पर नियमों के मुताबिक 2 साल का वेटेज जुड़ सकता है, जिससे 22 साल की सेवा मानी जा सकती है। ऐसे में 20 साल की सेवा पर 7,857 पेंशन बनेगी और 30 साल की सेवा पर 32 साल में 11,429 रुपए पेंशन होगी। लेकिन ये कैलकुलेशन उदाहरण है। हर कर्मचारी की वास्तविक पेंशन, उसकी पेंशन योग्य सैलरी, सेवा अवधि और लागू EPS नियमों के मुताबिक तय है। सबसे जरूरी बात ये है कि 25,000 रुपए की नई सीमा का मतलब ये नहीं है कि हर मौजूदा पेंशनर की पेंशन बढ़ जाएगी। बदलाव मुख्य तौर पर अनिवार्य EPFO कवरेज की सीमा से जुड़ा है, इसलिए कर्मचारी के लिए असली सवाल है कि उसकी पेंशन योग्य सैलरी और सेवा की गणना किस तरह होगी। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का सरकार पर हमला का सिस्टम अंधभक्त पैदा कर रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बम्पर जीत पर बोले नितिन नवीन, अमित शाह राष्ट्र प्रथम भावना की जीत। जेपी नड्डा ने कहा ये गूंज नहीं धमाका। दिल्ली में एसआईआर नोटिस पर उबाल, केजरीवाल परिवार कपिल सिब्बल का रिकॉर्ड मैच नहीं। नोटिस के बाद सीएम रेखा गुप्ता का नाम लिस्ट हुआ मान्य। अमृतसर में एएसआई की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मर्डर का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने करवाई हत्या। और यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर किया बड़ा हमला, राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला, एयरपोर्ट में नजर आया धुएं का गुबार।

0: बंदी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, बोले देश के सिस्टम पर कब्जा, छात्रों को सवाल पूछने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने अंधभक्त शब्द के जरिए बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा, बोले देश से नफरत सिर्फ छात्र ही खत्म कर सकते हैं। छात्रों के मन से पहले राहुल गांधी ने रोजगार और शिक्षा के सवाल उठाए, अडानी अंबानी से लेकर जय शाह तक का जिक्र किया। इंदौर में राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम मोहन यादव का पलटवार, बोला कार्यक्रम में बच्चों के सवालों के बजाय राहुल गांधी का एजेंडा चलाया गया। राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, मोहन यादव बोले मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सीएम धामी का राहुल गांधी पर निशाना, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां की टिप्पणी को लेकर बोले राजनीतिक विरोध में मर्यादा की सीमाएं लांघना स्वीकार्य नहीं। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के दौरे पहले पोस्ट अवार्ड नेता प्रतिपक्ष के विरोध में शहर में लगे थे झूठ की गूंज के होर्डिंग्स। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े का बीजेपी सरकार पर आरोप, का राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने लगाए झूठ की गूंज के पोस्टर्स। विपिन वानखेड़े ने इस कार्यक्रम में बाधा डालते हुए कोशिश से बताया, छात्रों की युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय राजनीतिक दलों को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए कहा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी के बयानों के विरोध में देश प्रेमियों ने लगाए हैं पोस्टर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत। नए डुसू अध्यक्ष बने यश डबा, सचिव पद पर रिया छावड़ी ने जीत दर्ज की है, सह सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की शानदार विजय। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की जीत हुई है, उन्हें मिले 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों की हार्दिक बधाई दी है, पोस्ट में ज्ञानशील और एकता की जीत पर करार दिया इसे। गृहमंत्री अमित शाह ने एबीवीपी की विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, पोस्ट में लिखा ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा दावा, बोले दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अगर लड़ता तो भारी बहुमत से जीतता। बीजेपी ने डुसू चुनाव में नतीजों को लेकर राहुल गांधी के लिए करारा झटका और झूठ की राजनीति को नकारे जाने का सबूत इसे बताया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एबीवीपी की डुसू जीत को नेशन फर्स्ट की भावना की जीत बताया। जेपी नड्डा ने डुसू के नतीजों पर आज तक से बातचीत करते हुए कहा यह छात्रों की गूंज नहीं बल्कि छात्रों का धमाका है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को झूठ की गूंज करार देते हुए कहा यह सिर्फ झूठ ही राजनीति करना जानते हैं और वो कुछ करते ही नहीं। हामिद अंसारी के बयान पर देश भर में सियासी घमासान, दक्षिण पंथ को लेकर टिप्पणी को लेकर बीजेपी और बीएचपी ने कड़ी आपत्ति जताई। नेहरू के पुराने बयान का हवाला देकर हामिद अंसारी ने छेड़ी नई बहस, हिंदू दक्षिण पंथ और सांप्रदायिकता पर गर्मा गई है राजनीति। हामिद अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, केशव मौर्य बोले ऐसे बयान समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाते हैं। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़, ममता बनर्जी गुट ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया, उम्मीदवार की गिरफ्तारी को बड़ा विवाद बताया। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर घमासान पार्टी ने कार्रवाई के समय पर उठाए सवाल, बीजेपी ने पूछा गिरफ्तारी किन आरोपों में हुई। नंदीग्राम में बहुकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ हुई, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के अलग अलग धड़ों के बीच होगा चुनावी संघर्ष। विजयनगर उपचुनाव में आखिरी वक्त पर बड़ा यूटर्न, टीएमसी उम्मीदवार ने पहले नाम वापस लेने की बात कही और फिर मैदान में लौटे। ममता बनर्जी ने टाइमिंग पर सवाल उठाए, पूछा नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन के तुरंत बाद गिरफ्तारी क्यों। केसी वेणुगोपाल के बड़ा हमला, नंदीग्राम में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस नहीं होगी। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बढ़ गया सियासी पारा, सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, नंदीग्राम में सनातन और राष्ट्रवादी ताकतों की जीत होगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले रोजगार के नाम पर फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं और सरकार और महंगाई से जनता बेहाल है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दावा, बोले बीजेपी अंतिम दौर में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की। एसपी सांसद पप्पू निषाद पर कथित हमले को लेकर अखिलेश सरकार पर हमलावर, बोले कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की जरूरत। आईआईटी बॉम्बे छात्र की खुदकुशी के मामले में जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, मां का आरोप है कि बेटे को प्रताड़ित किया गया था। ग्रेटर नोएडा हिटमैन मामले में आरोपी मनीष गिरफ्तार, पुलिस ने कार भी जब्त की। लुधियाना में रवनीत सिंह मिट्टू हिरासत में लेने पर सियासी बवाल हुआ। सीएम भगवंत मान के काफिले के बाहर जबरदस्त हंगामा। सीएम मान के काफिले के बाहर अंडे टमाटर फेंकने का आरोप है। बीजेपी नेता रवनीत मिट्टू को पंजाब में बढ़ा राजनीतिक तनाव। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हुई। आम आदमी पार्टी ने मान के मुनाफे अभियान से साथ शुरू कर दिया है घर घर जनसंपर्क। आपका मिशन 2027 शुरू हुआ। भगवंत मान सरकार ने कामकाज का पर्चा लेकर अब हर घर पार्टी के पहुंचने की बात कही। अरविंद केजरीवाल और परिवार को वोटर लिस्ट के लिए नोटिस है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर उठाए हैं सवाल। राहुल गांधी के रायबरेली के राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने बनाया है जिला प्रभारी। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रवेश के लिए एक ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर 5 अभ्यर्थियों के फर्जी दावों का खुलासा। एफआईआर के बाद डोमिसाइल पर भी उठे सवाल। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन। कहा सभी तरह की आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद सख्त कार्रवाई। अमृतसर में एसआई हरजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी दीपक सिंह का पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया। जांच में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल से जुड़े कनेक्शन भी सामने आए। एएसआई हरजीत सिंह का टारगेट किलिंग में आतंकी नेटवर्क की भूमिका पर जांच तेज हुई। दीपक सिंह के एनकाउंटर के बाद शहजाद भट्टी मॉड्यूल की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिशूल ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का किया दौरा। मिस्र के नौसैनिक जहाज अलकदीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आईएनएस त्रिशूल के क्रू ने चैडबी वॉर मेमोरियल में दोनों ही विश्व युद्धों के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारत के राजदूत ने आईएनएस त्रिशूल का किया दौरा और क्रू से की मुलाकात। पुलवामा के काकापोरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों की मॉकड्रिल, चाक चौबंद इंतजामों की पुष्टि। मॉकड्रिल में पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना और उसे बेहतर बनाना मकसद था। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतकर लौटी भारतीय टीम के सदस्य मधु पटेल का भव्य स्वागत। फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार वेलकम। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मत्था टेका प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नशे से ग्रसित परिवारों से मुलाकात भी की। एमपी के मेधावी छात्रों को मोहन यादव की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को बांटी स्कूटी। लगभग 7,500 छात्रों को लाभ हुआ। आईआईटी रुड़की में वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन। पहले दिन एनएसएजी डुभाल ने 1,277 ग्रेजुएट मेधावी छात्रों को बांटी डिग्रियां। आज दूसरे दिन पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट्स को बांटी जाएंगी उपाधियां। कुल 2,701 मेधावी छात्रों को सौंपी जाएंगी डिग्रियां। एमपी के आगरमालवा में फंते हुए नाले में बह गई श्रद्धालुओं से भरी हुई कार। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। सभी श्रद्धालु उज्जैन से कार के किराए को लेकर मां बगलामुखी के दर्शनों के लिए आए थे। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, जिनमें 7 लोग उड़ीसा के रहने वाले थे। आगरमालवा हादसे में 8 लोगों की मौत पर मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को पीएम ने 2,00,000 और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। आगरमालवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया शोक। प्रभावित परिवारों को 4,00,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने आगरमालवा हादसे पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिए। अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करने के भी निर्देश दिए गए। मोतिहारी में गणपति उत्सव की धूम है। कोलकाता थीम पर बप्पा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाए गए। सूरत में गणपति बप्पा के दरबार में अंगदान का संदेश। ऑर्गन डोनेशन की थीम पर सजाया गया पंडाल। पुणे में श्रीमंत बाबू साहेब रंगारी गणपति की भव्य और दिव्य सजावट। गजानन की आस्था और भक्ति में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किया बप्पा के दर्शन। श्रीमंत बाबू साहेब रंगारी गणपति पंडाल में महाआरती में हुई शामिल। लिया बप्पा का आशीर्वाद। महाराष्ट्र बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविन्द्र चौहान ने डोंबिवली में आशीर्वाद का दीप जलाया। स्वस्थ भारत की दिशा में प्रिवेंटिव वेलनेस पर जोर। दिल्ली में कायो रिचुअल्स के 6 महीने पर पूरे। स्वास्थ्य जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। फूलों से किया गया राधा रानी का भव्य और दिव्य अभिषेक। उत्सव का मुख्य आकर्षण का विशेष बोट फेस्टिवल। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। कोलकाता के ऐतिहासिक गौड़ीय मठ बाजार में राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राधा रानी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर मत्था टेका। कर्नाटक के सीएम डी के शिव कुमार चिकमंगलूर के बोलेन होनूर शंभापुरी पीठ पहुंचे। पीठासीन देवता श्री वीरभद्र स्वामी के दर्शन के साधु संतों का आशीर्वाद लिया। कश्मीर में एलओसी के पास स्थित तीतवाल में धूमधाम से मनाया गया शारदा दिवस। शारदा पीठ यात्रा के वार्षिकोत्सव पर विशेष कार्यक्रम। गुजरात के कच्छ में गोदाम में भीषण आग लगी थी। मौके पर 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने संभाला था मोर्चा। गुजरात के वलसाड में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। बिजली गोलों ने से अफरा तफरी मची। समस्तीपुर में कॉस्मेटिक सामान से भरे हुए कंटेनर में लग गई थी आग। चालक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हाथरस में रफ्तार का कहर तेज। रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था हादसा। वाराणसी में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख का इनामी नक्सल कमांडर ब्रिजेश मुठभेड़ में ढेर। राजस्थान के झुंझुनू में खौफनाक सड़क हादसा। कार की टक्कर में बाइक सवार 10 फीट हवा में उछले। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मंजर। भोपाल में शराब की दुकान के पास युवक पर हमला। 4 दोस्तों ने बेरहमी से पीटा। भोपाल की पॉश कॉलोनी में कार बाइक की टक्कर के बाद हंगामा हुआ। पिता बेटी घायल हुए। बाइक सवार ने कार के शीशे तोड़ डाले। राजस्थान के विभाड़ी में फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हुई। 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी के बाहर दे रहे हैं लोग धरना। गुरुग्राम में आपसी विवाद के बाद नशे में धुत कार चालक का तांडव। दोस्तों की कैब को कई बार टक्कर मारी। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में आवारा कुत्ते का आतंक। गली में खेल रहे 2 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला बोला। झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टैक्सी में टक्कर के बाद युवक को कुचल डाला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। गंभीर रूप से युवक घायल। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को टक्कर मारी। ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के रायचूर में महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या। हत्या के बाद 2 साल की बच्ची का शव भी मिला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू को रेस्क्यू किया। डलहौजी की सड़क पर सिर में कनस्तर फंसा ये भटक रहा था भालू। गाजियाबाद में बैंक अधिकारी बनकर युवक ने स्विगी पर फर्जी रेस्टोरेंट बनाकर 30 लाख रुपए की साइबर ठगी कर डाली। आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिला अस्पताल में ब्लड सैंपल और उपकरणों के साथ इंस्टाग्राम रील बनाना भारी पड़ गया। 3 महिला लैब टेक्नीशियन बर्खास्त की गई। जयपुर में दुर्गापुरा मार्केट में दिन दहाड़े महिला से छीने सोने की चेन। देखती रह गई भीड़। मौके से फरार हुआ बदमाश। भोपाल में कैदी ने हमीदिया अस्पताल में 4th मंजिल से भागने की कोशिश की। टॉयलेट की खिड़की से निकला। पाइप से नीचे उतरने के समय पकड़ा गया। पैरा स्पोर्ट्स को लेकर स्विट्जरलैंड सांसद डॉक्टर निक मुगुर ने शुभम चौधरी से मुलाकात की। भारत स्विट्जरलैंड के बीच खेल सहयोग पर चर्चा। एशियन गेम्स में विमेन्स क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। जीतने पर 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच खेलेगी टीम इंडिया। एशियन गेम 2026 में जापान सीरीज के लिए रवाना हुई है टीम इंडिया। श्रेयस की कप्तानी में एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी भारतीय टीम। अजय देवगन का मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की रिलीज डेट को आउट किया गया। 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। अल्लू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट हुआ। राका में 4 किरदारों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना। बावरी का यूट्यूब पर जबरदस्त हिट। गाने में सोनम महापात्रा की आवाज है। फिल्म डोंट बी शाय का गाना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद एयरपोर्ट के पास दिखा आग का धुएं का गुबार। हुतियों ने सऊदी राजधानी में मिसाइल ड्रोन से हमले किए। सऊदी अरब ने रियाद पर हुतियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की पुष्टि की है। डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। मिडिल ईस्ट बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका का सुरक्षा अलर्ट। अमेरिकी नागरिकों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। अमेरिका ने कैरिबियन में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े जहाज पर हमला बोला। 4 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग ग्रहों की दशाएं जीवन पर अलग अलग प्रभाव पैदा करती हैं। आज हम बात करेंगे राहु की दशा के बारे में और राहु की दशा के प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:51 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं राहु की दशा के बारे में। राहु की दशा का कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि राहु किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, राहु की जो गणना की जाती है वो सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के आधार पर की जाती है। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है। राहु इसी मन का और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। और केतु जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। राहु भी रहस्य बता सकता है, इसलिए सामान्यतः राहु को और केतु को भी रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। राहु का संबंध जीवन की आकस्मिकताओं से होता है। जो घटनाएं, जो चीजें जीवन में आकस्मिक रूप से घटती हैं, उसके पीछे ज्यादातर राहु होता है। इसीलिए राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, उसमें आकस्मिक प्रभाव, आकस्मिक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु की स्थिति को समझकर अगर उपाय किए जाएं तो राहु की बुरी दशा को शांत कर सकते हैं। राहु की दशा अगर अशुभ प्रभाव दे रही है तो उस अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, और जब इस स्थिति को समझ करके आप उपाय करेंगे तो राहु के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। राहु की दशा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है।
सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

मानसिक चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, अगर राहु आपकी कुंडली में प्रतिकूल है, निगेटिव है, तो राहु की दशा का प्रभाव कैसा पड़ सकता है? अगर राहु आपका निगेटिव है तो राहु की दशा में भय की और वहम की समस्या हो जाती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से डरने लगता है और उसके मन में वहम और चिंता आ जाती है। राहु अगर आपका शुभ नहीं है और राहु की दशा चलने लगे तो जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान, पैसे रुपए की सडन दिक्कतें, अचानक आर्थिक नुकसान जरूर हो जाता है। राहु अगर निगेटिव हो और राहु की दशा चलने लगे तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि बीमारी का कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। बीमारी क्यों हुई और कैसे दूर होगी इसका रास्ता नहीं मिलता। राहु अगर निगेटिव हो और राहु की दशा चलने लगे तो वैवाहिक जीवन में वहम और शक पैदा होता है। पति पत्नी का आपसी भरोसा कमजोर हो जाता है। और राहु की अगर निगेटिव दशा चले तो बिना कारण के वैवाहिक जीवन टूट जाता है। बिना कारण के वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ जाती है। तो अगर राहु नकारात्मक होगा कुंडली में और राहु की महादशा या अंतर दशा चलेगी तो इसके परिणाम सामान्यतः खराब होंगे। राहु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको

इनका शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका

ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पीयूष जी ने हमें लिखा है, पुणे महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मई 1990, जन्म का समय सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। पीयूष लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पीयूष, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है। साल 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी परिवार वालों के प्रयास से, और कुल मिला के आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है, अनुकूल स्थिति में है, आपके लिए फायदेमंद है और राहु की महादशा या अंतर दशा चले तो इसका प्रभाव क्या होगा। अगर राहु शुभ है और राहु की दशा चलने लगे तो आकस्मिक रूप से आपके काम बनने लगते हैं, अचानक से काम सफल होने लगते हैं। राहु की अनुकूल दशा चले तो राजनीति में और फिल्म आदि क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है। राहु अगर शुभ हो और उसकी दशा चले तो व्यक्ति आकस्मिक रूप से अचानक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। राहु की शुभ दशा चले तो आकस्मिक धन का या आकस्मिक संपत्ति का लाभ होता है, और अचानक धन मिलने वाले क्षेत्रों में फायदा हो जाता है। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, इन क्षेत्रों में धन मिलने की संभावना बन जाती है। लेकिन याद रखिए कि राहु की दशा में जो उपलब्धियां मिलती हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती। राहु आकस्मिक सफलता देता है और समय बीत जाने पर सफलता को वापस ले लेता है। राहु की दशा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं।

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की नकारात्मक दशा चल रही है, राहु की निगेटिव दशा है, राहु की दशा में आपके कष्ट बढ़ रहे हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करें? घर की नियमित रूप से साफ सफाई करिए, घर में बिना वजह अनुपयोगी चीजें, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। महीने में एक दिन घर की थोरो सफाई करिए और घर से अनुपयोगी चीजों को, कूड़े कबाड़ को हटाते रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य की रोशनी आती हो। अगर सूर्य की रोशनी ना आती हो तो रोशनदान दरवाजों को, शीशे को ऐसा लगाइए कि घर में सूर्य की रोशनी आए। रोज सवेरे जल में एक ढक्कन या जरा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के दो पत्ते जरूर खाइए। राहु की दशा अगर निगेटिव है और वो दशा चल रही है तो मांस मदिरा तामसिक आहार से परहेज करिए। मांस मदिरा पूरी तरह से त्याग दीजिए, अन्यथा राहु और निगेटिव होगा, आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करिए या नियमित रूप से अपने माथे पर या कंठ पर चंदन का तिलक लगाइए। महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन दोपहर के समय में निर्धनों को भोजन कराइए और राहु के मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा।
अगर रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि राहु की महादशा शुरू होने के साथ बहुत सारे लोग गोमेद पहन लेते हैं, या कुछ ज्योतिषी राहु की दशा शुरू होने पर आंख मूंद करके गोमेद पहना देते हैं। ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि राहु की दशा चले तो गोमेद जरूर पहन लेना चाहिए। याद रखिए, अगर कुंडली में राहु फेवरेबल है, अगर कुंडली में राहु अनुकूल है और तब आप गोमेद पहनते हैं, तब राहु की दशा में आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है और राहु की दशा चलने पर आप गोमेद पहन लेते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं, आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो राहु की दशा चलने पर गोमेद तभी पहनिएगा जब राहु आपकी कुंडली में अनुकूल हो, जब राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल हो। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः किसी ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किसी देवी देवता की उपासना की जाती है, तो राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। देखिए, राहु का संबंध माना जाता है भगवान भैरव से। अगर राहु की दशा अच्छी नहीं है या राहु आपको अशुभ फल दे रहा है, नियमित रूप से रोज शाम को अगर आप भगवान भैरव की उपासना करें, काल भैरव अष्टक का पाठ करें या भैरव मंदिर में जा करके भगवान भैरव का दर्शन करें, तो राहु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, निर्णयों में सावधानी रखें। और नंबर 9, करियर में आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत

धनु राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए, करियर की समस्या दूर होगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा, क्योंकि आज की तिथि रिक्ता तिथि है। आज सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है मुंबई के कोस्टल रोड से, जहां पर एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने 5 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारी है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें कि कोस्टल रोड की एक घटना है जहां बीएमडब्ल्यू कार ने 5 लोगों को रौंद डाला है, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश जुड़ गए। दीपेश, क्या जानकारी मिल रही है, कब की यह घटना है और क्या ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है?
3: शिशु बिल्कुल, देखिए आज सुबह की ही ये घटना है, जब मरीन ड्राइव से हाजी अली की तरफ ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी जा रही थी और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सीसीटीवी कैमरास मॉनिटर किए गए हैं, उसके मुताबिक ओवर स्पीडिंग यानी जो स्पीड लिमिट है उससे बहुत ज्यादा तेज ये गाड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इसके बीएमडब्ल्यू की जद में 5 लोग आ गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोगों का अस्पताल में इलाज शुरू है, लेकिन उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जो ड्राइवर है उसे पुलिस ने डिटेन किया है, पूछताछ जारी है, जांच जारी है। ब्लैक कलर की ये बीएमडब्ल्यू थी, लेकिन काफी गंभीर घटना है। और कुछ ही दिन पहले ऐसी ही एक घटना और देखी गई थी, जब 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई थी, उसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोस्टल रोड के पास ही कई बड़ी गाड़ियां आपस में रेस लगा रही थी। और खास करके ऐसे समय में ये हादसा होना, त्योहारों के समय में हादसा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की
2: बात है। एक और चीज थी, क्या ये जो ड्राइवर है वो ड्रंक था? ओवर स्पीडिंग की बात सामने आई रही है क्योंकि 3 लोगों की मौके पर जान चली गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्पीड का कहर उस वक्त रहा होगा, और जो 2 लोग हैं वो भी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं।
3: जी शशि बिल्कुल, देखिए काफी तेज ये गाड़ी आ रही थी, खास करके ऐसे समय में, सुबह के समय में जब लोग बाहर हैं, त्योहारों का समय है, लोग सड़कों पर रहते हैं, और ऐसे समय में इस तेज रफ्तार से ये गाड़ी चलाई जा रही थी। फिलहाल ड्राइवर ने शराब पी थी या वो किसी नशे में लिप्त था या नहीं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी मेडिकल होगा, मेडिकल रिपोर्ट में आने के बाद ये बातें स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक वजह बताई जा रही है वो ओवर स्पीडिंग है। ये काफी तेज गाड़ी जो है वो चालक द्वारा चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। शशि,
2: बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारी गई है बीएमडब्ल्यू की तरफ से मुंबई में कोस्टल रोड पर, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। और ये बड़ी और अहम खबर है गुरुग्राम से, जहां पर एक कार सवार ने टैक्सी वाले को टक्कर मारी है। किसी बात को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था, उसके बाद कार सवार ने पास में जो खड़ी हुई टैक्सी थी उसे टक्कर मारनी शुरू की और कई बार टक्कर मारी गई। ये जो फुटेज है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से विवाद के बाद इस टैक्सी को कार ने टक्कर मारी है, वो भी कई बार। जरा देखिए तस्वीरें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले पर? आखिर इतनी बार टक्कर मारने के पीछे वजह क्या है? क्या गुस्सा था? क्या एक दूसरे को जानते थे? और ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से कई बार जोरदार तरीके से टक्कर मारी गई है टैक्सी को।
4: बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं ये नशे और रफ्तार का कहर वो सामने आ रहा है। ये जो पूरा मामला है ये साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 38 में जो हुड्डा मार्केट है उसके आसपास है, जिसमें मामली कहा सुनी होने पर पहले जो बेलोनो कार थी, जिसमें लगभग 4 लोग सवार थे, उन्होंने एक व्हाइट कलर की टैक्सी वहां पर खड़ी थी उसको टक्कर मारी और उसके अंदर जो युवक बैठा था उसको कुचलने की कोशिश की। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों में सवार लोगों में पागलपन सवार हो गया। उसके बाद एक फिल्मी स्टाइल में अगर आप तस्वीरें देखें तो एक दूसरे को टक्कर मारते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई। बड़ी बात है कि ये दोनों गाड़ियों में सवार लोगों के बीच पागलपन था, लेकिन इससे आसपास जो लोग थे उनमें दहशत का माहौल हो गया, उनमें भगदड़ मच गई। देखिए एक्चुअल इंसिडेंट क्यों है, कैसे हुआ, इसके बारे में पुलिस अभी जांच करेगी, लेकिन ये जो एक तरीके से वारदात है, हिंसक वारदात है, उससे अब जो वहां लोग मौजूद थे उस मार्केट में, पॉश इलाका है, उनमें जो ना वो दहशत का माहौल बढ़ गया। जी
2: क्या इस पूरे मामले में कोई शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, कोई गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का कोई एक्शन?
4: देखिए अभी ये जो पूरा तस्वीर है, ये वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप जाहिर सी बात है गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में मामला है, तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों जो कार सवार है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। गुरुग्राम के बाद ये जो खबर है वो है यूपी के वाराणसी से। बड़ी और अहम खबर यह है कि वाराणसी में यूपी एटीएस ने कुख्यात नक्सली ब्रिजेश उर्फ गोपाल सिंह को मार गिराया है, जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। ब्रिजेश झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी का कमांडर था। एनआईए ने भी टेरर फंडिंग केस में उसे वांटेड घोषित किया हुआ था। वाराणसी के रामनगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और यूपी एटीएस और पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली रामनगर होते हुए जा रहा है। इसके बाद टीम ने घेरेबंदी शुरू की। इसी दौरान वो वहां बाइक से पहुंचा। टीम ने उसे जब रोकने का इशारा किया तो उसने पकड़े जाने के डर से दोनों ही हाथों से पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद टीम ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें ब्रिजेश को गोली लगी और वो सड़क पर गिर पड़ा। जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए। संतोष, कितनी देर पहले की यह घटना है और क्या जानकारी मिल पाई है इसके बारे में? अभी कोई और भी इसका
5: साथी के साथ? बिल्कुल, ये अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहा था। उसी इनपुट पर यूपी एटीएस लगातार इस पर नजर रखे थी। वजह थी कि इसका मूवमेंट लगातार वाराणसी और आसपास चंदौली सोनभद्र की तरफ देखा जा रहा था, इनपुट मिला था। उसके बाद यूपी एटीएस ने इसको वाराणसी के रामनगर में जब घेरेबंदी की, तब इस ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह, ये झारखंड के प्रतिबंधित संगठन टीपीसी यानी तृतीय प्रस्तुति कमेटी का एरिया कमांडर रहा है और 5 लाख का इनाम इसके ऊपर एनआईए ने घोषित किया। 25 लाख का इनाम इसके ऊपर झारखंड सरकार ने घोषित कर रखा है। टेरर फंडिंग के साथ साथ पुलिस वालों पर हमले का भी आरोपी रहा है। तो ब्रिजेश गंजू गोपाल सिंह को यूपी एटीएस आया गया, लेकिन इसका दूसरा साथी यूपी एटीएस की कहा जा रहा है कि गिरफ्त में है और कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव है कि होंगी। जी
2: हम आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इनामी नक्सली था, जिसे संयुक्त ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया है क्योंकि गोलीबारी पुलिस पर इसने शुरू कर दी थी। आगे बढ़ेंगे, खबर है अमृतसर से, जहां एएसआई की हत्या करने के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है और अमृतसर पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से पुलिस को एक फोन भी मिला है और उस फोन से बड़े खुलासे हुए हैं। हमलावर दीपक सिंह पाकिस्तानी हैंडलर के साथ संपर्क में था। आतंकी शहजाद भट्टी गैंग के लिए वो काम कर रहा था। आतंकी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए उसने एएसआई की पहले हत्या की, वीडियो बनाया और इस वीडियो को उस आतंकवादी को भेजा भी। जी हां, शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर पंजाब में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के आरोप पहले भी लगे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को आतंकवादी घोषित किया था। अब दीपक के एनकाउंटर के बाद इस पूरे आतंकी नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। नॉनस्टॉप खबरें लगातार जारी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।
1: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का सरकार पर हमला का सिस्टम अंधभक्त पैदा कर रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बंपर जीत पर बोले नितिन नवीन। अमित शाह राष्ट्र भावना प्रथम। जेपी नड्डा ने कहा यह गूंज नहीं धमाका है। दिल्ली में एसआईआर नोटिस पर उबाल। केजरीवाल परिवार कपिल सिब्बल का रिकॉर्ड मैच नहीं। नोटिस के बाद सीएम रेखा गुप्ता का नाम लिस्ट में हुआ मान्य। अमृतसर में एएसआई की हत्या के आरोपी एनकाउंटर में ढेर। मर्डर का पाकिस्तानी कनेक्शन। आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने करवाई हत्या। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी पर किया बड़ा हमला। राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला। एयरपोर्ट से दिखाई दिया धुएं का गुबार।

भारतीय निशानेबाजों इलावेनिल और क्वारिलवान सोनम महस्कर और साथी विनोद विदर्सा ने जापान के नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि भारतीय निशानेबाजों ने निशाना साधा है सिल्वर पर, जिसमें इलावेनिल साथ ही साथ सोनम महस्कर और विनोद ने जापान में नायोगा में जो एशियाई खेल खेले जा रहे हैं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, भारत के नाम किया है। तो एशियन गेम्स में भारत को पहला मेडल मिला है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। शूटिंग महिला इवेंट में तो एशियन गेम्स में भारत को पहला पदक और वो भी सिल्वर, और आपको बता दें कि शूटिंग में ये मेडल अपने नाम किया है भारतीय निशानेबाजों ने। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। गुजरात के कच्छ में गोदाम में लगी थी भयंकर आग, मौके पर 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। गुजरात के वलसाड़ में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, बिजली गुल होने से मच गई थी अफरा तफरी। समस्तीपुर में कॉस्मेटिक सामान में भरे हुए कंटेनर में भीषण आग, चालक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हाथरस में रफ्तार का कहर तेज, रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। वाराणसी में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश मुठभेड़ में ढेर। गुरुग्राम में विवाद के बाद कार सवार ने टैक्सी पर किया था जानलेवा हमला, दोनों ही तरफ से दनादन मारी गई थी टक्करें, वीडियो वायरल हुआ। यूपी में एटा में फर्जी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का भंडाफोड़, प्रिंसिपल ने खुद के अपहरण की साजिश रची, फर्जी डिग्री से करोड़ों का ठगी। मुंबई में गणपति पंडाल के बाद करंट लगने से 2 लोगों की मौत की खबर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हैदराबाद में कार ने 3 साल के मासूम को रौंद डाला, मौके पर मौत हुई, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। हिसार रोड मैनेजर हत्याकांड में फरार बदमाशों पर सोनीपत एसटीएफ का शिकंजा, आरोपी ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई। राजस्थान के झुंझुनू में खौफनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार 10 फीट हवा में उछले, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मंजर। इंदौर के पेट्रोल पंप पर देर रात तोड़फोड़ की घटना, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रोहतक में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक, आवारा कुत्ते ने युवती पर जानलेवा हमला बोला। भोपाल की पॉश कॉलोनी में कार बाइक की टक्कर के बाद हंगामा हुआ, पिता बेटी घायल हुए, बाइक सवार ने कार के शीशे तोड़ डाले। राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हुई, 50 लाख मुआवजे की मांग को लेकर परिजन कंपनी के बाहर दे रहे हैं धरना। एमपी के आगर मालवा में उफनते हुए नाले में बही श्रद्धालुओं से भरी हुई कार, हादसे में 8 की मौत हुई। सभी श्रद्धालु उज्जैन से कार के किराए पर लेकर मां बगलामुखी मंदिर दर्शनों के लिए गए थे। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, जिसमें 7 लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। आगर मालवा हादसे में 8 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। आगर मालवा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया है शोक, प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने आगर मालवा हादसे पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करने का निर्देश। इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, बोले देश में सिस्टम पर कब्जा, छात्रों को सवाल पूछने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने अंधभक्त शब्द के जरिए बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा, बोले देश से नफरत सिर्फ छात्री खत्म कर पाएंगे। छात्रों के मन से राहुल गांधी ने उठाए रोजगार और शिक्षा के सवाल, अडानी और अंबानी से लेकर जय शाह तक का जिक्र किया। इंदौर में राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम मोहन यादव का पलटवार, बोले कार्यक्रम में बच्चों के सवालों के बजाय कांग्रेस का एजेंडा चलाया गया। राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, मोहन यादव बोले मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। सीएम धामी का राहुल गांधी पर निशाना, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां की टिप्पणी को लेकर बोले राजनीतिक विरोध में मर्यादाएं लांघना स्वीकार्य नहीं। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के दौर के पहले में पोस्टर वॉर भी देखा गया, प्रतिपक्ष के विरोध में शहर भर में लगे झूठ की गूंज वाले होर्डिंग्स।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया, कहा राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने लगाए हैं झूठ की गूंज की पोस्टर्स। विपिन वानखेड़े ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताते हुए कहा छात्रों और युवाओं की आवाजों को दबाने के बजाय राजनीतिक दलों को अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा राहुल गांधी के बयानों के विरोध में देश प्रेमियों ने पोस्टर लगाए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत। नए डुसू के अध्यक्ष बने यश डबा, सचिव पद पर रिया छावड़ी ने दर्ज की जीत, सह सचिव पर लक्ष्य राज ने बाजी मारी। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की हुई है जीत, उन्हें मिले हैं 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने एबीवीपी की विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, पोस्ट में लिखा ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा दावा, बोले दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ता तो भारी बहुमत से जीतता। बीजेपी ने डुसू चुनाव में नतीजों को राहुल गांधी के लिए करारा झटका बताया, झूठ की राजनीति को नकारे जाने की बात भी कही। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एबीवीपी की डुसू जीत को नेशन फर्स्ट की भावना की जीत बताया। जेपी नड्डा ने डुसू के नतीजों पर आज तक से बातचीत करते हुए छात्रों की जीत है और ये धमाका कहना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी के कार्यक्रम को झूठ की गूंज करार देते हुए वो सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानते हैं, वो वही कर रहे हैं। आमिर अंसारी के बयान पर देश भर में सियासी घमासान, हिंदू दक्षिण पंथ को लेकर टिप्पणी पर बीजेपी और बीएचपी ने कड़ी आपत्ति जताई। नेहरू के पुराने बयान पर हवाला देते हुए हामिद अंसारी ने छेड़ी है नई बहस, हिंदू दक्षिण पंथों और सांप्रदायिकता पर गरमाई है राजनीति। हामिद अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, केशव मौर्य बोले ऐसे बयान समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाते हैं। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी मोड़, ममता बनर्जी गुट ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया है, उम्मीदवार की गिरफ्तारी से बड़ा विवाद। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर घमासान, पार्टी ने कार्रवाई से समय पर सवाल उठाए, बीजेपी ने पूछा गिरफ्तारी किन आरोपों में हुई। नंदीग्राम में बहुकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ हुई, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के अलग अलग धड़ों के बीच चुनावी संघर्ष। विजयनगर उपचुनाव में आखिरी वक्त पर बड़ा यूटर्न, टीएमसी उम्मीदवार ने पहले नाम वापस लेने की बात कही और फिर मैदान में लौटे। ममता बनर्जी ने टाइमिंग पर उठाए गंभीर सवाल, पूछा नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन के तुरंत बाद गिरफ्तार क्यों किया गया। केसी वेणुगोपाल का बड़ा हमला, नंदीग्राम में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस नहीं होगी। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बढ़ गया है सियासी पारा, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया नंदीग्राम में सनातन और राष्ट्रवादी ताकतें जीतेंगी। अखिलेश यादव बोले रोजगार के नाम पर फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और महंगाई से जनता परेशान। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले बीजेपी अंतिम दौर में है, एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। सपा सांसद पप्पू निषाद की कथित हमले को लेकर अखिलेश का सरकार पर हमला, कहा कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित है। आईआईटी बॉम्बे छात्र की खुदकुशी के मामले में जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, मां का आरोप बेटे को प्रताड़ित किया गया था। ग्रेटर नोएडा हिट एंड रन मामले में आरोपी मनीष गिरफ्तार, पुलिस ने कार जब्त की। लुधियाना में रणवीर बिट्टू को हिरासत में लेने पर सियासी बवाल, सीएम भगवंत मान के काफिले के बाहर हंगामा। सीएम मान के काफिले के बाहर अंडे टमाटर फेंकने का आरोप है, बीजेपी नेता रणवीर बिट्टू को लेकर पंजाब में बढ़ा है राजनीतिक तनाव। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं, आम आदमी पार्टी ने मान के मुनाफी अभियान के साथ शुरू किया घर घर जनसंपर्क। आम आदमी पार्टी का मिशन 2027 शुरू हुआ, भगवंत मान सरकार के कामकाज पर पर्चा लेकर अब घर घर पहुंचेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और परिवार को वोटर लिस्ट के लिए नोटिस, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के रायबरेली में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी ने बनाया है जिला प्रभारी। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रवेश के लिए 21 स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर 5 अभ्यर्थियों के फर्जी दावे का खुलासा, एफआईआर में डोमिसाइल पर भी सवाल उठे। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन, का सभी तरह की आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अमृतसर में एसआई हरजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी दीपक सिंह का एनकाउंटर में खात्मा, जांच में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल से कनेक्शन भी सामने आया। एसआई अरजीत सिंह टारगेट किलिंग के आतंकी नेटवर्क की भूमिका, जांच तेज हुई, दीपक सिंह के एनकाउंटर के बाद शहजाद भट्टी मॉड्यूल की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, टेका मत्था, सुख समृद्धि की कामना।
सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब में दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। एमपी के मेधावी छात्रों को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को बांटी स्कूटी, लगभग 7,500 छात्रों को फायदा। आईआईटी रुड़की में वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, पहले दिन एनएसए अजीत डोभाल ने 1,277 ग्रेजुएट मेधावी छात्रों को बांटी डिग्रियां। आज दूसरे दिन पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी उपाधियां, कुल 2,701 मेधावी छात्रों को सौंपी जाएंगी डिग्रियां। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक, गली में खेल रहे 2 साल के बच्चे पर किया जानलेवा हमला। झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टैक्सी में टक्कर के बाद युवक को कुचल डाला, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, गंभीर रूप से युवक घायल। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को टक्कर मारी, ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के रायचूर में महिला ने की पत्थरों से कुचलकर हत्या, हत्या के बाद 2 साल की बच्ची भी शव के पास पाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में वन विभाग ने भालू को रेस्क्यू किया है, डलहौजी की सड़कों पर सिर में कनस्तर फंसाए भटक रहा था भालू। गाजियाबाद में बैंक अधिकारी बनकर युवक ने स्विगी पर फर्जी रेस्टोरेंट बनाकर 30 लाख रुपए ठगे। दुर्गा जिला अस्पताल में ब्लड सैंपल और उपकरणों के साथ इंस्टाग्राम रील बनाना भारी पड़ा, 3 को बर्खास्त किया गया। जयपुर में दुर्गापुरी मार्केट में दिन दहाड़े महिला से छीनी सोने की चेन, देखती रह गई भीड़। भोपाल में कैदी ने हमीदिया अस्पताल में 4th मंजिल से भागने की कोशिश की, पकड़ा गया। एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच आज भारत और बांग्लादेश के बीच है, 10:30 बजे शुरू होगा मैच।

एशियन गेम 2026 और जापान सीरीज के लिए रवाना हुई है टीम इंडिया। श्रेयस की कप्तानी में एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी भारतीय टीम। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की रिलीज डेट आउट हुई, 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। अल्लू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट, राका में 4 किरदारों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना बाबरी यूट्यूब पर जबरदस्त हिट हुआ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद एयरपोर्ट के पास दिखा आग का और धुएं का गुबार, हूथियों ने सऊदी राजधानी में मिसाइल ड्रोन से हमले किए। सऊदी अरब ने रियाद पर हूथियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की पुष्टि की है, एयर डिफेंस ने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था। मिडिल ईस्ट बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका का सुरक्षा अलर्ट, अमेरिकी नागरिकों को सतर्कता बरतने की अपील। अमेरिका ने कैरेबियन में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े जहाज पर किया हमला, 4 लोगों के मारे जाने का दावा।

0: और इस वक्त मुंबई से बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां कालाचौकी में गणेशोत्सव मंडप के पास करंट लगने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी यह है कि दो लोगों की इसमें जान चली गई है, चार लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। आज सुबह गणेशोत्सव मंडल के प्रवेश द्वार के पास लगाए गए अस्थायी पानी के स्टॉल में बिजली का करंट फैला और उसके बाद यह घटना घटी। हादसे में कुल छह लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें एक बच्ची भी बताई जा रही है और एक महिला की मौत की खबर है, जबकि चार घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बिजली आपूर्ति को बंद करवाया। एहतियातन घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र की घेरेबंदी कर दी गई है। लेकिन दुखद और बड़ी खबर कि एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है करंट लगने से गणेश पंडाल के बाहर।
1: बाजू में जो दुकान है वहाँ पे बच्चे लोग को खाने की चीज मिल रहा है, तो खाने की चीज मिल रहा है तो वहाँ पे पंडाल पे लगा है तो उनको सेफ्टी लाइट का रखना चाहिए ना। उन्होंने ऐसे पल्ली लगा के रखा, जो बारिश होता है उसमें पानी था, वहाँ पे पब्लिक जाके ऐसा किया, पानी जैसे ही गिरा वैसे ही पब्लिक के ऊपर लाइट गिर गया। तो ये पंडाल वाले की ही गलती है,
2: गलती
1: इतना आप बप्पा को बिठा रहे हो, पब्लिक जमा कर रहे हो, आप पैसा आमदनी कमा रहे हो, लेकिन बप्पा को सेफ्टी कोई चीज की पब्लिक की है? रागनी झूसकर, रागनी यादव नाम है, 8 साल की लड़की है वो। हमारे दो बच्चे को भी लाइट पकड़ा था, दोनों कल्पना नेहा को, उसको भी मुंह से गाज निकल गया, उसको भी सब, मेरा लड़का और एक जो कार्ड लगाया था वो लड़का मिलके उसको निकाला। मैंने भी अपने बच्ची को खींचना कोशिश किया लेकिन मुझे भी लाइट मारा।
0: तो एक महिला और एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है, चार और लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: एक श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
13: जेके मैक्स पेंट्स।
12: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
14: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
15: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
16: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
15: असली शहद, असली स्वाद।
17: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
17: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
19: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बंगाल में उपचुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन दो सीटों पर सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने चुनावी मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। 18 सितंबर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी से पहले उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के क्राइम के पुराने पन्ने शुभेंदु की पुलिस ने पलट दिया और ममता के समर्थन के महज चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सियासी पटकथा एक और जगह लिखी जा रही थी। रेजी नगर सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। नॉमिनेशन वापस लेने की बात करने वाले रबीउल आलम चौधरी ने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे लेकिन शर्तों के साथ।
1: ভেবেছিলাম যে এই অবস্থা দলের এই অবস্থা নতুন প্রতীক তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম, এখন আমরা এই নতুন প্রতীকই মানুষকে বুঝিয়ে ভোটটা করা।
0: एक तरफ नाम वापसी, दूसरी तरफ यू टर्न। जिस चुनाव में अभी वोटिंग भी नहीं हुई वहां उम्मीदवारों के फैसले ही सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये महज इत्तेफाक है या बंगाल में कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है। क्या नंदीग्राम और रेजीनगर में उम्मीदवारों का नाम वापस लेना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है? क्या बंगाल में उपचुनाव की लड़ाई अब सीटों से आगे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? आखिर इन दो सीटों पर उपचुनाव की नौबत क्यों आई? अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटें 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और रेजीनगर से हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी। दोनों नेताओं ने दो दो सीटों से चुनाव जीता और बाद में एक एक सीट छोड़ दी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर अपने पास रखी, जबकि हुमायूं कबीर ने रेजीनगर छोड़कर नाउदा सीट अपने पास रखी। इसी वजह से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को मतगणना होनी है, लेकिन इन दोनों उपचुनावों का महत्व सिर्फ दो सीटों को भरने तक सीमित नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दोनों सीटें बंगाल की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक अहम चुनावी परीक्षा बन गई है। नंदीग्राम बंगाल की सियासत का वो अध्याय है जिसे मिटाकर कोई नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। 2007 का भूमि आंदोलन, तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ विरोध और उसी आंदोलन से ममता बनर्जी के राजनीतिक उभार को ताकत मिली। कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी इसी राजनीतिक संघर्ष के सहयोगी थे, लेकिन वक्त ने करवट ली, रिश्ते बदले और नंदीग्राम दोनों नेताओं के बीच सियासी प्रतिष्ठा का मैदान बन गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। 2026 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से जीत दर्ज की, लेकिन भवानीपुर अपने पास रखने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब सवाल है कि नंदीग्राम में होने वाला उपचुनाव क्या उस राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय बनेगा, या फिर पुराने प्रतीकों और पुराने संघर्षों के बीच मतदाता कोई नई कहानी लिखेंगे? इतिहास रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जरा देश की बारात हमेशा वर्तमान में लिखी जाती है। वहीं रेजीनगर की लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं, पहचान की भी है। तो बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर की कहानी अब सिर्फ दो सीटों की कहानी नहीं रह गई है। एक तरफ इतिहास का बोझ है, दूसरी तरफ भविष्य की चुनौती। एक तरफ पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का विवाद है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने से पैदा हुए सवाल। एक तरफ सत्ता का दावा है, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है। लेकिन इन तमाम सियासी शोर के बीच एक आवाज ऐसी है जिसे दबना नहीं चाहिए, वो आवाज है मतदाता की। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आवाज किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती है, किसी मंत्री की नहीं होती है, किसी पार्टी अध्यक्ष की भी नहीं होती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
3: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है, पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम अंधभक्त पैदा कर रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बंपर जीत पर बोले नितिन नवीन, अमित शाह राष्ट्र प्रथम भावना की जीत, जेपी नड्डा ने कहा ये गूंज नहीं धमाका। अमृतसर में एएसआई की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मर्डर का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने करवाई हत्या। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किया बड़ा हमला, राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला, एयरपोर्ट से दिखाई दिया धुएं का गुबार। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का खुला खाता, शूटिंग के 10 मीटर या राइफल में महिला टीम ने जीता सिल्वर, याचिका तरियाल ने एमएमए में पदक किया पक्का, हॉकी में महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19 गोल से रौंदा।

0: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया गया था।
1: हमारी सेना का नुकसान करने के लिए ठीक तैयारी ने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी।
0: लेकिन धर्म पूछ पूछ कर कत्लेआम करने वाले आतंकी जिंदा थे।
2: निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था।
0: देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले दरिंदे छिपे हुए थे बिल में और उनकी आहट भी नहीं ले पा रही।
2: 5 जुलाई 2025 वो पहला दिन था जब हमें कुछ सटीक खबर आनी शुरू हुई। ठोस जानकारी मिली कि हो सकता है इस एरिया में अभी वो दहशतगर्द मिलिटेंट आ चुके हैं।
3: लगभग सुबह 5 बजे हमें खबर मिल गई थी कि पक्का हो गया था कि वो किस जगह पर है। मैंने अपने ट्रूप से यही कहा कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जाने चाहिए।
0: हिंदुस्तान का कलेजा छलनी था और हिंदुस्तान के रणबांकुरों को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक एक एक गुनहगार का इंसाफ न हो जाए।
4: जो इस तरह से आतंक को बढ़ावा देता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा।
2: में हमने जस्टिस को सर्व किया।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहलगाम की बैसरन घाटी में जहां पर रक्त बहाया गया निर्दोषों का, जहां पर रिश्तों को तार तार किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया देश की सरहद के पार आतंक के उस ढांचे को खत्म करने के लिए, और ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया पहलगाम के उन गुनहगारों का इंसाफ करने के लिए। आज मेरे साथ ऑपरेशन महादेव की टीम है और यह है इनकी कहानी।

0: इंतकाम नहीं, ये इंसाफ की कहानी के नायक हैं। शोर नहीं, ये भारत की संयम वाली ताकत के योद्धा हैं। ये रणबांकुरे हैं भारत के स्वाभिमान के, सम्मान के।
1: मेरे पति को बचा लो।
2: एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी।
3: थोड़ा बताइए,
1: मार दीजिए।
0: उस रोज आधे घंटे तक मौत का खेल खेला गया था। पूरे देश का खून खौल उठा था जब कश्मीर की बैसरन घाटी खून से लाल हो गई थी। छब्बीस हिंदुस्तानियों की जान गई थी। 26 मांग का सिंदूर उजड़ गया था। आज हम आपको उस हाई इंपैक्ट ऑपरेशन की कहानी सुनाने वाले हैं जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन तो दुनिया की आंखों के सामने चले, लेकिन उन आतंकियों को चुन चुन कर कैसे उतारा गया मौत के घाट जिन्होंने भारत के विरुद्ध ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचा था। कैसे आतंकवादियों की पहचान हुई

0: से बना प्लान, घने जंगलों में कैसे आतंकियों को ढूंढा गया, खुफिया जानकारी कैसे इकट्ठा की गई और कैसे पहलगाम के गुनहगारों को खत्म किया गया। आपकी मुलाकात भारतीय सेना के उन जाबाजों से कराएंगे, उन शूरवीरों की ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे जिन्होंने उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।
1: मैं इसके प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक शामिल था।
2: आई वॉज द कंपनी कमांडर, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल।
3: मैं टीम कमांडर था। ये सारा प्लान जो कोऑर्डिनेशन है और जो प्लानिंग का पार्ट है वो मेरा रोल था इसमें।
4: इस ऑपरेशन में मैडम मैं सपोर्ट वेपन कैरी कर रहा था।
0: पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने सिर्फ हमलावरों की पहचान नहीं बल्कि उन्हें ढूंढ निकालने की भी चुनौती थी। हमला खौफनाक था, पलटवार भी मिसाल होना चाहिए था। आतंकवादी हमला करके भाग निकले। सामने था हजारों वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका, जंगल, पहाड़, गुफाएं और दर्जनों ऐसे रास्ते जिनसे कोई भी छिपकर निकल सकता था।
1: देखिए 22 अप्रैल 2025 के बाद हम टेररिस्ट की खोजबीन में लग चुके थे। भारतीय सेना हर एक प्रयास कर रही थी मल्टीपल एजेंसी से मिलकर कि कैसे उनको पहले हमने आइडेंटिफाई किया था, फिर वो कहां कहां पे जा रहे थे उनकी खबरें हमें मिल रही थी। एंड एग्जीक्यूशन फेज चला पूरा एक महीना। उससे पहले प्लानिंग, कहां खबर है, कहां हमें जाना है, कैसे हमें उनको एक जगह पे आकर बॉक्स इन करना है ताकि हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए।
0: पहलगाम में हमला हुआ और सुरक्षा बल फौरन हरकत में आए, आतंकियों की तलाश शुरू हो गई। लेकिन ये एक ऐसी तलाश थी जिसमें हर सुराग को पहले परखा जाना था। जंगल में एक गलत सूचना का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि आहट पाते ही आतंकी सरहद पार निकल जाए और इंसाफ हमेशा के लिए अधूरा रह जाए।
3: जब हमें पता चला जो 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है तो वो सभी के लिए वो बहुत ही दुखद न्यूज़ थी और हमारे अंदर भी इमोशंस जग रहे थे। लेकिन एक सोल्जर होने के नाते हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और जो नेक्स्ट टास्क आने वाला है, चाहे वो उसके रिस्पांस में हो या फिर टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स एंड पुट देम टू जस्टिस, सो इन दोनों विचारों में हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ कमिटमेंट टू अवर टास्क वो ज़्यादा ओवरपावर कर रहा था इमोशंस को साइड में रखते हुए। तो उसके लिए फिर हमने अपनी प्रिपरेशन, ड्रिल्स, रिहर्सल्स, वो सब हमने अपना ऑटोमेटिक, इट इज़ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग, कि हमने वो स्टार्ट कर दी थी ये सोच के कि टास्क आने वाला है।
0: आतंकियों की तलाश में एक एक सबूत जुड़ता जा रहा था, खुफिया इनपुट जुटाए जा रहे थे। कहां से राशन आया, किसने खाना पहुंचाया, किसने मदद दी, कहां कोई संदिग्ध मूवमेंट हुई, कहां किसी ने हथियार देखे, किस इलाके में अचानक हलचल हुई, क्या जंगल में कुछ ऐसा मिला जो सामान्य नहीं था। दरअसल इन जंगलों में आतंकियों को ढूंढना ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई।
5: जहां पर यह ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया उस पूरे क्षेत्र को हम आपको समझाते हैं। ये जबरवान रेंज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो दाचीगाम फॉरेस्ट रिजर्व है उसका हिस्सा हो जाता है। घाटी का जो क्षेत्र आप देखते हैं, जो पहाड़ों पर आप बर्फ देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो महादेव रिज का हिस्सा है और जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। आप सोचिए कि कितना कठिन ये पूरा इलाका है, कितनी ऊंची ये चोटियां हैं, किस तरीके से वहां पर उन पेड़ों, उन चट्टानों के बीच में हमारे सैनिक दिन रात लगे रहे थे बरसात के उस मौसम में। और आप जब ये सोचते हैं ना कि आप शहर के कितने करीब थे, मेरे पीछे आप डल झील देख रहे हैं, ये डल झील है, ये श्रीनगर शहर है जो आप देख रहे हैं। यानी कि अगर आप एक नजर पूरे इलाके में दौड़ा लें तो कमोवेश आप श्रीनगर के क्षेत्र में ही मौजूद हैं, लेकिन शहर के इतना करीब होकर भी शहर से कितना दूर रहकर न खाने का सुध न नींद, केवल और केवल एक प्रण कि आतंक का खात्मा करना है, पहलगाम के दरिंदों का इंसाफ करना है। किसी भी जंगल में जब कोई ऑपरेशन होता है तो तमाम चुनौतियां अपने साथ लेकर आता है। आतंकियों के लिए अनगिनत ऐसी जगहें थीं जहां पर वो छिपे रह सकते थे और सुरक्षा बलों के सामने केवल एक अवसर उन्हें ढूंढ निकालने का। और ऐसे समय में हमारे सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी ट्रेनिंग।
1: देखिए, जो ऑपरेशन था उसमें ये टेरेन हमारी एक वन ऑफ द डिफिकल्टीज, कहीं जंगल है कहीं पहाड़ हैं, उनमें कोई पेड़ पौधे नहीं है। सो हमने इन सब चीज़ों को प्लानिंग में रखा था और कैमोफ्लैज एंड कंसीलमेंट हमारी ट्रेनिंग का एक मुख्य पार्ट है। नेचर के साथ कैसे हमने उसमें रंग जाना है, कैसे हमने नेचर के साथ मिलना है, वो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अदरवाइज अगर हम नेचर को उसको एडवांटेजेस तरीके में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा और हमारा जो प्लानिंग है उसमें फ़र्क पड़ेगा।
2: हम इसी चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, हम यहाँ ऑपरेट करते रहते हैं इन जंगलों में, इन घरों में, इस AOR में। ये AOR मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वॉज दी कंपनी कमांडर, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। मैं, मेरी जिम्मेदारी थी कि जो लोग बाहर से, जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो नए हैं, उनको दिखाना रास्ते कहाँ से हैं, जंगल में किस तरफ से ट्रैक जाते हैं, कौन सी सड़कें किस तरफ जाती है, कहाँ से कौन सा नाला निकलता है, किस पहाड़ी पे चढ़ा जा सकता है, किस पे नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से इन्हीं जंगलों को देखा है, इसी एरिया को देखा है।
5: 22 मई 2025 को पहली बार आतंकियों की लोकेशन को लेकर एक ठोस दिशा मिलने लगी थी। 22 मई को इंटेलिजेंस टीमों को दाचीगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिला, लेकिन किसी भी ऑपरेशन में सिर्फ एक इनपुट के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की जाती, खासकर तब जब सामने 3 ऐसे दुर्दांत आतंकी हों जो पहाड़ी जंगलों में छिपे हों, जिनके पास हथियार हों, आसपास गांव हों, नागरिकों की जिंदगी पर भी खतरा हो। सवाल उठाना बहुत आसान है कि इतने दिन बीतते जा रहे हैं, आखिर आतंकियों का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जवाब आपको यहाँ कदम कदम पर, कंकड़ कंकड़ में, यहाँ के जर्रे जर्रे में मिलेगा कि कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे सैनिक उस समय भी आतंक से जूझ रहे थे जब देश में आराम से सोफों पर बैठ के आलोचक इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आतंकी आखिर मिल क्यों नहीं रहे हैं। आप इनकी वीरता को देखेंगे तब उस संकल्प को समझेंगे जो ये देश के लिए उठाते हैं। ऑपरेशंस में जब कोई सफलता मिलती है जानकारी के रूप में तो विफलता भी मिलती है, लेकिन उन विफलताओं के बावजूद अपनी मोटिवेशन को, अपने जोश को चरम पर रखना है, इसमें हमारे सैनिक पारंगत हैं। 22 मई से जानकारी मिलना शुरू जरूर हुई, लेकिन ये क्रम लगातार चलता रहा। इंटेलिजेंस टीमें हर जानकारी को पूरी तरीके से वेरीफाई करती, भारतीय सेना जमीन पर जानकारी को दूसरे इनपुट से मिलाती रही। इस तलाश में ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीक दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। देखने में शायद ऐसा लगे कि समय बीतता जा रहा है और कुछ हाथ नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यह थी कि लगातार हमारे सैनिक कोशिशों में जुटे रहे। इंटेलिजेंस जमा करना हो, सर्वेलांस करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, या फिर तालमेल बिठाए रखना।
1: 5 जुलाई 2025 वो पहला दिन था जब हमें कुछ सटीक खबर आनी शुरू हुई। हमने एक लेयर्ड इनपुट बिल्डअप किया था जो कि सारी सिस्टर एजेंसीज, इंडियन आर्मी पुलिस, जे एंड के पुलिस सीआरपीएफ सबने इनपुट्स देके हमने वो इनपुट कोरिलेट की और उससे हमें कुछ ठोस जानकारी मिली कि हो सकता है इस एरिया में अभी वो दहशतगर्द मिलिटेंट आ चुके हैं।
2: पहली थिंग वाज कि मैंने अपने ट्रूप से यही कहा कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जाने चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि इस जंगल में है और इस जंगल का चप्पा चप्पा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पता है उन्हें, वो यहाँ नए हैं, हम यहाँ पुराने लोग हैं, हमें अब वो यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए।
0: तीन आतंकियों को ट्रैक तो किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये भी था कि क्या ये वही तीन आतंकी हैं जो 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने के गुनहगार हैं, और क्या इन तीनों को इस तरीके से घेरा जा सकता था कि वो दोबारा जंगलों से निकलकर किसी दूसरी जगह शरण न ले लें, पहुंच न जाए, छिप न जाए। 22 जुलाई को सेंसर्स और सर्वेलांस इनपुट ने आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी, और वो समय पास लग रहा था जब महीनों से जुटाई जा रही जानकारी को जमीन पर एक्शन में बदलना था।

0: हर बड़े सैन्य ऑपरेशन का एक नाम होता है। कई बार उस नाम के पीछे सिर्फ एक सीक्रेट कोड नहीं बल्कि उस इलाके की कहानी भी होती है। इस ऑपरेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जिस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट लगातार मिल रहे थे वहां महादेव रिज और महादेव टॉप थे। यही कारण था कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव।
1: देखिए मैम, इंडियन आर्मी जब भी कोई ऑपरेशन करती है तो वो ऑपरेशन उस जगह के नाम से ही जाना जाता है। हमारे एरिया में महादेव रिज है, जिसके बीच में एक महादेव टॉप भी है, उस रिज की ही हमें सारी खबरें आ रही थी। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लान था वो महादेव रिज पे ही के बेस पे ही बना और वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ। आखिरी दिन कॉन्टैक्ट भी हमारा उसी रिज पे एक नाले के अंदर हुआ जहां हम तीनों टेररिस्ट को हमने मार गिराया। तो ये जो ऑपरेशन था ऑप महादेव, ये उस एरिया के कारण इसका नाम पड़ा।
0: ऑपरेशन महादेव शुरू हो चुका था लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब भी टेरेन था। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला वो जंगल। जंगल में ऑपरेशन हमेशा मुश्किल होता है। न सड़कें होती हैं, हर एक पेड़ दीवार होता है, हर चट्टान एक आड़ है और हर मोड़ एक नया खतरा। दाचीगाम का जंगल खुले मैदान जैसा नहीं, यहाँ सीधी चढ़ाई भी है, कीचड़ भी, और ये बहुत घना है। मौसम भी किसी तय टाइम टेबल पर नहीं चलता, कभी बारिश कभी धुंध। लेकिन जिस चीज को आतंकी अपने लिए कुदरती कवर समझ रहे थे, सुरक्षा बल उसी प्रकृति को अपने पक्ष में बदल रहे थे।
2: तो यहाँ मौसम का भरोसा नहीं है, ये पहाड़ियों की हाइट इतनी ज्यादा है तो आपको उन सब चीजों में प्रिपेयर चलना चढ़ता है। बारिश किसी भी वक्त आ सकती है, अगर आपके रास्ते में जाते हुए बारिश आ गई तो आपको जाने में प्रॉब्लम होगी, आपके रहते हुए अगर बारिश आ गई तो आपको वहाँ बैठने में प्रॉब्लम होगी। यही इश्यूज मैं आर्मी जो फेस कर रही है, हमें ये भी पता है कि यही इश्यूज सेम आतंकवादियों को भी फेस करने पड़ेंगे। तो वी यूज इट एज एडवांटेज ऑल्सो कि अगर हमें ये दिक्कत हो रही है, बारिश से हमें परेशानी हो रही है, दिखने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आतंकवादियों को भी वही दिक्कत होती है।
3: क्या होता है कि मिट्टी वगैरह रहती है उसमें कहीं भी चलना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप किसी पहाड़ी रिज पे चढ़ रहे हो उसमें काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें कीचड़ की इतनी नौबत आती नहीं, पर आपको चढ़ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कवर कम मिलता है क्योंकि इधर प्लेन पहाड़ी हैं, तो अपने आप को सरप्राइज देने में काफ़ी दिक्कत आती है, आपको समय लगता है, आपका जो एंड्योरेंस है कम होता है, लेवल चलने में काफ़ी स्लो चलना पड़ेगा आपको।
4: ऑपरेशन के दौरान कुछ दिनों का तो रसद, कुछ दिनों का खाना रहता है, उसके आगे क्या क्या खा रहे थे, किस चीज़ पर सर्वाइव कर रहे थे आप लोग?
2: मैम, अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि ये होना तो है बट ये कब तक होगा, कितना लंबा चलेगा। ऑल्दो हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ घंटों का 72, 96, 120 घंटों का खाना अपने साथ लेकर के चलते हैं, पानी उसी हिसाब से हम वाटर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, बट ऑल्दो अगर ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि आपका खाना जो है वो कम पड़ रहा है या फिर पानी जो है कम पड़ रहा है और आपकी सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ऑपरेशन चलेगा, तो हम उसी हिसाब से अपना फूड या वाटर डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं कि अभी आज जो है वो इतने पे ही मेंटेन करना है, आज पानी इतना ही पिया जाएगा।
0: आतंकियों को अगर भनक लग जाती तो वो किसी भी दिशा में भाग जाते। इसीलिए सुरक्षा बलों का मकसद सिर्फ एक जगह पर पहुंचना नहीं था, मकसद था चारों तरफ से घेरा बनाना। बताया जाता है कि रात करीब 2 बजे आतंकवादियों ने थोड़ी देर के लिए अपना संचार उपकरण चालू किया। सिग्नल इंटेलिजेंस ने तुरंत दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास लिडवास द्वारा क्षेत्र में उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स का नक्शा तैयार कर लिया।
2: मिशन आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स से चेक हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशन वही है, ये उन्हीं लोगों को हमने न्यूट्रलाइज किया है। तब जो सेंस ऑफ क्लोजर था वो हमें लगा कि ऑल्दो ये हमारा रेगुलर टास्क है बट जो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे देशवासियों के, उन फैमिलीज के लिए, तो हमें फील हुआ कि आई थिंक हमने जस्टिस सर्व कर दिया।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: एक तो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: बहुत टाइड हो गई।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
8: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
10: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
5: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karvat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: अट्ठाईस जुलाई 2025 दाचीगाम के जंगलों में हमारे जवान लक्ष्य को घेरते हुए आगे बढ़ने लगे।
4: अट्ठाईस तारीख की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच में हमारी एक फोर्सेस की टुकड़ी, जो उनको एक टास्क दिया गया था, उस टास्क को पूरा करके पूरे अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को इम्प्लॉय करके नीचे की तरफ आ रही थी, जहाँ की हमें खबर थी कि हो सकता है शायद यहाँ पे है, और सारी इंटेलिजेंस पिक्चर भी उसी तरफ इशारा कर रही थी। तो हमारी टीम उतनी ही चौकस थी कि अभी हम नीचे उतर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। फाइनली हमें 3 लोग दिख गए।

0: करीब 9:30 बजे तक सैनिक बिना किसी रेडियो संचार के चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ गए। सुबह के कोहरे का फायदा उठाते हुए कमांडोज ने एक मजबूत मल्टीलेयर घेरा तैयार कर लिया। सुरक्षा बलों को एक एडवांटेज था कि ये दिन का वक्त था और वो दुश्मन को साफ साफ देख पा रहे थे।
1: लगभग सुबह 5 बजे हमें खबर मिल गई थी, ये पक्का हो गया था कि वो किस जगह पर है। उस जगह पहुंचने में हमें कुछ टाइम लगा होगा। अब वहां पर हम जब थे तो समय का अंदाजा थोड़ा कम हो जाता है, बट हाँ रोशनी इतनी हो गई थी कि लगभग दिन हो गया था वहां पे उस टाइम पे जब वो कांटेक्ट हुआ उस जगह पर। और हमारी इसमें ये जीत ये थी कि वो रात को नहीं हुआ, वो रोशनी के टाइम था, तो हम उन्हें देख पा रहे थे। हम अपने लोगों को आड़ में लेकर के आए, हम उस पोजीशन में आए, उस डोमिनेटिंग पोजीशन में हम आ सके जिस पे हम उन्हें वार कर सके, और वो जो है हम पर क्रॉस फायर अगर करना भी चाहें तो हमें कोई घात ना हो उससे।
0: घने जंगलों में ये सैनिकों का लगातार 14वां दिन था। कितनी असफलताएं, कितने सेटबैक, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक पल ऐसा नहीं निकला था जब वो हताश हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खामोशी की चादर छोड़ी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आतंकियों की टोह लेना छोड़ा हो। न भूख की चिंता, न प्यास की फिक्र, न घर की बात, बस जुनून देश के उन दुश्मनों को ढूंढ निकालने।
2: अपने तरीके से वो कैमोफ्लाइज और कंसाइनमेंट के अनुसार एक छोटा सा हाइड आउट, मतलब टेम्पोररी हाइड आउट बना के रखे थे जिससे कि कोई देख ना सके। और मौसम भी बहुत उस दिन ख़राब था और सुबह का मौसम था तो विजिबिलिटी भी थोड़ा कम था, लेकिन हम अपने ट्रेनिंग के अनुसार ही जैसे हम लोग हमेशा ऑपरेशन को अंजाम देते हैं उसी हिसाब से हम लोग आगे एडवांस करते रहे। जैसे ही हमें लगा कि हाँ आगे कोई हाइड आउट है, फिर हमने अपना ब्रीफिंग लिया और फायर कंट्रोल का जो आदेश होता है उसको फॉलो किया।
0: सुबह के लगभग 10:30 बज रहे थे जब सैनिकों ने अंतिम कार्रवाई शुरू कर दी।
3: सामने से उस बंदे को एक बंदे की हरकत दिखी तो हमने क्या किया, उधर ही थोड़ा हमने आर्ट पोजीशन ली तो हमने 5-10 मिनट क्या किया, उसको देखते रहे हम उसकी क्या एक्टिविटी है, वो बंदा क्या है। वहाँ से थोड़ा टर्न हुआ और उधर ही जाके अपने हाइड आउट में छिप गया वो। तो हमने पूरे अपने स्क्वाड को पीछे बताया कि भाई सारे बंदे अलर्ट हो जाओ। तो हमने क्या किया उसके हिसाब से अपने मूव टू मूव करते हुए नज़दीक से नज़दीक जाके हमने प्लान करके कमांडर को बता के तो अभी क्या करना है उसके ऊपर। तो कमांडर ने बताया कि हम ऐसे ऐसे चलना है उसके, मतलब नज़दीक से नज़दीक जाके उसके हाइड आउट के पास पहुँचे हम। तो नज़दीक पहुँच के तो जैसे ही अर्थ हुआ तो उसके बाद में क्लोज,
4: उसके बाद वो ऑपरेशन
3: क्लोज।
0: जंगल का सन्नाटा गोलियों की आवाज से चकनाचूर होने लगा। अब दुनिया की कोई आड़ उन आतंकियों को नहीं छिपा सकती थी।
5: कॉलिंग 28 अल्फा, टारगेट पॉइंट पे सर फायर हो गई है, सर फायर हो गई।
0: कोई चमत्कार उन्हें नहीं बचा सकता था। ये हिंदुस्तान के रणबांकुरों का कहर था, ये सिंदूर का इंसाफ था। भीषण लेकिन बेहद नियंत्रित मुठभेड़ में विशेष बलों ने 30 मिनट के अंदर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 2 हफ्ते से जंगल की खाक छान रहे जवान उन दरिंदों से देश के एक एक जख्म का हिसाब ले चुके।
6: पहलगाम अटैक के बाद इतना हाई वैल्यू टारगेट जिस पे पूरे देश की नजर थी, ये हाई वैल्यू ऑपरेशन बना। और जब ये हमें साबित हो गया कि भाई ये वही हथियार हैं जो कि पहलगाम अटैक पे फायर हुए थे, तो उसने हमारे अंदर एक सेंस ऑफ क्लोजर दिया। इस सेंस ऑफ क्लोजर ने हमारे सारे ड्रिल्स, प्रोसीजर्स, हमारा प्रिसिशन ऑफ ऑपरेशन को साबित किया।
0: पर हिंदुस्तान के योद्धा निराले होते हैं। एक सफल ऑपरेशन का जश्न नहीं बल्कि अब भी वो ये निर्धारित करने में लगे कि मारे गए आतंकियों की पहचान क्या है और क्या हथियार वही हैं जो बैसरन घाटी में इस्तेमाल किए गए। सुलेमान उर्फ फैसल जट, हमजा अफगानी, जिब्रान, ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीन आतंकवादियों के पास से तीन राइफलें मिली थी, एक M4 कार्बाइन और दो AK-47 राइफल्स।
4: आखिर में जब इस पूरे ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं था कि आपने एक किल किया और उसके साथ खत्म हुआ, उसमें जो कार्ट्रिजेस मिले थे हमें पहलगाम में वो इन्हीं वेपन्स के निकले, कैसा था वो सेंस ऑफ क्लोजर?
1: मैम जब ये टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, ऑपरेशन वहाँ खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज हम अभी भी श्योर नहीं थे क्या ये वही लोग हैं, क्योंकि ये अगर इसके दो पहलू हैं मैम, पहला चीज़ ये है कि ये हमारे लिए रोज का काम है, ये हो सकता है कोई और ग्रुप भी हो सको, और दूसरा ये था कि वो उस ऑपरेशन से, उस अटैक से सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा जुड़े थे कि हम चाहते थे कि ये वही लोग हों। बट देन उसके बाद में हमने उस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया, पूरा सर्च किया, चेक किया कि कहीं इनके अलावा कोई और तो नहीं है जो किसी और दूसरी जगह पर हो। उसके बाद वहाँ से जो रेसिडुअल्स थे वो उठाए गए, उनको थॉरली चेक किया गया।
0: पहलगाम से मिले कारतूस और दाचीगाम में बरामद हथियार दोनों को जांच के लिए भेजा गया। फिर हुई बैलिस्टिक जांच, बरामद राइफलों से टेस्ट फायरिंग की गई और फिर पहलगाम से मिले कारतूसों की तुलना की गई।
1: उनको भेजा गया चेक होने के लिए, टू कंफर्म एंड टू असिस्ट। उस तब तक हमने किसी को ये बताया नहीं था कि जो है ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। आफ्टर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स से चेक हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशन वही है, ये उन्हीं लोगों को हमने न्यूट्रलाइज किया है, तब जो सेंस ऑफ क्लोजर था वो हमें लगा कि ऑल्दो ये हमारा रेगुलर टास्क है, बट जो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे देशवासियों के, उन फैमिलीज के लिए, तो हमें फील हुआ कि आई थिंक हमने जस्टिस सर्व कर दिया।
0: FSL की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि पहलगाम हमले की जगह से बरामद कारतूस, मुठभेड़ के दौरान बरामद तीन राइफलों, दो AK सीरीज राइफल और एक M4 राइफल से मेल खाते हैं। जिन हथियारों से गोलियां चली थी वही हथियार आतंकियों के पास से बरामद हुए, और यही वो सबूत थे जिसने 22 अप्रैल को 28 जुलाई से जोड़ दिया। पहलगाम का न्याय पूरा हो चुका था।
7: उनके पास से तीन राइफलें बरामद, एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और दो AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगाम में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से NIA ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में, रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं तीन राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 40 कारतूस, 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे।
4: बेसरन घाटी में जो कुछ हुआ था वो हमारे देश में सबने देखा, सबका खून खौला था। क्या न्याय की जो एक जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधे पर थी, आप लोगों के कंधे पर थी, वो आपको और ऊर्जा दे रही थी इस ऑपरेशन के दौरान?
6: देखिए, भारतीय सेना इमोशंस से कम और अपने कर्तव्य पे ज़्यादा काम करती है। बैसरन अटैक एक ऐसा अटैक था जो कि न सिर्फ एक आतंकी अटैक नहीं था, बल्कि निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था। इस अटैक के बाद जो देश में इमोशन था काफ़ी हाई था, जैसे कि आपने बताया, परंतु हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमें इमोशन को कर्तव्य में कैसे उसको ट्रांसफर करना वो हमें सिखलाती है। हमने वही किया और लास्ट में हमने जस्टिस को सर्व किया उन तीन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करके।
0: ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत के अटूट हौसले का सबूत था। दाचीगाम जंगल के घने और अत्याधिक ऊंचाई वाले इलाके में पारंपरिक निगरानी पर्याप्त नहीं थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकी खुफिया जानकारी यानी टेकइंट का उपयोग किया। आतंकवादी बेहद सुरक्षित ऑफलाइन संचार सेट का इस्तेमाल कर रहे थे जो सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क को बाईपास कर देते हैं। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस ने भी अल्ट्रा सिग्नल इंटरसेप्शन का प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार घने जंगलों के पत्तों और पेड़ों को भेदने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और हीट सिग्नेचर इमेजिंग से लैस भारी पेलोड वाले ड्रोन लॉन्च किए गए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, आतंक के आकाओं को खत्म करना और पाकिस्तान को उसकी साजिश के लिए सबक सिखाना था। जबकि ऑपरेशन महादेव का फोकस उन आतंकियों का खात्मा था जिन्होंने पहलगाम के जरिए भारत को छलनी किया।
4: वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स है ये जो आपकी आर्मी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, पर ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो बहुत डायनामिक था, चीजें पल पल में बदल रही थी। कैसे इंश्योर होता है कि ये इतना फ्लॉलेस, इतना सीमलेस निकलता है?
6: देखिए, जैसे मैंने पहले भी आई हैव एम्फसाइज्ड मोर ऑन ट्रेनिंग एंड यू नो द कोहेशन बिटवीन द फोर्सेस और हमारी जो टीम कोहेशन है आपस में। डायनामिक ऑपरेशन कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता है, कब क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कि आज खबर यहाँ पर है, आज हम ये करेंगे, अगले दिन टीम रोटेट भी हो सकती है या अगर हमारे पास समय की कमी तो वही टीम स्टेज फॉरवर्ड भी होती है। अब इन सब चीज़ों में आता है आपका लॉजिस्टिक बैकअप, है ना। आपके जवान फिजिकल इंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, बारिश भी आ गई, बर्फ भी पड़ गई, नाले भी भर गए, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो हमने इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया था, हमने अपनी मैन पावर को, अपने लॉजिस्टिक्स को इस तरीके से प्लान किया ताकि हम उनको समय समय पर आराम दे पाएं, ताकि जब एक्चुअल ऑपरेशन हो तो हमारे पास जो मेरी फोर्स है, फोर्स प्रजर्वेशन इंटैक्ट हो और हम पूरी स्ट्रॉन्ग अपने दस्ते के साथ जाके इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाएं।
0: इस पूरे ऑपरेशन की एक बड़ी कहानी अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय की भी है, तालमेल की है। खुफिया ब्यूरो से मिली मानवीय खुफिया जानकारी, सेना और दूसरे सुरक्षा बलों की जमीनी निगरानी, सेंसर से मिली पुष्टि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच, स्थानीय स्तर से मिली जानकारियां और आखिर में सुरक्षा बलों की जमीनी कार्रवाई, इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक ऐसी श्रृंखला तैयार हुई जिसने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से 28 जुलाई के दाचीगाम अभियान का रास्ता बनाया।
4: मन में तसल्ली मिली,
2: तसल्ली
4: मिली कि जिन लोगों ने हमारे देशवासियों का
3: खून बहाया तो उसका बदला लेना एक हमारे को क्या है, न्याय दिलाना।
4: न्याय
3: जी,
4: जब ये निश्चित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि उन आतंकियों की पहचान वही थी जिन्होंने पहलगाम में वो हमला किया था, तब क्या कहा मन में, कैसा महसूस किया आपने उस समय?
2: जिस दिन से ये हमला हुआ वायसरन घाटी में, उस दिन से ही पूरी भारतीय सेना इसके पीछे संलग्न थी कि इस इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जब ये कंफर्म हो गया, जैसे ब्लास्टिक रिपोर्ट या और सुरक्षा एजेंसियों के तहत ये कंफर्म हुआ कि हाँ ये वही आतंकी हैं, तो एक मन में संतुष्टि हुआ कि जिन आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला किया था उनका, उन नागरिकों का जो भरोसा था हम पे वो आज पूरा हो गया। तो ये कोई बदले का भावना नहीं था बल्कि एक लक्ष्य को पूर्ण करने का भावना मन में खुशी था और उससे बहुत सबक भी मिला हम लोगों को। और अगले ऑपरेशन के लिए उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले ऑपरेशन के लिए हम लोग तैयार थे।
0: आज युद्ध बदल रहा है तो आतंक निरोधी ऑपरेशंस भी बदल रहे हैं। भारत पारंपरिक युद्ध भूमि से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी शौर्य और तकनीक का ऐसा संतुलन लेकर चल रहा है जो मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन महादेव, ये संकल्प है भारत के हर वीर का कि जब जब देश की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाएगा, खुलेगा त्रिनेत्र, होगा तांडव, जीतेंगे महादेव। ये कहानी है दृढ़ता, विश्वास और न्याय की। आतंक की मंशा कुछ भी हो, उसका अंजाम एक ही होगा।
4: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
4: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार का हादसा। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीएमडब्ल्यू गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर गई थी। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही जान चली गई है, जबकि 1 को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी ये कार। सुबह लगभग 5:20 पर कोस्टल रोड कंट्रोल रूम से ये जानकारी मिली। हादसा कोस्टल रोड पर लाला कॉलेज के सामने लोटस जेटी के पास हुआ था। तो जानकारी ये मिली है कि ये जो कार है बीएमडब्ल्यू, ये फ्लाईवे से नीचे गिरी है, जिसके बाद 3 लोगों की इसमें जान चली गई है और 1 शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, और क्या जानकारी मिल पाई है इस घटना के बारे में?
5: जी बिल्कुल, ये मुंबई का कोस्टल रोड है, जिसमें अक्सर स्पीड से गाड़ियां जाती है। संडे का दिन है, रोड खाली होता है, उस समय यह एक्सीडेंट हुआ है। और कोस्टल रोड क्योंकि एलिवेटेड ब्रिज है पूरा, आप कह सकते हैं 40 फीट से गाड़ी जो है वो नीचे गिरी है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। अभी पुलिस उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जुटी है और इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये हादसा कैसे हुआ।
4: इस कार में कुल 4 ही लोग सवार थे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो चौथा शख्स है वो बुरी तरह से घायल है। क्या उससे कोई जानकारी मिल पाई है?
5: जी बिल्कुल, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इस वक्त उस पर इलाज शुरू है। और सीसीटीवी की मदद से भी ये हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी पुलिस ले रही है, आई विटनेसेस से बात कर रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा मुंबई के लिए आप मान सकते हैं। संडे मॉर्निंग में जब कोस्टल रोड जहाँ पे स्पीड से गाड़ियां जाती है, वहां से बीएमडब्ल्यू गिरने से 3 लोगों की मौत।
4: तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रिज से नीचे कार गिरी थी, बीएमडब्ल्यू कार है, और देखिए किस तरीके से चकनाचूर होकर पूरी तरह से कार कबाड़ में बदल गई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। देखिए ऊपर जो होर्डिंग लगा हुआ है वो भी उसको तोड़ते हुए ये कार नीचे गिरी है। 1 शख्स बुरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम में घायल बताया जा रहा है, 3 की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। तमाम जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। यहाँ पर मुस्तफा और समझना चाहेंगे, क्या पुलिस की तरफ से कोई और जानकारी दी गई है? वाकई में भयानक तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे मुंबई से। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर, मुंबई के कालचौकी में गणेशोत्सव मंडल के पास करंट लगने से बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों के घायल होने की खबर है, 4 लोग इसमें आज घायल हो गए हैं, जिसमें बताया जा 2 लोगों की जान गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। गणेशोत्सव मंडल के प्रवेश द्वार के पास जो अस्थायी पानी का स्टॉल लगाया गया था, उसमें बिजली का करंट आया और उसके बाद 6 लोग इससे प्रभावित हुए। 1 बच्ची और 1 महिला की मौत की खबर है, जबकि 4 लोगों के घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बिजली आपूर्ति को बंद करवाया। एहतियातन घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र को घेरेबंदी करके सुरक्षित किया गया है।
6: पंडाल के बाजू में जो दुकान है वहाँ पे बच्चे लोग को खाने की चीज मिल रहा है, तो खाने की चीज मिल रहा है तो वहाँ पे पंडाल पे लगा है, तो उनको सेफ्टी लाइट का रखना चाहिए ना। उन्होंने ऐसे पल्ली लगा के रखा, जो बारिश होता है उसमें पानी था, वहाँ पे पब्लिक जाके ऐसा किया, पानी जैसे ही गिरा वैसा ही पब्लिक के ऊपर लाइट गिर गया। तो ये पंडाल वाले की ही गलती है,
7: गलती
6: इतना आप बप्पा को बिठा रहे हो, पब्लिक जमा कर रहे हो, आप पैसा आमदनी कमा रहे हो, लेकिन बप्पा को सेफ्टी कोई चीज की पब्लिक की है? रागनी घुसकर, रागनी यादव नाम है, 8 साल की लड़की है वो। हमारे 2 बच्चे को भी लाइट पकड़ा था, दोनों कल्पना नेहा को, उसको भी मुंह से गाज निकल गया, उसको भी सब, मेरा लड़का और एक जो कार्ड लगाया था वो लड़का मिलके उसको निकाला। मैंने भी अपने बच्चे को खींचना कोशिश किया, लेकिन मुझे भी लाइट मारा।
4: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी की छात्रों की गूंज दिल्ली यूनिवर्सिटी में खो गई। डूसू में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने अपना दबदबा दिखा दिया।
1: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
2: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा। मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो, और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
3: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
0: दूसरे चुनाव में एबीवीपी ने तीन पदों पर जीत हासिल कर ली है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के यश डबास ने एनएसयूआई के विजय शंकर मीना को हरा दिया। सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह विजयी रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की। ये सिर्फ एक छात्र संघ चुनाव का नतीजा है, ये छात्रों के बीच कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। जिस जेन जी को साधने के लिए राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे, जिस युवा आक्रोश को कांग्रेस अपना सियासी ताकत बनाना चाहती थी, उसी युवा मतदाता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कांग्रेस के छात्र विंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राहुल गांधी लगातार छात्रों के बीच इस कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ हवा बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जहां राहुल गांधी रहते हैं, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन पर भरोसा नहीं जताया। तो क्या राहुल गांधी का छात्रों की गूंज वाला नैरेटिव डूसू चुनाव में गूंज पैदा नहीं कर पाया? दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव में हॉस्टल, कैंपस सुरक्षा, फीस, परीक्षा और छात्र सुविधाओं।
4: सॉरी।

भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, खास सिस्टम अंधभक्त पैदा कर रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बंपर जीत पर बोले नितिन नवीन, अमित शाह राष्ट्र प्रथम भावना की जीत, जेपी नड्डा ने कहा ये गूंज नहीं धमाका। अमृतसर में एसआई की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मर्डर का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने करवाई हत्या। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी पर किया बड़ा हमला, राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला, एयरपोर्ट से दिखाई दिया काले धुएं का गुबार। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का खुला खाता, शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल में महिला टीम ने जीता सिल्वर, सुचिका तरियाल ने एमएमए में पदक पक्का किया। हॉकी में महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19 गोल से रौंदा।

एशियन गेम्स में विमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। एशियन गेम्स में भारत को मिला है पहला मेडल। 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम ने जीता है सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए अच्छी खबर है। सुजगा तारियाल ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश, एक मेडल पक्का। भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐतिहासिक तांडव उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदा। दीपिका ने अकेले दागे 8 गोल। दीपिका के पेनल्टी कॉर्नर्स का उज्बेकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। दीपिका ने एक के बाद एक लगातार 8 गोल दागे। इंदौर में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बोले देश की सिस्टम।

राहुल गांधी ने अंधभक्त शब्द के जरिए बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा, बोले देश से नफरत सिर्फ छात्र ही खत्म कर सकते हैं। छात्रों के मन से राहुल गांधी ने उठाए रोजगार और शिक्षा के सवाल, अडानी अंबानी से लेकर जय शाह तक का जिक्र किया। इंदौर में राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम मोहन यादव का पलटवार, बोले कार्यक्रम में बच्चों के सवालों के बजाय कांग्रेस का एजेंडा चलाया गया। राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, मोहन यादव बोले मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। सीएम धामी का राहुल गांधी पर निशाना, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां की टिप्पणी को लेकर कहा राजनीतिक विरोध में मर्यादाएं की लांघना स्वीकार्य नहीं। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज से पहले पोस्ट अवार्ड, नेता प्रतिपक्ष के विरोध में शहर भर में लगे झूठ की गूंज के होर्डिंग। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया, कहा राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने लगाए थे होर्डिंग्स। विपिन वानखेड़े ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताते हुए कहा छात्रों युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय राजनीतिक दलों को अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा राहुल गांधी के बयानों के विरोध में देशप्रेमियों ने लगाए पोस्टर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत। नए डूसू अध्यक्ष बने यश डबा, सचिन पर रिया छावड़ी ने दर्ज किया है जीत दर्ज की, सह सचिव पर लक्ष्य राज का कब्जा। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की जीत हुई है, उन्हें मिले 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने एबीवीपी की विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, पोस्ट में लिखा ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा दावा, बोले दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अगर लड़ता तो बहुमत से जीतता। बीजेपी ने डूसू चुनाव के नतीजों को राहुल गांधी के लिए करारा झटका और झूठ की राजनीति को नकारे जाने का अनुमान बताया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एबीवीपी की डूसू जीत को नेशन फर्स्ट की भावना बताया। जेपी नड्डा ने डूसू के नतीजों पर आज तक से बातचीत करते हुए कहा ये छात्रों की गूंज नहीं बल्कि छात्रों का धमाका है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम झूठ की गूंज करार देते हुए कहा वो सिर्फ राजनीतिक बयान देते हैं। हामिद अंसारी के बयान पर देश भर में सियासी घमासान, हिंदू दक्षिण पंथ को लेकर टिप्पणी पर बीजेपी और बीएचपी ने जताई आपत्ति। नेहरू के पुराने बयान का हवाला देकर हामिद अंसारी ने छेड़ी नई बहस, हिंदू दक्षिण पंथ और सांप्रदायिकता पर राजनीति गरमाई। हामिद अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, केशव मौर्य बोले ऐसे बयानों से समाज में नफरत और वैमनस्य बढ़ता है। नंदीग्राम उपचुनाव से बड़ा सियासी मोड़, ममता बनर्जी कूट ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर घमासान, पार्टी ने कार्रवाई के समय पर सवाल उठाए। नंदीग्राम में बहुकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ हुई, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के अलग अलग धड़ों के बीच चुनावी संघर्ष। विजयनगर उपचुनाव में आखिरी वक्त में बड़ा यूटर्न, टीएमसी उम्मीदवार ने पहले नाम वापस लेने की बात कही फिर मैदान में लौटे। ममता बनर्जी ने टाइमिंग पर उठाए सवाल, पूछा नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन के बाद तुरंत गिरफ्तारी। केसी वेणुगोपाल का बड़ा हमला, नंदीग्राम में जो हो रहा है लोकतंत्र के लिए काला दिन है, कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस होनी चाहिए। नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी हंगामा, शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया कि नंदीग्राम में सनातन और राष्ट्रवादी ताकतें जीतेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले रोजगार के नाम पर फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और महंगाई से जनता परेशान। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले बीजेपी अंतिम दौर में एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। सपा सांसद पप्पू निषाद पर कथित हमले को लेकर अखिलेश का पलटवार, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आईआईटी बॉम्बे छात्र की खुदकुशी के मामले में जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, मां का आरोप बेटे को प्रताड़ित किया गया। ग्रेटर नोएडा हिट एंड रन मामले में आरोपी मनीष गिरफ्तार, पुलिस ने कार जब्त की। लुधियाना में रवनीत सिंह मिट्टू की हिरासत में लेने के बाद सियासी हंगामा, सीएम भगवंत मान के काफिले के बाहर हंगामा। सीएम मान के काफिले के बाहर अंडे टमाटर फेंकने के आरोप में बीजेपी नेता रवनीत मिट्टू को लेकर पंजाब की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज, आपने मान के मुनाफे अभियान के साथ शुरू किया घर घर जनसंपर्क। आपका मिशन 2027, भगवंत मान सरकार के कामकाज का पर्चा लेकर हर घर जाएगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और परिवार को वोटर लिस्ट के लिए नोटिस, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के रायबरेली में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी ने बनाया है जिला प्रभारी। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रवेश के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर 5 अभ्यर्थियों के फर्जी दावे का खुलासा, एफआईआर के बाद डोमिसाइल पर भी सवाल। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन, का सभी तरह की आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अमृतसर में एसआई हरजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी दीपक सिंह पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ, जांच में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया। एसआई हरजीत सिंह की टारगेट किलिंग में आतंकी नेटवर्क की भूमिका की जांच, दीपक सिंह ने एनकाउंटर के बाद

शहजाद भत्ती मॉड्यूल की कड़ियां भी खंगाली जा रही हैं। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली पुलिस, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब की दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। एमपी के मेधावी छात्रों को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को बांटी स्कूटी, लगभग 7,500 छात्रों को लाभ। आईआईटी रुड़की में वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन, पहले दिन एनएसएजी डोभाल ने 1,277 ग्रेजुएट मेधावी छात्रों को बांटी डिग्रियां। सरकार के एआई विजन को बढ़ावा देने की दिशा में पहल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एआई फॉर डेमोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एआई आधारित प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मान। यूपी के बाराबंकी में हेमतापुर में सरयू नदी का कटान जारी है, बाढ़ की चपेट में आधा गांव। सरयू नदी में लगभग 31 पक्के मकान बाढ़ में डूबे हैं, पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने भेजी आर्थिक मदद। सरयू नदी के जलस्तर पर प्रशासन की पूरी नजर है, प्रभावित परिवारों के लिए भेजी गई भोजन की व्यवस्था। बिहार में कैमूर में बनेगा नया एयरपोर्ट, प्रशासन ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव। कैमूर के रामपुर प्रखंड 161 एकड़ भूमि चिन्हित, हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन और व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार। गुजरात के कच्छ में गोदाम में भयंकर आग लगी, मौके पर 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। गुजरात के वलसाड में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, बिजली गुल होने से मची अफरा तफरी। समस्तीपुर में कॉस्मेटिक सामान से भरे हुए कंटेनर में लगी थी आग, चालक खलासी ने कूद कर बचाई जान। हाथरस में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश मुठभेड़ में ढेर हुआ। रुग्राम में विवाद के बाद कार सवार ने टैक्सी पर किया जानलेवा हमला, दोनों ही तरफ से दनादन मारी गई टक्कर। यूपी के एटा में फर्जी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का भंडाफोड़, प्रिंसिपल ने खुद के अपहरण की साजिश रची, फर्जी डिग्रियां सामने आई। मुंबई में गणपति पंडाल के बाद करंट लगने से 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में कार से 3 साल के मासूम को रौंदा, मौके पर मौत हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हिसार टोल मैनेजर हत्याकांड के फरार बदमाशों को सोनीपत एसटीएफ का शिकंजा, आरोपी ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई। राजस्थान के झुंझुनू में खौफनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार 10 फीट तक हवा में उछले, फुटेज सामने आई। इंदौर के पेट्रोल पंप पर देर रात तोड़फोड़ की घटना, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रोहतक में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक, आवारा कुत्ते ने युवती पर जबरदस्त हमला बोला। भोपाल की पॉश कॉलोनी में कार बाइक की टक्कर हुई, हंगामा, पिता और बेटी घायल हुए, बाइक सवार ने कार के शीशे तोड़ डाले। राजस्थान की भिवाड़ी में फैक्ट्री में करंट लगने से कर्मचारी की मौत, 50 लाख मुआवजे की मांग। मुंबई के कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू अनियंत्रित होकर क्रैश हुई, हादसे में 3 की मौत। लोटस जेटी के पास बीएमडब्ल्यू हादसे में 3 की मौत हुई, 20 साल का युवक गंभीर रूप से घायल। झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टैक्सी को टक्कर मारी, युवक को कुचल डाला, फुटेज सामने आई। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को टक्कर मारी, ड्राइवर गिरफ्तार। कर्नाटक के रायचूर में महिला की पत्थरों से कुचल कर हत्या, मां की हत्या के बाद 2 साल की बच्ची का पास पाई गई। गाजियाबाद में बैंक अधिकारी बनकर युवक ने स्विगी पर फर्जी रेस्टोरेंट बनाकर 30 लाख रुपए ठग डाले। दुर्गा जिला अस्पताल में ब्लड सैंपल्स और उपकरणों के साथ इंस्टाग्राम रील भारी पड़ गई, 3 महिला लैब टेक्नीशियन को बर्खास्त किया गया। जयपुर में दुर्गापुरा मार्केट में दिनदहाड़े महिला से सोने की चेन छीनने का वीडियो सामने आया, मौके से फरार हुआ बदमाश। भोपाल में कैदी ने हमीदिया अस्पताल से 4th मंजिल से भागने की कोशिश की, आखिरकार पकड़ा गया। एशियन गेम्स 2026 और जापान सीरीज के लिए रवाना हुई है टीम इंडिया, श्रेयस की कप्तानी में एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी भारतीय टीम। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की रिलीज डेट 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट हुआ, राका में 4 किरदारों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना बाबरी यूट्यूब पर जबरदस्त हिट हुआ, गाने में सोनम महापात्रा की आवाज है।

0: तो जेनजी को लेकर सियासी जंग के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को राहुल गांधी की छात्रों की गूंज का जवाब बताया है। जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि जेनजी के मूड को बीजेपी कैसे देखती है। देखिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
1: 17 सितंबर 2026 को देश की जनता ने आशीर्वाद का दिया जलाकर पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन जल्द प्रधानमंत्री अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही अपने 25 साल पब्लिक लाइफ में पूरे करने जा रहे हैं। और इस पूरे राजनीतिक सफर में, चाहे वो प्रशासनिक सफर हो या राजनीतिक सफर हो, उसमें अगर किसी ने बेहद करीबी से प्रधानमंत्री को देखा है काम करते हुए, तो वो हैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, 25 साल प्रधानमंत्री को होने जा रहे हैं और अभी उनका जन्मदिन भी मनाया गया। देश भर में हमने देखा कैसे आशीर्वाद का दिया जनता ने जलाया और कई कार्यकर्ता बीजेपी के उसमें शामिल हुए। कैसा रहा ये राजनीतिक सफर? आपने तो बहुत करीबी से उनको देखा सर।
2: देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, वो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले, फोकस्ड राजनेता और समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए समर्पित, और जिसे मैं कह सकता हूं कि वेरी सीरियस पॉलिटिकल लीडर, जो चीजों को गहराई से समझना, जानना और उसका समाधान निकालना, ऐसा व्यक्तित्व मैंने उनको देखा है। और ये कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, मेरी उनसे मुलाकात जो है वो 1990 की है, जब मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और वो गुजरात से यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री बनकर के आए थे। उस समय मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो उस समय भी जब मैं उनको देखता था तो वो जब हमारे ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग होती थी तो उसमें पूरी तैयारी के साथ आते थे, और एक तरीके से कहा जाए तो वो बैठक का एजेंडा सेट कर देते थे। उन दिनों में ईमेल, इंटरनेट की ताकत, उस समय सोशल मीडिया का शब्दावली नहीं आई थी, लेकिन इंटरनेट की ताकत और इसमें से क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीजें उनको हमने देखा है। मुझे विपक्ष के नेता के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला जब मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता था, तो मैंने कई बार बताया है, मीडिया में भी बोला है कि उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास इश्यूज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। मैंने कहा रिसर्च टीम है, वो अखबारों से इश्यूज निकालती है, एसोसिएशन से जो हमको चिट्ठियां आती है उसको, और जो एसोसिएशन मुझसे मिल जाते हैं उनके साथ भी हो जाता है, तो उसको लेकर के मैं करता हूँ। उनका आप ऐसा करो कि एमएलए के छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और आप लीड करो, और सारे प्रदेश में हर जिले में जाओ, एक दिन लगाओ, एक रात लगाओ, और समय दो पब्लिक हियरिंग के लिए, और पब्लिक से डायरेक्टली उनके क्या विषय हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए उनसे बात करो। मैंने 1.5-2 महीने में इस क्रम को पूरा किया। मैं कह सकता हूं कि मैं विधानसभा में विपक्ष का नेता था, लेकिन मुझे हिमाचल का नेता इस यात्रा ने करा दिया।
1: आप जब अध्यक्ष रहे बीजेपी के, जब आप अध्यक्ष थे, तब उस वक्त प्रधानमंत्री अपने आप को कहते कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तो कैसे कार्यकर्ता है, उनकी कार्यशैली क्या है एज अ बीजेपी कार्यकर्ता?
2: देखिए, कोरोना आया तो सारी सरकार उससे, कोरोना से जूझ रही थी और उनके नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने पार्टी के द्वारा, पहले तो पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया, सेवा ही संगठन, सारी पार्टियां बैन हो गई, बंद हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आइसोलेशन वार्ड में चली गई, कोई मिली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जान को जोखिम में डाल करके सेवा ही संगठन चलाया हर दिन। पहले एक तो उन्होंने सेवा ही संगठन की कल्पना पूरी, मास्क बांटना, फूड पैकेट्स बांटना, मेडिसिन पहुंचाना, ये सारी चीजें की रूपरेखा बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है और हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करना, ये उन्होंने किया। ये उनका समर्पण भाव। अभी अभी नए पदाधिकारी जो नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके साथ जो पदाधिकारियों के साथ अभी मोदी जी की बैठक हुई है वो 5 घंटे चली है। भारत के प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं, और उन्होंने एक एक की बात सुनी है, एक एक से जाना है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और उसमें उन्होंने फिर अपने तरफ से ऐड किया है। तो ये उनका कार्यकर्तापन है, ये उनका कमिटमेंट है। बतौर दुनिया के लोकप्रिय नेता होने के बावजूद,
1: हम देश के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ यात्राएं भी चल रही हैं। एक यात्रा वडनगर से बनारस और बनारस से वडनगर भी चल रही है। दूसरी एक यात्रा, हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
2: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है
1: जी,
2: और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहाँ कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह जी गृहमंत्री जी वहां जाएंगे।
1: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
2: देखिए सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सबने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहां पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने अब जो विपक्ष का नेता 7.8% ग्रोथ रेट पर हम चल रहे हूँ क्वार्टर पे, और वो नेता डेड इकोनॉमी कहे, तो आपके समझ में इतना ही आना चाहिए कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, वो इकोनॉमिक्स का ई समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको अगर ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर?
2: जो धमाका है, गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
1: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका
2: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
1: सर मैं खत्म करता हूं इंटरव्यू एक आखिरी प्रश्न लेके। हमने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री के 25 सालों को लेकर, उनका जो राजनीतिक करियर रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपके शब्दों में यह जानना चाहता हूं, अगर तीन शब्दों में आप समाहित करना चाहें प्रधानमंत्री के ये 25 साल का जो पूरा जर्नी रहा उसको, तो कैसे करेंगे आप?
2: देखिए तीन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ही हैज चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, राजनीतिक संस्कृति उन्होंने बदल डाली है। पहले देश में मैनिफेस्टो सिर्फ एक रिचुअल होता था, मोदी जी ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये संस्कृति आज उन्होंने देश में प्रतिपादित कर दी। इसके पहले भाई भतीजावाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये इसी पर राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति, डिवाइड एंड रूल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग जो लेफ्टिस्ट बड़े चर्चा करते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना गरीब कल्याण किया और जितना उनका एम्पावरमेंट किया, जितना महिलाओं का एम्पावरमेंट किया, किस किस प्रोग्राम की मैं बात करूं, इसलिए तीन शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, उन्होंने देश का डायरेक्शन ही बदल दिया
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि उनका अनुभव कैसा रहा प्रधानमंत्री के साथ काम करने का, ना सिर्फ इन 25 सालों में बल्कि पिछले काफी लंबे समय में जो उन्होंने समय बिताया नरेंद्र मोदी के साथ। दिल्ली से पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।
0: और मुंबई की अब हम बात करेंगे बीएमडब्ल्यू कार हादसे की। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज में ब्रिज से नीचे गिरती हुई कार तेज रफ्तार में नजर आती है, ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर नीचे गिरती हुई नजर आ रही है कार। और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीएमडब्ल्यू कार जो गाड़ी है ब्रिज से नीचे गिरती हुई नजर आई, गाड़ी के भीतर कुल चार लोग सवार थे जिनमें से तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक और है जो बुरी तरह से जख्मी है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी कोस्टल रोड पर, और लगभग 5:20 पर कोस्टल रोड कंट्रोल रूम से ये कार मिली। हादसा कोस्टल रोड पर लाला कॉलेज के सामने लोटस जेटी के पास हुआ है, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी और एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। तीन लोगों की इस पूरे हादसे में जान जा चुकी है, बुरी तरह से जख्मी चौथे शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चकनाचूर हालत में यह कार है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस कार के परखच्चे उड़ गए हैं। बड़ा सड़क हादसा सुबह के समय हुआ है, हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि हादसे की वजह सिर्फ ओवर स्पीडिंग थी या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाया जाना, नशे में होना भी इसकी वजह हो सकती है। जांच जारी है अभी इस पूरे मामले पर, लेकिन इस हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: There is a very famous quote ki history repeat itself.
6: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
7: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
6: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।
8: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद आज तक

0: और मुंबई बीएमडब्ल्यू कार हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में ब्रिज से नीचे गिरती हुई कार नजर आ रही है। तेज रफ्तार कार ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर नीचे गिरती हुई नजर आती है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। आप अंदाजा लगाइए, कार के ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खोया, ब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए कार नीचे गिरी और यह हादसा सुबह 5:03 पर हुआ है। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। हादसे के बाद कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौके पर जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो अस्पताल में भर्ती है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, और भयानक तस्वीरें आपको लगेगा कोई वीडियो गेम चल रहा है। देखिए किस तरीके से ब्रिज से तेज रफ्तार नीचे आकर यह कार गिरती है। 200 से ज्यादा की रफ्तार बताई जा रही है उस वक्त पुलिस की तरफ से। 4 लोग इसमें सवार थे, 3 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक बड़ा हादसा यह हुआ है। किस तरीके से सब कुछ रेलिंग को तोड़ते हुए कार नीचे गिरी है, क्योंकि 200 से ज्यादा की स्पीड है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह यह घटना घटी है। 4 लोग इसमें सवार थे, 3 की जान चली गई है, और यह फुटेज सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि आखिर इस हादसे की वजह और नियंत्रण खोने की वजह, 200 पार करने की वजह क्या रही है। वाकई में तस्वीरें भयानक हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है, एक जो चौथा शख्स है वो बुरी तरह से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चकनाचूर कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, परखच्चे इस कार के उड़े हुए हैं। एक शख्स को इसमें से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, 3 की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, और इस पूरे मामले में पुलिस ने तभी जांच शुरू कर दी। सुबह 5 की यह घटना है, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये ताबड़तोड़ पूरी तरह से ग्रिल को तोड़ती हुई कार नीचे गिरी है ब्रिज से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख जुड़ गए। मुस्तफा, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रियलिटी में कार इतनी स्पीड से नीचे आई है, लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है।
1: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये सैटरडे नाइट के बाद, ये वी आर ऑफ संडे यानी कि संडे सुबह का ये इंसिडेंट है। 3 युवक एक युवती इस कार में सवार थे, बीएमडब्ल्यू कार में, जब ये पूरा हादसा हुआ है। और आप कह सकते हैं कि कोस्टल रोड जो मुंबई का है वो कुछ इस तरह से आप कहेंगे कि सुपर वे, सुपर एक्सप्रेस वे रोड जैसा है। इधर इतनी स्पीड से गाड़ियां चलती है रात के समय में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्पीड क्या रही होगी। तो इस रोड पर, कोस्टल रोड पर जिस वक्त हम मौजूद भी है, इस रोड पर वहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है। और जिस तरह से कार गिरी है नीचे, आप कह सकते हैं कि स्पीड पर कंट्रोल ना होने की वजह से, क्योंकि आप ये देखिए कि बैरिकेडिंग वगैरह जो है वो पूरी तरह से इस रोड पर की गई है। ऐसा नहीं है कि रोड पर बैरिकेडिंग नहीं है, तो ये सारी चीजों को तोड़ करके जब कार स्पीड में नीचे गिरी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज रफ्तार से ये कार थी। किसी जो आप कह सकते हैं बिजनेसमैन के नाम पर ही कार रजिस्टर्ड है, जो कि दादरा नगर हवेली के रहने वाले हैं। 3 युवक एक युवती इसके कार में थे, उनमें से 2 युवक और एक युवती जो थी उनकी मौत हो चुकी है। नायर हॉस्पिटल में एक तीसरे का इलाज चल रहा है, वेंटिलेटर पर वो शख्स बताया जा रहा है। 25 से 19 वर्ष के बीच के ये सभी लोग हैं।
0: मुस्तफा, वही कि 25 से 19 से 25 के बीच इनकी उम्र है, यंगस्टर्स हैं, बहुत कम एज के ये लोग हैं। क्या इनके बारे में और जानकारी मिल पाई है? कार के बारे में जैसा कि आपने जिक्र किया कि किसी बिजनेसमैन के नाम पर दर्ज है, और क्या डिटेल इन लोगों के बारे में मिल पाई है? क्योंकि 200 से ज्यादा स्पीड थी, ये बात तो पुलिस भी कह रही है।
1: जी बिल्कुल, इन लोगों के नाम जो है वो सामने आया, जिस शख्स के नाम पर कार रजिस्टर्ड है वो व्यक्ति का नाम सामने आया है। लेकिन पुलिस इस जांच में जुटी है कि वो ये गाड़ी जो है, गाड़ी में सवार लोग कहाँ से निकले थे उस समय पर जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है, इतनी देर रात घर से बाहर क्या कर रहे थे, उस पे एक तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और बाकी चीजों को लेकर के भी जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन क्योंकि मुंबई के लिए जो ये कोस्टल रोड खुला है, ये एक बहुत बड़ी राहत का वो सबब रहा है। लेकिन उस पर स्पीडिंग कर किसी तरह की इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन कार पूरी तरह से नीचे गिर जाना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पहली बार इस तरीके का भीषण एक्सीडेंट जो है एक स्पीडिंग कार का वो सामने आ रहा है, जो कि मुंबई करो के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्पीड कंट्रोल कहीं ना कहीं इस कोस्टल रोड पर आ सकता है ऐसे एक्सीडेंट की वजह से।
0: क्या परिवारों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है? इनके परिवारों के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस को मिल पाई है?
1: जी, इनके परिवार को इत्तला कर दी गई है, हॉस्पिटल वो पहुंच रहे हैं, पुलिस उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी, परिवार में जो लोग हैं उनको इत्तला कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी दुख का ये आप कह सकते हैं एक्शन है। जो आपके यंग लोग थे ये, जिनकी जिनमें से 3 लोगों की मौत हुई है, एक शख्स वेंटिलेटर पर है, तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ा हादसा है परिवार जनों के लिए भी। लेकिन उनकी जब वो पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल, तब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और आगे की जानकारी मिलेगी।
0: बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें आपको, इलेक्ट्रिक पोल को और रेलिंग को तोड़कर किस तरीके से एक कार नीचे गिरी है, तस्वीरें देखिए, वाकई में खौफनाक तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि 200 से ज्यादा स्पीड बताई जा रही है, भयानक तस्वीरें। 3 लोगों की जान इस कार हादसे में जा चुकी है, BMW कार है, सुबह 5 बजे का ये घटना है, हादसा बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कुल 4 लोग इसमें सवार थे, जो चौथा शख्स है वो बुरी तरह से घायल है, वेंटिलेटर पर है, यंगस्टर्स इसमें बताए जा रहे हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये आखिर आ कहां से रहे थे, इस हादसे की वजह आखिर और क्या है ओवर स्पीडिंग के अलावा। सोचिए आप किस तरीके से 200 की ज्यादा की स्पीड और कोस्टल रोड पर कैसे एक कार सब कुछ तोड़ती हुई नीचे गिरी है, चकनाचूर हो गई है कार पर, खच्चे उड़ गए हैं, जो दूसरी तस्वीरें हैं उसमें इस कार के, और जिसमें 3 लोगों की जान गई है। इस पूरी घटना के बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है, सुबह 5 बजे की यह घटना है, इसीलिए बार बार पुलिस के लिए भी कई सवाल है कि आखिर ये लोग कहां से आ रहे थे। लेकिन जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो वाकई में भयानक है, खौफनाक है। आगे की बड़ी खबर का रुख करेंगे, अमृतसर से खबर है जहां ASI की हत्या करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अमृतसर पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को ढेर कर दिया है, और आपको बता दें कि आरोपी के पास से पुलिस को जो एक फोन मिला है उसके बाद कई और बड़े खुलासे हुए हैं। हमलावर दीपक सिंह पाकिस्तानी हैंडलर के साथ संपर्क में था, आतंकी शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम करता था, आतंकी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए उसने ASI की हत्या कर डाली, और इतना ही नहीं वीडियो भी बनाया। शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर पंजाब में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने का पहले भी आरोप लगा है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को आतंकवादी घोषित किया था। अब दीपक के एनकाउंटर के बाद इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अमृतसर ASI हत्या पर बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा हुआ था ये आतंकी, जो फोन से सब कुछ खुलासा हुआ है, और भी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।
2: जो बाहर बैठा है पाकिस्तान का आदमी, उसने ही इनको अपने झांसे में लिया था, और इनको उसने पैसे भी देने का कहा था, और आगे इनके साथ चिट्टे का व्यापार करने का भी प्रॉमिस किया था। एक तरह का वो सर्टिफिकेट मांगते हैं इनसे, ये हमारे बंदे पूरे हमारे बन चुके हैं, और आगे जाके भी इन पे प्रेशर रहे, वो उनको टारगेट करवाते हैं स्पेशल पुलिस वाले का, जो अकेला हो और जिसको जिसको मार के इनको वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है, 30-40 सेकंड का वीडियो इस पे भी बनाया था इन्होंने, वो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो बिल्कुल क्लियर आ गया है। ये वापस मारने के बाद फिर स्पॉट पर आए हैं, जब वो हरजीत सिंह घिरा पड़ा था उसकी उन्होंने वीडियो बनाई, और फिर ये वीडियो उन्होंने आगे भेजी है वो उस साइड पे।
0: तो तस्वीरें देखिए जरा, और आपको बता दें कि इस एनकाउंटर के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं जो सनसनीखेज हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से शहजाद भट्टी पर पहले ही आतंकवादी उसे घोषित किया गया था, और अब कहा जा रहा है कि पंजाब में पहले ही कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस तरीके से हत्या की गई है, और उसके बाद उसके वीडियोस भी बनाए गए हैं, और उसे पाकिस्तानी हैंडलर्स तक भेजा गया है अपनी वफादारी साबित करने के लिए। शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा हुआ था यह हमलावर, जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, और क्या जानकारी मिल पाई है इससे जुड़ी हुई? साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये कोई पहली हत्या नहीं थी पुलिस वाले की, इससे पहले भी जो कई हत्याएं हुई हैं, क्या इसी गैंग से जुड़ी हुई है, इसी पाकिस्तानी हैंडलर्स के लोगों ने हत्याएं की है, क्या ये साफ किया गया पुलिस की तरफ से?
3: बिल्कुल, देखिए न सिर्फ पंजाब पुलिस की तरफ से बल्कि सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि जो पाकिस्तानी गैंगस्टर था शहजाद भट्टी, उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रिक्रूट किया है, और वो एक छदम नाम है, TTH, तहरीके तालिबान हिंदुस्तान, उसके नाम से ऑपरेट करता है। ये अब तक की जानकारी के मुताबिक चौथी हत्या है पंजाब पुलिसकर्मी की। आप जो ASI हैं हरजीत सिंह, उनकी रेकी की गई, रेकी का CCTV भी पंजाब पुलिस के पास है। उसके अलावा रेकी का वीडियो जो दीपक सिंह जो इनकाउंटर में मारा गया उसने पाकिस्तान भेजा था। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि गृहमंत्री का बकायदा ट्वीट आया था और गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया और उसके नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खासतौर से जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी टारगेट किलिंग की योजना बनवाता है, सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट करता है। जो शहजाद भट्टी है उसके अलावा उसके नेटवर्क में और भी 5 नाम हैं जिनकी पहचान जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने की हैं, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद जो अजमल गुजर है उसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है और चिंताजनक बात है, लेकिन भारत सरकार जो शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर बीते दिनों कड़ा प्रहार भी किया था, पैन इंडिया मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये जो शहजाद भट्टी है ये सोशल मीडिया के जरिए जो नौजवान है
0: जी
3: उनको गुमराह करता है और कम पैसों में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है।
0: जी
3: आपको याद होगा रांची में RSS दफ्तर में पेट्रोल बम से अटैक हुआ था,
0: बिल्कुल, हम
3: उसके
0: अंदाजा
3: पीछे
0: लगा सकते हैं कि किस तरीके से साजिशें रची जा रही थी और पाकिस्तानी हैंडलर को ये हत्याएं करने के बाद वीडियोस बनाकर भी भेजे जाते थे वफादारी साबित करने के लिए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबर के बारे में, क्योंकि यूपी के वाराणसी में ATS ने कुख्यात नक्सली ब्रिजेश उर्फ गोपाल को मार गिराया है। उस पर 30 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। ब्रिजेश झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन TPC का कमांडर था। NIA ने भी टेरर फंडिंग के मामले में उसे वांटेड घोषित किया हुआ था। वाराणसी के रामनगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और यूपी ATS और पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली रामनगर होते हुए जा रहा है। उसके बाद टीम ने घेरेबंदी की और इसी दौरान वो बाइक से वहां पहुंचा। टीम ने उसे रोकने का इशारा किया लेकिन पकड़े जाने से डर से उसने दोनों ही हाथों से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद टीम ने जवाबी फायरिंग की जिसमें ब्रिजेश को गोली लगी और वो सड़क पर ही गिर गया। जिला अस्पताल उसे तुरंत भर्ती करवाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई।
4: सर ये कौन है और कैसे ये सफलता मिली?
2: आज सुबह यानी 20 सितंबर 2026 की सुबह 4 बजे UPATS की टीम ने एक मोटरसाइकिल सवार को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल रोकने की बजाय उस मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल से कूदकर UPATS के ऊपर फायर किया। जवाबी फायर में यह व्यक्ति मारा गया। मृतक की पहचान ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता पुत्र पंचू गंजू निवासी चतरा झारखंड के रूप में हुई है और यह एक इनामी नक्सली था जिस पर NIA से 5 लाख रुपए और झारखंड सरकार से 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस पर अभी तक 45 से ज्यादा मुकदमों के बारे में जानकारी हुई है जिसमें से 2 मुकदमे NIA विवेचना कर चुकी है और इसने काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी हत्या की थी।
4: सर इसका मूवमेंट यूपी में जिसे देखा गया तो क्या इसके शरणदाता यहाँ पर हैं, यहाँ पे क्या करने आया था और इसके साथ एक दूसरा साथी भी था, वो उससे भी पूछताछ हो रही है या अभी वो फरार हुआ?
2: इसके दूसरे साथी के बारे में कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है और यूपी के नक्सली क्षेत्र लगभग शांत हो चुके हैं लेकिन चूंकि पूरे देश में एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन चल रहे हैं इसलिए संभव है कि कोई नक्सली यूपी में पनाह लेने की कोशिश कर रहा हो। फिलहाल यूपी ATS ने इस नक्सली को ट्रैक डाउन करके अरेस्ट करने का प्रयास किया जिसमें ये मारा गया।
4: एक आखिरी सवाल, क्या है इसके कुछ और मददगार भी हो सकते हैं जो यहाँ पे आया, शरण लेने आया था? क्या
2: पूर्व में नक्सली संगठनों के स्लीपर सेल्स यूपी में पाए गए हैं और उन पर कार्रवाई हुई है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
4: उनको भी ट्रैक डाउन करेंगे, देख रहे हैं कि
2: यह एक सतत प्रक्रिया है। UPATS लगातार नक्सली संगठन और विध्वंसकारी संगठनों के पीछे लगी रहती है और उन्हें अरेस्ट करने की या उन्हें कानून के दायरे में लाने की कोशिश करती रहती है।
0: और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ जहां नियुक्ति पत्र बांटने के बाद CM संबोधित कर रहे हैं।
5: शासन और कॉमन मैन के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी बनता है। 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे। भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब भर्ती की प्रक्रिया में ही विसंगतियां हो, भेदभाव हो, तो फिर विश्वास कहां से होगा। विज्ञापन आते ही हर युवा के मन में एक भाव उमड़ता था कि भर्ती की प्रक्रिया बिना सिफारिश के, बिना लेन देन के पूरी नहीं हो पाएगी। उसके मन में निराशा होती थी, किसको पकड़ूं, कैसे जाऊं, कैसे मेरा सिलेक्शन हो। पहले परीक्षा की शुचिता को लेकर प्रश्न खड़े होते थे, फिर चयन की प्रक्रिया को लेकर के प्रश्न खड़े होते थे, पेपर लीक के मामले अलग से होते थे, और यूपी पुलिस में तो इस बात की बदनामी भी थी कि परीक्षा दे रहा है कोई और परिणाम और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है कोई और। यानी जो लोग एप्लीकेंट हुआ करते थे, इसी यूपी में ऐसी भी परीक्षाएं हुई थी 17 के पहले कि जो एप्लीकेंट ही नहीं थे उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए गए और जो एप्लीकेंट थे, योग्य अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लंबी जांचें चली, परिणाम जीरो। और तब 17 में आकर के हम लोगों ने तय किया था कि भर्ती की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतेंगे, इसमें रिफॉर्म करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन हो, या फिर शिक्षा के अलग अलग विंग, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के भर्ती से जुड़ी हुई प्रक्रिया की व्यवस्था। शिक्षा के तीनों भागों को हमने एक किया, शिक्षा आयोग के रूप में उसका पुनर्गठन किया और प्रक्रिया को लेकर के एक दिन नहीं, कई राउंड मेरे सामने प्रेजेंटेशन देते थे, फिर हम उसमें संशोधन करते थे, फिर विशेषज्ञों को बुलाते थे और फिर फाइनल जब उसका तय हुआ, हम लोगों ने फिर कहा कि भाई इस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होगी, भेदभाव किसी भी स्टेज पे ना हो, क्योंकि पहले अगर भूले भटके किसी योग्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो ही गया तो उसको इंटरव्यू में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। हमने कहा ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ की तो परीक्षा में इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, इसको समाप्त कर दो, पूरी व्यवस्था ही हमने वहां से भंग करके, नहीं, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त, योग्य अभ्यर्थियों को हर स्तर पर मौका मिलना चाहिए। और आज परिणाम है कि इसके बल पर हम लोगों ने 2017 के बाद भर्ती की प्रक्रिया में जो परिवर्तन लाने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि 9.5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन के अंदर अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसी प्रक्रिया में आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए उप निरीक्षक गोपनीय के पद पर या लेखा के पद पर या अन्य संवर्गीय पदों पर आज भर्ती की इस प्रक्रिया में आप 912 का चयन हो रहा है, आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। जब हम योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हैं कैसे परिवर्तन होता है, या उत्तर प्रदेश में आए हुए पिछले
0: तो लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 912 से ज्यादा अभ्यर्थियों को ये पत्र बांटे और उसी दौरान पहले कितनी ज्यादा अव्यवस्थाएं थी उसका जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
9: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: महंगाई से परेशान लोगों के लिए आने वाले महीनों में होम लोन की ईएमआई का बोझ बढ़ने का खतरा है। इसकी वजह है एसबीआई रिसर्च की नई रिपोर्ट, जिसमें आरबीआई को अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट्स की दो बढ़ोतरी करने की सलाह दी गई है। हालांकि आरबीआई ने अभी रेपो रेट बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया है। फिलहाल रेपो रेट 5.25% पर स्थिर है। अगस्त की बैठक में आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बाहरी झटकों और महंगाई से जुड़े जोखिमों को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। एसबीआई रिसर्च के एनालिसिस में महंगाई का दबाव ज्यादा चीजों तक फैलने के संकेत भी मिले हैं। सीपीआई में 90% वेटेड कंट्रीब्यूशन को कवर करने वाली कमोडिटीज की संख्या जनवरी 2026 में 22 थे, जुलाई में इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, बेवरेजेज, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में इनपुट कॉस्ट आउटपुट प्राइसेस के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इससे आने वाले दिनों में बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचने का जोखिम है। अगर आरबीआई अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करता है तो कुल 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होगा। इसका असर खासतौर पर फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर पड़ सकता है। मसलन 50 लाख रुपए के 20 साल का होम लोन पर फिलहाल 8.25% की ब्याज दर के हिसाब से करीब 42,603 रुपए ईएमआई बनती है। वहीं अगर बैंक पूरे 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी ग्राहक तक पहुंचाता है तो ब्याज दर 9.25% हो सकती है, जिससे ईएमआई बढ़कर करीब 44,186 रुपए हो सकती है। दूसरी तरफ रेपो रेट बढ़ने पर एफडी की ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में नई एफडी कराने वाले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज दर पर पैसा लॉक करने का मौका मिल सकता है। अब सबकी नजर अक्टूबर की अगली एमपीसी बैठक पर रहेगी, जहां आरबीआई महंगाई, कच्चे तेल और अर्थव्यवस्था के हालात को देखते हुए ब्याज दरों पर अपना अगला फैसला लेगा। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राहुल गांधी के इंदौर के शो पर सियासत तेज हुई। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला, का संस्कार भूले नेता विपक्ष। यूपी में मिशन 2027 की लड़ाई रोजगार पर गरमाई। सीएम योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, का पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद। रफ्तार का कहर, फिल्मी स्टंट की तरह ब्रिज से नीचे गिरी बीएमडब्ल्यू। कार सवार 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। अमृतसर में एएसआई की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। मर्डर का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकी शहजाद भट्टी और उसके आतंकी मॉड्यूल ने करवाई हत्या। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का खुला खाता। शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल में महिला टीम ने जीता सिल्वर। सुचिका तरियाल ने एमएमए में भी पदक किया पक्का। हॉकी में महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19 गोलों से रौंदा।

सोफे पर गए, झूले पर गए, ये सारी चीजें आपको देखकर अद्भुत लगेंगी, लेकिन इसी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय दुनिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं। अगर मैं इनके बीच जाऊं तो आप उस हाइट के डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि ये जो

0: बाजार में आने वाली ये नाड़ीपति कैटल के नाम से मशहूर है, दुनिया में इतना छोटी गाय आपको और कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो आज हम आपको यहां पर हैदराबाद के नजदीक दिखाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में इसकी सोच विकसित हुई और उसके बाद से ये देश के कोने कोने में लोगों तक जा रही है। क्या खासियत है इसकी, कैसे अलग है, और वो सोच जो प्राचीन परंपरा कहते हैं ना कि गाय घर के भीतर घर के आंगन में रहे और जो कुत्ता है वो रक्षा के लिए घर से बाहर, लेकिन घरों का आकार छोटा होता गया, कुत्ते अंदर आए, गाय बाहर गई, और उस सब को बदलने के लिए एक व्यक्ति की सोच का आज ये अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय दृश्य है जो हम आपको दिखाने वाले।
1: गोद में गाय, पांचवी मंजिल की बालकनी में गाय, सोफे पर गाय, ड्राइंग रूम के अंदर गाय, बच्चों की दोस्त गाय, कुत्ते की साथी गाय, मैया की लाडली गाय, भैया की दुलारी गाय। चौंकिए मत, जो आप देख रहे हैं वो कोई जादू नहीं, ना आंखों का धोखा है, कोई विजुअल इफेक्ट भी नहीं है, ना ये गाय खिलौना है, ना ये गाय रोबोट है, ना ही ये गाय कल्पना है, ये असली गाय है, दुनिया की सबसे अद्भुत अविश्वसनीय और कल्पनीय गाय। एक हाथ गाय के माथे पर जाता है तो सदियों की भावनाओं का समुंदर डोल उठता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा तो कहते हैं कामधेनु गाय ने ही उनका अभिषेक करके गोपाल से गोविंद बना दिया। गोविंद जिसका अर्थ होता है गायों का रक्षक। कहा जाता है कि जब राम जी वन को गए तो 1000 गायें दान करके गए, जब लंका से लौटे तो राज्य की समृद्धि के लिए फिर 1,00,000 गायें दान की।
2: हैदराबाद में एक नाड़ी वो शोध संस्थान है गाय के ऊपर, उन्होंने वो गाय के ऊपर एक एनिमल रिसर्च किया और आप देखते होंगे कि छोटी नस्लों की गायें आजकल विकसित हुई हैं, जिनकी हाइट जो है वो 2-2.5 इंच फिट तक की गायों का जो है वो निर्माण किया गया।
0: अद्भुत नाड़ीपति गाय उसी सोच का ऐसा रूप है जिनमें गायों का आकार तो छोटा है लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। आज हम आपको दुनिया की सबसे छोटी गाय के नाम से मशहूर नाड़ीपति गाय दिखाएंगे। खुले खेतों में ही नहीं, ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने वाली गाय से मिलवाएंगे। आखिर क्यों ये गाय विकसित की गई वो भी बताएंगे। दोस्ती करने वाली गाय ही नहीं, शांत और प्यारे सांड से भी मिलवाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत अविश्वसनीय और कल्पनीय दुनिया में हमारे साथ चलने के लिए। इन गायों की सबसे खास बात आपको ये दिखेगी कि ये बहुत प्रेम से आपके पास आते हैं। मतलब यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, आराम से आ रहे हैं, आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, कुछ इनमें सुस्ता भी रहे हैं, लेकिन आप इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि एक छोटे एरिया में, यानी कि आजकल जब शहरों में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है रहने के लिए, छोटे फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर अगर एक छोटी सी गाय रहे तो आपकी किसी भी और पालतू से शायद कम जगह लेकर आपके घर में आपके परिवार का हिस्सा बनी रह सकती है। तो ये आराम से जिस तरीके से मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे से खेलने आ रहे हैं, इनमें से कोई बुल भी है, कोई सांड भी है, कोई गाय भी है, लेकिन आराम से, सब किसी में कोई आक्रामकता नहीं है, कोई अग्रेशन नहीं है, प्रेम से, बहुत प्यार से, थोड़ी उत्सुकता से भी ये आपको घेरे रहते हैं हमेशा।
1: AI के जमाने में जब तक खुद की आंखों से न देख लें तब तक विश्वास करना मुश्किल होता है। हमने सुना कि डॉक्टर कृष्णम राजू नाम के एक व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे छोटी गाय विकसित करने का

0: दावा किया है। यूं तो उनकी गौशाला आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के लिंगमपट्टी गांव में है, लेकिन हैदराबाद के पास विकाराबाद में भी एक गौशाला है।
1: वी हैव काऊ का शेल्टर
2: है, खटाल जिसको कहते हैं,
1: दैट इज देयर। एंड इसमें हम अबाउट 3000 काउस का अकोमोडेट करने के लिए इधर जगह है।
2: अच्छा, 3000 काउस। अभी आपका एक जो मेन जगह है,
1: काकीनाडा में, वो एलेश्वरम का नाडीपति का गांव है, उसका नाम
2: नाडीपति का गांव ही है
1: उसका, तो उधर आके 10000 तक,
2: 10000
1: या,
2: और यहाँ पर
1: इधर अभी आके 500 से 1000 तक है।
0: तो हम पहुंच गए वहां, देखा तो एक नहीं, छोटी छोटी अनेकों गाय थी। क्या ये प्राकृतिक रूप से छोटी है या फिर इन्हें ऐसा बनाया गया? अगर बनाया गया है तो कैसे? सबसे पहले तो यही सवाल मन में आया।
2: ये आपने डेवलप किया इसको?
3: एक्चुअली माय फर्स्ट रिसर्च इन नाडीपति, सेकेंडरी,
4: असल में मेरी पहली रिसर्च नाड़ी के बारे में थी और दूसरी इंसानों की लंबाई बढ़ने के बारे में। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राचीन समय में इंसानों की लंबाई कम से कम 10 से 12 फीट हुआ करती थी। मेरा मानना है कि अगर भारत में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसकी लंबाई कम से कम 10 फीट हो तो वह निश्चित रूप से ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। इसी पर रिसर्च चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लंबाई में आए बदलावों पर। इसीलिए मैंने कुत्तों या बिल्लियों के बजाय ओंगोल गायों पर रिसर्च करने का फैसला किया और उन्हें पालना शुरू किया। एक दो साल बाद लोगों ने कहा कि ये गायें बीफ के लिए अच्छी हैं और इनका वजन ज्यादा बढ़ता है। मैंने सोचा कि इससे नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने इसे उलटने और गायों को बचाने का तरीका अपनाया। मैंने नाड़ीपति पद्धति का इस्तेमाल करके ग्रोथ हार्मोन्स को नियंत्रित करने की तकनीक अपनाई। इसके लिए मैंने छोटी गायों को चुना। उस समय पंगनूर जैसी कई देसी नस्लें मौजूद थीं। मैंने 5 फीट की गायों की लंबाई को धीरे धीरे कम करते हुए उनमें बदलाव किया।
2: दिलचस्प
0: सोच थी। पहले घर बड़े होते थे तो गायें आंगन में पाली जाती थी, कुत्ते बाहर पहरेदारी कर रहे होते थे। समय के साथ घर छोटे हुए, गाय घर से बाहर हो गई और कुत्ता घर के अंदर आ गया। डॉक्टर राजू ने फिर से गायों को घर के अंदर लाने की सोच पर काम किया ताकि घरों के अंदर उन्हें आराम से पाला जा सके।
5: उनका मानना था कि पुराने भारत में या 60-70 के दशक तक हर घर में गाय पाली जाती थी,
6: हर गांव में गाय रहता था। तो अभी किसी के घर पे,
5: लेकिन शहरीकरण और जगह की कमी के कारण अब कोई घर में गाय नहीं रखता। अब हर कोई कुत्ते पालने लगा है। कुत्तों ने गाय की जगह ले ली है और वे घर के अंदर रहने लगे हैं।
2: तो घर में कुत्ता है
6: तो गाय,
2: और गाय बाहर है।
6: हाँ। तो इसको ये काम करेंगे, हम गाय को छोटा करके,
2: हाँ,
6: गाय के जगह पे गाय को लेकर आएंगे।
2: हाँ।
0: पर क्या सचमुच ये संभव है? क्या सच में घर के अंदर इन्हें पाला जा सकता है, खासकर फ्लैट्स में? हमें यह बताया गया कि पीएमसीएम समेत बड़े बड़े लोग नाड़ीपति गाय पाल रहे हैं।
6: नाड़ीपति काउस आर इन मोस्ट ऑफ आवर इंडियन लीडर्स,
2: लाइक
6: प्राइम मिनिस्टर का घर पे,
2: हाँ,
6: और ऑल स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स का,
2: सबके पास नाड़ीपति,
6: और मोस्टली बड़ा बिजनेस पीपल का,
2: हाँ, सब रख रहे हैं। पर आप लोगों का ये लक्ष्य है कि घर घर तक पहुंचाएं।
6: एंड दीज नाड़ीपति काउस आर नाउ इन जम्मू कश्मीर एंड इवन इन अगरतला,
2: अच्छा,
6: त्रिपुरा,
2: अच्छा,
6: एंड सो दिस इज इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, लाइक कर्नाटका, केरला, एंड इन असम और इन राजस्थान,
2: हर जगह,
6: हर जगह पे।
0: पर क्या सामान्य लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो भी ये गाय पाल सकते हैं? कहा गया हाँ, लेकिन मन में संशय था। सोचा वहीं जाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन गायों की पूरी कहानी तो समझ लें।
2: जब एक नाड़ीपति गाय का बछड़ा होता है तो उसे आप अपनी दो हथेलियों में समा सकते हैं। जब इनका आकार इतना छोटा तो वो छोटा सा बछड़ा गाय का, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इनके जीवन की होती हैं, जैसे कितने सालों तक इनकी आयु होती है, कितना खाते हैं, कितने समय सोते हैं, ये सारी चीजें जानना भी बहुत दिलचस्प है। बेबी कितना बड़ा होता है?
3: बेबी 6 inches.
2: 6 inches?
3: बोलने 6 inches.
2: हैंड पे आ जाएगा?
3: है, बोथ हैंड्स में आ जाएगा।
2: बोथ हैंड्स पे आ जाएगा ऐसे? और उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में कितना हफ्ता लगता है?
7: हफ्ता नहीं, एक 3-4 दिन में।
2: 3-4 दिन
7: खड़ा हो जाएगा।
2: अच्छा, उसके केयर के लिए अलग जगह है?
7: माँ के साथ रख देते मैक्सिमम, क्यों बोलते उसका दूध पीना है ना माँ का, उसके पास धीरे धीरे
2: पूरा नेचुरली चलेगा।
7: टोटल नेचुरली, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, काउ टू काउ नेचुरल ब्रीड पैदा होगा।
2: नेचुरल है पूरा, नेचुरल और सबसे न्यूट्रिशियस, हेल्दी आप कह रहे हैं।
0: सोचिए, नैनो गाय का बच्चा इतना छोटा होता है कि दोनों हथेलियों में आ जाए, अविश्वसनीय। तो पूरी बड़ी होकर ये कितनी बड़ी होती है, मतलब सबसे छोटी व्यस्क गाय कितनी बड़ी?
2: ये मिनिएचर,
3: ये
2: मिनिएचर गाय है जो 28 inches की है। ये 14 inches की है,
3: इसका नैनो है।
2: ये नैनो है। और पुंगनूर गाय से लेकर और ये जो नैनो गाय है, इस तक 5 जो अलग अलग श्रेणियां हैं वो इन गायों की होती हैं, इनकी हाइट के हिसाब से।

0: छोटे छोटे पैरों से चलती नन्ही नन्ही गाय, बगल में खड़ी मैं और मेरे घुटने से भी नीचे खड़ी गायों की पूरी फौज। ये बछड़े नहीं हैं, ये गाय हैं। यानी उम्र के हिसाब से व्यस्क हो चुकी गाय। नन्ही टांगे, नन्ना शरीर, लेकिन दावा ऐसा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या सचमुच गाय इतनी छोटी हो सकती है? आंध्र प्रदेश में ऐसी गायों की प्रजाति ने लोगों की कल्पना को चुनौती दी। यहाँ गायों को नाम दिया गया मिनी, माइक्रो मिनी और नैनो पुंगनूर गाय। एक गाय को देखकर आपको लगेगा कि अरे इतनी छोटी गाय, तब तक आपको इससे भी थोड़ी छोटी गाय दिख जाएंगी।
1: वाकई ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय भी।
2: कितना टोटल साइज हो गया?
3: टोटल 5।
2: 5? फिर से एक बार।
3: पुंगनूर से?
2: पुंगनूर
3: 3 to 5 feet height।
2: 3 to 5 feet।
3: मिनिएचर?
2: मिनिएचर
3: 2.5 feet। हाईएस्ट हाइट बिलो 2.5।
2: बिलो 2.5 feet।
3: हाँ। माइक्रो से?
2: माइक्रो
3: 2 feet। इसमें
2: 2 feet ये वाली?
3: यार माइक्रो है।
2: अच्छा, ये माइक्रो है, ये माइक्रो है।
3: फिर माइक्रो से नीचे नैनो।
2: नैनो
3: 1 feet
2: है।
3: 1 feet इसमें, 1 feet है।
2: अच्छा,
3: फीमेल का
1: एक ऐसी गाय जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगे कि ये अभी पैदा हुई हो, लेकिन ये बछड़ा नहीं गाय है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कितनी छोटी गाय है, तो जरा सा ठहरिए, इसमें भी दो लेवल छोटी गायों को हम आपको दिखाएंगे।
0: भारत में गायों की 50 देसी नस्लें हैं। हर एक नस्ल की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। इसी में से एक नस्ल है पुंगनूर, जो अब देश में विलुप्त होती जा रही है। पुंगनूर नस्ल का संरक्षण कृष्णम राजू कर रहे हैं।
2: ये पूरा क्षेत्र आपको अद्भुत लगता है जब आप इस तरीके से घास चरती हुई इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी गायों को देखते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर कहानी है इसके पीछे कि आखिर नाड़ीपति कैटल को क्यों विकसित किया गया, क्या सोच रही इसके पीछे और क्या प्रक्रिया रही इसकी।
0: एक सामान्य गाय की हाइट कंधे तक करीब 130 सेंटीमीटर या 4.3 फीट होती है, लेकिन हमारे सामने जो गाय थी वो केवल 70 सेंटीमीटर या 2.3 फीट की, यानी एक सामान्य गाय से 2 feet छोटी, यानी लगभग एक बकरी के बराबर।
2: एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कुत्ते होते हैं उसको घुमाने ले जाते हैं तो वहां पर वो जाके जो भी उसको अपना टॉयलेट करना है वो करता है, पर गाय के साथ एक अपार्टमेंट में कोई कैसे रहेगा?
4: ये अपार्टमेंट के अंदर इसको भी आदत डाले ना, धीरे धीरे बाहर ये भी आदत बन जाएगी।
2: जो ट्रेनिंग कहते हैं,
4: ट्रेनिंग करते हैं ना,
2: गाय की भी ट्रेनिंग हो
4: सकती है। जैसा हम एनिमल से बात करना चाहते हैं ना, वो भी हमारे जैसा फ्रेंडली हो जाता, उसका दुख तकलीफ तुम्हारे को बोलने के लिए जब से आ रहा है।
2: अच्छा, हाँ, ये बहुत देर से कुछ तो बोलने आ रही है। ये आप कह रहे हैं प्रेग्नेंट है?
4: प्रेग्नेंट का है। अच्छा।
2: कितने?
4: 6 महीने का प्रेग्नेंट है ये।
2: कितने टाइम तक प्रेग्नेंट?
4: 9 months का।
2: 9 months का
4: नॉर्मल
2: होता है। नॉर्मल 9 months का होता है।
4: इसके डिलीवरी भी नॉर्मल होगा।
2: अच्छा,
4: डिलीवरी भी नॉर्मल होगा।
0: लेकिन यहाँ कहानी केवल पुंगनूर गाय पर नहीं खत्म होती। यहाँ आता है वो सवाल कि अगर प्रकृति ने छोटी गाय दी है तो क्या इस 2.3 feet की गाय का कोई मिनिएचर वर्जन भी पैदा किया जा सकता है, यानी इसका आकार और छोटा किया जा सकता है। कृष्णम राजू ने इन गायों को हाइट के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बताया। मिनिएचर यानी 2 से 2.5 feet तक, माइक्रो मिनिएचर यानी 1 से 2 feet तक, नैनो यानी 1 feet के आसपास या उससे भी कम।
5: आपको भारत में पाए जाने वाली गायों की हाइट के बारे में भी हम बताते हैं। गीर गाय जो लगभग 130 सेंटीमीटर या 4.3 फीट ऊंची है। रेड कांधारी गाय जो 128 सेंटीमीटर या 4.2 फीट ऊंची है। कासरगोड ड्वार्फ गाय लगभग 96 सेंटीमीटर या 3.1 फीट। वेचूर गाय लगभग 87 सेंटीमीटर या 2.8 फीट। पुंगनूर मिनिएचर गाय लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर या 2.3 से 3 फीट। पुंगनूर माइक्रो मिनिएचर गाय लगभग 1 से 2 फीट ऊंची। पुंगनूर नैनो गाय लगभग 1 फीट या उससे भी कम।
2: पूरे समय यहाँ पर देखिए चारों तरफ हरियाली है, घास चरते रहते हैं।
4: घास के अंदर ये एक्चुअली इसलिए बना है कि अभी पहला घरों का आकार बड़ा बड़ा था, एक हर घर के अंदर एक कौ रहता था। अभी घर का आकार छोटा हो गया, अपार्टमेंट्स आ गए, इंडिपेंडेंट हाउस आ गए, घर छोटा हो गया। इतना बड़ा गाय लेके जाके घर के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए सोचकर इनको छोटा करे तो अच्छा रहता बोल के इसको ब्रीड को डेवलप करके छोटा बनाया था। ये घर के अंदर भी रख सकते, अपने कुत्तों की तरह भोसलो, कुत्ता घर के अंदर आ गया, गाय बाहर चल गया, कुत्ता बाहर करके गाय को अंदर रखने की सोच से इसको छोटा बनाया था।
5: इन्हें नाड़ीपति कैटल काउ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल गायों को ये रूप देने वाले डॉक्टर पी कृष्णम खुद में नाड़ीपति चिकित्सक हैं। नाड़ीपति एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें पारंपरिक उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। दावा है कि ये पारंपरिक प्रणाली 60,000 वर्ष पुरानी है और इसमें बीमारियों का पता नाड़ी देखकर किया जाता है।
6: हमारा इंडियन ट्रेडिशन में पहले हमको आदमी का ऊपर चिकित्सा करते हुए हमको इलाज करते थे, इसको अभी भी केरला में मर्मा बोलता है। उससे पहले ये नाड़ी का परीक्षा करके आदमी का प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करके देन इसको आके हमको ये कहीं कहीं जगह में।
7: हमारे शरीर में 14 मेरिडियन ऊर्जा मार्ग होते हैं और इन मेरिडियन पर इलाज किया जाता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में ऐसी कई थेरेपी हैं जिनमें बिना दवा के इलाज किया जा सकता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने इस चिकित्सा प्रणाली को नाड़ीपैथी के तौर पर रजिस्टर कराया और इलाज शुरू किया।
6: क्यूर द एनी एलिमेंट।
5: कृष्णम राजू का दावा है कि छोटी गायों को ये रूप देने के लिए उन्होंने इसी चिकित्सीय पद्धति का प्रमुखता से उपयोग किया है।
8: इसके जीन्स नहीं बदले हैं। पगनूर गाय असल में चित्तौड़ जिले की जो गाय हैं वहाँ हैं, वहाँ से आई हैं, जो कि आंध्रा का जिला है। और आंध्रा प्रदेश में ये किस तरह से आई, क्योंकि वहाँ पे सूखा था, पहाड़ी इलाका था, खाने के लिए कम था, तो ऐसी गायों का सिलेक्शन किया गया जो कि थोड़े कम पानी में, कम खाने में और उनकी हाइट कम थी। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस ओवर द इयर्स हुआ, तो हमारे पास जो 70 से 80 सेंटीमीटर की जो गाय है पगनूर, वो आई। इनमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है।
6: आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी,
9: मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि उनके शरीर में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया है। समाज में जो गायें होती हैं, ये वही गायें हैं, बस इनका आकार छोटा कर दिया गया है, इनमें और कोई बदलाव नहीं।
4: ये टोटली नेचुरल से पैदा हुई है, कोई इसे इंजेक्शन करके, कोई इंजेक्ट करके इसको ऐसा पैदा नहीं किया।
1: पर अगर सामान्य गाय से कई गुना छोटी ये गाय है तो ये कितना खाती है और कितना दूध देती है?
6: नाड़ीपति गाय का कव मिल्क आप किसी से तुलना नहीं कर सकते है।
8: हाँ।
6: क्योंकि इसमें फैटी कंटेंट्स है, बहुत ज्यादा है।
8: अच्छा,
6: दैट इज आपने साधारण मिल्क में आपको 3% होगा, तो इसमें 8 से 10% कंटेंट ज्यादा होता।
8: अच्छा,
6: है।
8: अच्छा, तो न्यूट्रिशन ज्यादा हुआ
6: या
8: नाड़ीपति
6: का?
8: अच्छा, मिल्क का न्यूट्रिशन ज्यादा हुआ,
6: बहुत ज्यादा होता है।
8: अच्छा
6: हाँ, और इसका वो व्हेन यू आर कंपेयरिंग
10: our traditional milk whatever is available in the market and Adipati Koka milk ka bahut antar hai.
8: Jo doodh ka production tha wo acha tha. Doodh ka production se matlab jo unke doodh mein jo fat ka content tha wo more than 8% tha jo baki jagah pe nahi milta hai. Baki kisi gaay mein mushkil se hi milta hai.
1: सामान्य गाय के दूध में करीब 3% फैट होता है, जबकि दावा किया जा रहा है कि इस गाय के दूध में फैट लगभग 12% तक होता है। तो फिर क्या इसके दूध की कीमत भी आम गाय के दूध जितनी है?
11: कितना लीटर दूध देती है
4: ये माँ? ये दूध इतना देगा, सुबह 1 लीटर देगा, शाम 1 लीटर देगा।
11: अच्छा,
4: इसका वैल्यू आके 8-10% वैल्यू है। सबसे बेहतर मिल्क है इसका।
11: अच्छा,
4: इसका कीमत आके 1 लीटर का आके 1200 रुपीज है।
11: अच्छा,
4: 1200 रुपया। एक केजी घी आके उसका 60,000 रुपीज है। 80 लीटर दूध से 1 केजी घी
11: कितना?
4: 80 लीटर दूध से 1 केजी घी बनेगा।
11: 80 लीटर दूध से 1 केजी घी बनेगा। और वो 1 केजी घी कितने का है?
4: 60,000 रुपीज से 60,000 रुपया।
11: और बाकी घी का क्या कॉस्ट है आजकल मार्केट में?
4: 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है।
11: जो सबसे अच्छा A2 घी, A2 का घी होता है,
4: इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आएगा, हार्ट में वाल ब्लॉकेज रहता ना वो भी नहीं आएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ रहते मसल्स, स्टिफनेस हो गया, नर्वस में एक्टिविटी होगा।
1: हमें बताया गया कि एक अकेली गाय नहीं, आप जोड़ा ही खरीद सकते हैं। कमाल की गाय हैं ये, और अद्भुत है इनकी छोटी सी दुनिया। इन्हें तो देखकर ही इतनी शांति मिल रही है, पर रुकिए, इनसे जादू की झप्पी भी मिलती है।
11: तो ये बात अच्छी तरीके से साबित हो चुकी है कि आपके घर में अगर पेट्स हैं या फिर कुछ ऐसे, आमतौर पर तो ये कुत्तों के साथ, पालतू कुत्तों के साथ अटैच किया जाता है, कडल थेरेपी होती है, हग थेरेपी होती है, लेकिन इन गायों के साथ भी ये बताया जा रहा है कि आप कडल थेरेपी कर सकते हैं। आप इनको कडल करके, आप इनको गले लगाकर और वो सुकून, वो चैन महसूस कर सकते हैं। गायों को सांस्कृतिक रूप से, हमारे देश में पारंपरिक रूप से एक ऐसा जीव माना गया है जो आपके जीवन में बहुत शांति, बहुत सुकून लेकर आता है। और जब ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारी गौ माताएं होती हैं तो फिर उसकी बात ही अलग होती है।

0: ये बात तो प्राचीन समय से सिद्ध है, स्थापित है। इंसानों और गायों का रिश्ता ही अद्भुत होता है। वैसे भी किसी को स्वभाव से सीधा कहना हो तो उसे गाय कह दिया जाता है। तो ये सीधी सरल गाय साथ बैठने भर से असीम शांति का अनुभव देती है, शांत भाव से अपना स्नेह प्रकट करती है।
1: कडल थेरेपी लिखा हुआ है, क्या है कडल थेरेपी? हग थेरेपी।
2: इंसान मोहब्बत करता, इंसान से मोहब्बत करता ना, जो हग थेरेपी करने से उसको एक एनर्जी पास होगा अपने जिस्म के अंदर।
1: अच्छा,
2: मोहब्बत एक फील होगा करने से,
1: जादू की झप्पी जिसको कहते हैं।
0: सच कहें तो इस जगह से मन ही नहीं भर रहा था, लेकिन कहानी का दूसरा सिरा पकड़ने के लिए हमें आगे भी तो जाना था। हमने एक ऐसे व्यक्ति का पता लिया जो हैदराबाद शहर में रहते थे और उन्होंने ये गाय खरीदी थी, अपने घर पर रखते थे। तो हम पहुंच गए वहाँ।
1: तो हमने वहाँ पर गौशाला में सुना कि कई लोगों ने इसे खरीदा है, नाड़ीपति गाय को। यहाँ पर हैदराबाद हम पहुंचे हैं, यहाँ विनोद जी का घर है। नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: कैसे? बढ़िया।
1: आपने नाड़ीपति कैटल्स में से आपने कितनी गायें ली हैं
3: अभी तक? पूरे पांच।
1: पांच? हम मिल सकते हैं उनसे? ये आपका घर है पूरा?
3: ये हमारा ओन घर है।
1: कितना फ्लोर है?
3: जी प्लस टू प्लस।
1: अच्छा, तीन तीन फ्लोर और ऊपर। चलिए चलो। आपके पास ये डॉग है और साथ में गाय को रखने से कोई दिक्कत नहीं होती है?
3: आपको वीडियो साथ में खेलते हैं।
1: खेलता है ये?
0: नाम क्या रखा है? पांच मंजिल सीढ़ियां चढ़कर हम अपार्टमेंट के भीतर पहुंचे और हमने जो वहां देखा वो अद्भुत भी था, अविश्वसनीय भी और अकल्पनीय भी।
1: वेदिका और नंदिनी।
0: छोटी छोटी गायें घर में घूम रही थी, जहाँ चाहे बैठ रही थी, बच्चों से खुलकर खेल रही थी। घर के लोगों से तो छोड़िए, पेट डॉग से भी उनकी खूब दोस्ती थी।
3: चल,
0: या आंखें बंद कर बस इतना सोचिए कि पांचवी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में गायें आराम से रह रही हैं। कल्पना कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही तो अद्भुत है।
1: इतना सजा के आप रखते हैं, आपको क्या आपके मन के बहुत करीब है? बहुत
3: बोल तो गाय बहुत प्यारी लगती है हमको, तो हम इसको ऐसे गौ माता एनी टाइम ऐसे रहना चाहिए एक्चुअली सजदज के।
1: हाँ।
3: जब माता मानते हैं तो फिर सजा भी होना चाहिए माँ की तरह।
1: और आपका क्यों इतना भावनात्मक जुड़ाव है?
3: चलिए, ऐसे तो मैं पशु प्रेमी हूँ, हर टाइप के जानवर मुझे पसंद है। एक टाइम पे हम सबके घर में गाय हुआ करती थी, आजकल शहर में आ गए, गाय पालना बहुत मुश्किल हो गया। पर डॉक्टर कृष्ण राजू ने ये नया ब्रीड बनाया, नाड़ीपति नैनो। अब इनको अपन घर में आराम से पाल सकते हैं, मतलब कुत्ते की जगह ले सकते हैं।
1: आपके पास, हालांकि आपके पास तो कुत्ता भी है।
3: हाँ।
1: लेकिन मैंने देखा थोड़ा बाहर वो, मतलब अपना
3: वो द्वारपाल है।
1: तो आप उस सोच पे जा रहे हैं जो परंपरा रही है।
3: हाँ।
1: तो आपके पास कौन कौन सी है अभी?
3: अभी मिनीचर गाय है। हाँ, पेयर है।
1: हाँ,
3: माइक्रो मिनीचर अभी हो गई है।
1: अच्छा,
3: नैनो है
1: ये? माइक्रो मिनीचर।
3: ये माइक्रो मिनीचर,
1: वो नैनो है।
3: वो नैनो है।
1: अच्छा। तो और ये आप इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस भी डालते हैं, तो वो जो सांड है और उसका बच्चे का, मतलब वो आपने डाला है, क्या क्या रिश्ता है दोनों का
3: अभी? ये तो उसका, ये तो उसकी बेटी है।
1: हाँ।
3: मस्ती कर रहे तो सोचा चलो क्यों ना इसको शूट कर जाए।
1: हाँ।
3: तो शूट किया।
1: अच्छा, ये है वो?
3: ये है वो।
1: अच्छा, अच्छा अच्छा।
3: तो शूट कर दिया तो फिर सोचा चलो लोगों को भी दिखाएंगे, तो शायद लोग बहुत लोग देख के इंस्पायर होंगे कि हाँ चलो हम भी गाय पालेंगे। तो जैसे लगा तो वो तो वायरल हो गया, लोगों को काफी पसंद आया।
1: तो अभी जो जैसे इसकी माँ है उसका आप लोग, मतलब जो मिल्क है वो दूध है जो घर में आप लोग इस्तेमाल?
3: अभी दो स्तन का दूध इसको पिलाते, दो स्तन का हम निकालते।
1: अच्छा।
3: नहीं तो पूरा दूध इसके लिए हानिकारक है, मतलब फिर लूज मोशन वगैरह लग जाएगा इसको।
1: हाँ, हाँ।
3: ज्यादा दूध भी नहीं पिलाना चाहिए।
1: आप लोग वैसे राजस्थान के रहने वाले हैं?
3: हाँ।
1: सब लोग। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ?
3: अभी हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं।
1: बचपन से?
3: बचपन से।
0: घर वालों ने कहा कि इन गायों को पालना बहुत आसान है, थोड़ी सी खुराक जो आसानी से मिल जाती है।
1: क्या क्या खिलाते हैं?
3: अभी तो फिलहाल
1: ये तो
3: दूध और घास शुरू कर रही है, वो घास ही खाती है, मक्की की ज्वार मक्की की हो गई, ज्वारी की हो गई, हम छत पे उगाते इसके लिए चारा भी।
0: और ये क्या पायल हमेशा से पहनाई है इसको?
3: हाँ, जब इसका एक जब इसका फंड अमाउंट हुआ इकट्ठा हुआ तो हम लोग ने सोचा कि भी इसका पैसे इस पे खर्च करना चाहिए।
0: हाँ, फ्लैट में अगर टाइल्स लगी हो तो फिसलन से बचाने के लिए इन गायों को ऐसे स्पेशल जूते पहनाए गए थे।
1: तो ये जूते भी पहनाए?
3: हाँ, जूते ताकि घर में स्लिप ना हो जाए टाइल्स पे।
1: हाँ।
3: एक क्या हल्की है तो ये बैलेंस कर लेती है।
1: हाँ।
3: वो बैलेंस नहीं कर पाती है, वजन बढ़ गया उसका।
1: अच्छा, तो वो भी कंट्रोल में रखना पड़ता है।
3: हाँ, तो फिर कहीं चोट लग जाएगी।
1: पर आप अपना एक्सपीरियंस क्या कहेंगे, ऐसा है कि लोगों को
3: नहीं, अभी सबको पालना चाहिए। अभी अभी किसको सर दर्द होता है तो गोली लेते हैं ना।
1: हाँ।
3: गोली लेने की जरूरत नहीं है।
1: हाँ।
3: इनके पास अगर बैठ गया तो बस है, सर दर्द ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा। जैसे आराम से सोफे पे बैठते हैं ये सब कुछ? हाँ। भी
3: ये तो अभी घर में कहीं भी घूम सकती है, हम इसको नहीं बैठाते ताकि नीचे गिर ना जाए।
1: आप लोग सबका भी मन लगा रहता है इनसे?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा मन लगा
1: रहता है। सबको पसंद है बहुत, सब ख्याल भी रखती है, देख रेख भी करती है इसको।
3: घर की पहली रोटी गाय को जाती है।
1: हाँ।
3: और स्कूल जाने से पहले गौ माता को प्रणाम करके जाती है।
1: अच्छा।
3: मेरी भाई की बेटी।
1: हाँ। अच्छा लगता है इनसे खेलना? हाँ? ऐसे ऐसे इधर रखे, तुम्हारी बात सुनती है ये? हाँ, बोल के तो बताओ, तुमको उसकी बात बोलने आती है, उसकी भाषा बोलने आती है? कैसे बोलती है वो?
3: नंदा क्यों बोले, क्यों बोला नंदू?
0: हिंदू संस्कृति में आज भी करोड़ों लोग पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। जब गाय के प्रति श्रद्धा का भाव इतना मजबूत हो तब गाय का हर रूप माँ को प्रणाम स्वरूप ही हो जाता है। आकार छोटा हो जाने पर भी है तो वो गौ माता ही। सनातन मान्यताओं में गाय का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और गाय को पूजनीय बताया गया है। वेद, उपनिषद, पुराण, हर जगह गाय के महत्व को बताया गया है। स्कंद पुराण में गाय को ईश्वर का उपहार बताया गया है। विष्णु पुराण में गाय की सेवा को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाए, क्योंकि गाय को सकारात्मक ऊर्जा का भंडार कहा गया है, जिसके पास रहने से सात्विक गुणों का विकास होता है। अथर्ववेद में गाय को सौभाग्यकारी कहा गया है, साथ ही गौ सेवा का उल्लेख मनुष्य की समृद्धि और खुशियों के कारक के तौर पर किया गया है। पौराणिक काल की मान्यताओं में कहा गया है कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोपालन किया तो गोपाल कहलाए। राजा दिलीप से लेकर भगवान श्री राम तक इक्ष्वाकु वंश की मान्यता ही गौ प्रतिपालित वंश की पड़ गई, जब हर कालखंड में इस वंश के राजाओं ने गायों की रक्षा की। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, कहा जाता है उनमें से एक रत्न कामधेनु गाय ही थी। कामधेनु गाय की सेवा का भार ऋषियों ने ग्रहण किया, गाय के दूध घी से यज्ञ पूजा की विधियां संपन्न की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा गाय से मिलने वाला दूध घी वगैरह सामान्य भारतीय जनजीवन का आर्थिक आधार हुआ करता था। गाय ने पोषण दिया, ममता दी, समृद्धि दी, तो गाय सनातन संस्कृति में आस्था का प्रतीक हो गई और दर्जा मिला माँ का। गाय का दूध, दूध से बना दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इन्हें पंचगव्य कहा जाता है, जो प्राकृतिक उपचार के लिए उपयुक्त माने गए।
4: कि आयुर्वेद में पंचगव्य चिकित्सा या जो पंचगव्य आधारित द्रव्य हैं उनका सदियों से पहले से प्राचीन काल से ही हमारी संहिताओं में, चरक सुश्रुत संहिताओं में इनके बहुत सारे योगों का वर्णन है। पंचगव्य जो है वो मेनली पांच चीज़ों से, गाय के ही पांच प्रोडक्ट से मिलके बना होता है, जिसमें गाय का दूध है, दही है, घृत है, गोमूत्र है और गोबर का रस जो उसका एक वो निकालते हैं, उन चीज़ों से मिला करके ये पंचगव्य है। और हमारे यहाँ इसको अमृत के समान माना गया है और इनसे जो सिद्ध औषधियाँ बनाई जाती हैं वो बहुत सारे मानसिक विकारों में प्रयोग है उनका। पंचगव्य घृत का प्रयोग है जो मानस विकारों की बहुत अच्छी औषधि बताई गई हमारे यहाँ आयुर्वेद में।
2: इसका गोबर और मूत्र से दैट आपका एंटीबायोटिक
1: बैक्टीरियल
2: एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फैमिली, लाइक एसिड जैसा नहीं। अच्छा। जो हमको कीट है वो कीट को नाश करेगा। गोबर से आप हर दिन आपने ये इफ यू डू होम लाइक घर पे संस्कार करेगा तो उसका वो गोबर से दैट क्रिएट्स दैट इफ यू मिक्स विद घी एंड दैट गोबर का इट गिव्स ए वेरी गुड एनवायरनमेंट दैट वो जो ऑक्सीजन भी आता है उससे।
5: गो सेवा और गौशाला में सेवा का कॉन्सेप्ट हजारों वर्ष पुराना है, जहां लोग गायों की सेवा करते हैं जिसमें वो गायों को चारा खिलाते हैं। इससे लोग आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं।
1: अपने संस्कारों में जिन्हें हम माँ कहते हैं, अपनी परंपरा में जिनकी पूजा करते रहे, कभी गौ माता के रूप में, कभी नंदी महाराज के रूप में, उनका ये रूप देखकर हम यही कह सकते हैं कि यह है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, सिस्टम से कई सवाल किए, लेकिन इसी दौरान कार्यक्रम में ऐसा भी कुछ हुआ जिसे लेकर अब विवाद छिड़ चुका है। तो आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से हंगामा शुरू किया गया, बीजेपी की तरफ से जो मिमिक्री की गई है खासतौर से उस पर सवाल उठाए गए हैं। माप मिमिक्री को लेकर बीजेपी हमलावर, बीजेपी का कहना यह है कि संस्कृति और सभ्यता के बारे में कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी बिल्कुल नहीं जानते। तमाम मर्यादाओं को इस मिमिक्री के दौरान लांघ दिया गया था।
1: My friend,
2: yes sir.
1: My friend, how are you?
2: I am fine. How are you, Modi ji?
1: Great harassment.
2: My friend. Very nice to meet you, brother.
1: Galgotia.
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।

0: How are you, Modi ji?
1: Great harassment.
2: छात्रों की गूंज, कार्यक्रम मंच पर राहुल गांधी, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, निशाने पर सरकार, यानी सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा था जैसा खाका इस कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया था। लेकिन बीच कार्यक्रम कुछ ऐसा हुआ कि छात्रों की समस्याओं की बजाय अब मुद्दा कहीं और पहुंच गया है। अब सियासत में इस मंच से पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा गूंज रहा है। दरअसल विवाद शुरू हुआ जब मंच पर एक शख्स की एंट्री होती है। वो राहुल से मजाकिया अंदाज में बातचीत करता है।
1: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
0: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
1: ग्रेट हैरेसमेंट।
2: लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसी टिप्पणी करता है जो विवाद का केंद्र बन जाता है।
1: गलगोटिया।
0: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: कार्यक्रम का ये हिस्सा सामने आते ही जबरदस्त बवाल छिड़ गया। बीजेपी ने इसे राहुल के मंच से पीएम मोदी की मां का अपमान बताया और हमलों की बौछार तेज हो गई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए जो अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था, उसका इस तरह मजाक उड़ाना देश भर की माता का अपमान करना है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। धामी ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जाएं और उस पर राहुल गांधी हंसे, ये बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक है। छात्रों की गूंज से उठा विवाद का शोर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के निशाने पर राहुल हैं और हमले तेज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक पतन की पराकाष्ठा बता दिया तो कांग्रेस ने इस हमले का जवाब दिया।
3: माँ का कहां से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो। कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ, सबकी माँ।
0: आप एक काम कीजिए, ये है सिस्टम के मालिक।
2: ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किसी विवाद का शोर सुनाई दिया हो। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दौरान जॉर्जिया मेलोनी के बहाने पीएम को टारगेट करने पर भारी हंगामा मचा था। इस बार बात पीएम मोदी के मां के अपमान की, जिसे लेकर सियासत बढ़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस विभाग के 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत अन्य मंत्री भी और अधिकारी भी मौजूद थे। चयनित अभ्यर्थियों में पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक की लेखा के पद भी शामिल हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले नौकरियों में भ्रष्टाचार था, भैया भतीजावाद था। 2017 से पहले नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर हंगामा करने वालों में मैं ये कहना चाहता हूं उनसे, ध्यान दें, हम आज फिर से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और अगले 6 महीनों में हम उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
3: अद्भुत और गौरवशाली
2: तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा, निशाने पर समाजवादी पार्टी और एक बार फिर से भाई भतीजावाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जितना भ्रष्टाचार सिस्टम में था अब वो सब खत्म हो चुका है।
4: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
2: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इंदौर शो पर सियासत तेज, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। नेता विपक्ष ने किए सरकार से कई सवाल। यूपी में मिशन 2027 की लड़ाई, रोजगार पर गरमाई। सीएम योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, कहा पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए, लिहाजा कहानी के इस खास एडिशन में हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी 76 कहानियां। जी हां, वो कहानियां जो उनके बचपन, संघर्ष, पढ़ाई और चाय की दुकान से शुरू होती हैं, देश भ्रमण, आध्यात्म और संगठन से गुजरती हैं और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक पहुंचती, यानी एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्वयं सेवक का सफर प्रधान सेवक तक पहुंचता है। तो आज कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
1: रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है।
2: जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है, यार आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं।
3: भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे, भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है।
4: आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से?

वडनगर के एक साधारण परिवार से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का सफर चाय की दुकान से लेकर संगठन की जिम्मेदारियों और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। पढ़ाई के साथ काम, देश भ्रमण, आध्यात्मिक झुकाव और आरएसएस के प्रचारक के तौर पर लंबा अनुभव है। इन सभी पड़ावों ने उनके राजनीतिक सफर की नींव तैयार की। 1987 में बीजेपी में जिम्मेदारी मिली, संगठन में कद बढ़ा और 2001 में गुजरात की कमान मिली।

0: नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। वो दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी की तीसरी संतान थे। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और एक छोटे से घर में रहता था। बचपन से ही परिवार की चाय की दुकान के काम में हाथ बटाने लगे। पढ़ाई के साथ काम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा। मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों ने बचपन में ही मेहनत और आत्मनिर्भरता से उनका परिचय करा दिया। वडनगर में बचपन बीत रहा था और स्कूल की पढ़ाई के साथ परिवार की चाय की दुकान पर भी हाथ बटाते थे। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को चाय देने का काम भी किया करते थे। पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी साथ साथ चलती रही। बचपन का यही दौर उनके जीवन में संघर्ष और मेहनत से जुड़ी यादों का हिस्सा बना। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उनके स्कूल के साथियों के मुताबिक उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था और स्थानीय लाइब्रेरी में काफी समय बिताते थे। बहस और चर्चा में हिस्सा लेने की भी रुचि थी। बचपन से ही पढ़ने, नई चीजें जानने और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेने की आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती गई। पढ़ाई के साथ नरेंद्र मोदी का झुकाव स्कूल की गतिविधियों की तरफ भी था। नाटकों और वाद विवाद जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। कम उम्र में ही आयोजन करने, साथियों को जोड़ने और किसी काम के लिए लोगों को साथ लाने की क्षमता दिखाई देने लगी थी। बचपन और किशोरावस्था के दौरान नरेंद्र मोदी सेना में जाने का सपना देखते थे। जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ने की इच्छा भी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण ये संभव नहीं हो पाया। सेना में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश और समाज के लिए काम करने की इच्छा बनी रही।
1: यहाँ से दूर एक मेहसाणा स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी, वो तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता।
0: बचपन में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे। वहां से मगरमच्छ का एक बच्चा पकड़कर घर ले आए। माँ हीराबेन ने समझाया कि बच्चे को उसकी माँ से अलग करना ठीक नहीं है। माँ की बात समझ में आने के बाद उसे वापस सरोवर में छोड़ दिया। ये किस्सा उनके बचपन की शरारत और माँ की सीख से जुड़ा है। गुजरात की पतंगबाजी का रंग नरेंद्र मोदी के बचपन में भी दिखाई देता था। उन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। इसके अलावा गुजराती में लिखने और कविता करने में भी रुचि रही। आगे चलकर उन्होंने अपने लेखन रुचि को भी जारी रखा। सार्वजनिक जीवन शुरू होने से काफी पहले पढ़ना, लिखना, कविता और पतंगबाजी जैसी अलग अलग रुचियां उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं।
2: उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
0: लगभग 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। अगले करीब 2 सालों में उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें विभिन्न स्थानों, संस्कृतियों और लोगों को करीब से देखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी के मुताबिक इस यात्रा के बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी जीवन को लेकर सोच और दिशा में बदलाव आया। युवावस्था के शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी का झुकाव अध्यात्म और संन्यास की तरफ भी रहा। स्वामी विवेकानंद के विचारों से

0: प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रभावित थे। भारत भ्रमण के दौरान आध्यात्मिक स्थानों पर भी गए। बाद में उनका रास्ता संन्यास की जगह सामाजिक और संगठनात्मक काम की ओर मुड़ गया। आध्यात्मिक चिंतन उनके जीवन में आगे भी दिखाई देता रहा। देश भ्रमण के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। लगभग 1972 से आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। उनकी दिनचर्या सुबह करीब 5 बजे शुरू होकर देर रात तक चलती थी। संगठन के काम, कार्यकर्ताओं से संपर्क और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच उनकी संगठनात्मक क्षमता धीरे धीरे सामने आने लगी। आरएसएस में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी की जिंदगी बेहद अनुशासित और व्यस्त रही। संगठन के काम के लिए लगातार यात्रा करना, कार्यकर्ताओं से मिलना और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। सीमित साधनों से हटकर संगठन के लिए काम करना और अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना इसी दौर में सीखा। प्रचारक के तौर पर बिताए इस समय ने उनके भीतर अनुशासन, संगठन और आत्मनिर्भरता की सोच को और मजबूत किया। 1975 से 1977 के बीच देश में आपातकाल लगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी आंदोलन से जुड़े और संगठन के लिए भूमिगत तरीके से काम किया। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और पगड़ी पहनकर सरदार के रूप में काफी समय तक यात्राएं की और काम किया। इस दौर में संगठन के संदेश और साहित्य को लोगों तक पहुँचाने और संपर्क बनाए रखने जैसे काम भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद आरएसएस में नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक जिम्मेदारियां बढ़ती गई। कार्यक्रमों की तैयारी, कार्यकर्ताओं से संपर्क और संगठन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रहा। मुश्किल परिस्थितियों में काम करने का अनुभव उनके साथ था। धीरे धीरे संगठन के भीतर उनकी पहचान ऐसे कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी जो योजना बनाने के साथ उसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी संभाल सकता था। के दशक में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के भीतर कई जिम्मेदारियां संभाली। कार्यक्रमों की योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और संगठन के काम को जमीन तक पहुंचाना उनकी भूमिका का हिस्सा बना। इसी दौरान उनकी संगठनात्मक क्षमता और ज्यादा उभर कर सामने आई। आरएसएस में हासिल किया गया यही अनुभव आगे चलकर बीजेपी के संगठनात्मक काम में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब उनकी पहचान एक सक्रिय संगठनकर्ता के तौर पर बनने लगी थी। ১৯৮৭ में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठनात्मक काम की जिम्मेदारी संभाली। आरएसएस में लंबे समय तक काम करने के बाद सक्रिय राजनीतिक संगठन में ये उनके लिए एक नया पड़ाव था। आधिकारिक जीवनी के अनुसार अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भी उनकी संगठनात्मक भूमिका रही, जिसमें बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी की संगठनकर्ता के तौर पर भूमिका और स्पष्ट होती गई। 1990 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कई किताबों में नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक भूमिका का उल्लेख मिलता है। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करना और पार्टी के विस्तार पर काम करना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहा। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें जीती। प्रधानमंत्री कार्यालय की जीवनी में इस दौर में नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल का उल्लेख किया गया है। गुजरात में पार्टी संगठन को मजबूत करने के बाद उनकी भूमिका अब राज्य से बाहर भी बढ़ने लगी। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने लगी। गुजरात से शुरू हुआ उनका संगठनात्मक सफर अब राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रहा था। 1995 के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय हुए। उन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के काम की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद संगठन महासचिव के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका बढ़ी। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संगठनात्मक अभियान में भी उन्होंने काम किया। गुजरात में संगठन के अनुभव के बाद अब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मैदान में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 2001 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में बड़ा मोड़ आया। गुजरात उस समय कई चुनौतियों से गुजर रहा था और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। सितंबर 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन नरेंद्र मोदी के लिए एक नई जिम्मेदारी का संकेत लेकर आया। कई वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक इसके बाद संगठन की राजनीति से प्रशासन की दुनिया में उनके प्रवेश का रास्ता खुला। सात अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यही वो पड़ाव था जहां वडनगर का लड़का, जिसने बचपन में परिवार की चाय की दुकान पर काम किया था, आरएसएस के प्रचारक से बीजेपी के संगठन करता और फिर राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। इसके साथ ही उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
1: गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी की सियासी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। गुजरात में लगातार चुनावी जीत, विकास और शासन को लेकर बनी राष्ट्रीय पहचान और फिर बीजेपी में बढ़ती भूमिका ने उन्हें देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया। 2013 में बीजेपी ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और अगले साल बीजेपी को लोकसभा में बहुमत मिला। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और गुजरात से दिल्ली तक का उनका सफर पूरा हो गया।
2: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उस वक्त राज्य कई चुनौतियों से गुजर रहा था। 2001 का कच्छ भूकंप, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां उनके सामने थी। संगठन में काम करने के लंबे अनुभव के बाद अब पहली बार सीधे सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी। ये तस्वीर साल 2002 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्कूलों की पढ़ाई और वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मोदी अचानक स्कूल पहुंचते और बच्चों के बीच बैठकर क्लास का माहौल समझते थे। कई बार वो आगे नहीं बल्कि बच्चों के पीछे बैठकर चुपचाप पढ़ाई देखते नजर आते थे। मकसद था किताबों में दर्ज आंकड़ों से अलग स्कूल में जाकर जमीनी हकीकत को देखना। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये अंदाज उनकी अलग कार्यशैली की एक तस्वीर पेश करता। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद दिसंबर 2002 में चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी के लिए ये मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी। बीजेपी ने 182 सदस्य विधानसभा में 127 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सरकार चलाने के साथ अब चुनावी राजनीति में भी उनका कद गुजरात में और स्पष्ट हो चुका था।

0: 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 117 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस दौर में गुजरात के विकास, निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर उनकी सरकार का मॉडल राष्ट्रीय चर्चा में आया। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान अब सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रह गई थी। ২০০৯ के लोकसभा चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी चर्चा लगातार बढ़ती गई। गुजरात में उनके प्रशासन और विकास मॉडल को लेकर देश भर में बहस होने लगी। बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर के नेता तक उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ২০১২ के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बने। लगातार चुनावी जीतों के साथ उनका राष्ट्रीय राजनीतिक कद और बढ़ा। गुजरात में करीब 11 साल सरकार चलाने के बाद अब सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री के अगले कार्यकाल का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका का भी बनने लगा था। ২০১৩ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का निर्णायक साल बना। बीजेपी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक का ये बदलाव उनकी राजनीतिक यात्रा में बड़ा पड़ाव था। अब उनका चुनावी मैदान गुजरात नहीं बल्कि पूरा देश था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश भर में चुनावी अभियान शुरू किया। रैलियां, जनसभाएं, लगातार यात्राएं उनके अभियान का हिस्सा बनी। गुजरात में विकास और प्रशासन के जिस मॉडल को उनकी पहचान से जोड़ा गया था, वही अब राष्ट्रीय चुनावी अभियान के प्रमुख संदेशों में शामिल हुआ। 2014 का चुनाव उनके लिए गुजरात से निकलकर पूरे देश में जन समर्थन हासिल करने की परीक्षा थी।
1: भारत माता की, देखिए सारे मीडिया वाले उधर मुड़ गए ना, तो यही तो ताकत है दोस्तों आपकी।
0: ২০১৪ के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती और अपने दम पर बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये 30 साल के बाद पहली बार था जब किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। गुजरात के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक नरेंद्र मोदी का सफर अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। ২৬ মে ২০১৪ को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुआ शासन का सफर करीब 13 साल बाद देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा। वडनगर से शुरू हुई कहानी अब रायसीना हिल्स तक पहुंच चुकी थी। एक प्रचारक, संगठनकर्ता, मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का ये सबसे बड़ा पड़ाव था। मुख्यमंत्री बनने के करीब 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात को निवेश के बड़े केंद्र के तौर पर पेश करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। पहला शिखर सम्मेलन 28 सितंबर 2003 को हुआ। उस समय गुजरात प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता और 2002 की हिंसा के बाद की परिस्थितियों से निकल रहा था। तत्कालीन मुख्य सचिव पी के लहरी ने बाद में बताया कि मोदी खुद उद्योगपतियों को फोन करके सम्मेलन में आने का न्योता देते थे। यही आयोजन आगे चलकर गुजरात की पहचान का बड़ा हिस्सा बना। मुख्यमंत्री के दौर में नरेंद्र मोदी के पहनावे ने भी अलग पहचान बनाई। खास तौर पर उनकी आधी बाजू वाली कुर्ते की शैली चर्चा में आई। जिसे बाद में आमतौर पर मोदी कुर्ता कहा जाने लगा। लंबी बाजू के पारंपरिक कुर्ते की तुलना में छोटा और असुविधाजनक ये डिजाइन उनके सार्वजनिक लुक का हिस्सा बन गया। राजनीति में जहां नेताओं की पहचान अक्सर भाषण और विचारों से बनती है, वहीं मोदी के मामले में उनका पहनावा भी उनकी सार्वजनिक छवि का एक अलग हिस्सा बना।
2: आपना शहर मां आप सौ साथे जोड़ान साथवा पधार्या छे नरेंद्र भाई।
0: 2012-13 के दौर में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में तकनीक का एक अलग प्रयोग सामने आया। उनके भाषणों का 3D होलोग्राम तकनीक के जरिए एक साथ कई जगहों पर दिखाया गया, यानी मोदी एक जगह पर मौजूद थे लेकिन उनका डिजिटल रूप अलग अलग स्थानों पर लोगों के सामने दिखाई देता था। 2014 के चुनाव अभियान में तकनीक का ये इस्तेमाल और व्यापक हुआ। पारंपरिक रैलियों के बीच ये प्रचार का बिल्कुल अलग तरीका था और मोदी के अभियान की पहचान बन गया।
3: તમારી પાસે શું નથી, બધા સંસાધનો છે, શા માટે તમે કૃષિ વિકાસ દર ઊંચો નથી લાવી શકતા?
0: 2011 में नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 3 दिन का सद्भावना उपवास किया। 17 सितंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने सद्भाव और गुजरात की एकता के संदेश से जोड़ा। उस वक्त यह आयोजन इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि मोदी की राजनीति और गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस चल रही थी। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस उपवास को सामाजिक सद्भाव के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया।
4: तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए।
0: 2014 के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने की कहानी को एक बड़े जनसंपर्क अभियान से जोड़ा। नाम था चाय पे चर्चा। चाय की दुकानों पर बैठे लोगों से तकनीक के जरिए संवाद किया गया और कई शहरों को एक साथ जोड़ा गया। यानी जिस चाय की दुकान से नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी जुड़ी थी, चुनाव के वक्त वही चाय देश भर के मतदाताओं से संवाद का एक प्रतीक बन गई।
5: और कोई साधन ये हमारा रास्ता नहीं।
6: पूर्ण बहुमत से आएंगे, सुंदर भविष्य बनाएंगे, आशा के दीप जले यहाँ, जगमग है ये।
0: प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक संवाद में इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 2014 के चुनाव तक उनकी रैलियों के साथ सोशल मीडिया, ऑनलाइन संवाद और तकनीकी माध्यम अभियान का अहम हिस्सा बन चुके थे। इससे उनका प्रचार सिर्फ मैदान में होने वाली रैलियों तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक पहुंचते पहुंचते उनके चुनावी अभियान का तरीका भी काफी बदल चुका था।
4: आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए।
7: वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हौसला। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की कहानी। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: और वही कहां गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
12: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी।
14: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: और वही कहां गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: There is a very famous quote ki history repeat itself.
10: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
11: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
10: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
12: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
13: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है। उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह।
14: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए, सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद आज तक

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पहले कार्यकाल में बड़े फैसलों के साथ कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर एक अलग पहचान बनाई। स्वच्छता अभियान से योग तक, नोटबंदी से जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक तक कई घटनाएं चर्चा में रही। साथ ही चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई। 5 साल का ये सफर कई बड़े फैसलों और चर्चित किस्सों से भरा हुआ रहा।
1: छब्बीस मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा हो चुका था। शपथ ग्रहण में दक्षिण एशिया के नेताओं की मौजूदगी ने इसे खास बनाया। अब तक गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नरेंद्र मोदी के सामने पूरे देश की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री के रूप में पहला दिन उनके राजनीतिक सफर की एक नई शुरुआत थी। पंद्रह अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। खास बात ये रही कि उन्होंने परंपरागत लिखित भाषण के बजाय बिना कागज के भाषण दिया। जनधन योजना, स्वच्छता और कई सामाजिक मुद्दों का जिक्र इस भाषण में हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से उनका पहला संबोधन उनके संवाद के अलग अंदाज की शुरुआत भी माना गया।
2: भारत के संविधान के निर्माताओं को इस पर नमन करता हूं।
1: दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की और लोगों से इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू वाली तस्वीर देश भर में चर्चा में रही। राजनीति और सत्ता के औपचारिक मंच से अलग ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक अंदाज की नई तस्वीर पेश की। अक्टूबर 2014 में मन की बात का पहला प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को लोगों तक सीधे पहुंचने के माध्यम के तौर पर चुना। इसमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण, परीक्षा, बेटियों और सामाजिक मुद्दों पर भी बात होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2026 को मन की बात का 137वां एपिसोड किया था।
3: सभी श्रोताजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
4: President Barack Obama arrives at Raj.
1: 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकातें और सार्वजनिक कार्यक्रम पहले कार्यकाल की चर्चित तस्वीरों में शामिल रहे। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भी इस यात्रा पर खास फोकस रखा गया। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिन स्ट्राइप सूट पहना था उसकी खासियत थी। उस पर बारीक अक्षरों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा था। फरवरी 2015 में इस सूट की नीलामी हुई और सूरत के हीरा कारोबारी लालजी पटेल ने इसे 4,31,00,000 रुपए में खरीदा। नीलामी से मिली रकम को गंगा की सफाई से जुड़े कामों के लिए देने की बात कही गई थी। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए। उनकी यात्रा का एक हिस्सा गुजरात में भी रहा जहां नरेंद्र मोदी ने उनके साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साबरमती नदी के किनारे दोनों नेताओं की झूला झूलने वाली तस्वीरें सामने आई। कूटनीतिक बातचीत के साथ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छवि को सामने रखने की कोशिश भी दिखाई दी। ये मुलाकात मोदी के पहले कार्यकाल की चर्चित विदेशी मेहमान वाली तस्वीरों में रही। दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा ने सबको चौंका दिया। अफगानिस्तान से लौटते समय उनका विमान लाहौर में उतरा और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये दौरा पहले से घोषित पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और दोनों देशों के रिश्तों में फिर तनाव बढ़ गया। मोदी के पहले कार्यकाल का ये सबसे अप्रत्याशित कूटनीतिक पल रहा। जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया गया। हर साल पीएम मोदी योग दिवस पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। योग को भारत की प्राचीन परंपरा से जोड़ा जाता है, अब अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की एक बड़ी तस्वीर बनी।
5: धीरे हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें।
1: मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पारंपरिक तीरंदाजी का अनुभव लिया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमेदिन सेखान बिलेग ने उन्हें एक भूरा घोड़ा कंथ का उपहार में दिया। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंगोलिया का पहला दौरा था। मोदी ने घोड़े के साथ तस्वीर भी साझा की।
2: 8 नवंबर 2016
1: की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य करने की घोषणा की। कुछ ही घंटों में देश की नकदी व्यवस्था बदल गई। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी। सरकार ने इसे काले धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा के खिलाफ कदम बताया। नोटबंदी उनके पहले कार्यकाल का ऐसा फैसला बना जिसका असर आम जिंदगी तक सीधे पहुंचा।
2: यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
1: सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को लेकर ये घटना लंबे समय तक चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ये सुरक्षा से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हुई।
6: लोकसभा के अध्यक्ष जी,
1: जून 2017 की आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ और 1 जुलाई से GST लागू हुआ। अलग अलग अप्रत्यक्ष करों की जगह नई कर व्यवस्था आई। आधी रात को संसद में हुआ यह आयोजन अपने आप में खास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर संबोधित किया। देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव अब जमीन पर उतर चुका था। दो हजार 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की आधारशिला रखी गयी। नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत में पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब परियोजना के रूप में सामने था। आधुनिक परिवहन तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की सोच की ये एक बड़ी तस्वीर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचना एक चर्चित परंपरा बन गया। 2018 में उन्होंने उत्तराखंड के हर्षिल में सेना और ITBP के जवानों के साथ दिवाली मनाई। हर साल प्रधानमंत्री और जवानों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात सैनिकों के साथ त्योहार मनाने का यह सिलसिला उनके सार्वजनिक जीवन की अलग पहचान बना।
2: आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का।
1: 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गरीब और कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी योजना के तौर पर पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के दायरे में हैं। पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का एक खास पहलू भारतीय समुदाय से संवाद भी रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय समुदाय के बड़े कार्यक्रम हुए। विदेश यात्रा सिर्फ सरकारी बैठकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रवासी भारतीयों के साथ बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम भी उनकी यात्राओं का हिस्सा बने। विदेशों में मोदी के ऐसे कार्यक्रम उनके पहले कार्यकाल की अलग तस्वीर बने। अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में एम्स दिल्ली में निधन हुआ। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अटल जी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और पार्थिव शरीर के साथ काफी दूर तक पैदल चले। सत्ता के शीर्ष पर होने के बावजूद मोदी का इस तरह अंतिम यात्रा में पैदल चलना कैमरों में दर्ज हुआ। अटल जी के साथ उनके लंबे राजनीतिक और संगठनात्मक रिश्ते की ये एक भावुक तस्वीर बन गई। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 जवानों की मौत हुई। इसके बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई कार्रवाई की घोषणा की। भारत ने बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की बात कही जबकि करीब 300 का आंकड़ा बाद में अधिकारियों ने बताया। ...2019 में नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल पूरा हुआ। 5 वर्षों में स्वच्छ भारत, मन की बात, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और बालाकोट जैसे कई पड़ाव उनके कार्यकाल की पहचान बन चुके थे।
7: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
1: 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहला कार्यकाल खत्म हुआ और कहानी दूसरे अध्याय में पहुंच गई।
7: अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
0: ...2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ सत्ता और सियासत तक सीमित नहीं रही। कभी माँ के साथ भावुक पल, कभी गायों के बीच सहज अंदाज, कभी समुद्र के नीचे द्वारका के दर्शन, तो कभी विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति से रूबरू कराना, उनकी जिंदगी के कई अलग अलग रंग हैं। इस दौरान उन्हें देश विदेश के बड़े सम्मान भी मिले।
1: ...2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। चुनावी जीत के बाद जब वो अपनी माँ हीराबेन से मिलने पहुँचे तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी माँ के साथ उनका ये रिश्ता सार्वजनिक जीवन में कई बार दिखाई देता रहा। राजनीति के बड़े मंच से अलग ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की निजी जीवन का एक भावुक पक्ष सामने लाती रहीं।

0: 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबेन से मिलने गुजरात पहुँचे। उन्होंने माँ के पैर धोए और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री की माँ के साथ ये निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। सत्ता और राजनीति से अलग ये पल एक बेटे और माँ के रिश्ते की साधारण तस्वीर जैसा था। पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हुआ। नरेंद्र मोदी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की राजनीति से जुड़े रहे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने ये फैसला लागू किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए नए दौर की शुरुआत बताया। दो हजार बीस में कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन भी बदल गया। देशव्यापी लॉकडाउन, घर से काम और डिजिटल संवाद के बीच प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठकें की। नेताओं और अधिकारियों के साथ संवाद का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हुआ। प्रधानमंत्री का कामकाज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल स्क्रीन के जरिए दिखाई देने लगा। पांच अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके करीब 3.5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। अयोध्या में हुआ यह आयोजन उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक रहा। भूमि पूजन से प्राण प्रतिष्ठा तक राम मंदिर का सफर मोदी के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की एक प्रमुख कहानी बन गया।
1: ये जो मन में रहता है ना,
0: परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग रूप सामने आता रहा। वो छात्रों से पढ़ाई, तनाव, परीक्षा और सपनों को लेकर सीधे संवाद करते रहे। मंच पर सवाल पूछने वाले बच्चों के साथ उनका सहज अंदाज और बातचीत का तरीका उनकी राजनीतिक भूमिका से अलग तस्वीर पेश करता है। धीरे धीरे ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सार्वजनिक संवाद का अलग अध्याय बन गया।
2: जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना।
0: 2013 की बाढ़ में केदारनाथ में भारी तबाही के बाद नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2017 में उन्होंने केदारनाथ पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान को आगे बढ़ाया और 20 अक्टूबर को कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 2021 में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई काम पूरे हुए और आदि शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण हुआ। 5 नवंबर को मोदी ने केदारनाथ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया था।

17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को खुद कैमरे के सामने बॉक्स खोलकर जंगल में छोड़ा। खास बात ये थी कि ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, मोदी ने खुद चीतों की तस्वीरें भी कैमरे से ली। दशकों बाद भारत की धरती पर चीते लौटे और प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना। दिसंबर 2022 में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 30 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे और मां को अंतिम विदाई दी। इसके कुछ ही समय बाद वो अपने तय सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री ने उनके जीवन को तपस्या, कर्मयोग और मूल्यों से जोड़कर याद किया। अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा की और आदि कैलाश के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के अनुभव को खुद साझा किया। ऊंचे पहाड़ों, सीमावर्ती क्षेत्र और आध्यात्मिक स्थल की तस्वीरें सामने आई। बाद में उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन का अनुभव उनके लिए विशेष रहा है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर प्राचीन द्वारका के अवशेषों से जुड़े स्थल पर पूजा की। बाद में उन्होंने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि समुद्र के भीतर द्वारका के दर्शन उनके लिए विशेष अनुभव था। प्रधानमंत्री का समुद्र में उतरकर पूजा करना और उसके बाद सामने आई तस्वीरें इस यात्रा को सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से अलग बनाती रही।

जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। अगत्ती, बंगाराम और कवरत्ती में उन्होंने समय बिताया और समुद्र किनारे सुबह की सैर भी की। उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सरकारी कार्यक्रमों के साथ समुद्र, समुद्र तट और द्वीपों की तस्वीरें भी खूब चर्चा में आई।

0: 2023 में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और 9-10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में मेहमानों का स्वागत किया और अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली घोषणा पत्र भी सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता देने पर जोर दिया।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
0: 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार भी शपथ समारोह में भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों के नेता मौजूद रहे। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और सेशल्स के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने समारोह को क्षेत्रीय कूटनीति का मंच भी बनाया। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में शामिल ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया। ये सम्मान 2019 में घोषित हुआ था, लेकिन 2024 में मॉस्को में औपचारिक रूप से दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जानवरों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आती रही। कभी गायों को चारा खिलाते हुए, कभी वन्य जीवों के बीच और कभी किसी पशु को दुलारते हुए उनकी तस्वीरें चर्चा में आई। राजनीति की गंभीर तस्वीरों के बीच ऐसे छोटे और सहज पल प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि का अलग पक्ष दिखाते हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई बताया और कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से बातचीत में करीब 25 से 30 साल पहले मिले एक मफलर, टोपी और दास्ताने दिखाए। उन्होंने बताया कि ये सामान उन्हें न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति ने उनकी पहली यात्रा के दौरान दिए थे और इतने साल बाद भी उन्होंने इन्हें संभाल कर रखा है। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले की ये छोटी सी याद सामने आई, जिसने उनके सार्वजनिक जीवन के एक पुराने अध्याय की झलक दिखाई।

0: 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। 1, ये मफलर। एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं।
1: ২০২৬ में भी नरेंद्र मोदी की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकातों में औपचारिक बैठकों के अलावा अनौपचारिक बातचीत और व्यक्तिगत संवाद की तस्वीरें सामने आई। सितंबर 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और दूसरे नेताओं के साथ उनके अनौपचारिक क्षण कैमरे में कैद हुए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहीं सेवा कार्यक्रम, कहीं रक्तदान शिविर और कहीं स्वच्छता अभियान चलाए। मंदिरों में पूजा और हवन भी हुए, जबकि दिन भर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला चलता रहा। कई राज्यों में उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
1: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
5: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा। अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, आसमान में उड़ती हुई नजर आई आग की लपटें, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राहुल गांधी के इंदौर शो पर सियासत हुई तेज, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां की मिमिक्री को लेकर बीजेपी असंस्कारी फूफा, तो नेता विपक्ष ने हॉस्टल के सवाल को आगे लाया। यूपी में मिशन 2027 की लड़ाई, रोजगार पर गरमाई, सीएम योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, सबके साथ ली सेल्फी, कहा पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद।

मायावती ने 23 सितंबर की बैठक से पहले फिर चौंकाया अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बीएसपी में जिम्मेदारी देने का ऐलान किया। आकाश आनंद और उसकी बहन से किया किनारा। और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम गोल से एक कदम दूर, मेडल पक्का। बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। शूटिंग में सिल्वर, मार्शल आर्ट में भी पदक पक्का।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे हैं और इस बुलेटिन में बात करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों के बारे में। देश और दुनिया की तमाम खबरें होंगी, सियासत और हादसों की खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि कैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और कैसे मॉस्को में तबाही मची है। बात करेंगे राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम पर जारी सियासी घमासान के बारे में भी। खबर यूपी के चुनावी समर से जुड़ी हुई भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे यूपी सरकार युवा वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई है। साथ ही साथ खबर मुंबई से भी होगी जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे विस्तार से कि किस तरीके से तेज रफ्तार कार की वजह से 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। तो सबसे पहले हम रूस में बात करेंगे क्योंकि संसदीय चुनाव वहां पर जारी है और आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर जबरदस्त हमला बोला है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही साथ यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी हैं। ताजा हमला मॉस्को में हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला बोला और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही की खबरें हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूर से ही धुएं के गुबार के साथ साथ चारों ही तरफ आग की लपटों में घिरी हुई फैक्ट्री नजर आ रही है। इस हमले में 2 लोगों के मौत की भी खबर आई है। वहीं आग की लपटें देखकर कहा जा सकता है, ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया है जिससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने इस मॉस्को के मेयर के हवाले से इस वीडियो को जारी किया था और बताया था कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक बड़ा फैसिलिटी नुकसान पहुंचा है।

0: तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भयानक हमला इस रिफाइनरी पर हुआ है। बता दें कि दो लोगों के इसमें जान जाने की भी खबर सामने आई है। जेलेंस्की की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया और आपको बता दें कि जानकारी है कि 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया है मॉस्को और आसपास के इलाकों में। तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार और आग की लपटें देखी गई हैं। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है संसदीय चुनावों का। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफें की और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरों को बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय, वाकई में बहुत ही भीषण हमला, वो भी इलेक्शन के आखिरी दिन, और जिस तरह की तस्वीरें भयावह हैं, कहा ये भी जा रहा है कि दो लोगों की इसमें जान चली गई है।
1: निश्चित रूप से शशि, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मॉस्को के गवर्नर की तरफ से जो वीडियो भी न केवल अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है बल्कि यह दावा भी किया गया है कि करीब करीब 250 जो ड्रोन हैं उनके साथ हमला किया गया है। और यूक्रेन की बॉर्डर से मॉस्को बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन अगर वहां तक ये वार हो पा रहा है और उसके साथ जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, यानी सीधे तौर पर उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, साथ ही वेयर हाउस के तरीके का आग लगी और उसकी राजधानी मॉस्को के कई आसपास जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको नुकसान पहुंचा है। फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन हुए हैं, यानी जो हवाई यातायात है वो प्रभावित हुआ है। इस बीच आपने जिस तरीके से बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से भी इस हमले के बाद अपने जो सैनिक हैं उनकी तारीफ की गई है, ये सारा घटना

0: ये बताता है कि जिस तरीके से दोनों ही बैटल थिएटर यानी मैदान जंग चाहे पश्चिम एशिया का हो चाहे रूस यूक्रेन की जंग का हो लड़ाई गंभीर होती चली जा रही है और इसका नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है क्योंकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहे सऊदी अरब का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो यदि वहां वार होता है या रूस का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके जो शॉकवेव्स हैं उसका जो असर है वो पूरी दुनिया भर के तेल बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई का असर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है इन हमलों और इन लड़ाई के कारण।
1: बने रहे प्रणय आप हमारे साथ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये भीषण हमला है जिसमें दो लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि इस हमले के बारे में मॉस्को के मेयर की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह कर दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लगातार बने हुए। प्रणय, क्या ऑफिशियली रूस की तरफ से इस पर कोई बयान आया है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि कहां एक तरफ ट्रंप की बातचीत के बाद जिस तरीके से लगता है कि कोई मध्यस्थता का रास्ता निकल आएगा, वहीं भयानक तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं।
0: देखिए, आपने जिस तरीके से बताया ये हमला न केवल गंभीर है बल्कि जिस मात्रा के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे जो गेहूं भंडारण के क्षेत्र हो उनको टारगेट करते हुए वार किए गए हैं और ये लड़ाई लगातार जो है इंटेंस होती चली जा रही है। इसके साथ साथ जो रूस में दावा किया गया है दो लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा शायद ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिस तरीके से हमला हुआ है। और इसके अलावा जो है मॉस्को के मेयर की तरफ से भी जो है वो ये बताया गया है कि जो कई क्षेत्र हैं ऑयल रिफाइनरी के कारण उसकी आग की चपेट में आए हैं और उसके कारण कई क्षेत्रों के अंदर न केवल आवाजाही को प्रभावित हुई है बल्कि बड़े क्षेत्र के अंदर धुआं भी उठते हुए देखा जा रहा है। जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुंबई से खबर है और आपको बता दें कि मुंबई बीएमडब्ल्यू कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। कार ब्रिज से नीचे गिरती हुई नजर आती है, ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत की खबर है। आपको यह भी बता दें कि एक छात्र बुरी तरह से घायल है और वेंटिलेटर पर है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की स्पीड थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया था। ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर नीचे गिरी है कार और सुबह करीब 5:03 पर यह हादसा हुआ है। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। हादसे के वक्त कार में चार छात्र सवार थे जिसमें से तीन की जान चली गई है मौके पर ही, जबकि एक छात्र बुरी तरह से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
2: इस वक्त हम मुंबई के कोस्टल रोड इलाके में हैं। एक तरफ ये रोड आप देख सकते हैं 6 लेन रोड, जहां पर गाड़ियां जो है एकदम तेजी से जाती है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संडे सुबह में हुआ बीएमडब्ल्यू का एक्सीडेंट। इस वक्त वो बीएमडब्ल्यू कार जो इस ब्रिज से गिरी है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार जो है ये यहां पर गिरी हुई है। इसमें तीन लोग सवार थे, धैर्य सेठ जिनकी मौत हो चुकी है, आदित्य ओसवाल जो वेंटिलेटर पे, आदित्य जो के एक दूसरे व्यक्ति हैं वो मर चुके हैं, और शनय गजर ये भी इस पूरे इंसिडेंट में मर चुके हैं। तो 17 वर्ष 19 वर्ष 21 वर्ष ऐसी या आप कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो इस कार में सवार थे बीएमडब्ल्यू में जब एक्सीडेंट हुआ है। दादरा नगर हवेली में एक फाल्गुन गजर करके व्यक्ति है जिनके नाम पर ये कार जो है रजिस्टर्ड है DD01C6302। अब पीछे देखिए कहां से ये कार गिरी है। ये कार आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीन ड्राइव जाने का जो ब्रिज है कोस्टल रोड से उसके ऊपर ये जो बैरिकेड है उसको तोड़कर सीधा किसी वीडियो गेम की तरह ये कार जो है ये यहां पर आकर गिरी है। और कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
3: सुबह 5:20 को कंट्रोल का कॉल आया था कि एक्सीडेंट हुआ है कोस्टल रोड पे, तो ब्लैक कलर की BMW गाड़ी है, गाड़ी क्रमांक है DD01C6302। ये मरीन ड्राइव से हजी अली की तरफ नॉर्थ बाउंड जो है उसकी तरफ जा रही थी, और कोस्टल के ऊपर का जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्पॉट से नीचे गिर गई है। उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 ईयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19, और शनय गजर उम्र 21। ये सभी स्टूडेंट है, जुहू और कुर्ला में पढ़ते हैं।
1: और तस्वीरें देखिए, वाकई में भयानक तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि CCTV फुटेज जो सामने आया है वही ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा स्पीड में कार थी। चार छात्र में सवार थे, 19 से 25 के बीच उनकी उम्र बताई जा रही है। 200 से ज्यादा इस कार की स्पीड बताई जा रही है। रेलिंग को तोड़ते हुए कार नीचे गिरी है, पूरी तरह से इस कार के परखच्चे उड़ गए थे। तीन छात्रों की मौके पर ही जान चली गई, और जो चौथा स्टूडेंट है वो वेंटिलेटर पर है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। और अब बात करेंगे इंदौर के बारे में। छात्रों की गूंज कार्यक्रम वहां पर हुआ है, जहां राहुल गांधी ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, सिस्टम से कई सवाल किए। लेकिन इस दौरान कार्यक्रम में कुछ ऐसा भी हुआ जिसे लेकर अब विवाद छिड़ गया है।
4: माय फ्रेंड,
5: यस सर।
4: My friend, how are you?
5: I am fine. How are you, Modi ji?
4: Great harassment.
5: My friend. Very nice to meet you, brother.
4: Galgotia.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
4: माँ को कुर्सी दो। माँ, माँ।

0: How are you, Modi ji?
1: Great harassment.
2: छात्रों की गूंज, कार्यक्रम मंच पर राहुल गांधी, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, निशाने पर सरकार, यानी सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा था जैसा खाका इस कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया था। लेकिन बीच कार्यक्रम कुछ ऐसा हुआ कि छात्रों की समस्याओं की बजाय अब मुद्दा कहीं और पहुंच गया है। अब सियासत में इस मंच से पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा गूंज रहा है। दरअसल विवाद शुरू हुआ जब मंच पर एक शख्स की एंट्री होती है। वो राहुल से मजाकिया अंदाज में बातचीत करता है।
0: तो माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन,
0: हाउ आर यू मोदी जी?
1: ग्रेट हैरेसमेंट।
2: लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसी टिप्पणी करता है जो विवाद का केंद्र बन जाता है।
0: गलगोटिया।
1: और बताइए
0: थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ।
2: कार्यक्रम का ये हिस्सा सामने आते ही जबरदस्त बवाल छिड़ गया। बीजेपी ने इसे राहुल के मंच से पीएम मोदी की मां का अपमान बताया और हमलों की बौछार तेज हो गई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए जो अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था, उसका इस तरह मजाक उड़ाना देश भर की माता का अपमान करना है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। धामी ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जाएं और उस पर राहुल गांधी हंसे, ये बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक है। छात्रों की गूंज से उठा विवाद का शोर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के निशाने पर राहुल हैं और हमले तेज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक पतन की पराकाष्ठा बता दिया, तो कांग्रेस ने इस हमले का जवाब दिया।
3: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो। कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ, सबकी माँ।
0: आप एक काम कीजिए, ये है सिस्टम के मालिक।
2: ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किसी विवाद का शोर सुनाई दिया हो। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दौरान जॉर्जिया मेलोनी के बहाने पीएम को टारगेट करने पर भारी हंगामा मचा था। इस बार बात पीएम मोदी के मां के अपमान की, जिसे लेकर सियासत बढ़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
4: तो छात्रों के गूंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान के आरोपों पर घमासान जारी है। बीजेपी और सहयोगी दल राहुल गांधी पर हमलावर हैं।
5: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं। जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए, जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उनका भी वो अपमान करते हैं।
6: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेलगोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से। बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।
4: इंदौर में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद आज राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने इंदौर के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र से हुई बातचीत का हवाला दिया और छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं होने का आरोप लगाया। ये सवाल के कल इंदौर में एक छात्रा ने मुझसे पूछा था। ये एक्सपर्ट तमाम बातें लिखी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांव से पढ़ने शहर आई, हॉस्टल है नहीं तो पीजी में उसे रहना पड़ता है। और इसके बाद एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार से उनकी तरफ से एक्सपर्ट सवाल पूछा गया है। और अब रुक करेंगे एशियाई खेलों के बारे में, जहां पहले ही दिन बेटियों का दम नजर आया। क्रिकेट में हरमनप्रीत की टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर गोल के करीब पहुंच गई है टीम। 22 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला होना है श्रीलंका के साथ। तो आज के मुकाबले में शेफाली ने सिर्फ 49 गेंदों की तूफानी पारी में 100 रन बनाए हैं। एशियन गेम्स मेडल का खाता भी बेटियों ने खोला है, क्योंकि शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सिल्वर जीता। तो मार्शल आर्ट्स में सचिता तारियाल ने पक्का कर लिया है मेडल। हॉकी में महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया। एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का शानदार प्रदर्शन रहा है, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, क्योंकि आज का जो मुकाबला था बहुत ही खास था। शेफाली ने सिर्फ 49 गेंदों की तूफानी पारी खेली और 100 रन बनाए। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: इन एसोसिएशन विद
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: There is a very famous quote ki history repeat itself.
7: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
8: कुछ left और right wing के लोग history को अलग-अलग interpret करते हैं सर। उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
7: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास, जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है। जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कब्र में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर। सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

0: रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, आसमान में उड़ती हुई आग की लपटें, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राहुल गांधी के इंदौर शो पर सियासत हुई तेज, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां की मिमिक्री को लेकर बीजेपी असंस्कारी फूफा कह रही है, तो नेता विपक्ष ने हॉस्टल के सवाल को आगे लाया। यूपी में मिशन 2027 की लड़ाई, रोजगार पर आई सीएम योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, कहा पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद। अखिलेश बोले बीजेपी जाएगी तभी नौकरियां आएंगी। और मायावती ने 23 सितंबर की बैठक से पहले फिर से चौंकाया, अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बीएसपी में जिम्मेदारी देने का ऐलान किया, आकाश आनंद और उसकी बहन से किया किनारा। और मुंबई में रफ्तार का कहर, फिल्मी स्टंट की तरह ब्रिज से नीचे गिरी बीएमडब्ल्यू, कार सवार 3 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक एक करके डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, ये फिलहाल मंत्री है माइनर वाटर रिसोर्सेस इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर के, और इससे पहले से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जुड़े हुए हैं। उसके बाद दीपक प्रकाश, ये पंचायती राज मंत्री है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, ये सदस्य हैं, इनके पिता इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और संजय कुमार पासवान पहली बार विधायक बने और उसके बाद सीधे मंत्री भी बने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ये सदस्य है और उसके साथ साथ मंत्री है शुगर केन इंडस्ट्रीज के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंच पर आए। और आमतौर पर यह हमेशा शिकायत रहती है कि दो बड़ी पार्टियों के बीच में छोटी पार्टियों को कोई नहीं पूछता, लेकिन यह आज तक का मंच है, हम सभी को पूछते हैं और इसीलिए आप सभी के साथ बात करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन शुरुआत इस बात ही से करेंगे, आपके लिए क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि सुबह से हम सभी को पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें राज्यसभा जाना चाहिए, उसका कारण वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें क्यों राज्यसभा जाना था, लेकिन अपेरेंटली वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे। उसके बाद यहां पर सत्ता बदल हुई और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बना। आपसे शुरुआत करेंगे, पहले क्या बदलाव हुआ है आपके लिए?
1: देखिए, सर्वप्रथम मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सत्ता का बदलाव नहीं हुआ, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार चल रही है।
0: मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली,
1: ठीक है, लेकिन एक चेहरा बदला है, लेकिन एनडीए के जो संकल्प है, जो विचारधारा पर हम चलते हैं, जो हमारा कमिटमेंट, वो हम कर रहे हैं। हाँ, माननीय सम्राट चौधरी जी भी वही काम कर रहे हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे, और हम समझते हैं कि जिस तरह से सबको ले के चलने की बात है एनडीए का, और आपका थीम भी महापंचायत में यही है, तो हम समाज के हर वर्ग को, चाहे वो हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारी महिला जो आधी आबादी है वो हो, चाहे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबको कैसे हम आगे लाएं, कैसे इस विकास में सबको साथ में लेके लें और सबके उन्नति हो, सबकी प्रगति हो, सब में समृद्धि हो, इसके लिए एनडीए पूरी तरह से काम कर रही है और इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी योजनाओं पर भी काम हो रहा है।
0: तो अलग तरीके से पूछते हैं सर, आप सीधा जवाब तो देंगे नहीं, नीतीश कुमार जी का क्या मिस करते हैं आप?
1: नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव है और उन्होंने राजनीति को सीखा ही नहीं, राजनीति में जिया है, और उनके सानिध्य में हम लोग के गार्जियन के तौर पर थे, अनुभव का एक समुन्द्र थे, तो उनसे कुछ उस अनुभव का लाभ लेने का हमेशा मौका मिला, उनकी प्रशासनिक क्षमता और वो सबको सम्मान है। लेकिन आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी सब उसी अति पर कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी वो हमेशा जाके अनुभव का वो भी लाभ लेते हैं, तो हम सब उनको तो मिस करेंगे ही, लेकिन ये समय है और बदलाव होता है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने जो छोड़ के हम लोग के बीच में गए हैं, हम लोग को चुनौती है, लेकिन हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं।
0: दीपक प्रकाश, वही सवाल आपके लिए, क्या बदला है?
2: बदलाव तो देखिए, सरकार पहले भी एनडीए की थी, अभी भी एनडीए की है, बात को हम सेकंड करते हैं, जो बेसिक सोच है सरकार चलती है एक विजन के साथ चलती है, और आज के समय में केंद्र की सरकार इस विजन के साथ चल रही है, जो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास है देश को 2047 तक विकसित बनाने का, बिहार में 7 में से 3 जो पूरा पिछली सरकार है का भी जो विजन डॉक्यूमेंट था उसी विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चेहरे बदले हैं लेकिन उसी विजन के साथ चल रहे हैं, लक्ष्य वही है, देश विकसित बने, बिहार समृद्ध बने, इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं।
0: क्या जनरेशन शिफ्ट आपको नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में? क्या आपको नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के जनरेशन से एक नए जनरेशन की तरफ ये गया, भले ही दूसरे किसी दूसरी पार्टी में गया हो, लेकिन एक जनरेशन शिफ्ट आपको नजर आ रहा है?
2: नहीं, अभी नए लोग भी हैं तो पुराने लोगों के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं, कई एक्सपीरियंस लोग भी हैं और कई नए लोग भी आए हैं, तो काम उसी हिसाब से कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका काफी लंबा अनुभव रहा है और नीतीश कुमार जी का भी मार्गदर्शन सरकार को मिल ही रहा है, तो कंटिन्यूटी भी है और एक बदलाव भी साथ में है।
0: संजय पासवान जी, आखिरकार आप जिस पार्टी को पहले से सपोर्ट करते आए उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनी गया, एक वक्त था कि आपका तो मतलब पूरा मामला ही अलग है पूरा एकदम, आपके मन की बात पूरी हो गई।
3: नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बेहतर मुख्यमंत्री जी के तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखे हैं, विकास की गति को उन्होंने आगे बढ़ाया है, गठबंधन की राजनीति है और युवा के हाथ में बिहार आना चाहिए। उन्हीं के तर्ज पर माननीय तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तर्ज पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखे हुए, जो भी अधूरे कार्य हैं उनको आज पूरा करने का कर रहे हैं। इसलिए कोई ये नहीं है कि उनको हटा के, उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। आज राज्यसभा में गए हैं तो राज्यसभा में भी उनके अनुभव का लाभ सबको मिलेगा, हम सबको सीखने का अवसर मिलेगा। हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि उनके नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में आते हैं और कहते हैं कि बिहार बीजेपी शासित राज्यों में 2029 तक यूसीसी लागू किया जाएगा और सबसे पहले झंडा खड़ा होता है बिहार के भीतर। जनता दल यूनाइटेड इस पर बात करती है और आपकी पार्टियों की भी मैं राय जानना चाहूंगा।
1: देखिए ये जो ऐसा जो यूसीसी है, जो हम लोग अभी पार्टी, हम लोग की 5 दलों की पार्टी है और सब लोगों के साथ बैठ के समन्वय से ही जो भी है लागू होगा बिहार में। माननीय गृह मंत्री जी का हम सब सम्मान करते हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक भी हम लोग रखते हैं, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर कहेंगे तो विचार दूसरे हो सकते हैं गठबंधन के, लेकिन जब गठबंधन के साथी एक साथ बैठते हैं और लार्जर इंटरेस्ट में, अगर बिहार के इंटरेस्ट में कोई बात होती है तो कोई भी चीज लागू होता है। तो अभी हम समझते हैं कि बहुत प्रीमैच्योर है, अभी इस तरह की बातें हम लोग के बीच में नहीं हुई है और जब ऐसी कोई बात आएगी, उसको लागू करने की बात आएगी तो उसमें क्या करेक्शंस हो सकते हैं, क्या उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, उस पर विचार करके हम लोग।
0: लेकिन आपने तो देखा होगा ना, उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, गुजरात के भीतर यूसीसी लाया गया है, तो वहां उनकी क्या प्रावधान है, यूसीसी क्या कर सकता है, वो तो आपने भी देखा होगा।
1: नहीं देखिए, मैंने बोला ना गुजरात और आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर 5 दलों की सरकार है, तो सबका समन्वय तो जरूरी है ना, तो हर आदमी बैठ करके बात करेगा और हम समझते हैं कि कोई जनहित में होगा तो उसको कोई नहीं रोकेगा।
0: नहीं तो आप मतलब उत्तराखंड के तर्ज पर यूसीसी नहीं लाना चाहेंगे या गुजरात के तर्ज पर, अपना बिहार का एक अपना अलग मॉडल होगा।
1: हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तराखंड के तर्ज पर हम नहीं लाएंगे, लेकिन अभी प्रीमैच्योर है, अभी हम लोग के संज्ञान में, हम लोग के समक्ष इस तरह की बात नहीं आई है। हम समझते हैं कि इस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, जब आएंगे तब हम लोग अपने विचार होंगे, हम लोग बोलेंगे और हम लोग निश्चित तौर पर उसमें और भी एडिशन कर सकते हैं, हम लोग सुझाव दे सकते हैं, कुछ ऐसी बातें होगी जो लार्जर इंटरेस्ट में उसको हटाने की बात होगी तो उस पर बात कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अभी इस पर बहुत ज्यादा बात करना ठीक नहीं है।
0: दीपक प्रकाश।
2: नहीं बिल्कुल, अभी प्रस्ताव जब तक सामने नहीं आता है, जब तक हम लोग उसको देख नहीं लेते हैं तब तक उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रस्ताव आ जाएगा तब उसके ऊपर फिर विचार बनाना संभव होगा और फिर अपने विचार तभी व्यक्त कर पाएंगे।
0: नहीं आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल है दिमाग में? क्योंकि
2: स्पेसिफिक मॉडल बस एक ही है कि जिसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाए और इस बात का बस ध्यान रखना है और निश्चित तौर पर सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि समाज के हर तबके का ध्यान रखा जाए। बाकी डिटेलिंग जब इसकी आ जाएगी, क्या कुछ प्रस्ताव रहता है उसको देखने के बाद ही इस पे हम लोग बहुत कुछ मुकम्मल कमेंट कर पाएंगे।
0: पासवान जी,
3: देखिए यूसीसी के हम लोग विरोध में नहीं है, बस एक बार ड्राफ्ट आने दीजिए, हम लोग अध्ययन करेंगे उसका। फिर जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया था तो हम लोगों ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बैठक किया, उनसे विचार लिया, फिर हम लोगों ने अपना राय दिया, समर्थन किया या बिल के पक्ष में गया। तो जैसे ही यूसीसी आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाता है, हम लोग अध्ययन करेंगे, मेरी पार्टी का राय आएगा, उस पर हम लोग फिर बात रखेंगे।
0: नहीं तो आप विरोध में नहीं है यूसीसी के, आपको लगता है?
3: बिल्कुल नहीं, ड्राफ्ट जब आ जाएगा उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, अध्ययन करके जो उचित होगा उचित प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, हम लोग उसको रखेंगे।
0: एक और एक मुद्दा है, क्योंकि आप ये तीनों पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग से जो समाज में बदलाव हुए उसके आधार पर आपकी तीनों की पार्टियां बनी, आप तीनों पार्टियों के जो नेता है उस सोशल इंजीनियरिंग से गुजरते हुए यहां पर आकर पहुंचे हुए हैं, एक विचारधारा से आपकी पार्टियां इस यहां तक पहुंची हुई है। अब जब बिहार के भीतर नई पार्टी की, हम एनडीए की ही सरकार है लेकिन बीजेपी की सरकार आई है, तो उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं। दूसरा सवाल इस पे यह भी रहेगा कि आमतौर पर यह देखा गया है पूरे देश की राजनीति में, जब कोई दो बड़ी पार्टियां भारी बहुमत से जीत जाती है तब सबसे बड़ा नुकसान छोटी पार्टियों को होने लगता है। एक वक्त था जब मांझी जी कह सकते थे कि मुझे ये मुख्यमंत्री की बात मंजूर नहीं है, मुख्यमंत्री को उनके दरवाजे पर जाना पड़ता था और मनाना पड़ता था कि नहीं देखिए आपको मानना पड़ेगा, छोटी पार्टी का समर्थन के बिना हमारी सरकार नहीं चल सकती। पर आज दोनों पार्टियों में सब करीब करीब तय हो जाता है कि किससे क्या करना है। क्या ये बिहार के भीतर है या थोड़ा बीच बीच में आपको भी अलग तरीके से इस बात को रखना पड़ता है?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, याद कीजिए जब यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उस समय भी हमने विचार के साथ हम सब मिल करके एक साथ खड़े थे। और देखिए, अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है, हम किस किन मुद्दों को लेकर चलते हैं उसको अपने तरीके से करने का सब पार्टी को अधिकार है, उसमें कहीं ना। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आता है, जब एनडीए एज ए होल आता है तो हम सब एक हैं और कहीं पर कोई विवाद नहीं। और जहां तक कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, देखिए आपका संघर्ष है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, हम अपनी विचारधारा से बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, सब समान रूप से हैं। हाँ, किन्हीं की संख्या ज्यादा हो सकती है और पूरी तरह से पार्टी और सरकार जो गवर्नेंस है यहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है और इस पर सब हम सबकी सहमति है। हम बैठे हैं, तीनों पार्टी के बैठे हैं और हम सबकी सहमति रहती है और हम लोग को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। हर बातों को हम लोग को साझा किया जाता है, हम लोग से बात की जाती है। हमको नहीं लगता है कहीं पर आप देखे होंगे किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किस तरह की बात हम सब से निकलती है कि हम उसके विरोध में। सरकार की जो योजनाएं होती है, सरकार का जो डिसीजंस होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे गवर्नमेंट का डिसीजन हो, हम सबका साथ रहता है। हम समझते हैं पूरी तरह से हम लोग का कोऑर्डिनेशन है और यही कारण है कि एनडीए इतनी भारी बहुमत से यहां आई है। और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं महागठबंधन में, आप देखिएगा महागठबंधन में मैंने देखा है और आप भी उस तरह को फील करते हैं कि चुनाव के बाद महागठबंधन बड़ा स्ट्रांग दिखता है, जब चुनाव आता है तब महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रहता। अभी देखिए कि अभी हाल में जो
0: एनडीए में उल्टा होता है, चुनाव के वक्त एनडीए बड़ा स्ट्रांग होता है, चुनाव के बाद पता नहीं अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राजनीति।
1: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी अभी इतने दिन से सरकार चल रही है, आपको कहीं लग रहा है कहीं हमने ऐसा तो नहीं कहा कि कौन मुख्यमंत्री बने कोई मंत्री बने उन पर किन्हीं पार्टी का कमेंट आया? और ये बार्गेन का काम नहीं है। देखिए, राजनीति में अगर आए हैं तो आइडियोलॉजी के साथ आए हैं और अगर आप किसी के आइडियोलॉजी के साथ हैं, हम अगर भारतीय जनता के पार्टी के साथ हैं तो उस आइडियोलॉजी के साथ हैं, ना कि हम ये मंत्री बनने के लिए आए हैं। तो हम वहां पर हैं तो हो सकता है कि किसी लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में और जिन कम्युनिटी और जिन समुदाय और जिन बिहार के सब वासियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अगर हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है तो ये तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। यही कोऑर्डिनेशन है।
0: अपने बलबूते पर अगर सत्ता के पास पहुंची है तो छोटी पार्टियां हाशिए पर नहीं चढ़ती है, सरकार में काम करना मुश्किल होता है कि ठीक रहता है?
2: नहीं, दो बातें हैं गठबंधन के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। एक तो अलग अलग विचारधारा है इसलिए अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पार्टी इसलिए गठबंधन है। तो गठबंधन की जरूरत तो इसलिए पड़ती है कि अलग अलग पार्टियां हैं, सभी पार्टियां मिलकर इतनी स्ट्रांग हो जा रही हैं कि सरकार बना पा रही हैं। हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, इतना ज्यादा डिफरेंसेज होता है समाज में, पॉजिटिव रूप में भी देखेंगे डिफरेंसेस होते हैं और नेगेटिव रूप में भी डिफरेंसेस होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्टियों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग विचारधाराओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए गठबंधन की जरूरत है। इसमें कुछ भी अननेचुरल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। अलग अलग ग्रुप्स हैं इसलिए उनकी उनकी अलग अलग विचारधारा के हिसाब से पार्टी है और सभी दल मिलकर ही इतने मजबूत हो पाते हैं कि उन विविधताओं के बीच में अपनी सरकार बना पाए। तो इस कारण से होता है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है।
0: कभी ऑफर नहीं आता है कि आप मर्ज हो जाइए आप और अपना पॉलिटिकल करियर आप अलग तरीके से बना सकते हैं?
2: नहीं, जैसे मैंने बताया अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, जब तक विचारधारा में डिफरेंस रहेगा तब तक मर्ज होने की बात ही नहीं है। लेकिन एक कॉमन ग्राउंड पे हम लोग आते हैं और समाज की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए काम करते हैं।
0: जब बटोगे तो कटोगे का नारा लगता है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी से जो एक समुदाय जुड़ा हुआ है उसको लगता है कि उस पूरी विचारधारा के खिलाफ ये नारा जा रहा है कहीं ना कहीं?
2: नहीं, देखिए
0: दिक्कत नहीं होती कभी? आप
2: नारा किनके द्वारा लगाया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में लगाया जा रहा है, उन सभी चीजों को देखना जरूरी होता है। ये ऐसा नारा, इस नारे के साथ तो हम सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और जिस तरीके से
0: आप सब्सक्राइब नहीं करते,
2: जिस तरीके से इस नारे का अगर नेगेटिव तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इस नारे को ये देखते हैं कि एक सभी लोगों के बीच में एकता लाने की बात की जा रही है तो पॉजिटिव है, फिर ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके के नारे का इस्तेमाल एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़ाने के लिए किया जा रहा है तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन बात वही है, विचारधारा अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पार्टियां हैं और सभी पार्टियां मिलकर इतनी मजबूत हो पाती हैं कि सरकार बना पाए, इसलिए सब सरकार में सब साथ आते हैं।
0: जिस तरीके से नीतीश जी ने अति दलित और इनको एक मौका देने की कोशिश की, उस तरीके से उसमें भी क्रिमिलेयर लगनी चाहिए, छोटी जातियों को एक मौका मिलने की बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये बांटने की कोशिश है?
3: हम लोग कहां कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई संविधान में समान विचारधारा है, हम सब लोग उसको मानते हैं। आरक्षण के सवाल पर आपने आरक्षण के सवाल पर पूछा, तो जो भी आरक्षण है वो सामाजिक तौर पर है।
0: खुद बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि वर्गीकरण की बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं क्रिमिनल को लेकर भी सोचने के लिए होता है।
3: रूप से जो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है उस पर कोई बहस हो ही नहीं सकता, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।
0: मांझी जी
1: देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण में बदलाव हो, आरक्षण खत्म हो। मेरा एक ही सवाल है जो कि सब लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, सब लोग इससे, कि आज भी समाज में इतने साल होने के बाद हम सबको आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, आरक्षण तो सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन कुछ डिस्पैरिटी क्यों है, क्यों उसमें कोई लोग अभी पीछे छूट गए हैं, कोई लोग आगे बढ़ गए हैं, उसको हम कैसे समानता लाएं उनके अंदर में। जब संविधान इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और उसमें जब समानता की बात करता है तो उसी संविधान में हमको एक्सेप्शंस हुए हैं। अगर 16 हमको जॉब में अपॉर्चुनिटी की बात करता है तो 16-4 करता है, कुछ ऐसे समुदाय हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए और इसी आधार पर आरक्षण भी मिला है। तो जब उसी बात को हम कहने कि आज इतने दिनों के बाद अगर हम एनालिसिस करें, सही समय आ गया है हम सबको मिल करके, कि अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि जितनी भी आरक्षित श्रेणी के कास्ट हैं उनके अंदर सर्वे किया जाए, शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, और राजनीतिक आधार पर तो खैर है ही नहीं, उसको ये देखा जाए कि वो समाज में कितने लोग आज भी उसका फायदा उठाएं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा नहीं उठा पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन चार जातियों में लोग सब फायदा उठा लूं, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी नहीं उठा पाए, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं। तो मेरा कहना है कि उन सबको जो हमको मिल गया है तो अब हम जैसे लोग कैसे इसको छोड़े और उनके पास रोटेशन वाइज ये चीज जाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था बननी चाहिए। और वो व्यवस्था की मैंने बात की, उस व्यवस्था में एक वर्गीकरण भी आता है, चाहे उस व्यवस्था में एक आता है कि हम उसको अलग से रिजर्वेशन भी दे सकते हैं, एक व्यवस्था में आता है कि जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने 2017 में दलित और महादलित किया था, वो भी एक व्यवस्था है। दूसरे राज्यों में हरियाणा में वंचित समाज किया गया है, एससी समाज किया गया, उनको 10-10% दिया गया। अब मैं तो यहां तक कहता हूं कि समाज के दूसरे वर्ग भी हैं, आज भी समाज में मान लीजिए कि ईबीसी हैं और चाहे ओबीसी हैं, कुछ ऐसी जातियां वहां भी है, ईबीसी में वो भी आप बात करते हैं, ओबीसी में उनको भी अगर उस इंडिकेटर पर आप नापने चलिएगा, तोलने चलिएगा, तो वहां भी आपको लगेगा कि ये भी उस वर्ग में आना चाहिए। क्योंकि और चाहे एसटी की बात हो तो पहाड़ों पर रहते हैं, घुमंतू रहते हैं, और आप उस इलाके में जाएंगे। और आज मैं आपको इस मंच से बोलना चाहता हूं बड़े ही जिम्मेवारी के साथ कि जो टोला है अमंग्स द दलित भी आप जाएंगे और एक स्पेसिफाई होता है कि कहीं पर अमुक जाति का टोला है, एक अमुक जाति का टोला है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस टोले में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विकास की धारा गई है, लेकिन विकास की जो क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं है, तो वहां पर सुधार करने की जरूरत है, हम सबका सोशल दायित्व है।
0: आप तीनों अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं, अगले 5 साल में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आप कहां पर देखेंगे, कौन सी प्राथमिकता आपके तरफ से होनी चाहिए? पहले 20 सेकंड आप और उसके बाद आप।
1: देखिए, अगले 5 साल में हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि हम निवेश लाए, 5 लाख करोड़ का निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले और बिहार उन 5 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम सब हर जगह काम कर रहे हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट और जो हमारा उद्योग ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और लोगों को रोजगार मिले।
2: अगले 5 वर्षों में पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे गांव ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, सशक्त बने, पंचायती राज संस्थाएं जो भी हैं वो ज्यादा से ज्यादा सशक्त बने, लोगों की जो समस्याएं हैं समस्याओं के अनुरूप पंचायत के स्तर पर उनका समाधान हो, उसके हिसाब से योजना बने और ओवरऑल सरकार में जो प्राथमिकता है नौकरी और रोजगार को लेकर के उसके ऊपर काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं।
3: अगले 5 वर्ष में आदरणीय सम्राट चौधरी जी का स्वर्णिम काल होगा। गन्ना उद्योग विभाग बिहार में सभी बंद पड़े चीनी मिल 25 की 25 चीनी मिल खोलने में कामयाब होंगी, बिहार से पलायन को रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ये हमारा लक्ष्य है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस मंच पर आए और आपने आपकी आपकी पार्टी की भूमिका रखी इसके लिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
7: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
11: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
4: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह।
5: Sorry.

0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
1: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
1: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
1: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया है। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: धुआं धुआं किया गया, आसमान में उड़ती दिखी आग की लपटें। ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राहुल गांधी के इंदौर वाले शो पर सियासत तेज। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां की मिमिक्री को लेकर बीजेपी बोली असंस्कारी फूफा, तो नेता विपक्ष ने जेंजी के हॉस्टल से के सवाल को आगे लाया। यूपी में मिशन 2027 की लड़ाई, रोजगार पर गरमाई। मुख्यमंत्री योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, कहा पहले भर्तियों में भाई भतीजावाद होता था। अखिलेश बोले बीजेपी जाएगी तभी नौकरी आएगी। मायावती ने 23 सितंबर की बैठक से पहले फिर चौंकाया अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बीएसपी में जिम्मेदारी देने का ऐलान। आकाश आनंद और उसकी बहन से किया किनारा। और मुंबई में रफ्तार का गैर फिल्मी स्टंट की तरह ब्रिज से नीचे गिरी बीएमडब्ल्यू कार सवार 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: रूस में जारी संसदीय चुनाव के बीच में यूक्रेन ने मॉस्को पर जबरदस्त हमला किया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, इनमें 44 साल की महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल। मॉस्को के मेयर के मुताबिक राजधानी की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा, फिलहाल रिफाइनरी में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मेयर ने बताया कि रूस ने 1100 से ज्यादा ड्रोन्स को गिराए, इनमें से लगभग 450 ड्रोन मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर की तारीफ, कहा कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय महिला टीम की शानदार एंट्री, सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हरा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश की टीम 15.4 ओवर में 81 रन पर ऑल आउट। भारत की तरफ से शिवाली वर्मा ने 49 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के जड़े। स्मृति मंधाना 19 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुई और इस पारी में वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी स्मृति बन गई। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि श्री चरणी को 2 विकेट मिले। एशियन गेम्स में भारत को 2 मेडल, 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम ने सिल्वर जीता। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला 2 सिल्वर और एलावेनिल वल्लारिबन को 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने कमाल किया। राष्ट्रपति मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने जमकर के दोनों ही खिलाड़ियों की तारीफ, मुख्यमंत्री योगी ने भी बधाई संदेश दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम का भी ऐतिहासिक तांडव, उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदा, दीपिका ने अकेले 8 गोल दाग दिए। दीपिका के पेनल्टी कॉर्नर्स का उज्बेकिस्तान के पास में कोई जवाब भी नहीं था, दीपिका ने एक के बाद एक लगातार 4 गोल दागे। भारत को पहली बार मिली एशियाई सीनियर वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी, साल 2028 में होगी प्रतियोगिता। भारत की मेजबानी में 42 देश वुशु चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा, मेडल के लिए 500 से ज्यादा खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद सिराज हैदराबाद रणजी टीम के कप्तान बने, चामा मिलिंद को उपकप्तानी मिले। रणजी ट्रॉफी की 11 अक्टूबर

की खुदकुशी, आरोपी गिरफ्तार। चंद्रपुर में सरकारी थर्मल पावर प्लांट में कॉपर चोरी का खुलासा। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही चोर निकले। महाराष्ट्र पुलिस बल सुरक्षा बल ने 3 जवान समेत 10 आरोपी इसमें हिरासत में लिए गए। कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी आज 6 घंटे की पैरोल पर अपने सोनीपत स्थित घर पर पहुंचा और ढोल बजाकर उसका स्वागत किया गया। वाराणसी पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने छापा मारकर 4 महिलाओं और 3 युवकों को पकड़ा। देहरादून में पुल के नीचे फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी है पुलिस। चमोली में ग्रामीणों में आपस में हुई मारपीट, 8 घायल, 1 की हालत गंभीर है और एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर। गोरखपुर में युवक को स्टंटबाजी महंगी पड़ी और सूर्यकुंड में ड्राइव के दौरान डूबने से मौत। नालंदा में भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू हो गई भीड़, कार पर पथराव करने की कोशिश और शीशे भी टूट गए। गुजरात के कच्छ में गोदाम में भीषण आग व मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। गुजरात के वलसाड में ट्रांसफॉर्मर में लगी भीषण आग, बिजली गुल होने से अफरा तफरी मची। समस्तीपुर में कॉस्मेटिक सामान से भरे हुए कंटेनर में लगी आग, चालक खलासी ने कूद कर बचाए जान। वाराणसी में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ब्रजेश मुठभेड़ में ढेर। राजस्थान के झुंझुनू में खौफनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर में बाइक सवार 10 फीट तक हवा में उछले, इस घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर के पेट्रोल पंप पर देर रात तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। रोहतक में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक, आवारा कुत्तों ने युवती पर हमला करके जख्मी कर दिया। भोपाल में पॉश कॉलोनी में कार बाइक के जबरदस्त टक्कर हंगामा में पिता बेटी घायल, इस हादसे में बाइक सवार ने कार के शीशे तोड़ दिए। गाजियाबाद में फर्नीचर शोरूम गोदाम में भीषण आग, 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुरुग्राम में विवाद के बाद से कार सवार ने टैक्सी पर किया जानलेवा हमला, दोनों ही तरफ से धनाधन मारी गई टक्कर, वीडियो वायरल। यूपी के एटम में फर्जी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का भंडापुर प्रिंसिपल ने खुद के अपहरण की रची साजिश, फर्जी डिग्री से करोड़ों के ठगे। मुंबई में गणपति पंडाल के बाहर करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में कार ने 3 साल के एक मासूम को रौंद दिया, मौके पर ही मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। टोल मैनेजर हत्याकांड में फरार बदमाशों पर सोनीपत एसटीपी का शिकंजा, आरोपी ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। मुंबई के कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू अनियंत्रित होकर गिर गए, हादसे में 3 लोगों की मौत। लोटस जेटी के पास बीएमडब्ल्यू हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 साल का युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टैक्सी ने टक्कर के बाद से युवक को कुचल भी दिया, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, युवक गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को टक्कर मारी, अब ड्राइवर गिरफ्तार। कर्नाटक के रायचूर में महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या, बाद में हत्या के बाद 2 साल के बच्चे शव से लिपटे मिले। यूपी में अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी का महाअभियान जारी, दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी ने 912 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भर्ती प्रक्रिया को लेकर रखी अपनी बात, कहा कि योग्य अभ्यर्थी के चयन के बाद का परिवर्तन पिछले 9 सालों में दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन भर्ती परीक्षा मामले को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, बोले भाई भतीजावाद का बोलबाला था पहले और पूरा सिस्टम इससे जकड़ा हुआ। यूपी पुलिस के मुख्यमंत्री योगी ने जमकर की तारीफ, कहा कि उत्तर प्रदेश की ओवरऑल धारणा और बदलाव में यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका, यूपी पुलिस का काम अभूतपूर्व। यूपी सरकार होमगार्ड विभाग में 7,600 नई भर्तियां करने की तैयारियां हैं और जल्द ही विज्ञापन भी जारी होगा। सीएम योगी का सेल्फी कनेक्शन, 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने सेल्फी भी ली। समाजवादी पार्टी ने यूपी में संगठनात्मक बदलाव की कवायद तेज की, एटा और कासगंज जिलों में पार्टी के जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही भिड़ गए थे नेता और इसीलिए यह कार्रवाई। समाजवादी पीडीए रथ की शुरुआत 24 सितंबर से लखनऊ से रायबरेली जाएगा पीडीए रथ। संजय राउत ने राहुल गांधी के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि यह देश अंधभक्तों का मेला बन गया।
सीएम धामी का राहुल गांधी पर निशाना। पीएम

0: कि दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर बोले, राजनीतिक विरोध में मर्यादा की सीमाएं लांघना स्वीकार्य नहीं। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज से दौरे से पहले पोस्टर वॉर हुआ, नेता प्रतिपक्ष के विरोध में शहर में झूठ की गूंज के होर्डिंग्स लगे दिखे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का बीजेपी सरकार पर आरोप, कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने लगाए झूठ की गूंज के ये पोस्टर्स। विपिन वानखेड़े ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताते हुए छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयानों के विरोध में देश प्रेमियों ने ये पोस्टर्स लगाए। लुधियाना में रवनीत बिट्टू को हिरासत में लेने पर सियासी बवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले के बाहर हंगामे का मामला है। सीएम मान के काफिले के बाहर अंडे टमाटर फेंकने का आरोप, बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को लेकर पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ा। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज, आपने मान के मुनाफे अभियान के साथ शुरू किया घर घर जनसंपर्क। आपका मिशन 2027 शुरू, भगवंत मान सरकार के कामकाज का पर्चा लेकर अब हर घर पहुंचेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और परिवार को वोटर लिस्ट के लिए नोटिस, आपने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बिहार विधान परिषद चुनावों को लेकर जन स्वराज पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। इस दौरान प्रशांत किशोर ने शिक्षकों का को लेकर ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से जुड़े 3 मुद्दों पर आंदोलन करने की घोषणा की। स्नातक सीटों पर रोजगार का भी दावा। मायावती ने 23 सितंबर की बैठक से पहले सबको चौंकाया, अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बीएसपी में जिम्मेदारी देने का ऐलान। आकाश आनंद और उसकी बहन को साइडलाइन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज देखा, पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक छाछने नृत्य किया। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर आयोजित कल्चरल फेस्टिवल में उन्होंने छाछड़ी में भाग लिया और कथा महोत्सव में भी पहुंचे। जेनजी को लेकर सियासी जंग चल रही है और इस बीच में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का जवाब बताया। जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि जेनजी के मूड को बीजेपी कैसे देखती है। देखिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
1: 17 सितंबर 2026 को देश की जनता ने आशीर्वाद का दिया जलाकर पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन जल्द प्रधानमंत्री अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही अपने 25 साल पब्लिक लाइफ में पूरे करने जा रहे हैं। और इस पूरे राजनीतिक सफर में, चाहे वो प्रशासनिक सफर हो या राजनीतिक सफर हो, उसमें अगर किसी ने बेहद करीबी से प्रधानमंत्री को देखा है काम करते हुए, तो वो है बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, 25 साल प्रधानमंत्री को होने जा रहे हैं और अभी उनका जन्मदिन भी मनाया गया। देश भर में हमने देखा कैसे आशीर्वाद का दिया जनता ने जलाया और कई कार्यकर्ता बीजेपी के उसमें शामिल हुए। कैसा रहा यह राजनीतिक सफर? आपने तो बहुत करीबी से उनको देखा सर।
2: देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, वो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले, फोकस्ड राजनेता और समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए समर्पित, और जिसे मैं कह सकता हूं कि वेरी सीरियस पॉलिटिकल लीडर, जो चीजों को गहराई से समझना, जानना और उसका समाधान निकालना, ऐसा व्यक्तित्व मैंने उनको देखा है। और ये कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, मेरी उनसे मुलाकात जो है वो 1990 की है, जब मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और वो गुजरात से यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री बनकर के आए थे। उस समय मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो उस समय भी जब मैं उनको देखता था तो वो जब हमारे ऑफिस बेरर्स की मीटिंग होती थी तो उसमें पूरी तैयारी के साथ आते थे और एक तरीके से कहा जाए तो वो बैठक का एजेंडा सेट कर देते थे। उन दिनों में ईमेल, इंटरनेट की ताकत, उस समय सोशल मीडिया का शब्दावली नहीं आई थी, लेकिन इंटरनेट की ताकत और इसमें से क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीजें उनको हमने देखा है। मुझे विपक्ष के नेता के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला जब मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता था। तो मैंने कई बार बताया है, मीडिया में भी बोला है, कि उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास इश्यूज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। मैंने कहा रिसर्च टीम है, वो अखबारों से इश्यूज निकालती है, एसोसिएशन से जो हमको चिट्ठियां आती है उसको, और जो एसोसिएशन मुझसे मिल जाते हैं उनके साथ भी हो जाता है, तो उसको लेकर के मैं करता हूं। उनका आप ऐसा करो कि एमएलए के छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और आप लीड करो, और सारे प्रदेश में हर जिले में जाओ, एक दिन लगाओ, एक रात लगाओ, और समय दो पब्लिक हियरिंग के लिए, और पब्लिक से डायरेक्टली उनके क्या विषय हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए उनसे बात करो। मैंने 1.5-2 महीने में इस क्रम को पूरा किया। मैं कह सकता हूं कि मैं विधानसभा में विपक्ष का नेता था, लेकिन मुझे हिमाचल का नेता इस यात्रा ने करा दिया।
1: आप जब अध्यक्ष रहे बीजेपी के, जब आप अध्यक्ष थे तब उस वक्त प्रधानमंत्री अपने आप को कहते कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तो कैसे कार्यकर्ता है, उनकी कार्यशैली क्या है एज अ बीजेपी कार्यकर्ता?
2: देखिए कोरोना आया तो सारी सरकार उससे, कोरोना से जूझ रही थी और उनके नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने पार्टी के द्वारा, पहले तो पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया, सेवा ही संगठन, सारी पार्टियां बैन हो गई, बंद हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आइसोलेशन वार्ड में चली गई, कोई मिली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जान को जोखिम में डाल करके सेवा ही संगठन चलाया हर दिन। पहले एक तो उन्होंने सेवा ही संगठन की कल्पना पूरी, मास्क बांटना, फूड पैकेट्स बांटना, मेडिसिन पहुंचाना, ये सारी चीजें की रूपरेखा बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है और हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करना, ये उन्होंने किया। ये उनका समर्पण भाव। अभी नए पदाधिकारी जो नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके साथ जो पदाधिकारियों के साथ अभी मोदी जी की बैठक हुई है वो 5 घंटे चली है। भारत के प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं, और उन्होंने एक एक की बात सुनी है, एक एक से जाना है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और उसमें उन्होंने फिर अपने तरफ से ऐड किया है। तो ये उनका कार्यकर्तापन है, ये उनका कमिटमेंट है। बतौर दुनिया के लोकप्रिय नेता होने के बावजूद,
1: हम देश के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ यात्राएं भी चल रही हैं। एक यात्रा वडनगर से बनारस और बनारस से वडनगर भी चल रही है, दूसरी एक यात्रा, हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
2: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है
1: जी,
2: और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह जी, गृहमंत्री जी वहां जाएंगे।
1: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
2: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है। लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है, उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने अब जो विपक्ष का नेता 7.8% ग्रोथ रेट पर हम चल रहे हों क्वार्टर पे, और वो नेता डेड इकोनॉमी कहे, तो आपके समझ में इतना ही आना चाहिए कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, वो इकोनॉमिक्स का ई समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको अगर ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो क्या छात्रों की गूंज अब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर
2: जो धमाका है, गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
1: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका,
2: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
1: सर मैं खत्म करता हूं इंटरव्यू एक आखिरी प्रश्न लेके। हमने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री के 25 सालों को लेकर उनका जो राजनीतिक करियर रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपके शब्दों में यह जानना चाहता हूं, अगर 3 शब्दों में आप समाहित करना चाहें प्रधानमंत्री के ये 25 साल का जो पूरा जर्नी रहा उसको, तो कैसे करेंगे आप?
2: देखिए, 3 शब्दों में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ही हैज चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, राजनीतिक संस्कृति उन्होंने बदल डाली है। पहले देश में मैनिफेस्टो सिर्फ एक रिचुअल होता था, मोदी जी ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये संस्कृति आज उन्होंने देश में प्रतिपादित कर दी। इसके पहले भाई भतीजावाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये इसी पर राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति, डिवाइड एंड रूल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग जो लेफ्टिस्ट बड़े चर्चा करते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना गरीब कल्याण किया और जितना उनका एम्पावरमेंट किया, जितना महिलाओं का एम्पावरमेंट किया, किस किस प्रोग्राम की मैं बात करूं, इसलिए तीन शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने देश का डायरेक्शन ही बदल दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि उनका अनुभव कैसा रहा प्रधानमंत्री के साथ काम करने का, ना सिर्फ इन 25 सालों में बल्कि पिछले काफी लंबे समय में जो उन्होंने समय बिताया नरेंद्र मोदी के साथ। दिल्ली से पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
8: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: विमल बोलो जुबां केसरी।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: रूस में चुनाव के बीच में यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को, तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने यहां धुआं धुआं, आसमान में उठती दिखी आग के लपटे, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राहुल गांधी के इंदौर शो पर सियासत तेज, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मां पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी बोली असंस्कारी फूफा, तो नेता विपक्ष ने जेनजी के हॉस्टल के सवाल को किया आगे। यूपी में मिशन 2027 के लड़ाई रोजगार पर गरमाई, मुख्यमंत्री योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, कहा पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद, अखिलेश बोले बीजेपी जाएगी तभी नौकरी आएंगे। मायावती ने 23 सितंबर की बैठक से पहले फिर से चौंकाया अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को, बीएसपी में जिम्मेदारी देने का ऐलान, आकाश आनंद और उनकी बहन से किनारा। और मुंबई में रफ्तार का कहर, फिल्म में स्टंट की तरह ब्रिज से नीचे गिरी बीएमडब्ल्यू कार सवार, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले की। रूस ने संसदीय चुनाव के बीच में आखिरी दिन यूक्रेन ने यहां मॉस्को पर जबरदस्त हमला किया है और जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन्स दागे हैं, साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद से रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही मची है, इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आग की लपटें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये वीडियो खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी तास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है, आज इसका आखिरी दिन है। हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की और कहा कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा कई घेरे बनाने के बजाय इसमें शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह भी कर दिया है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ हैं। अशरफ, एक तरफ अमेरिकी पहल पर कुछ दिन पहले हमें बातचीत का दौर देखने को मिला जिसके बाद लगा क्या पता चीजें सुलझ जाएं, क्या पता शांति की तरफ आगे चीजें बढ़ें, लेकिन यहां तो यूक्रेन बहुत एग्रेसिव दिखाई दिया, तो कितना डैमेज इससे हुआ है और क्या रूस अब इससे भी ज्यादा विनाशकारी हमले अब करेगा?
3: बिल्कुल राजीव, हमने तो वही देखा है, जब भी इस तरह का कोई बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से होता है रूस पर तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी उतनी तेवर और तीखी होती है। अगर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल देखें तो पिछले एक साल से लगातार जो है यूक्रेन की तरफ से रूस में इन्हीं ड्रोन्स से न सिर्फ एनर्जी सेक्टर को बल्कि सबसे बड़ी जो वहां की रिटेल चेन है उनके भंडारों पर भी, उनके वेयर हाउसेस पर भी लगातार हमले किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, जिसमें माली नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ कई सारे लोग जानी नुकसान भी हुआ है। दरअसल यहाँ पर कोई दोनों देशों में से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। काफी कोशिशें हुई थी अमेरिका की तरफ से भी, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी, यहाँ तक कि चीन की तरफ से भी कोशिश हुई थी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो है वो किसी हद तक पहुंचे या रुके, लेकिन बिल्कुल जो है ना ही रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि यूक्रेन में जिस इलाके पर उसका कब्जा है वो उसके हिस्से में रहे, लेकिन जबकि यूक्रेन जो है वो बिल्कुल नहीं मानता है। ये तो पिछले 2 दिन पहले जो आपने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक ये दावा किया था कि दोनों देश आमादा हुए हैं एक
2: जी अर्शब, बिल्कुल अर्शब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी आया है। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरते हुए दिख रहे और ब्रिज के रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरे। इसमें सवार चार में से तीन लोगों की मौत हो गई, ये छात्र बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के समय कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल उस पर खो दिया। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर एक कार नीचे गिरी और फिर ये इतना बड़ा हादसा, तीन लोगों की जान चली गई। यह हादसा सुबह 5:03 पर हुआ। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रहे थे। हादसे के समय कार में 4 छात्र थे, 3 की जान चली गई है, 1 की हालत बेहद गंभीर है, नाजुक है। सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे और जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
4: इस वक्त हम मुंबई के कोस्टल रोड इलाके में हैं। एक तरफ ये रोड आप देख सकते हैं, 6 लेन रोड, जहां पर गाड़ियां जो है एकदम तेजी से जाती है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संडे सुबह में हुआ बीएमडब्ल्यू का एक्सीडेंट। इस वक्त वो बीएमडब्ल्यू कार जो इस ब्रिज से गिरी है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार जो है ये यहां पर गिरी हुई है। इसमें 3 लोग सवार थे, धैर्य सेठ जिनकी मौत हो चुकी है, आदित्य ओसवाल जो वेंटिलेटर पे, आदित्य जो कि एक दूसरे व्यक्ति हैं वो मर चुके हैं, और शनय गजर ये भी इस पूरे इस इंसिडेंट में मर चुके हैं। तो 17 वर्ष 19 वर्ष 21 वर्ष ऐसी ये आप कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो इस कार में सवार थे बीएमडब्ल्यू में जब एक्सीडेंट हुआ है। दादरा नागरा हवेली में एक फाल्गुन गजर करके व्यक्ति है जिनके नाम पर ये कार जो है रजिस्टर्ड है, DD01C6302। अब पीछे देखिए कहां से ये कार गिरी है। ये कार आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीन ड्राइव जाने का जो ब्रिज है कोस्टल रोड से, उसके ऊपर ये जो बैरिकेड है उसको तोड़कर सीधा किसी वीडियो गेम की तरह इस कार, ये कार जो है ये यहां पर आकर गिरी है। और कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है, और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
5: सुबह 5:20 को कंट्रोल का कॉल आया था कि एक्सीडेंट हुआ है कोस्टल रोड पे। तो ब्लैक कलर की बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, गाड़ी क्रमांक है DD01C6302। ये मरीन ड्राइव से हजी अली की तरफ, नॉर्थ बाउंड जो है उसकी तरफ जा रही थी, और कोस्टल के ऊपर का जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्पॉट से नीचे गिर गई है। उस गाड़ी में 4 लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19, और शनय गजर उम्र 21। ये सभी स्टूडेंट है, जुहू और कुर्ला में पढ़ते हैं।
2: अबाद पंजाब में एएसआई की हत्या से जुड़ी हुई जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, और इस बीच में अमृतसर में एएसआई की हत्या करने वाला आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। अमृतसर पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को ढेर कर दिया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक फोन मिला है और उस फोन से बड़ा खुलासा हुआ है कि हमलावर दीपक सिंह पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में था, आतंकी शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम करता था। आतंकी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए इसने एएसआई की हत्या कर दी। शहजाद भट्टी और इसके नेटवर्क पर पंजाब में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के आरोप पहले भी लगे हैं, और हाल में गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित किया है। अब दीपक के एनकाउंटर के बाद इस पूरे आतंकी नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं।
6: जो बाहर बैठा है पाकिस्तान का आदमी, उसने ही इनको अपने झांसे में लिया था और इनको उसने पैसे भी देने का कहा था और आगे इनके साथ चिट्टे का व्यापार करने का भी प्रॉमिस किया था। एक तरह का वो सर्टिफिकेट मांगते हैं इनसे, ये हमारे बंदे पूरे हमारे बन चुके हैं और आगे जाके भी इन पे प्रेशर रहे, वो उनको टारगेट करवाते हैं स्पेशल पुलिस वाले का, जो अकेला हो और जिसको जिसको मार के इनको वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है, 30-40 सेकंड का वीडियो इस पे भी बनाया था इन्होंने, वो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो बिल्कुल क्लियर आ गया है। ये वापस मारने के बाद फिर स्पॉट पर आए हैं, जब वो हरजीत सिंह घिरा पड़ा था उसकी उन्होंने वीडियो बनाई और फिर ये वीडियो उन्होंने आगे भेजी है उस साइड पे।
2: और अब खबर इंदौर में छात्रों के गूंज कार्यक्रम की, जहां पर राहुल गांधी ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, सिस्टम से कई सवाल किए, लेकिन इस दौरान कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर विवाद छिड़ गया। तो राहुल गांधी का कल इंदौर में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बहुत कुछ हुआ, उस कार्यक्रम में मिमिक्री भी, उस कार्यक्रम में सवाल भी उठाए गए, उस कार्यक्रम में बहुत सारे चेहरे दिखाए गए और कहा कि इनका सिस्टम पर नियंत्रण है। अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कल कार्यक्रम में हुआ क्या क्या।
7: हाउ आर यू मोदी जी,
8: ग्रेट हैरेसमेंट।
9: छात्रों की गूंज कार्यक्रम मंच पर, राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, निशाने पर सरकार, यानी सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा था जैसा खाका इस कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया था। लेकिन बीच कार्यक्रम कुछ ऐसा हुआ कि छात्रों की समस्याओं की बजाय अब मुद्दा कहीं और पहुंच गया है। अब सियासत में इस मंच से पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा गूंज रहा है। दरअसल विवाद शुरू हुआ जब मंच पर एक शख्स की एंट्री होती है, वो राहुल से मजाकिया अंदाज में बातचीत करता है।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
7: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट।
9: लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसी टिप्पणी करता है जो विवाद का केंद्र बन जाता है।
8: गलगोटिया।
7: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
9: कार्यक्रम का ये हिस्सा सामने आते ही जबरदस्त बवाल छिड़ गया। बीजेपी ने इसे राहुल के मंच से पीएम मोदी की माँ का अपमान बताया और हमलों की बौछार तेज हो गई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए जो अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था, उसका इस तरह मजाक उड़ाना देश भर की माता का अपमान करना है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। धामी ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जाएं और उस पर राहुल गांधी हंसे, ये बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक है। छात्रों की गूंज से उठा विवाद का शोर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के निशाने पर राहुल हैं और हमले तेज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक पतन की पराकाष्ठा बता दिया, तो कांग्रेस ने इस हमले का जवाब दिया।
10: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी मां का जिक्र ही नहीं किया। किसी की मां, सबकी मां।
7: आप एक काम कीजिए, ये है सिस्टम के मालिक।
9: ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किसी विवाद का शोर सुनाई दिया हो। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दौरान जॉर्जिया मेलोनी के बहाने पीएम को टारगेट करने पर भारी हंगामा मचा था। इस बार बात पीएम मोदी के मां के अपमान की, जिसे लेकर सियासत बढ़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
2: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर घमासान जारी है। बीजेपी और सहयोगी दल राहुल गांधी पर इसको लेकर हमलावर है।
11: जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं, जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उनका भी वो अपमान करते हैं।
12: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।
13: और हमारे संवाददाता अनमोल बालू ने इस पर प्रदीप भंडारी बीजेपी नेता से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
14: बीजेपी के सीनियर स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी जी हैं। तो भंडारी जी, कल देखा गया कि एक तरफ तो डूसू का नतीजा, वहीं दूसरी तरफ छात्रों की गूंज, और उस गूंज को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज।
15: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से, कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी। इसीलिए जब दूसू चुनाव, जिसमें देश का युवा वोट करता है, या चंडीगढ़ या मैसूर, अलग अलग जगह देश के युवा ये राहुल गांधी को, देश का जेंजी राहुल गांधी और कांग्रेस को बता रहा है कि उसकी नेगेटिव नकारात्मक राजनीति को वो रिजेक्ट करता है। शायद अपना मानसिक दिवालियापन कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, इसीलिए वो एक अपोजिशन के नेता जैसे अब बिहेव करना बंद कर चुकी है, एक ट्रोलर जैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं। आज इस कृत्य से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जो है वो आज ही नहीं, आने वाले कई समय तक विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि जो देश की जनता का मजाक उड़ाता है उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करती।
13: इंदौर में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक पोस्ट किया और केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने इंदौर के कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा से भी बातचीत का हवाला दिया और छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं होने का आरोप लगाया। इंदौर में राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया और बहुत सारे छात्र आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और ये सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का पोस्ट है कि सरकार के पास दिया जलाने के लिए पैसा है, हमारे हॉस्टल के लिए क्यों नहीं। ये सवाल कल इंदौर में एक छात्रा ने मुझसे पूछा और आज राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट ही कर दिया है और सरकार से सवाल पूछा है कि
16: सर पीएचडी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, रिसर्च में लाखों रुपए खर्च होते हैं और खर्चा अभी भी थमा नहीं है। जब मैं किराए के रूम में रहती हूँ तो भी लाखों रुपए के खर्च होते हैं। इसी दौरान सर, जब मकान मालिक का हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप तारीख टू तारीख हमें पैसे दीजिए, अगर नहीं दिया तो आप रूम खाली करके घर चले जाइए, ऐसी कई स्टूडेंट, ऐसी कई गर्ल्स है जो रूम छोड़कर घर चली गई है, जिनकी शादियां हो गई है। सर एक मुद्दा चलता है इनका, एक योजना है आवास भत्ता करके, आवास भत्ते में इनकी है कि हर महीने आपको पे करना है, साल का 24,000 आता है, हर महीने 2,000 आता है। सर मैं 2020 में जिस रूम में रहती थी वहां 2,500 रुपए महीना था, आज उसी रूम का 5,000 रुपए महीना है, परंतु आवास भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर साल 10% हमारे जो रूम का रेंट है वो बढ़ता है और 24,000 मिलना है हमें साल भर का, और साल के एंड में मिलता है, महीने टू महीने नहीं मिलता है। महीने हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके पैसे किसी से ब्याज से लेके हम उसे पे करते। सर हम भी इसी देश के नागरिक है, हमें इसी देश की जनसी है, आप दिए में तो लाखों रुपए खर्च कर देते तो हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे स्टूडेंट की शिक्षा के लिए क्यों नहीं। सर मैं हॉस्टल में रहती नहीं हूँ क्योंकि हॉस्टल में सीट अवेलेबल नहीं है। उज्जैन जिले में 1112 गांव है जहां सिर्फ 100 सीट है।
13: खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जेन जी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। आपको ये बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने 9 विभागों में चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। यूपी में अब तक 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है। योगी सरकार ने देने का दावा किया है और अब आज 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी ने पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
17: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजेवाद का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
13: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: हम देश के स्वास्थ्य की बात करें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी एक यात्रा पंजाब में भी चल रही है, नशा मुक्त को लेकर चल रही है और उसमें कई नेता पहुंच भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नशा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पंजाब के अंदर, और ये यात्रा और पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है?
19: निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यह है कि बॉर्डर स्टेट है और ड्रग का वहां पर भरण पोषण पालन सरकारी व्यवस्था में हुआ है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिली जिसके कारण से वो बढ़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टि से तो सीधे ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता में इसको सीधे कन्फ्रंट करना, और जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा कि हमने नक्सलिज्म पर काबू किया है और हमको छुटकारा मिला है, अब हमें नशा मुक्त होना है, उसके तरफ भी हमें काम करना है। तो ये जो ड्रग्स का जिस तरीके का चल रहा है, नारकोटिक्स का जिस तरीके का चल रहा है, वो उसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे ही। और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज पंजाब में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की सरकार नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आज वहां एडमिनिस्ट्रेशन लेस स्टेट हो गई है, वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और इसलिए वहां कुछ एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही दुभर है। लेकिन जनता को जागृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, नितिन नवीन जी ने उसकी शुरुआत की है, हमारे अमित शाह।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
1: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
1: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
1: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया है। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रूस में चुनाव के बीच में यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को, तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, आसमान में उठती आग की लपटें दिखी। ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राहुल गांधी के इंदौर के शो पर सियासत तेज, मंच पर बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बीजेपी बोली असंस्कारी फूफा, तो नेता विपक्ष ने जेंजी के हॉस्टल के सवाल को उठाया आगे। यूपी मिशन 2027 की लड़ाई, रोजगार पर गरमाई, मुख्यमंत्री योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, कहा पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद, अखिलेश बोले बीजेपी जाएगी तभी नौकरियां आएंगी। मायावती ने 23 सितंबर की बैठक से पहले फिर चौंकाया अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद को बीएसपी में जिम्मेदारी देने का ऐलान, आकाश आनंद और उनकी बहन से किया किनारा। और मुंबई में रफ्तार का कहर, फिल्मी स्टंट की तरह ब्रिज से नीचे गिरी बीएमडब्ल्यू कार सवार, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हूतियों के हड़कंप के बाद अमेरिका और ईरान युद्ध नीति या फिर अब सैन्य नीति, कूटनीति और अर्थनीति, तमाम चीजों की परिभाषाएं तेजी से बदलती जा रही। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सऊदी अरब अब हूतियों से कैसे निपटेगा, क्योंकि एक तरफ लगातार अलग अलग द्वीपों पर हूतियों अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं, इसके अलावा वो तेल सप्लाई को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नाकेबंदी की वजह से हूती बुरी तरीके से चिड़े हुए हैं। इन हालातों से हूतियों से निपटने में सऊदी अरब के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही। कभी वो ईरान से अपील कर रहा है मदद की, तो वो कहीं दूसरी तरफ चीन से अपील की जा रही, लेकिन फिलहाल इसका कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे उन्होंने यमन से भी जरूर पूछा है कि हमले के शिकार उनके जंगी जहाजों के पायलट आखिरकार कहां है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। एक तरफ टैरिफ के खेल में वो बुरी तरीके से उलझ गए हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाकर वो अपने ही घर में कई मोर्चों पर घेरते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में लगातार बढ़ता खर्च भी उनके लिए एक बड़ा सबब बन चुका है, और विरोधी दल लगातार उनकी आलोचना के साथ साथ उन्हें घेरते भी नजर आ रहे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब तक युद्ध के मैदान में अमेरिका को लाखों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उधर 4.5 साल से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा और तेजी से बढ़ता जा रहा है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जगह अब रिहायशी इलाकों पर इस युद्ध की दंश झेले जा रहे हैं। आइए आपको इन तमाम खबरों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें सिर्फ ईरान हूतियों से नहीं बढ़ रही। डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें वहीं पर मौजूद उनके लिए गृह युद्ध जैसे तब्दील होते परिस्थितियां भी बन रही है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीकों को वहां की मीडिया हो या फिर उनके कई स्टेट डिपार्टमेंट लगातार उजागर कर रहे हैं। इसी बीच पेंटागन की एक जांच में पता चला है कि 28 फरवरी को ईरान के मेनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल हमलों में कम से कम 170 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 123 बच्चे भी शामिल थे। माना जा रहा है कि पुराने इंटेलिजेंस डेटा की वजह से ये स्कूल पर मिस कैलकुलेटेड अटैक किए गए। अभी भी इस्लामिक, दरअसल उस इंटेलिजेंस में कहा गया था कि ये बिल्डिंग जो है वो IRGC का ठिकाना थी, लेकिन ये पुराने इनपुट थे जिनके बेसिस पर ये अटैक को इनिशिएट किया गया। बाद में इस गलती को अब अमेरिका में उजागर भी किया जा रहा है। इस जगह पर लगभग एक दशक से स्कूल चल रहा था, ये गूगल मैप्स पर भी मार्क किया गया एक स्कूल था, और अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र किया गया था।

इंटेलिजेंस इनपुट था, जिसकी वजह से यह बड़ा अटैक एक स्कूल पर किया गया। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मीडिया हाउसेस को अमेरिका में प्रतिबंध लगाने की बात की है, लेकिन इसी बीच सीएनएन का बयान भी इस पर आया। सीएनएन ने कहा है कि हम अपनी न्यूज टीम और उसकी निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग का पुरजोर समर्थन करते हैं। अमेरिकी संविधान के आधार पर हमें बिना किसी रुकावट सरकारी दखल के ये रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार है। देखिए बातें क्यों सामने आ रही है, क्योंकि ना सिर्फ ये मीडिया हाउसेस डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिका को हुए नुकसान को उजागर कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में 40 दिन का युद्ध हुआ था ईरान के बेसिस पर, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को जो नुकसान पहुंचा है उसको, इसकी भरपाई करने में, उसे ठीक करने में अमेरिका को एक दशक लग जाएंगे, यानी 10 साल से ज्यादा का वक्त अमेरिका को लगेगा इन सारी चीजों को ठीक करने में। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो इसराइल को चौंकाने वाली भी है, क्योंकि ईरान के हवाले से, मीडिया हवाले से खबर मिली है कि हंजाला नाम की एक सेल्फी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने, हंजाला साइबर ग्रुप ने एक संदेश में कहा कि उसने इजरायली सुरक्षा ढांचे से जुड़े सैकड़ों लोगों के मोबाइल फोनों को बड़े पैमाने पर साइबर सेंध लगाई है, उस पर साइबर अटैक किया, और हम, उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगभग 700 से ज्यादा ये तस्वीरें जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमने इस तरीके का एक साइबर अटैक किया और इसराइल के कई लोगों के हमने जानकारी हासिल की है, और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसी में काम करते हैं। और चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि आखिरकार पिछले एक साल में अगर लगातार हूतियों पर इतने बड़े अटैक किए जा रहे थे तो हूतियों ने अपने आप को कैसे रिवाइव किया, कैसे लगातार हथियारों की नई नई खेप हूतियों तक पहुंच रही है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हूती एकाएक इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आखिरकार हूतियों का कैसा रूट रहा है हथियारों को लेकर। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वो रूट था जो 2022 और 23 तक हूतियों तक हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सबसे पहले आप इधर चलिए, ये है ईरान का इलाका, ईरान के बंदर अब्बास के इलाके और जास के इलाके से लगातार छोटी बोट्स में और छोटे छोटे शिप्स के अंदर ये हथियारों की सप्लाई लगातार यमन तक होती थी, या तो यमन के इन इलाकों तक या फिर सोमालिया के पास, सोमालिया यहां पर है। और अगर आप देखें कि यहीं से फिर या तो छोटे छोटे ट्रक्स की मदद से फिर ये सामान हूतियों तक पहुंचाया जाता था। अगर आप देखें, हूतियों का जो बड़ा प्रभाव था वो इस इलाके में, नॉर्थ के इन इलाकों के अंदर खासतौर पे रहा करता था, लेकिन अब हूती धीरे धीरे रेड सी के नीचे के इलाकों में, यानी उन इलाकों में आ गए हैं जहां पर 222 किलोमीटर 220 किलोमीटर की ये पूरा कोस्टल एरिया उनके वजूद में या फिर उनके कंट्रोल में आ गया है, और यहीं से लगातार हूतियों तक ये साजो सामान या हथियार पहुंचाए जा सकते थे। और यही वजह है कि अब जो है 2022-23 के बाद क्या नया रूट इस्तेमाल किया हूतियों ने, क्योंकि 2023 के बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके के अंदर एक जंग का माहौल है, जहां पर आपको याद होगा 2023 में इसराइल के, साउथ इसराइल के ऊपर अटैक किया गया हमास की तरफ से, इसराइल ने बड़े जंग का आगाज कर दिया। उसके बाद 2025 में सीधे तौर पर उन्होंने इसराइल और अमेरिका ने अटैक किया, फिर 2026 में भी अटैक किया। तो ये पूरा इलाका जो था एक तरीके से कंट्रोल में, या फिर आप कह सकते हैं कि इस समय ये गल्फ ऑफ ओमान के आसपास अमेरिका की मौजूदगी है, उनके शिप्स की, उनके बोट्स की। तो ऐसे में अब नया रूट कौन सा है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आइए आपको अगली वॉल पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं अब नया रूट कौन सा है जहां से यह हथियार, ये साजो सामान अब हूतियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले अभी भी ईरान के कई शिप्स या फिर आप कह सकते हैं छोटी छोटी बोट्स पाकिस्तान और ईरान के, अगर आप ऊपर देख रहे हो कि वो है पाकिस्तान और वो है ईरान, और इसी के पास छोटे छोटे कोस्टल एरिया से छोटी छोटी बोट्स के इस्तेमाल से ये साजो सामान अब लगातार यहां पर सोमालिया पहुंचाया जाता है, और फिर सोमालिया से आगे की तरफ ये छोटी बोट से सोमालिया से ही आगे यमन भेजा जाता है, ताकि लगातार यहां पर हूतियों को रसद और साजो सामान पहुंचाया जा सके। दूसरा बड़ा रूट क्या है, देखिए ये तो आपने जो सी रूट है इसको अगर आपने देखा हो आप समझ गए होंगे कि कैसे गल्फ ऑफ ओमान से बचते हुए, हमारे की शिप की पेट्रोलिंग से बचते हुए, यहां से बाहरी इलाकों से लगातार ये यहां पर आपका सोमालिया तक पहुंचता, और सोमालिया से छोटी बोट से फिर ये हूतियों के पास पहुंचता है। अब आप दूसरे रूट की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, यह है दूसरा रूट। दरअसल ईरान के बाद आता है इराक और इराक के बाद आता है सीरिया। सीरिया के इलाकों से कहा जाता है कि सीरिया की तरफ से कई ऐसे इलाके हैं जहां से छोटे छोटे कार्गो एयरक्राफ्ट की मदद से चोरी छुपे ये साजो सामान लगातार डीअसेंबल कर, यानी असेंबल एक ही पार्ट में मिसाइल या ड्रोन नहीं भेजे जाते, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को लगातार बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट में भेजा जाता है, और ये जिबूती उतरते हैं। जिबूती से लगातार फिर इनको छोटी बोट की मदद से लगातार आप यहां पर इनके पास, हूतियों के पास पहुंचाया जाता है। दरअसल आप दोनों चीजों को समझिए, समंदर का रास्ता गल्फ ऑफ ओमान से सोमालिया पहुंचता है और यहां पर जिबूती पहुंचता है, और जिबूती से लगातार

छोटी बोट की मदद से ही रेड सी में और फिर हूतियों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आप इन दोनों चीजों को देखकर समझ सकते होंगे कि आखिरकार कैसे नए रूट्स का इस्तेमाल हूतियों को सशक्त करने, उनको साजो सामान पहुंचाने के लिए ईरान ने किया। ईरान इसलिए कर रहा था क्योंकि देखिए यहां पर गल्फ ऑफ ओमान के पास अमेरिका के शिप तैनात किए गए थे और दूसरी तरफ लगातार जो कंट्रोल था वो इसराइल की तरफ से भी था। लेकिन अब आपको एक और वॉल पे लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ओवरऑल यानी पूरी तरीके से अगर आप देखें तो इस रूट को आप देख के समझ आएंगे कि आखिरकार कैसे शिप की मदद से, लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से और फ्लाइट की मदद से कैसे लगातार तीन अलग अलग रास्तों से ये साजो सामान पहुंचाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि पहले बंदर अब्बास से इस तरीके से छोटी बोट से लगातार पहुंचाया जा सकता है अरब सागर की तरफ से, लेकिन अब एक और रूट तैयार किया गया वो था बंदर अब्बास या यहां के वहां ओमान पहुंचाया जाता है बोट्स की मदद से, और इन्हीं बोट से फिर आगे जो छोटे छोटे ट्रक्स हैं या फिर उनकी गाड़ियां हैं उनसे ये धीरे धीरे सामान यमन तक पहुंच जाता है। ये आप समझिए ये एक ऐसा रूट है जिस पर ना तो अमेरिका का कंट्रोल हो पाया ना इसराइल का कंट्रोल हो पाया, और ये इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स को बड़े पार्ट्स को नहीं भेजते, वो उनको डीअसेंबल करके उनको फिर यहां भेजा जाता है और फिर ये ट्रेनिंग लगातार हूतियों को दी गई है कि वो इनको असेंबल कर अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल कर सके। यहां तक कि उनके कई ऐसे जो ड्रोन है जिनकी जो उनकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है, यानी हूतियों ने कई बार ऐसा भी देखा कि उन हूतियों ने ड्रोन इस्तेमाल किया और वो सीधे इजराइल तक पहुंच चुके। यही वजह कि सऊदी अरब को ज्यादा खतरा इस समय महसूस हो रहा है। फिर अगर आप दूसरा रूट देखें, हमने आपको बताया कि सीरिया, ये देखिए ये है ऊपर सीरिया, जहां से लगातार सीरिया से या तो फ्लाई कर या फिर वहां से भी धीरे धीरे छोटा छोटा बोट की मदद से लाल सागर से सामान हूतियों तक पहुंचाया जाता है। फिर हमने आपको बताया सोमालिया की तरफ से, जिबूती की तरफ से भी सामान पहुंचाया जाता है, और ये प्रक्रिया 2023 के बाद से ज्यादा अपनाई गई क्योंकि हूतियों को लगातार ईरान मदद कर रहा था। हूती को ना सिर्फ हूती बल्कि हिजबुल्ला को नई खेप पहुंचाई गई है जिससे लगातार वो बड़े अटैक कर रहा है साउथ नॉर्थ ऑफ इसराइल के अंदर, और वहीं जो हूती है वो सऊदी के साथ साथ अब बाकी देशों के लिए भी बड़ा खतरा यहां पर बन गया। आपको हमने इसलिए समझाया ताकि आप समझ सकें, आप ये जान सकें कि आखिरकार जब ईरान अमेरिका के इतने बड़े बड़े शिप वहां पर गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद हैं तो आखिरकार हूतियों पर ये साजो सामान कैसे पहुंच पा रहा है। लंबे समय तक ये माना जाता था कि ईरान तो कमजोर हो ही रहा है बल्कि उसके प्रॉक्सी भी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हूतियों के ताजा हमले ने ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। अमेरिका को लग रहा था कि वो हूतियों को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हूती जिस तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे ना सिर्फ सऊदी को खतरा बढ़ गया है बल्कि लगातार अमेरिका की साख और उसकी समझ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

0: होती हो रहे बेलगाम, कैसे निकलेगा समाधान? सऊदी अरब के साथ बढ़ रहा घमासान, ट्रंप के सामने 7 शर्तें रख आक्रामक हुआ ईरान, ईरान की शर्तों से मचेगा कोहराम या आएगा पीस प्लान? एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन बम बरसा रहे हैं तो दूसरी ओर बातों के बम ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अपनी 7 शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई के मुताबिक कतर ने तेहरान की शर्तों को अमेरिका तक पहुंचा दिया है और अब ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार कर रहा है।
1: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة لقد أبلغناهما بشروطنا والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها أي أن ينفذوها فلا يحق لنا استهداف تلك القاعدة نعم نحن لم نهاجم لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمد
0: ईरान ने जिन शर्तों को रखा है उनमें हर मोर्चे पर चल रही जंग को रोकना, ईरान की फ्रीज संपत्ति को मुक्त करना और समुद्री नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। ईरान ने महज कतर के जरिए अपनी शर्तें ही नहीं रखी बल्कि अमेरिका को धमकी भी दे डाली है। उसने साफ साफ कहा है कि उसकी मांगे नहीं मानी गई तो अमेरिका निर्णायक जंग के लिए तैयार रहे। अब हर किसी की नजर ट्रंप पर टिक गई है। उधर सऊदी अरब और हुतियों का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक हो रहे हमलों ने कोहराम मचा रखा है। हूती रुकने को तैयार नहीं है और सऊदी अरब किसी भी कीमत पर यमन के आसपास की नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा। ऐसे हालात में घमासान के और बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान जहां सऊदी के साथ एकजुटता की सिर्फ बात कर रहा है, वही तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो हर तरह से सऊदी अरब का साथ देने के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो।
2: और दरअसल इन तमाम बड़ी खबरों पर हम जिक्र करेंगे, इनकी समीक्षा करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर भी जुड़ गए। संजय कुलकर्णी सर का रुख करते हैं। सर, हम हूतियों के खतरे को कैसे देखें? क्या ये बाब अल मंदेब तक ही सीमित है, रेड सी तक ही सीमित है, लेकिन क्या ये सऊदी के लिए बड़ा खतरा है, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं?
3: बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं, ये खतरा है खासकर सऊदीज के लिए है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से लगातार हूतियों के साथ बातचीत पे लगे हुए हैं और हूती उनको बार बार ये कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ सऊदी टैंकर, सऊदी के जितने शिपिंग हरकत है या उनका ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उनको बर्बाद करने में है, हम किसी भी दूसरे के देशों पर हम हमला नहीं करेंगे। तो ऐसे इसमें बड़ा मुश्किल हो गया है सऊदीज को क्योंकि सऊदी चाहे अभी कह रहे हैं कि 24 अरब डॉलर का डील किया है F-35 का, तो उसको तो आने में वक्त लगेगा। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया अलग थलग पड़ चुका है और उस अलग थलग पड़ने के कारण ही ये दिक्कत आ रही है और नुकसान सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से तकरीबन 6 से 8 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करते थे उसकी जगह वो गिर करके तकरीबन 2-2.5 मिलियन बैरल पर डे हो गया है। उसमें उनकी जो कमाई का जो साधन है उसमें जबरदस्त खतरा है। उधर MBS अकेले पड़ चुके हैं, उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। वो इसराइल को बोल रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, अमेरिका को गुहार लगा रहे उनकी मदद करें। अमेरिका बोल रहा है हम मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हूतियों ने कहा है कि आप इस लड़ाई से थोड़ा बाहर हैं। और बाब अल मंदेब को लेकर के जिस प्रकार से लगातार हम कहेंगे कि हूतियों ने ईस्टर्न को पूरा जो है कब्जा कर लिया है, हूतियों का दबदबा देखिएगा, बाब अल मंदेब अपना साना, आपका मोचा, आपका तेज, आपका हदीदा, मतलब लगातार जिस प्रकार से, इतना ही नहीं सऊदी अरेबिया ने 300 एयर अटैक्स किए हैं, 300 कम नहीं है। इतना एयर अटैक करने के बावजूद भी मुझे लगता है हूती लगातार रेड सी के ऊपर पूरा का पूरा मुझे लगता है कब्जा उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इतने नहीं, चाहे वो कह रहे हैं सर पहाड़ी है,
2: बिल्कुल सर, देखिए आपने तो कहा कि सऊदी ने 300 हमले किए, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंटली कितने बड़े अटैक किए थे, लेकिन फिर भी हुतियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, वो लगातार रिवाइव कर बड़े अटैक कर रहे हैं। सर ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका इस युद्ध में कूदा था तो ये कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि देखिए हम लगातार ईरान के वजूद को खत्म कर देंगे, ईरान छोड़िए वो हुती का वजूद खत्म नहीं कर पाए, यहां तक कि अमेरिका के खुद के वजूद पर मिडिल ईस्ट में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब सऊदी अमेरिका का रुख नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है कि वो सीधे ईरान से बातचीत कर ले, वो ओमान को मध्यस्थता के लिए कह रहा है, तो ये सवाड़ा बड़ा कंसर्न है अमेरिका के लिए भी।
3: बहुत ज्यादा, अमेरिका की तो इज्जत दांव पे लग गई है। आप देखिएगा अमेरिका के अंदर ट्रंप का रेटिंग देखिएगा 17%, सबसे लोएस्ट आज तक के इसमें। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से लगातार अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिका ने सोचा और ट्रंप ने खुद कहा था एक महीने के अंदर अब ईरान को कुछ भी नहीं हुआ, ईरान के ऊपर आप हमला कर सकते हैं, उन्होंने ईरान को नुकसान जरूर पहुंचा है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख पा रहे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख पा रहे तो दिक्कत आ रही है। तेल के भाव देखिए ना, $7 प्रति गैलन डीजल हो गया है, $4.91 प्रति गैलन पेट्रोल हो गया है अमेरिका के अंदर, तो इतने भाव बढ़ चुके हैं अमेरिका के अंदर। और खुद ट्रंप जिस प्रकार से यूक्रेन का बोल रहे हैं कि आप रूसी रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर हमला ना करें, वो खुद भी ईरान की रिफाइनरीज के ऊपर हमला करने से बच रहे हैं। ये साफ दर्शाता है अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर में है, और यही प्रेशर आज उनको नॉर्मल अपना जो अमेरिका के अंदर भी उनकी जो छवि है उसमें दाग लग रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से उनका प्रेस फ्रीडम के ऊपर अब उन्होंने हमला शुरू कर दिया, क्या दर्शाता है अमेरिका जो है अब बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ चुका है। और ट्रंप ऐसे लगते जैसे हड़बड़ा गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि करे तो क्या करे, या हुजी कंट्रोल नहीं हो रहे, और हुजी और अमेरिका का गठबंधन लग रहा है, और उसके कारण अमेरिका को अमेरिका सऊदी अरेबिया को बोल रहा है हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमले के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पर हम आपके ऑन बिहाफ हमला नहीं करेंगे, इजराइल भी हमला करने को तैयार नहीं है। ऐसे इसमें सऊदी अरेबिया का बुरा हाल, अमेरिका का बुरा हाल, और ईरान लगातार जिस प्रकार से अपने, मैं कहूंगा कि अपने झंडे के नीचे पूरे के पूरे जो ईरानियन खड़े हैं काबिले तारीफ, जितना भी उनके ऊपर जोर डाला जाए वो वहां पर खड़े हैं, और उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है। और यही कारण है कि अमेरिका अब अमेरिका को ये नहीं लग रहा कि एग्जिट करे तो कैसे करे इस पूरे माहौल में, तो जरूर परेशानी है अमेरिका को, इसमें कोई शक नहीं।
2: रणभूमि में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: In association with
15: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
16: There is a very famous quote ki history repeat itself.
17: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
18: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
17: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: जंग के मैदान में जीत हमेशा दौलत के अंबार या हथियारों की धार से तय हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार वो तय होती है जमीन की जीवटता से और भूगोल की उस हकीकत से जिसे कोई खजाना नहीं खरीद सकता। यही गैर पारंपरिक युद्ध का सबसे पुराना सबक है। मुट्ठी भर लड़ाके भी अगर सही जगह पर खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी सल्तनत को हार का सामना करना पड़ता है। भूगोल की ऐसी ही हकीकत इन दिनों फारस की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी के बीच अरब प्रायद्वीप का एक नया इतिहास लिख रही है। पावर स्टोरी में आपको बताएंगे सऊदी अरब और हूती संघर्ष के जरिए कि आखिर समंदर के संकरे गलियारों पर कौन सा सत्ता संग्राम चल रहा है। मैप रूम में देखेंगे कि तेजी से वो कौन सा खतरा समंदर के नीचे बिछे तारों के तंत्र पर छाया हुआ है। साथ ही हर हफ्ते की तरह आपको मिलवाएंगे इस सप्ताह के भी पावर प्लेयर से, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन की जंग खेतों से लेकर खाने की थाली तक कौन सा संकट लेकर आ रही है और इस संकट के बीच आखिर भारत कौन सी भूमिका निभा सकता है। साथ ही आपको सिग्नल्स में ये भी बताएंगे FATF वो कौन सी रिपोर्ट सामने लेकर आया है जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे गोरख धंधे को बेपर्दा करती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पावर प्ले की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। अरबी भाषा में बाबल मंडप का अर्थ होता है आंसुओं का दरवाजा, और धरती के नक्शे पर बाबल मंडप जिस जगह पर है वो इन दिनों वाकई जहाजों के लिए आंसुओं का दरवाजा साबित हो रहा है, क्योंकि हूथी और सऊदी अरब के बीच चल रहे जंग के बीच यमन के हूथी लड़ाके पाबंदी भले ही सऊदी अरब के तेल टैंकर्स पर लगा रहे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में लगी आग से लेकर दुनिया के कई देशों में बड़ी महंगाई की मार ने कई घरों में आंसुओं का कारण बढ़ा दिया है। क्या है इस लड़ाई के बहाने ताकत का खेल कौन सा चल रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: पश्चिम एशिया के अखाड़े में ईरान अमेरिका के बीच 7 महीने पहले छिड़ी लड़ाई ने दुनिया की 2 ऊर्जा धमनियों में जो ब्लॉकेट लगाया है उसके झटके लगभग हर घर में महसूस हो रहे हैं। संकट और गहरा गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अब अदन की खाड़ी में मौजूद बाब अल मंदब के संकरे गलियारे को भी चोक कर दिया है। यानी पहले जो 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित थी वो सऊदी अरब और हूतियों की लड़ाई से अब बढ़कर 30% तक हो गया है। जाहिर है दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई के बाधित होने ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। जाहिर है इस संकट की आंच भारत तक भी पहुंच रही है क्योंकि भारतीय निर्यात का कुल 20% हिस्सा उसी बाब अल मंदब से होकर गुजरता है जो आगे स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचती है। मौजूदा संकट अगर नहीं सुलझा तो जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे में मुंबई से रॉटरडैम की दूरी 15,700 किलोमीटर से बढ़कर 23,000 किलोमीटर हो जाती है। जाहिर है यह न केवल खर्चीला है बल्कि निर्यात में मुनाफे का मार्जिन कम करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक क्यों हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज किए? क्या ये ईरान का काउंटर प्लान है? आने वाली सर्दी से पहले ऊर्जा ऑर्डर और क्रिसमस कारोबार से पहले दबाव वाला दांव, क्या ये लड़ाई को और लंबा खींचेगा? इसके जवाब में 3 रास्ते नजर आते हैं। सऊदी अरब यहीं थम जाए और हूतियों की कार्रवाई पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा ले तो टकराव फिलहाल काबू में रह सकता है, लेकिन अगर अगला निशाना यानबू जैसे बड़े ठिकानों तक पहुंचे और ड्रोन मक्का तक और मिसाइलें रियाद तक पहुंच रही हों तो अब ये विकल्प नहीं बचता। वहीं बातचीत की मेज पर हूतियों के आगे सरेंडर सऊदी अरब की सल्तनत के लिए सरेंडर से कम नहीं होगा। ऐसे में स्थिति उस मोड़ पर जाती है जहां अमेरिका और पश्चिमी ताकतें ऑयल आउट ऑपरेशन चलाकर हूतियों की ताकत को यमन के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाके तक ही समेट दे। प्रणय उपाध्याय, आज तक।
1: तो चलिए पावर प्ले में अब आपको लिए चलते हैं मैप रूम में, जहां हम आपको बताएंगे कि समंदर के ऊपर तो दुनिया में 2 मोर्चों पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, जंग चल रही है, लेकिन एक नया और बड़ा संकट समंदर के नीचे भी बढ़ता जा रहा है। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं आपकी हमारी जिंदगी पर भी और जेब पर भी, क्योंकि ये जो संकट है ये आपकी हमारी जेब और जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। तो मैप रूम में हम आपको दिखा रहे हैं वो नक्शा जो इस समय पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि यहां पर आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और बाब अल मंदब के। इन दोनों बिंदुओं के इर्द गिर्द दुनिया की सियासत इस समय चक्कर लगा रही है क्योंकि जो ऊर्जा का संकट है उसके लिए ये 2 सबसे बड़े प्रेशर पॉइंट। लेकिन एक प्रेशर पॉइंट समंदर की सतह के नीचे नजर आ रहा है, यानी समंदर के तल पर। उसकी भी चर्चा करते हैं क्योंकि उसकी बात जरा कम होती है, लेकिन वो दुनिया के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है क्योंकि सैन्य ऑपरेशन वित्तीय लेनदेन में ये जो संकट है ये एक बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए बन सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे, क्योंकि उस छोटी सी बानगी जरा यहाँ इस नक्शे के ऊपर देखिए, क्योंकि ये बाल्टिक सागर है, ये मैदान है रूस और यूक्रेन की जंग का, और इस बाल्टिक सागर में इस ब्लैक सी के इलाके के अंदर यहाँ पर केबल्स कटी थी और 11 से ज्यादा अंडरसी केबल्स जो है, यानी जो पूरी दुनिया के अंदर डेटा कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वित्तीय लेन देन, जो कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स होते हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं, वो डेटा ले जाती हैं, उन केबल्स को नुकसान हुआ था। और खतरा इस बात का है कि अब ये संकट जो है, जो जंग का संकट है, वो दुनिया के 95% जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए खतरा बन सकता है। और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अदन की खाड़ी में अब हूतियों के नेवल माइंस बिछाने की खबर आ रही है। यानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है, वहीं पर अब ये जो अदन की खाड़ी का ये जो पूरा इलाका है, जो बाब अल मंदब का इलाका है, जहां हूतियों ने एक नया नियंत्रण स्थापित कर लिया है खुद अदन की खाड़ी के बीच में, यानी जो हर्निश का आइलैंड है, पेरिम आइलैंड है, जो इस जगह पर मौजूद है, और यहां पर उन्होंने नेवल माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच में सबसे ज्यादा बड़ा खतरा इस बात का है कि नेवल माइंस के कारण यदि डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो अंडरसी केबल्स हैं वो प्रभावित हुई तो दुनिया का करीब 17% जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो प्रभावित हो सकता है, जो इसी अदन की खाड़ी के नीचे जो समुद्र की सतह है वहां से होकर गुजरता है और ये भारत तक भी आता है। यानी आपके हमारे डेटा कनेक्टिविटी पर इस लड़ाई का सीधा असर हो सकता है। साथ ही लाल सागर के रास्ते यूरोप से एशिया तक करीब 90% यहाँ जरा आंकड़ा देखिए, ये 90% का जो आंकड़ा है ये एक बड़ा संकट हो सकता है अगर नेवल माइंस यहां पर बिछाई गई, क्योंकि ये रास्ता बेहद संकरा रास्ता है, जो आदन की खाड़ी का रास्ता है जिसे बाबल मंदेप कहा जाता है वो बहुत ही संकरा चोक पॉइंट है, और यदि यहां पर किसी तरीके का संकट आता है, यहां पर अंडरसी केबल से यदि कटती हैं, प्रभावित होती हैं, तो यूरोप और एशिया के बीच में करीब 90% की जो डेटा कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो प्रभावित हो सकती है। भारत पर इसका असर पड़ना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि भारत से भी कई केबल्स जो हैं, जो कि यूरोप से कनेक्ट होती हुई यहां से आती हैं, उन डेटा की जो कनेक्टिविटी है उसकी केबल्स जो हैं वो यहीं तक पहुंचती हैं, और ये जो केबल्स हैं ये मुंबई के पोर्ट और अन्य पोर्ट्स जो हैं भारत के वहां तक पहुंचती हैं, और इसीलिए इसे एक नया और बड़ा खतरा माना जा रहा है, जो समुद्र की सतह पर चल रही जंग से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। इसके अलावा इस संकट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि समुद्र के नीचे जो सबमरीन्स का पूरा जाल बिछा हुआ है, जो अंडरसी केबल्स हैं, सबमरीन केबल्स हैं, इसके जाल के विकल्प के को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर हम इन पर कब तक और कितना रिलाय कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री केबल दुनिया के करीब करीब 99% जो कम्युनिकेशन है, यानी जो संचार हो रहा है, यदि आप पावर प्ले का ये शो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठ कर देख रहे हैं तो भी ये मान के चलिए कि आप तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचाने में बड़ी भूमिका उन अंडरसी केबल्स की है जो इंटरनेट और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाती है। इसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजाना करीब करीब 10 लाख या 10 खरब डॉलर का वित्तीय लेन देन जो है वो इन अंडरसी केबल्स के जरिए होता है, यानी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, और यदि इन केबल्स को कुछ होता है तो उसका असर सबकी जिंदगी के ऊपर पड़ना बिल्कुल लाजमी है। समुद्री केबल्स की संख्या करीब 600 है और लंबाई 14 लाख किलोमीटर की है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुनिया की जो समुद्री कनेक्टिविटी है, समुद्र की सतह के नीचे से दुनिया को जोड़ने वाली जो ये केबल्स हैं, ये कितनी जरूरी हैं, कितनी लंबी हैं, और ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिसकी सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो जल है, जलराशि है, उसके अंदर है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर नेवल माइंस इस इलाके के अंदर बिछती हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और नया संकट खड़ा कर सकती हैं, रूस यूक्रेन की जंग और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच। ताकत के किसी भी खेल की चर्चा खिलाड़ियों के बिना तो अधूरी है, तो चलिए आपको पावर प्लेयर से मिलवाते हैं, वो शख्सियतें जिन्होंने इस हफ्ते न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि दुनिया में जो कुछ हुआ उसे कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो ये जो आपको यहाँ पर 5 चेहरे नजर आ रहे हैं इस हफ्ते क्यों सुर्खियों में रहे, जरा सबसे पहले आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको जो पहला चेहरा नजर आ रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और बीते हफ्ते भारत के अंदर जो ब्रिक्स की समिट हुई उसने दुनिया की बिसात के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पावर बैलेंसर के तौर पर साबित किया, दुनिया के सामने दिखाया कि किस तरीके से संबंधों का संतुलन साधा जाता है, ये नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। तो इसलिए क्वाड हो चाहे वो ब्रिक्स की समिट हो, इन तमाम मोर्चों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर यहां पर नजर आते हैं। दिल्ली में ब्रिक्स की समिट का जो सफल आयोजन है वो भारत की यही जो कुशल नीति है उसको दिखाता है। इसके अलावा चाहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत की मेजबानी में दोनों न केवल आते हैं, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात करते हैं, और साथ ही सितंबर में भारत में क्वाड की शेरपा समिट भी हुई, और कुछ ही दिनों बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आएंगे, जहां G20 की भी शिखर बैठक होगी और साथ ही क्वाड की शिखर बैठक होगी, यानी ग्रुपिंग चाहे क्वाड की हो चाहे ब्रिक्स की हो, एक शख्सियत एक देश दोनों तरफ नजर आता है, वो भारत है, शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पावर प्लेन में अब आपको अगले चेहरे से मिलवाते हैं, क्योंकि यहां आपको नजर आ रहा है चेहरा मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और इस समय शायद अपने कार्यकाल या अपने जीवन काल के बेहद मुश्किल दौर में सऊदी अरब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका से उन्होंने मदद की गुहार की, लेकिन अमेरिका से अभी सीधे तौर पर कोई सैन्य मदद सऊदी अरब को नहीं मिली है। मोर्चा गहराता चला जा रहा है, संकट बढ़ता चला जा रहा है, सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सऊदी अरब की जो सत्ता है अरब इलाके के अंदर उसको भी हूती विद्रोही चुनौती दे रहे हैं। वो हूती विद्रोही जो चप्पल पहने हुए नजर आते हैं, हाथ में हथियार लहराते नजर आते हैं, और उन्होंने सऊदी अरब की लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। संपर्क लगातार किया जा रहा है। क्राउन प्रिंस जो है जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने जद्दा में यूएस के जो सेंटकॉम के चीफ हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उनके साथ मुलाकात की और साथ ही अमेरिका से क्या मदद हासिल की जा सकती है, क्योंकि मक्का अलायंस भी बनाया था लेकिन वो किसी काम का फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। मिस्र के आपात दौरे पर भी गए ताकि पड़ोसियों से कुछ मदद हासिल की जा सके, क्योंकि सुएज कनाल से जाने वाला जो पूरा कारोबार है, जो ऊर्जा आपूर्ति है, वो बाधित होती है यदि हूथी वहां पर इस तरीके का नाका लगाते हैं। और हूथियों ने फिलहाल तो ये कह दिया है कि किसी भी तरीके से वो सऊदी के ऑयल टैंकर्स को यहां से नहीं निकलने देंगे। और अब विचित्र चीज ये है कि सऊदी अरब, जो कि इसराइल के साथ में विपरीत धुरी पर खड़ा हुआ है, अब उसके साथ संबंध बनाने के लिए कोशिशें अंदर खाने चल रही हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन यहां पर अब आपको दो चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं, जरा उन चेहरों पर भी गौर करिए, क्योंकि ये भविष्य के दो ऐसे चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द ताकत की नई इबारत तय होगी, क्योंकि यहां पर आपको चेहरा नजर आ रहा है दारियो अमेदाई का और साथ ही सैम ऑल्टमैन का, यानी चैट जीपीटी, ओपन एआई और साथ साथ एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं दारियो अमेदाई, उनका चेहरा। और इनकी चर्चा यहां इसलिए हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में बीते कुछ दिनों में अचानक से एक बहस खड़ी हुई कि क्या एआई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की जरूरत है, और वो इसलिए जताई जा रही है क्योंकि खुद दारियो अमेदाई और सैम ऑल्टमैन जैसी शख्सियतें ये कह रही हैं कि अगर इस पर अभी ब्रेक नहीं लगाया गया तो शायद इंसानियत को खत्म करने की रफ्तार तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जा सकता है। और इसीलिए ये दोनों जो कि एआई के लिहाज से दुनिया के पावर लीडर्स हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि वो इसकी रफ्तार रोकने के लिए न केवल तैयार हैं बल्कि इस बात को लेकर कोशिशें भी उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में शुरू कर दी है। साथ ही आपको यहां पर एक महिला शख्सियत नजर आ रही है, जरा इनसे भी मिलिए क्योंकि ये दुनिया के एक अलग पावर डायनेमिक पर बात कर रहे हैं। यहां पर सिडनी स्वीनी है। सिडनी स्वीनी हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। हाल ही में इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट किया था और उस एडवर्टीजमेंट में कहने को तो ये प्रमोशन कर रही थी, प्रचार कर रही थी महिला एथलीट्स को लेकर, महिला खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन इसका विरोध महिला खिलाड़ियों ने ही किया क्योंकि उनका कहना था कि शरीर दिखाकर उनकी क्षमता, उनके खेल, उनके हुनर का की नुमाइश नहीं होनी चाहिए बल्कि उनकी काबिलियत वो अपने खेल के मैदान में जो साबित करती हैं सिडनी स्वीनी को, उस पर बात करनी चाहिए थी। और सुर्खियों में सिडनी स्वीनी इसी विवाद, इसी बहस को लेकर छाई रही क्योंकि महिला एथलीट्स ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया। हालांकि खिलाड़ियों के विरोध के बावजूद फिलहाल जो सिडनी स्वीनी है उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई सफाई नहीं आई है। पावर प्ले में अब बात करते हैं हम उस सेगमेंट की जिसे हम कहते हैं इंडिया इम्पैक्ट, यानी वो जगह जहां हम बात करते हैं दुनिया के उन तमाम घटनाक्रमों की जो भारत पर न केवल असर डालते हैं बल्कि किसी संकट, किसी चुनौती के बीच भारत की आखिर क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग की, क्योंकि इस जंग के साथ साथ एक नया और बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, वो है खाद्य संकट। और इस खाद्य संकट के बीच आखिर भारत क्या भूमिका निभा सकता है, उसकी चर्चा हम यहां इंडिया इम्पैक्ट में करते हैं। तो इंडिया इम्पैक्ट में आपको दिखाते हैं जरा एक आंकड़ों की तस्वीर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में आपने ये तस्वीरें तो बहुत सारी देखी हैं कि आखिर किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के गेहूं भंडारण पे और खासतौर पर खाद्यान्न भंडारण पर भी जबरदस्त वार कर रहे हैं, यानी आर्थिक रूप से और साथ ही दोनों की खाद्य सुरक्षा की कमर तोड़ने की भी एक कोशिश एक दूसरे की तरफ से की जा रही है। रूस यूक्रेन पर वार कर रहा है, यूक्रेन रूस पर वार कर रहा है, दोनों देश एक दूसरे के अन्न और गेहूं भंडारों पर जबरदस्त वार कर रहे हैं और ये वार दोनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है और ये घेराबंदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन को दुनिया की जो ब्रेड बास्केट है वो कहा जाता है, यानी एक समय था जब यूक्रेन में जो गेहूं उगाया जाता था वो इजिप्ट तक और दुनिया के कई देशों तक जाता था, यानी लोगों की ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेड बनकर वो पहुंचता था। लेकिन इस लड़ाई ने यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और ये सारा निर्यात था ये ब्लैक सी के पोर्ट से होता था और इसी ब्लैक सी के पोर्ट के इर्द गिर्द रूस ने नाकेबंदी कर दी है। रूस की तरफ से जो वार किए जा रहे हैं उससे यूक्रेन के जो गेहूं भंडारण हैं उन पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। यूक्रेन में करीब करीब 90% रिटेल खाद्य व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। यूक्रेन के अंदर लॉजिस्टिक्स यानी जब खेत से लेकर खलिहान और खलिहान से लेकर निर्यात के बंदरगाह तक सामान पहुंचाया जाता है, गेहूं पहुंचाया जाता था, उसका जो पूरा नेटवर्क है उसे रूस तबाह कर रहा है और इसके कारण यूक्रेन में 90 लाख टन अनाज सड़ सकता है, ये भी आशंका लगातार जताई जा रही है क्योंकि खेतों में किसानों ने अनाज तो उगा लिया, उन्होंने गेहूं उगा लिया, लेकिन वो खलिहानों तक नहीं पहुंच पा रहा, और यदि खलिहानों तक पहुंच गया तो वहां से बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पा रहा, और ऐसे में इसके सड़ने की आशंका है। एक साल में यूक्रेन से आधा हो गया है जो अनाज का निर्यात। लेकिन खाने पीने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, वैसे तो ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो फूड सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुई है, जिसका असर आपके हमारी थाली तक भी पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इस चिंता की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में खाद्य असुरक्षा और अकाल का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन कहीं खतरा तो कहीं अवसर भी बनते हैं, और इसी आपदा में एक अवसर शायद भारत के लिए हो सकता है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक भारत है, और ऐसे में भारत के लिए एक निर्यात का अवसर बनता है। और हाल ही में सरकार ने जो 4 साल से बैन लगा हुआ था गेहूं के निर्यात पर, उस पर से अपनी रोक हटाई है, यानी भारतीय किसानों के लिए एक मौका हो सकता है। हाल ही में कुछ समय पहले

0: मिस्र जो कि दुनिया का बड़ा गेहूं आयातक है, उसने भारत के साथ भी संपर्क किया था, उसने भारत के साथ गेहूं खरीद को लेकर जो है वो सौदा किया, या एक तरीके से कह सकते हैं कि आप MOU किया कि अगर जरूरत पड़ी तो मिस्र भारत से गेहूं का आयात कर सकता है, यूक्रेन पर निर्भर देशों को गेहूं का निर्यात भारत कर सकता है। तो यूक्रेन का ये संकट भारत चाहता है कि खत्म हो, लड़ाई खत्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक अवसर भी देता है कि भारत चाहे तो अपना गेहूं का निर्यात बढ़ा सकता है, और न केवल उस इलाके के अंदर, पूरे एशिया और अफ्रीका के इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो गेहूं का उत्पादक देश है भारत, वो निर्यात बढ़ा सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। और हम ताकत के खेल की चर्चा इसीलिए करते हैं कि कहीं अगर संकट बनता है तो संकट के बीच कहीं ना कहीं अवसर के दरवाजे भी खुलते हैं, और ताकतवर वही है जो संकट के बीच में खुले अवसर के दरवाजों को न केवल पहचान ले बल्कि उनसे अपनी गाड़ी को भी निकाल ले। और पावर प्ले में अब हम चलेंगे उस सेगमेंट की तरफ जहां पर हम बात करते हैं उन संकेतों की जो अलग अलग इलाकों से निकल रहे हैं, जो दुनिया को प्रभावित करते हैं, भारत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहां पर अब हम चर्चा करेंगे FATF की ताजा दो रिपोर्ट्स की जो बताती हैं कि कैसे ऑनलाइन गेम की आड़ में सट्टा और हवाला का जो धंधा चल रहा है वो न केवल नार्को टेररिज्म को बढ़ा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में एक पैरेलल वित्तीय व्यवस्था चला रहा है जो लोगों को चूना लगा रही है। आपको सिग्नल में वही दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये कारोबार कितना बड़ा है, और आखिर FATF यानी UN की वो संस्था जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कही जाती है, जी हाँ वही संस्था जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, आखिर वो क्या चिंता जता रही है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जिसकी इन दिनों बड़ी चर्चा होती है, बहुत सारे युवा, बहुत सारे बच्चे इस खेल को रोचकता में यूं ही खेलते हैं लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि वो इसके जाल में भी फंस सकते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग का और सट्टा का जो पूरा धंधा है वो ऑनलाइन गेमिंग पर FATF की चिंता को उभारने वाला है, और इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि UN की संस्था है, दुनिया के वित्तीय कारोबार और लेन देन पर निगरानी रखती है, उसने चिंता जताई है। और उसने क्या कहा है जरा यहां पर देखिए, ये दो रिपोर्ट्स हाल ही में आई हैं और ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि 80% ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य जरिया बना लिया है, यानी ऑनलाइन गेमिंग और इसी के बहाने एक सट्टे का कारोबार चल रहा है, और 80% से ज्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है यानी हवाला का जो कारोबार हो रहा है, गलत तरीके से पैसे को देश से बाहर ले जाया जा रहा है, वो इसी ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चलाया जा रहा है। एशिया, पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशंस और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सरकारों की निगरानी से बाहर रहने की हर तमाम कोशिश तकनीकी जरिए से की जा रही है, और यही सरकारों के लिए चिंता बनती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में प्रोफेशनल बिचौलियों की भी भूमिका उभर कर सामने आ रही है, जिसको लेकर FATF ने चिंता जताई है, और उन्होंने कहा है कि सरकारों को इस बारे में गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बारे में, और सख्ती से नकेल कसने की जरूरत है। कई जगह गैर कानूनी बाजार और कानूनी तौर पर जो जुए चल रहे हैं उसका भी जो तार है, उसके भी जो रिश्ते हैं, वो इसी ऑनलाइन गेमिंग के गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं, यानी लोगों का पैसा लगवाया जाता है और उसके बाद वो पैसा साइफन ऑफ कर दिया जाता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है और लोग हाथ मलते रह जाते हैं, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें कई बार सरकारें भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन भारत ने इसी तरीके की एक एप्लीकेशन के ऊपर काम किया था जिसकी खबरें शायद आपने भी देखी होंगी, और FATF ने भी यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है कि भारत ने जिस तरीके से महादेव बैटिंग ऐप के ऊपर यानी जुआ खेलने वाले या सट्टा लगाने वाले जिस एप्लीकेशन पर कार्रवाई की थी उसको एक नजीर के तौर पर लिया जाना चाहिए, उसे देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से भारत ने इस पर नकेल कसी है। और ऑनलाइन गेमिंग के इस गोरख धंधे की चर्चा भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार सरकारों के लिए संकट का सबब बन रहा है और पूरी दुनिया इससे हलकान हो रही है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस पर टैक्स तो लगाए जा रहे हैं लेकिन लोगों का पैसा देश से बाहर ना जाए, उसे सुरक्षित बनाया जा सके, इसके लिए भी सरकारों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पावर प्ले के आज के शो में बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ২০১৭ के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे

भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?

0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
1: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
1: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
1: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

पक्ष पर बड़ा हमला, हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व राष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में मिशन 2027 की लड़ाई, रोजगार पर गर्मा, सीएम योगी ने 912 नियुक्ति पत्र बांटे, कहा पहले भर्तियों में होता था भाई भतीजावाद, अखिलेश बोले बीजेपी जाएगी तभी नौकरियां आएंगी। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप।

0: लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं आसमान में उठती दिखी आग के लपटे ज़ेलेंस्की ने तबाही का वीडियो किया जारी। राजस्थान के जोधपुर में भारत जापान का युद्धाभ्यास, दोनों देशों के एयरफोर्स प्रमुख ने भरी तेजस में उड़ान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रमाणिक नंबर वन शो दंगल। सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब होते होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच में कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, राहुल गांधी के साथ संवाद हुआ और इस दौरान एक मां का जिक्र भी आया और फिर शुरू हो गया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी राहुल गांधी के व्यवहार और मंच पर हुई बातचीत पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रहे कि बीजेपी की बातों में दम ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक व्यंग होना चाहिए या नहीं, सवाल है कि व्यंग की सीमा कहां तक होनी चाहिए और किसी सार्वजनिक मंच पर हुई टिप्पणी के लिए आयोजक की जवाबदेही किस हद तक तय होनी चाहिए। इंदौर का यह विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और राजनीतिक जवाबदेही की बहस बन गया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक कॉमेडियन के शब्दों का नहीं, सवाल उस सियासी सोच का है जिसमें न तो विरोध की धार के खात्मे का पता है और न ही व्यक्तिगत कटाक्ष की शुरुआत का पता।

0: इंदौर के मंच पर उठे ठहाकों पर अब सियासत में जवाब मांगे जा रहे हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे संवाद और उसके संदर्भ को समझना भी आवश्यक है, जरूरी है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और फिर हम करेंगे दंगल में बहस की शुरुआत।
1: हेलो, इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट, गलगोटिया।
3: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी, नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
3: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
4: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो अगर आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
5: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
6: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
7: बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
8: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी

0: जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
2: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और

0: क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से, कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
2: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब दंगल की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी बहस केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर एक, राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री से कांग्रेस को क्या हासिल, क्या फायदा? सवाल नंबर दो, क्या इंदौर विवाद से छात्रों के मुद्दों की गंभीरता को धक्का पहुंचा है, चोट पहुंची है? और सवाल नंबर तीन, क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम में हास्य व्यंग को बीजेपी जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है? और चर्चा की शुरुआत करते हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निगहत अब्बास हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ एलजेपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार हैं, और कुछ देर के बाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामी भी जुड़ेंगे। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत निगहत अब्बास आपसे, कि आरोप राहुल गांधी पर सीधा ये कि वो एक ट्रोल जैसे बिहेव कर रहे हैं, राजनीतिक परिपक्वता जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं है। मतलब एक इतना सेंसिटिव, इतना गंभीर मुद्दा जैसे आप उठा रहे हैं और वहां पर हंसी ठिठोली हो रही है, मिमिक्री चल रही है।
4: सबसे पहले तो राजीव जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, आपने अभी वीडियो चलाई अपनी पूरी स्टोरी में, और मैं जानना चाहती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये ऑफिशियली मौजूद है तो उस बात का जवाब भी दे, कि वो कौन सी एग्जैक्ट लाइन है जिस लाइन में देश के प्रधानमंत्री की माता जी या किसी की भी माता जी का अपमान हुआ हो, एग्जैक्ट लाइन बताइएगा। वहां पर जहां तक मैंने ये वीडियो देखा, सिर्फ मिमिक्री हुई है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हंसने के तरीके की मिमिक्री हुई है, माय फ्रेंड वाली डिप्लोमेसी की मिमिक्री हुई है, और पॉइंट चेक की मिमिक्री हुई है। अब जितना मैं देश के लोकतंत्र को समझती हूँ, तो मिमिक्री कर देना देश के प्रधानमंत्री की ना ही इंसल्ट होती है और ना ही वो कोई लोकतंत्र का अपराध है, ना ही देशद्रोह, ना ही माता जी का अपमान हुआ है। माँ शब्द आ जाने से, माता जी का अपमान हो जाने में जमीन आसमान का फर्क है, पहली बात। तो दूसरी बात, इनफैक्ट बीजेपी खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता जी का पॉलिटिकल इस्तेमाल, इमोशनल हेडलाइन बनाने के लिए कर रही है। और राजीव भाई, ये कौन है जो महिला सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से गुजरात के एक एआई जनरेटेड फोटो सोनिया गांधी जी की बनाई गई, जिसमें उन्हें टेबल पर नाचता हुआ शराब के बीच में बार में अभद्र तरीके से दिखाया गया। तब इनकी जो महिला सम्मान की पॉलिसी है वो तो एरोप्लेन मोड पर चली गई थी। एक 78 ईयर ओल्ड महिला, जिनके परिवार के कितने सदस्यों ने अपने देश के लिए शहादत दी है, वो प्रधानमंत्री जो शहीद हो गए, उनकी धर्म पत्नी जिनके अगर पैर धोके देश के, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज अगर ये बीजेपी वाले पैर धोके पी लेना सोनिया गांधी जी के, तो इनके महिला अपमान के रजाने कितने पाप धुल जाएंगे। वो ऐसी महिला, और उन्होंने, मैं उस फोटो को दिखाने की हिमाकत भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तस्वीर इतनी अभद्र है।
3: ठीक, आपका निगत, मैंने ये पॉइंट सुना, मैं इन सवालों के साथ जाऊंगा प्रदीप के पास, लेकिन उससे पहले निगत, मतलब आप छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप सवालों के विषयों को उठा रहे हैं, उनके शिकायतों को उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इन इन सवालों पर तो आपको सरकार से जवाब देना चाहिए, सफाई लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कार्यक्रम आप करते हैं, ओपोजिशन में आप है, लेकिन बार बार सफाई कार्यक्रमों के बाद आपको ही देनी पड़ती है? मतलब नैरेटिव ही चेंज हो जाता है, आप सवाल उठाने के लिए जाते हैं, फिर आपको ही, आप ही सवालों के केंद्र में आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
4: ये तो राजीव भाई अपने एकदम ही नस पकड़ ली, ये ऐसा क्यों है कि नैरेटिव बदल जाता है? अब ये तो बीजेपी वाले बताएं, टेक्नोलॉजी बताएं, मैं आपको नहीं कह रही, पर मीडिया चैनल से बताएं ये क्यों कवर हो रहा है जिस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है। जगदीश के प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान ही नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल टूल की तरह बीजेपी

0: इस्तेमाल करी, तब क्या होना चाहिए था मैं बताती हूँ। आपने कहा मुद्दों की बात, वो छात्रों की गूंज थी। इतने स्टूडेंट्स वहां पर आए थे, छात्रों की गूंज में बेरोजगारी की गूंज थी, वहां पेपर लीक की गूंज थी, अटके हुए रिजल्ट्स की गूंज थी, जो बढ़ती हुई फीस है स्कूल में और घटती हुई स्कॉलरशिप है उसकी गूंज थी, टूटते हुए स्कूल्स और कॉलेज जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की गूंज थी, वहां गूंज थी कि नौकरी, डिग्री हाथ में होने के बाद भी नौकरी हाथ में नहीं है, इस चीज की गूंज थी, लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसकी गूंज
1: ठीक
0: थी।
1: है।
0: वो गूंज तो बीजेपी वाले डर रहे हैं उस बात से। आज जब देश का युवा
1: अच्छा, एक एक लास्ट लास्ट सवाल निगत इसी पर है, क्या
0: प्रधानमंत्री
1: अवॉइड अवॉइड नहीं की जा सकती थी? इतना इतना गंभीर माहौल था, क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था मिमिक्री हास्य व्यंग को?
0: सुनिए, मेरे को एक बात बताइए राजीव जी, मतलब नरेंद्र मोदी जी का मिमिक्री कॉमेडी अगर कर दी, सटायर अगर कर दिया तो वो तो इंसल्ट है, लेकिन सोनिया गांधी जी की जो एआई जनरेटेड अभद्र बार में फोटो बनाने गई, वो
1: ठीक
0: कौन
1: है,
0: सी क्रिएटिविटी है? हिपोक्रेसी क्यों है? महिला सम्मान के नाम पे कांग्रेस की विधवा कहा गया था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सोनिया गांधी जी को, तब महिला सम्मान कहा गया था,
1: ठीक है
0: जो
1: निकल।
0: उसकी पर्ची बना ली थी, आपको याद होगा, विधवा शब्द का भी राजनीतिक इस्तेमाल करने वाली ये पार्टी किस मुंह से महिला सम्मान का बात की
1: ठीक
0: बात
1: है
0: कर रही है ये
1: प्रदीप,
0: बताएं।
1: प्रदीप अब आप चर्चा में आए हैं। प्रदीप, आप पर भी आरोप ये लगता है कि आप राजनीतिक व्यंग, आप तो आलोचनाओं को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी और वहां पर पहुंचे स्टूडेंट्स की इतनी शिकायतों को आपने नजरअंदाज कर दिया और आपने एक पॉइंट को उठा दिया, उसको पकड़ लिया ताकि जो गंभीर प्रश्न है वो छुप जाए।
2: देखिए राजीव जी, मैं इंदौर से आता हूं और जब राहुल गांधी ने ये एक ट्रोलर जैसे बिहेव किया था, इंदौर का एक युवा मुझे इसने तस्वीर भेजी और इसने कहा कि हमको लगा था कि हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंदौर के अंदर आए हैं, पर हम अचंभित हो गए कि एक चीप ट्रोल उस वक्त स्टेज के ऊपर खड़े थे। तो मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं, क्या वो जो कृत्य किया गया उससे इस देश के छात्रों का भला होगा? क्या उससे हॉस्टल के मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा? क्या उससे रोजगार की बात होगी या एक मिमिक्री होगी? राजू श्रीवास्तव के एक मिमिक्री में कैरेक्टर हुआ करता था गजोधर। राहुल गांधी गजोधर हो जाएं, समय रैना जैसे एक्टिंग कर ले, कुणाल कामरा का जॉब अब राहुल गांधी को आउटसोर्स कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी में, वो सब कर ले, पर वो एलओपी की पोजिशन पे है और एलओपी की पोजिशन के ऊपर कोई भी मस्करा ऐसे स्टेज पे नहीं कर सकता। इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब वहां पे कहा गया, अगर इनने कहा कि इनने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाने का प्रयास किया और एक मां की बात करी, हमें अच्छे से याद है बूढ़ी मां जब सामने तस्वीर सामने चेयर लेने का प्रयास किया गया था, वो एक गरीब मां थी बंगाल की। अब मान लीजिए राजीव जी, उसमें आप किसी भी देश के जनमानस की मां होती, आपकी होती, किसी भी और की होती, मान लीजिए उस रैली के अंदर, क्या आपको किसी को भी सही लगता? क्या ये कोई भी एक मैन जो पब्लिक लाइफ के अंदर है, क्या ये मर्यादा है कि देश के गरीब की मां को इस तरीके से मजाक उड़ाया जाएगा जस्ट बिकॉज वो गरीब है?
1: नहीं, वो
2: ये बड़ी
1: ये
2: बात
1: कहना
2: ये है
1: कि वो सब
2: इसकी
1: होता
2: बड़ी
1: है,
2: बात ये है कि राहुल गांधी देश की जनता से नफरत करने लग गए। मैं कहता हूं, अच्छा चलिए राजीव जी, इसके पहले देश की इतनी बड़ी डिप्लोमेसी की जीत हुई थी, ब्रिक्स में भारत कंसेंसस बिल्डर था, ये मैं ही नहीं कह रहा, दुनिया भर की हेडलाइन कह रही है। ट्रोलर राहुल गांधी को क्या लगा? राहुल गांधी ने क्या मिमिक्री एक्ट किया? संदीप दीक्षित के साथ एक महिला का अपमान किया? राहुल गांधी के करीबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक जेएनयू के प्रोफेसर है, 11 महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के ऊपर उनपे आरोप लगे हैं। ये होता है महिला उत्पीड़न पे राहुल गांधी का स्टैंड और उस पर उनकी शांति। युवाओं की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर केरला के अंदर है जो कांग्रेस शासित राज्य है। अगर हम बात करें हॉस्टल की, सबसे कम हॉस्टल अगर कहीं बने पंजाब और केरला के अंदर बने। पर मैं आपसे मुख्य बात कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक लाइफ के अंदर रहता है, वो अगर एक लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर है, तो क्या वो एक ट्रोलर जैसे एक्ट कर सकता है? और ये मैं ही नहीं कह रहा, अभी कल ही देश के डूसू के नतीजे आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देश का युवा, देश का जेंसी बात करता है, उसने क्या बोला? वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है, कांग्रेस और एनएसयूआई की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है, एक भी नोटा के बराबर कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई। और वापस उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, हम अपने मुद्दों का सोल्यूशन चाहते हैं, इसीलिए एबीवीपी को जीत हुई। चंडीगढ़ के अंदर भी ये हुआ, मंगलुरु के अंदर ये भी हुआ, केरला के अंदर भी हुआ। तो देश का युवा तो आईना दिखा रहा है ना, और शायद इसीलिए राहुल गांधी अपना मेंटल सेम्बलेंस खो चुके हैं और वो जान चुके हैं कि अब वो नेता तो हो नहीं सकते, वो एलओपी के लिए फिट नहीं है, तो चलो एज अ प्रोफेशनल कॉमेडियन बन जाए, प्रोफेशनल ट्रोलर हो जाए। पर पीड़ा ये है कि इस देश का विपक्ष दल का नेता एक ट्रोलर बन चुका है और वो देश के गरीब की, मैं कह रहा हूं उस रैली के अंदर कोई भी गरीब ना हो, उससे इतना ज्यादा घृणा कर रहा है और देश के गरीब से नफरत कर रहा है।
1: में जवाब दे फिर अमित जी और धीरेन्द्र गिल जी के पास जाऊंगा, सिर्फ 30 सेकंड में
2: निकल नहीं निकाला।
1: निगत आवाज
0: आ रही है? जी जी, मैं इसी जोड़ रही थी और अभी कुछ ऑडियो में है, या तो आप
1: निगत वो बीजेपी के पॉइंट्स तो आपने सुने ही, लेकिन साथ साथ में जो छात्रों की गूंज है उसका इम्पैक्ट कहाँ है? 200 चुनावों के रिजल्ट आए हैं, एनएसयूआई कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी, तो जेंजी तो एक तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी की बातों को।
0: मतलब ये ना, जब झूठ बताकर भंडारी जी यहाँ पर आंकड़े सही देते नहीं है और जब इस तरह की बातें करते ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि बिना आंकड़ों के बैठ कैसे जाते हैं। मुझे ये बताएं, जो परसेंटेज है, जो वोट परसेंटेज है जो डूसू में एबीवीपी को मिला है, वो क्यों 48% से घटकर 43% हो गया? और वही कांग्रेस का जो एनएसयूआई का है, वो जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का, वो 40% तक पहुंच गया। तो यहाँ पर देखिए, जो सिस्टम, करप्ट सिस्टम चल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, और ये जो एजुकेशन सिस्टम पर और जो चुनाव पर जो इन्होंने जोर बना रखा है, जो चुनावी नागरिक लेकर आते हैं उसका
2: हमेशा ही रोते रहते हो क्या? कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी चुनाव आयोग, कभी सिस्टम, हमेशा रोते रहते हो क्या? बचपन में कांग्रेस पार्टी रोई नहीं थी क्या?
0: परिषद में हुई है कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई की जीत पर चर्चा कर लीजिए।
2: मतलब ये हमेशा रोते रहते हैं, देश का युवा इनको मैंडेट के बताया कि सफाई नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा एक बहाना लेके आते हैं। नहीं नहीं, हमेशा रोते रहते हो, जब देखो रोते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए कोई बहाना हो गया, जहाँ चंडीगढ़
1: में दोनों साथ साथ में बोलेंगे तो दोनों की बात ही नहीं आ पाएगी। एक ही करके मैं सबको पर्याप्त समय दूंगा और मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि निगत का ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, तो एक बार उसे भी ठीक करें। निगत मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका ऑडियो भी बहुत क्लियर नहीं है, उसे भी एक बार दुरुस्त करवाते हैं। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपने क्या सुना कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप साथी भी हैं, क्या अवॉइड किया जा सकता है? आप इतने सीरियस विषयों को उठाते हैं, आपको पता है कि जो गंभीरता है फिर वो साइडलाइन हो जाती है और जो उसमें जो हल्कापन है उसको वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। अवॉइड किया जा सकता था मिमिक्री?
3: देखिए, पुलकित जो भी कॉमेडियन थे वहां पर, जिस तरह की बातें हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक मंचों पे महिलाएं, चाहे कोई भी हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, इंडिपेंडेंट हो, ट्रोलर हो या कोई भी हो, महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी, मेरे नेता मानी थी चौधरी, हमेशा बहुत संवेदनशीलता से हमारे यहाँ बातचीत होती है। तो मुझे लगता है कि पुलकित जैसे जो भी नौजवान ये हैं, किसी भी आप मंच पे जाइए, मोदी जी से विरोध तो आपका अच्छा है, लेकिन इस तरह की बातों से हमें अवॉइड करने में हमारी बेहतरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी खुद, बीजेपी खुद, आरएसएस खुद, उसने इस देश में कोई स्टैंडर्ड तय किया है? मेरे फेलो पैनलिस्ट जो भी बैठे हुए हैं, प्रदीप तो पहले मतलब रिपोर्टर और एंकर हुआ करते थे, ये जर्सी गाय किसके बारे में कहा गया था 90 के दशक? ये कांग्रेस की विधवा खुद, दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, एक क्रिश्चियन महिला के बारे में, कांग्रेस की विधवा, आप सोचिए इतनी शर्मनाक हरकत तो कोई लफंगा भी नहीं करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की हमें शर्म आती है, हमें बुरा लगता है, हमें महिलाओं को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। यह दिखाता है कि हमारा देश कितना सभ्य है जो अपनी महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस की विधवा 2018 में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस की विधवा कौन है, नाम बताइए। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जब से माननीय यादव जी पीडीए का पूरा हुंकार लेके उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, आदरणीय राहुल जी छात्रों के बीच में उन्होंने गांव गूंज का प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ है, तो चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश हो, सबको मालूम है कि जंजीर जो है वो नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस के हैंड से बाहर जा रहा है। आपको आदरणीय राहुल जी को गाली देना है तो, आपको मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपशब्द कहना है कहिए, लेकिन इस देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम,
1: लेकिन अमेक जी कहां खिलवाड़ हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि छात्र तो हमारे साथ हैं, कल दूसरे चुनाव के नतीजे वो 3-0 लगातार दिखा रहे हैं।
3: अच्छा, वो जो छात्र जंतर मंतर पे थे वो किसके छात्र थे, किस देश के थे? अंगोला के थे, मंगोलिया के थे? आपने गुजरात का जो प्रिंटिंग प्रेस है, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उनके यहाँ योगी आदित्यनाथ, उनके योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, हलवा पूरी खाते हो, उसी प्रिंटिंग प्रेस ने सारे बड़े बड़े पर्चे लीक करवाए, चाहे बिहार में चयन आयोग का कराया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कराया हो।
1: ठीक है,
3: बुल्डोजर चला।
1: आपके पास आगे मैं धीरेन्द्र जी, आपके पास ना 20 सेकंड का एक प्रदीप जी से रिएक्शन, फिर धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहा हूँ, 20 सेकंड में बोलेगा प्रदीप।
3: 5 से 10 हजार बच्चे मिलने आते हैं अपना दुख।
2: मैं अमीक जी को शायद से भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। विधवा कोई भारतीय संस्कृति में गाली नहीं होती, शर्म आनी चाहिए कि इनको ये इस तरीके की बात को देते। मैं मुख्य मुद्दे पे आऊंगा। मैं वापस से कहता हूं, कांग्रेस की संस्कृति क्या रही है जेनरली बताइए। सड़क का गुंडा आर्मी चीफ को कहते हैं, राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी बोलती है कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर बोलने का प्रयास किया, और ये सब जब किया तो देश की जनता ने लगातार कांग्रेस को विपक्ष में बैठाकर बोला कि ये तरीके की राजनीति हम नहीं चाहते। अभी कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित के साथ में राहुल गांधी ने देश की डिप्लोमेसी का अपमान करने का प्रयास किया, उसके बाद देश के युवा ने वोट किया और देश के युवा ने कहा, कांग्रेस को नोटा के बराबर वोट दिया और बोले कि हम कांग्रेस की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उसके बावजूद राहुल गांधी एक ट्रोलर जैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये देश के लोकतंत्र की बात है राजीव जी, ये बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। क्या कोई व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है, क्या वो एक एलओपी होने के लिए फिट है?
1: नहीं, पर क्या वो तो अमित जी तो कह रहे हैं ना प्रदीप, अमित जी तो कह रहे हैं क्या वो किया जा सकता है?
2: तो मैं स्वागत करता हूं, पर क्या ये इससे कांग्रेस पार्टी को समझ में आना चाहिए कि आज उसके विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी। ये सार्वजनिक मंचों पे एक मर्यादा होती है। मैं कहना चाहता हूं, छोड़िए अमीक जमाई जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, हम हमारे वो राजनीतिक विरोधी हम पर सम्मान करते हैं, पर अगर इस तरीके की बात कांग्रेस ने अखिलेश यादव के लिए भी करी होती तो हम उसका विरोध करते। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने जब प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी को कुछ बोला था देहाती औरत, हमने जाके इसका विरोध किया था, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के संस्कारों में विश्वास रखते हैं। पर जिनको इटली का शौक है वो नहीं समझ सकते कि भारतीय लोग
3: मुख्य समस्या समझिए आप प्रदीप भंडारी की, कैसे मुद्दों को डाइवर्ट करना है। कल जानते उत्तर प्रदेश में एक हरकत हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल नियुक्ति पत्र बांटा है। आप जानते हैं किस बच्चों की नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिनकी जिनकी नौकरियां
2: जो राहुल ने किया वो सही किया कि गलत किया? अमीक जी, मैं एक घंटे उत्तर प्रदेश में चर्चा करूंगा जब उत्तर प्रदेश होगा। आज मैं आपके सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आप मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता और बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी पब्लिक लाइफ में, मैं भी पब्लिक लाइफ में, ये सब सीनियर नेता है, क्या जो राहुल गांधी ने किया क्या वो एक एलओपी को करना चाहिए था? आप
1: इसका जवाब ले,
3: जवाब मैं आपके मुताबिक नहीं दूंगा ना, जवाब मेरा अपना होगा, वो भी आप ठूस के देंगे। मुझे क्या बोलना है विपक्ष को, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं।
2: अरे जिसका सिलेबस है उसका दोनों मेरे भाई।
3: अरे चुप रहिए, फूलन देवी से लेकर उनके हथियारों को समर्थन देने वाली भारतीय जनता पार्टी, वहां से लेकर माननीय सोनिया गांधी जी तक, जिनको उनके बारे में
2: प्रजापति का चिट्ठा खोल दूंगा मैं
3: पूरी बात। पत्नियों को सड़क पे, फुटपाथ पे छोड़ने वाली पार्टी महिला सम्मान की बात ना करे।
2: अरे आप क्या बात करोगे, आप क्या बात करोगे? गायत्री प्रजापति,
1: हमें व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना है, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना है। अमित जी आपके पास भी लौटूंगा, प्रदीप जी आपके पास भी लौटूंगा, धीरेन्द्र जी के पास जाते हैं। धीरेन्द्र जी, सत्ता पक्ष को छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम कितना परेशान कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कार्यक्रम क्या करते हैं उसके बाद से तमाम बड़े बड़े लीडर्स की प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं, तो इसका मतलब इंपैक्ट तो है राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का।
4: राजीव जी, छात्रों की गूंज कर रहे हैं यह स्वागत योग्य कदम है। एलओपी का काम है कि उनके सवाल मांगे, सरकार से जवाब मांगे, लेकिन आप वहां पर जाकर के जो करते हैं, आप सफाई देते हैं, कि हमने कहां नाम लिया कि नहीं के मां का, बिल्कुल आप ये दे सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, मेरी पार्टी क्या सोचती है, देश के लोग क्या सोचते हैं, सब उसका जवाब चाहिए। देश के लोग लोक लाज से चलाने वाले सब लोगों को पसंद करते हैं। आप क्या मर्यादा देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी सफाई टीवी पे राजीव जी आपके सामने दे सकते हैं, लेकिन मतदाताओं के पास उनको जो पसंद है वो चाहते हैं। आप अपनी मां की इज्जत नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी जी, कि जब महिलाओं के सम्मान में बिल आता है आपकी मां बैठी रहती है, मनमोहन सिंह जी उसी में सदन के नेता प्रधानमंत्री रहते हैं, आप बिल फाड़ देते हैं। आप भारत मां की इज्जत नहीं करते हैं, कई बार देश का सम्मान गिराते हैं। आपने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की मां का चुनाव के समय में आपके कार्यकर्ता गाली देते हैं। आप भारत मां की नहीं इज्जत करते, ना अपने मां की इज्जत करते हैं, ना अपने पिता की इज्जत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी अपने ही पिता के हाथ से माइक छीन करके, इस देश में माता पिता की इज्जत करने की एक परंपरा रही है, सदियों से परंपरा रही है, और इसको किसी कानून से नहीं, अपने लोक लाज से इसको हम लोग चलाते हैं। और ऐसे में अगर आप वहां पर हास्य व्यंग के माध्यम से आप छात्रों की बात न करके आप अपनी विरोध को प्रकट करते हैं, व्यंग के माध्यम से करिए, लेकिन छात्रों का इससे क्या भला होना है? देश के परीक्षा में मोदी जी की मां का उपहास करके क्या सुधार आ जा रहा है? रोजगार की चर्चा नहीं करके अगर आप किसी और उनकी माता जी की चर्चा कर लेते हैं, उससे रोजगार में क्या सृजन हो जाएगा? भाई आप देश के लिए जा रहे हैं, आप अपनी चीज मिटाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान,
1: ठीक है, लेकिन सारा फोकस सत्तापक्ष का सिर्फ मिमिक्री पर क्यों? मेरा आपसे ही सवाल है, मेरा आपसे ही सवाल है कि वहां इतनी बड़ी संख्या में शिकायत करता है, स्टूडेंट्स में इतना गुस्सा है, और जब कहीं सुना नहीं जा रहा है तो एलओपी उनको मंच देना, एलओपी को मंच देना पड़ रहा है उनको, वो आकर अपनी शिकायतें रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक असंतोष तो है ना स्टूडेंट्स में, जो दिख रहा है उनके मंच से, आप उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं?
4: बिल्कुल राजीव जी, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। डीयू का चुनाव का परिणाम आया ना, वहाँ भी तो छात्र ही रहते हैं ना। अगर इतने ही इनकी बातों में वो लोग थे आने वाले, इतने ही हमारे सरकार से दुखी रहते, तो इस तरह का परिणाम नहीं आता। और छात्रों की गूंज, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यूथ बोले तो कार्यक्रम लॉन्च किया है, 24 तारीख को पटना में है, 27 तारीख को प्रयागराज में है। हम मैदान से समाधान देने जा रहे हैं, कैसे हम नौकरी के लिए सरकार में क्या कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कैसे कर रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को भी कवर करिए, देखिए कि हम छात्रों के साथ सरकार में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार में रह करके राजीव जी सरोकार में रहना यह बड़ी बात होती है। यह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी करने जा रहे हैं, और प्रयागराज में भी आकर के देखना चाहिए कि जहां पे गूंज आपने किया था ना, आप इसी तरह से मजाक उड़ाते रहे, व्यंग करते रहे, भाषा अपनी होनी चाहिए। समस्याओं को उठाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन माँ पिता पर आना कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन देश के लोग, देश के युवा, देश के जेंजी इस संस्कार में न पले हैं, ना आगे बढ़ेंगे।
1: ठीक है निगत, निगत आप छात्रों की गूंज तो कर रहे हैं, जहां पर आप कह रहे हैं कि हम छात्रों को उनके मुद्दों को मंच दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं? आप बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, पीएम मोदी, चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो, या फिर जो बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, अडानी, अंबानी, फिर आरएसएस, और अब तो आप अजीत डोभाल को भी ले आए, आप एक नफरत उनके खिलाफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के दिमागों में आप नफरत का बीज पैदा कर रहे हैं, आप अंधभक्त कह रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक है उनको।
0: बड़ी बड़ी हंसी की बात है कि आपको ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर मर्यादा की बात हो रही है, संस्कारों की बात हो रही है, और आपने ये कहा कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी और हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, नैरेटिव बनाना चाहते हैं। कौन सा नैरेटिव? इनका नैरेटिव का तो भांडा खुद फूट जाता है। अभी तक जवाब नहीं दिया है भंडारी साहब ने कि क्यों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था जब मोदी ने, तब महिलाओं का सम्मान कहां गया था? जब जर्सी काउ कहा था तब महिलाओं का सम्मान कहां गया था? जब सोनिया गांधी जी की अभद्र तस्वीर एआई
1: जनरेट नहीं,
0: देखिए जनता, जनता को सब दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि कौन महिला सम्मान आखिरकार करता है और कौन नहीं करता है, और कौन एजुकेशन में काम करना चाहता है और कौन नहीं। मैंने तो कहा कि छात्रों की गूंज की तो असली तस्वीर दिखानी चाहिए यहाँ मीडिया पर, और ये इररेलेवेंट न्यूज नहीं चलानी चाहिए, दिखाना चाहिए कि छात्र पूछ रहे हैं कि बताइए कि 2013-14 में जो प्राइवेट स्कूल थे, जो धन्ना सेठों को मदद करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल थे वो 219 थे, आज वो बढ़कर 546 2025-26 इसमें क्यों हो गए, क्यों हुआ ऐसा कि 149% छलांग लगा दी, क्यों ऐसा है कि रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली है, क्यों ऐसा है कि 2014 से 2015 से लगातार जो बेरोजगारी और जो पद खाली है वो बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं में 40% बेरोजगारी, और ऐसा क्यों है कि 10 लाख पद आज भी सरकारी खाली पड़े और ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि पिछले 10 सालों में 94,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। ये सवाल आप नैरेटिव की बात करें, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, नैरेटिव ये खुद चला चुके हैं, अपना भांडा ये खुद बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जनाजा उठेगा, और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अब सरकार जितनी जनता ने देखना था, जिस प्रकार की बेरोजगारी देखनी थी, महंगाई देखनी थी, डिग्री हाथ में और नौकरी ना मिलना देखना था, ये सब अब जनता देख चुकी है। अभी मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता दूं, तो लेटेस्ट नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कैसे लगातार अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। अभी एक मैं आपको आप न्यूज सुनिए, मैं आपको एजुकेशन की एक न्यूज बताती हूँ, ये एजुकेशन पे बात करते हैं, मैं आपको बकायदा लिंक दिखाऊंगी। ये हमारे देश में हाल है कि एक बीएससी का स्टूडेंट अपने हक की आवाज उठाता है और वो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक वीडियो बना के डालता है 22 साल का भी पिछले महीने, और उसको गिरफ्तार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने। ऐसा क्यों कि कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? आप क्यों नहीं बताते कि लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो तो तभी आएगी ना जब लोगों की थाली में तो रोटी तभी आएगी ना जब रोजगार देंगे, तो रोजगार आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों ऐसा है कि लगातार हर साल जो बेरोजगारी है वो ग्रेजुएटेड युवा में बढ़ गई? सरकारी
1: कि फैक्ट्स पर बातचीत होनी चाहिए। और सवाल जो है आपके प्रदीप भंडारी, मैं चाहता हूं कि आप इनका जवाब दें कि अब एक तो आप सवालों को सुनना नहीं चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आप ऐसा नहीं बनाना चाहते कि वो सवाल पूछें, जिज्ञासु नहीं बनाना चाहते हैं, आप उन्हें अंधभक्त बना रहे हैं।
2: मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो राहुल गांधी ने मिमिक्री करी और देश के गरीबों का अपमान किया वो इररेलेवेंट था, इररेलेवेंट है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। पहली बात, एट दी आउटसाइड ये एक प्री प्लान्ड पीआर स्क्रिप्ट है झूठ की गूंज की, क्योंकि जो ये स्टेज पे लोगों को बुलाते हैं वो युवा नहीं है, वो ऑफिस होल्डर्स हैं कांग्रेस पार्टी के। जैसे इन्होंने एक बनाया था अकाउंट व्यक्ति को जिसका नाम है तनय, जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रह चुका है एनएसयूआई एमपी का, जिसको कल राहुल गांधी ने बुलाया है। ऐसे ही पुणे में ये 20-20 25-25 हजार रुपए देख रहे थे, उसका वीडियो है। तो ये प्री प्लान झूठ की गूंज है, पीआर स्टंट है, इसीलिए ये चुनाव भी दूसू के अंदर हारे। अच्छे फैक्ट्स पूछे, अब एक एक कर जवाब दूंगा, क्योंकि अब तथ्य की बात हो रही तो तथ्य की बात करूंगा। ये देखिए, 16 अगस्त 2026 को यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हिमाचल और पंजाब के अंदर है, दोनों ऑपोजिशन रूल स्टेट से, पीएलएफएस का सर्वे। जिस देश के नेशनल एवरेज से ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं है वो कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में है। दूसरा, इन्होंने बात करी कि भाई हॉस्टल्स की, युवाओं की, देश में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी सिर्फ 30,940 हॉस्टल्स थे, ये बढ़कर दुगने हो चुके हैं 55,522। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब हायर एजुकेशन के अंदर जो एनरोलमेंट था वो सिर्फ 3.42 करोड़ था, ये 31.5% बढ़कर 4.50 करोड़ हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी तो महिलाओं का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स के अंदर था वो पुरुषों से कम था, अब महिलाओं का पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पुरुषों से ज्यादा हुआ है 60.9%। देश के एजुकेशन बजट 1,00,000 करोड़ को पहली बार क्रॉस करा है, विच इज 7.10% जंप देन लास्ट टाइम। अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बात करूं, मैं इसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी 723 से 1,338, कॉलेजेस 36,000 से 52,000, मेडिकल कॉलेजेस 842 से 2,100, एमबीबीएस सीट्स जो है 1,28,976 पहुंच चुकी है। इनफैक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक गरीब, एक आम आदमी हेल्थ और एजुकेशन पे पहले 64% अपनी कमाई का खर्च करता था, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में घटकर 43% हुई है, मतलब सरकार ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन में खर्च कर रही है, इसीलिए कांग्रेस सत्ता के बाहर है। और कांग्रेस को नहीं पता कि 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके, इसीलिए कांग्रेस को घृणा है। मैं वापस से कहूंगा, देश के एनएसए जो का पद है कोई पॉलिटिकल पद नहीं होता, वो देश के नेशनल सिक्योरिटी का पद होता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट करी, देश के एनएसए के खिलाफ, के पद के खिलाफ देश के युवाओं के मन में झूठ फैलाकर कांग्रेस क्या नक्सलवाद, ये अर्बन नक्सली काम करने का प्रयास नहीं कर रही? क्या वो कोई पॉलिटिकल पद है?
5: कि आपको पॉलिटिकल लोगों को अटैक करना है करना है, वो आपका पॉलिटिकल डिसीजन है जिससे देश की जनता ने आपको विपक्ष में हटाया, पर ये देश के पहले आरोपी हैं जो एक एनएसए के पद को राजनीति के केंद्र के अंदर लाकर इस देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक छलावा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के मंच के इरादों के ऊपर सवाल पूछने की बात कर रहे हैं।
1: ठीक है,
5: मैं वापस से पूछूंगा राजीव जी, क्या कोई एलओपी इस तरीके का कृत्य स्टेज पर कर सकता था जिस तरीके की राहुल गांधी ने कृत्य किया है? इन्होंने सील कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के मुंगेरीलाल के हसीन सबने जितने भी हो जाए 2029 के अंदर भी ये विपक्ष
1: को देश। अमित जी, बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं वो उन्होंने गिनाए हैं और वो भी एक डेटा आपके सामने रख रहे हैं। क्या यही वजह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको चुन रहे हैं? डूसू चुनावों के रिजल्ट भी आए, और एक और पॉइंट साथ में जो अजीत डोभाल का खास तौर पर जिक्र हुआ जिनको लेकर जो कल टिप्पणी हुई थी, क्या वो भी आपको लगता है कि अननेसेसरी थी, उससे भी बचा जा सकता था?
3: राजीव डोंडियाल साहब, देखिए सबसे बड़ी समस्या जो पूरे देश में आज है युवाओं के बीच में बेरोजगारी की चर्चा है, उनकी तकलीफों की चर्चा है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर दिन कम से कम हजारों नौजवान जो हमारे सूबे के हैं उनसे मिलने आते हैं।
1: लेकिन अमित जी, उत्तर प्रदेश में तो 9.5 लाख के आसपास नौकरियां दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी।
3: राजीव मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक कमाल कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कल नियुक्ति पत्र बांटे हैं और उसमें कुछ मुसलमान बच्चों को सामने खड़ा करके वीडियो बनाए, कहा जा रहा है कि साहब यहाँ पे सबको नौकरियां मिल रही है। आपको मालूम है कल जो नियुक्ति पत्र मिली वो महीनों पहले किसी विभाग में 20 नौकरियां, किसी विभाग में 10 नौकरियां, सबको इकट्ठा करके एक इवेंट बनाया गया, मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया गया। और अगर आपको मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है तो हर जिलों में आप मुसलमानों के लिए सबसे उनकी अजीज चीजें कुरान शरीफ, मस्जिद, कब्रस्तान, आप 100-100 साल पुरानी मस्जिदों को आप शहीद कर रहे हैं, आप प्रो मुस्लिम है। दूसरी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं 007 जेम्स बॉन्ड, 007 जेम्स

0: बच्चों को सामने खड़ा करके वीडियो बनाया। कहा जा रहा है कि साहब यहाँ पे सबको नौकरियां मिल रही है। आपको मालूम है कल जो नियुक्ति पत्र मिली वो महीनों पहले किसी विभाग में 20 नौकरियां, किसी विभाग में 10 नौकरियां, सबको इकट्ठा करके एक इवेंट बनाया गया, मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया गया। और अगर आपको मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है तो हर जिलों में आप मुसलमानों के लिए सबसे उनकी अजीज चीजें कुरान शरीफ, मस्जिद, कब्रस्तान, आप 100-100 साल पुरानी मस्जिदों को आप शहीद कर रहे हैं, आप प्रो मुस्लिम है। दूसरी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं 007 जेम्स बॉन्ड है जिसकी वजह से हमारी विदेश नीति की चीतड़े उड़ गए हैं, ये नाकाम इनसे अजीत डोवल,
1: अरे आतंकवादियों का केस वापस लेने वाले के अंदर, सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में करी, ये वही एनएसए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जाके ऑपरेशन सिंधु एग्जीक्यूट किया, ये वही एनएसए है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बालाकोट किया, ये वही एनएसए है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हटाया, ये वही एनएसए है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर गुलाम से लेकर तरह तरह से चीनियों को पीछे धकेला, ये वही एनएसए है जिसने इस देश की बॉर्डर्स को सिक्योर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। अरे आप क्या समझोगे, आप तो
0: चीन में हमारे
1: वापस लेने की बात करते हो, जब भी देश की बात आते हो आपके समय बताता हूँ क्या होता था, आपके समय पाकिस्तान का 26/11 आतंकवादी हमला होता था, आप जिस सरकार को बैक करते थे वो पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के नहीं मार पाई थी। अरे आप क्या बात करोगे, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद क्या कर लिया था, शिवशंकर मेनन की किताब पढ़ो, बताऊंगा चॉइसेस के अंदर क्या लिखा है, पढ़ो चॉइसेस के अंदर क्या लिखा है, पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं करने का काम एक पॉलिसी से दिया गया था।
2: डीरिल इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, फिर से टॉपिक पर आते हैं, फिर से टॉपिक पर आते हैं। अमित जी, प्रदीप जी, ठीक है, हो गया। धीरेन्द्र जी, आप तो सिस्टम का हिस्सा है, तो इसलिए सवाल आपसे वाजिब है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टम पर 6 लोगों का कब्जा है, वो नाम भी आपने सुने होंगे, तो क्या वाकई सरकार कंट्रोल कर रही चीजों को या सरकार पर भी नियंत्रण है कुछ विशेष लोगों का?
3: राजीव जी, सबसे पहले अभी बोल रहे थे जमाई साहब, मैं उनके से सवाल करना चाहता हूं कि जब इनके सरकार थी इनके जमाने में तो एक ही उन्हीं के समुदाय के सिर्फ लोगों को नौकरियां मिलती थी, तो क्या इनका कंट्रोल हुआ करता था? अल्पसंख्यकों की चिंता ये बता रहे हैं, क्या ये ऑन स्क्रीन घोषणा कर सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम समाज का होगा? पीडीए का नारा दे रहे हैं हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, तो इसके चलते मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के चलते अपना सरकार कुर्बान किया है। आज भी बिहार के अंदर में एक MLC की सीट मिली तो हमने एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अशरफ अंसारी को MLC बनाया। आज नौकरियों में भी आप नहीं उनको जगह दिलवा पाते अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, राजनीति में इतने स्कॉलर प्रवक्ता हैं, आज इनको भी जगह नहीं दे पा रही है समाजवादी पार्टी, और फिर आप पी को भी ठग रहे हैं, दलितों को भी ठग रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भी ठग रहे हैं, ऐसे में आप किसके लिए वकालत कर रहे हैं साहब? ना आप अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, ना आप युवाओं के लिए कर रहे हैं, ना आप दलितों के लिए कर रहे हैं। एक परिवार का चंदन वंदन करने से देश नहीं चलेगा जमाई साहब। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक भी समझ गए हैं, उत्तर प्रदेश में युवा दलित भी समझ गया है, इसलिए अभी समय रहते मौका है, आप जरूर वहां पर उतने ही समय थे जितना वो आपकी इज्जत करते हैं, आप ना समझेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भी आपको छोड़ करके
2: समय ठीक है, समय कम है तो मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, पहले अमित जी फिर आपके निगत आऊंगा, फिर लास्ट में प्रदीप के पास जाऊंगा, आपसे 20 सेकंड में अमित जी बोले क्योंकि आपकी बात ज्यादातर आ चुकी है, बस इसी सवाल का जवाब दें।
0: चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे शिक्षक हो, अस्पताल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितने काम हुए हैं ना धीरेन्द्र भाई, कभी आइए लखनऊ में घूम जाइए, लोक भवन में आपके CM हमारे ऑफिस में बैठते हैं, पुलिस का हेडक्वार्टर अखिलेश जी ने बनाया, सबसे बड़ा हाईवे अखिलेश जी ने बनाया, देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अखिलेश जी ने बनाया, और एक मनोज मुंतशिर शुक्ला जो आजकल नेतागिरी कर रहा है बीजेपी आरएसएस के नाम पे, उसको भी 2016 में नौकरी अखिलेश यादव ने दी, 2016
2: में। निगत निगत निगत समय समय कम है, मैं जल्द से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा।
4: राजीव जी, असल में मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ क्या है, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जी ने किसी के मुंह में शब्द डाले हैं या उन्होंने कोई कंटेंट बनाया है, उन्होंने बस सारा जो कंटेंट बीजेपी के इकोसिस्टम और अंधभक्तों का है वो एक जगह लाकर इनको इनका आईना दिखाया, अब इन्हें बुरा लग रहा है अपना ही चेहरा देखकर, तो उसमें भैया हमारी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि सवालों के जवाब तो रुकेंगे नहीं। सवाल बताइए, आपने कहा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो की बात करी थी, वो 100% का दावा देते हैं, ये रियलिटी ये है कि हायर में 58% है और सेकेंडरी स्कूल में 79% है, तो झूठ बोलना बंद करिए। GDP का 4.1% खर्च करते हैं एजुकेशन सिस्टम पर, जबकि MEP ने खुद वादा करा था

0: कि वो 6% होगा। दूसरी बात प्लस रिसर्च फंड की बात हो रही थी, यहाँ पे रिसर्च की बात हो रही थी, रिसर्च फंड उस संस्थानों में सिर्फ 47% यूज किया जा रहा है, 50% और सारा पैसा पीएम केयर फंड में क्यों डाला जा रहा है उसका जवाब दीजिए। देश की जनता, आज देश का जेंडी, देश का युवा, देश का स्टूडेंट, देश का नागरिक सवाल पूछ रहा है कि नौकरी कहाँ है, वो पूछ रहा है कि अच्छी शिक्षा कहाँ है, वो पूछ रहा है कि साफ खाना कहाँ है, वो पूछ रहा है साफ हवा और पानी कहाँ है, वो ये सवाल पूछ रहा है आपके प्रधानमंत्री, आपके
1: मुख्यमंत्री,
0: सांसद, आपके मेयर,
2: आपके पार्षद, समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, राजीव जी अब इनका आवाज कम करिए, मैंने इनको सुना ये बात, राजीव जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, ये तस्वीर से समझ में आते हैं, जब पाकिस्तान से समर्थित ये गुंडा अतीक अहमद जो अखिलेश यादव की सरकार चलाता था, ये था माफियाओं का काम समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर। 7.8% है भारत की GDP, मूडीज ने भी जाके 7% फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत को कहा है, SNP ने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत को कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत को कहा है, 2 लाख से ज्यादा भारत के युवाओं ने स्टार्टअप क्रिएट किया है, 1,65,000 IIT के अंदर एनरोलमेंट हो चुका है छात्रों का, जो कांग्रेस पार्टी के काल 50,000 नहीं हुआ करता था, दुगने यूनिवर्सिटीज हो चुके हैं, दुगने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 6 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी।
1: समय इतनी ही ज्यादा दे रहा है, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम थी, छात्रों की गूंज में सिर्फ छात्रों के ही मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन सारा का सारा फोकस मिमिक्री पर शिफ्ट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: विमल बोलो जुबां केसरी।
12: There is a very famous quote ki history repeat itself.
13: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
14: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
13: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास, जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है। जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर। सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: How are you, Modi ji?
1: Great harassment.
2: छात्रों की गूंज, कार्यक्रम मंच पर राहुल गांधी, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, निशाने पर सरकार, यानी सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा था जैसा खाका इस कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया था। लेकिन बीच कार्यक्रम कुछ ऐसा हुआ कि छात्रों की समस्याओं की बजाय अब मुद्दा कहीं और पहुंच गया है। अब सियासत में इस मंच से पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा गूंज रहा है। दरअसल विवाद शुरू हुआ जब मंच पर एक शख्स की एंट्री होती है। वो राहुल से मजाकिया अंदाज में बातचीत करता है।
1: My friend, how are you?
0: I am fine. How are you, Modi ji?
1: Great harassment.
2: लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसी टिप्पणी करता है जो विवाद का केंद्र बन जाता है।
1: गलगोटिया।
0: और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो। माँ, माँ।
2: कार्यक्रम का ये हिस्सा सामने आते ही जबरदस्त बवाल छिड़ गया। बीजेपी ने इसे राहुल के मंच से पीएम मोदी की मां का अपमान बताया और हमलों की बौछार तेज हो गई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए जो अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था, उसका इस तरह मजाक उड़ाना देश भर की माता का अपमान करना है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। धामी ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जाएं और उस पर राहुल गांधी हंसे, ये बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक है। छात्रों की गूंज से उठा विवाद का शोर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के निशाने पर राहुल हैं और हमले तेज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक पतन की पराकाष्ठा बता दिया तो कांग्रेस ने इस हमले का जवाब दिया।
3: माँ का कहां से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ, सबकी माँ।
0: आप एक काम कीजिए, ये है सिस्टम के मालिक।
2: ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किसी विवाद का शोर सुनाई दिया हो। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दौरान जॉर्जिया मेलोनी के बहाने पीएम को टारगेट करने पर भारी हंगामा मचा था। इस बार बात पीएम मोदी के मां के अपमान की, जिसे लेकर सियासत बढ़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
4: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं। नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं। जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए, जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उनका भी वो अपमान करते हैं।
5: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है। और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।
6: देखिए, ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है, ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
7: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है, पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: दंगल के बाद अब आगे देखिए पंचायत आज तक, अंजना ओम कश्यप के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चुनावी यूपी में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व राष्ट्रपति ने दिया था बयान। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, एसपी का भी पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनावों के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राजस्थान के जोधपुर में भारत जापान का युद्धाभ्यास, दोनों देशों के एयरफोर्स प्रमुख ने भरी तेजस में उड़ान।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अब हम मंच पर सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अली अशरफ फातमी साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, थोड़ा तालियां बजा दीजिए सबके लिए। और मौजूदा लोकसभा के सांसद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से अरुण भारती का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इस बात को लेकर होगी, हालांकि हम लोगों ने सोचा था कि 100 दिन पर चर्चा होगी, लेकिन अब लगभग 150 दिन आपकी सरकार के यहां पर हो गए, तो कितना वादा और कितनी दवा। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि अब आपकी सरकार के, मतलब बीजेपी की सरकार के, मैं नीतीश बाबू के 5-6 महीने फिर भी साइड कर देती हूं, आपकी सरकार के 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आप गर्व के साथ इस वक्त बता सकें?
1: देखिए, हम लोगों ने जो वादा किया, जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ाने का किया। हमने अंधेरे से उजाले में लाने का वादा नहीं किया, उजाले में और चमक लाने का वादा किया। और वही बात है कि पिछले जो 20 साल से सरकार रही, बीच में एक दो बार जरूर कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले बीच में जाके शामिल हो गए, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ हो तब, क्योंकि एक बार एक डेढ़ साल भी नुकसान करने के लिए काफी होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में बीजेपी के साथ सरकार चली है। और मैं आपको कहूं कि सम्राट चौधरी जी, पहली बात तो ये कि युवा मुख्यमंत्री मिले, सरकार तो वही है, सिर्फ चेहरा बदला है, योजना वही है, और आते ही उन्होंने काम करके दिखाया है। लोग कहते थे कि डिग्री कॉलेज नहीं होगा, हर ब्लॉक में हमने डिग्री कॉलेज की बात की थी, पूरी की है। और सबसे बड़ी आपदा जो आई बाढ़ की, उससे निपटने का जो काम, उसका जो प्रबंधन किया है, उसके लिए जितनी बधाई दी जाए कम है। कानून का राज स्थापित किया है और मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। अभी तो 100 दिन की चर्चा थी, 150 दिन हो रहा है, बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट बिहार में जगा है, बड़ी तादाद में उद्योग तो पहले से लगे थे, पहले तो कोई उद्योग ही नहीं था, एनडीए सरकार में ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, इथेनॉल की लग गई, टेक्सटाइल की लग गई, जब मैं उद्योग मंत्री था तो वो शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए अब स्टील के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो बिहार के अंदर एक माहौल बना है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और सम्राट चौधरी युवा मुख्यमंत्री हैं, 20 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं।
0: युवा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मतलब मैंने इसीलिए उनकी उम्र देखी, ये पॉलिटिक्स का युवा ही शुरू होता है कितने की उम्र पे?
1: राहुल गांधी से तो छोटे हैं ना।
0: देखिए आप कहां चले गए, नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये देखिए कहां से एकदम अलग रंग भर दिया अखिलेश जी ने। ये अलग बात है कि शाहनवाज जी का पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इनकी उम्र की सुई चल रही है, सब कुछ आपने पीछे पलट दिया है। हैं अखिलेश जी, कुछ कुछ तो है मामला, बताइए। वहां भतीजे बैठे हुए, मामू बैठे हुए हैं, ये रिश्ते में दोनों मामू और भगना लगते हैं, है ना?
1: हम मामू,
0: आप मामू हैं, वही तो मैं कह रही हूँ।
2: लेकिन
0: ऐसा ऐसा मामू,
2: लेकिन अभी मामू भांजे का रिश्ता नहीं होगा।
0: हाँ।
2: अभी तो सीधा सीधी होगा
0: जी। होगा। लेकिन ऐसा ऐसा भांजा रह के भी टेंशन भी याद में रहेगा कि भाई ऐसे मामू हैं, जब मिलो ज्यादा स्मार्ट हुए चले चले जाते हैं, कैसे उनसे मुकाबला किया जाए। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर, ये जो आप तब से युवा युवा युवा कह रहे हैं, आपने उपलब्धि क्या गिनाई शाहनवाज जी? हम समझ नहीं पाए, आ रहा है, आपने मैनिफेस्टो में लेके आई हूँ 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है।
1: हाँ तो दिया।
0: कितनी आपने नौकरी दी अभी तक?
1: अभी अभी दी नौकरी, मैं आपको बताता हूँ,
0: 1 करोड़ नौकरी में आपको पता है प्रतिदिन कितना देना होगा?
1: 51 अभी दिया है, 211 नए डिग्री कॉलेज किए हैं।
0: हम नौकरी पूछ रहे हैं, ये डिग्री कॉलेज बता रहे हैं?
1: नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें भी तो नौकरी मिलती है।
0: डिग्री मिलने पर गारंटी है नौकरी की?
1: नहीं, डिग्री की नहीं कह रहे हैं, जब आप कॉलेज खोलते हैं उसमें नौकरी मिलती है, नहीं मिलती है?
0: अच्छा, टीचर प्रोफेसर
1: जी। और 215 करोड़ से ज्यादा का 400 बेड का सुपर हॉस्पिटल जो है स्पेशलिटी, उसकी शुरुआत हुई है। तो काम आप ये कह रहे हैं कि, मैंने पहले कहा कि ये अन्याय होगा कहना कि तुलना करना, अगर नीतीश कुमार जी के बाद कोई भी सरकार अगर होती, दूसरी सरकार भी होती, तो इतना ऊंचा पैमाना तय किया है बीजेपी जेडीयू ने मिलकर कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। मैंने पहली लाइन में कहा उसको बढ़ाने का काम है, उसको चमकाने का काम है, बिहार को तरक्की पर ले जाने का काम है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया है और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने का काम है। बिहार तभी बढ़ेगा जब उद्योग लगेगा, तभी रोजगार होगा। सिर्फ गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी, उससे तो हमने पहले भी बहुत 10 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार दिया है,
0: अखिलेश अभी भी दे रहे हैं। इसके बाद से मैं तुरंत आपके पास आ रही हूँ, अखिलेश जी माइक उठा लीजिए। कितना वादा और कितना दावा, अब विपक्ष के रूप में आपको ये सुनिश्चित करना है। सबके माइक उनकी बाई तरफ रखे हुए हैं, देखिए सही शाहनवाज जी से सब कुछ लीजिए, माइक मत लीजिए, जो जिसके पास बचा हुआ है उसको अपने पास रखने दिया जाए। अखिलेश जी
3: दिया भी था वैसे इन्होंने ही,
0: हाँ,
3: लेकिन बाद में लगा कि
0: कहीं
3: बीजेपी का माइक है तो फिर ले लिया।
0: अखिलेश जी
3: देखिए
0: कितना वादा कितना दावा, अगर बतौर ऑपोजिशन, चूंकि आप सांसद हैं, आपको आज रियलिटी चेक करना हो तो कहां पर सरकार सबसे ज्यादा चूकती हुई दिख रही है?
3: देखिए मैं तो सीधा सीधी बात करूंगा, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा, फिजिक्स पढ़ाने का काम करता रहा हूं राजनीति में आने से पहले, तो मेरे पास बात बनाने का कोई जगह नहीं है। शाहनवाज जी बहुत अच्छे
0: तो सब पास कर लीजिए माइक,
3: हम लोगों के दोस्त भी हैं, इनको वर्स्ट केस को बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, तो ये अपना अपनी तरफ से कह रहे हैं। लेकिन हम सीधे नीति आयोग की रिपोर्ट पर चले जाते हैं, जो नीति आयोग प्रधानमंत्री जी के मातहत, भारत सरकार के मातहत जो काम करता है
0: जी।
3: उसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। ये कोई कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, आरजेडी और भारती जी नहीं बात कर रहे हैं, हम नीति आयोग की रिपोर्ट पे ही स्वास्थ्य सेवा में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, शिक्षा व्यवस्था में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। ये अगर आप कह दीजिए कि झूठ है तो झूठ है, या नीति आयोग गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है। 90 तक कांग्रेस पार्टी का इस राज्य में शासन रहा, अंतिम मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी कांग्रेस के थे, उसके बाद से लालू जी आए, नीतीश जी आए 20 साल, अब शाहनवाज जी आए हैं। तो नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट इन द कंट्री। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था।
0: कितने दशक पहले आप हम लोगों को ले जा रहे हैं।

0: उन्होंने कहा था।
1: कितने दशक पहले आप हम लोगों को ले जा रहे हैं?
0: नहीं, आप कांग्रेस की तरफ से सुनना चाहती हैं ना?
1: नहीं, कांग्रेस की ही तरफ से, लेकिन मेरा सवाल है कि आज की जो सरकार है उसमें कहां कहां आप चूक देख रहे हैं, कांग्रेस क्या कर सकती है आज की स्थिति में?
0: नहीं, मैं आपको वहां इसलिए ले जा रहा था कि बिहार क्या था और क्या से क्या हो गया, ये जानना तो जरूरी है ना। ऑपरेशन तो आप इसी का करने आई हैं जी। तो उस समय चीनी उद्योग के मामले में बिहार अव्वल था, एकाध स्टेट को अगर आप छोड़ दीजिए तो 27 से 30% चीनी पैदा करता था बिहार। और जब अंतिम शासन था कांग्रेस का, 90 तक भी 27-28 चीनी मिलें चालू थी, आज केवल 9 चीनी मिलें चल रही हैं। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ये देखे हैं, खुद काम किया है और ये अच्छा काम किए थे, तो ये क्यों नहीं मंत्री हैं जिनको थोड़ा तजुर्बा है? क्यों एक अल्पसंख्यक बिरादरी का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है? वो भी ये तो कहीं और पार्टी में गए नहीं। मैं कभी कभी इनको कहता हूं कि चले आइए आप इधर, जब कोई नहीं पूछ रहा है तो है। तब भी नहीं आते हैं कि नहीं मैं इसी झंडे के नीचे मरने वाला हूं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो जिसको
1: क्यों नहीं जाते हैं आप कांग्रेस पार्टी में, इतना आपको न्योता देते हैं?
2: जो 15 साल लालू जी की हुकूमत थी उसमें ही भागीदार थे कांग्रेस पार्टी वाले।
0: अरे जो आप स्थिति की है उसमें नीतीश जी फिर भागीदार बनने आ सकते हैं,
2: वो ये आप भूल जाते हैं कि कांग्रेस पिछले दरबार
1: उन्होंने धीरे से कहा, उसके बाद से लालू जी आए, हम लोग का शासन बहुत पहले, तो पहले ही जब अपने आप को दूर कर ले रहे तो क्या उसकी चर्चा हो।
2: तो हम शासन में कांग्रेस के कोट पहले मंत्री रहे और अभी भी जो बीच बीच में नीतीश जी के साथ भी कांग्रेस शामिल रही।
0: अरे आप कहां वाजपेयी जी के साथ भारत सरकार में, हम तो यहां मंत्री थे तब आप भारत सरकार के मंत्री हो गए थे।
2: हाँ तो उधर
0: आपको आप थोड़ा तो शर्माइए।
1: सबसे मजेदार चीज क्या है, शाहनवाज जी को देखते ही मुझे वो दिन याद आता है कि शाहनवाज जी जब दिल्ली में फ्लाइट पकड़े तो उस दिन मंत्री थे और यहाँ लैंड किए पटना में और मंत्री नहीं थे। सरकार इनकी जब इनका चांस आया भी आप ही लोगों की नजर लगी।
0: नहीं, मैंने इनके जैसा कितना तब
1: तक
0: हो गया अनुभवी।
1: तब तक नीतीश बाबू बोले कि नहीं अब हम जाएंगे लालू जी की पार्टी के साथ
2: और अखिलेश जी आ गए ना उसमें शामिल हो गए।
1: हाँ तो अच्छा, अच्छी बात है ना। आप भी तो जब वापस आते हैं तो गले लगाते ही है उनको।
2: ये बात भूलना नहीं चाहिए कि लालू जी के शासन में और एक एक साल नीतीश जी के शासन में कांग्रेस भी शासन में रही है। आप जो पूछती हैं कब का गिना रहे हैं, तो श्री बाबू वाला गिनाते हैं, लालू जी वाला गिनाते नहीं है।
1: चलिए ठीक है, उस पर आएंगे। फातमी साहब, फातमी साहब
2: उसमें भी मंत्री,
1: कितना वादा कितना दावा, कौन से वादे सरकार ने पूरे किए हैं, क्या पिछली हार ने जो इस बार विधानसभा में हुआ था?
3: मैं तो बात शुरू करूंगा अपना, जो अखिलेश भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वालों को जगह नहीं मिलती है। इन्होंने ऑफर किया,
1: अब आपको मामू की चिंता होने लगी?
3: नहीं नहीं,
0: मामू की चिंता तो
3: सबको होती है। तो कांग्रेस का ऑफर इन्होंने दे दिया, मैं तो राजद का ऑफर दे दे रहा हूं उनको कि इनका स्वागत है, आ जाएं अगर काम करना है तो। वहां तो काम करने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो मैं यहां से बात शुरू करूंगा मामू के। इन्होंने कहा कि हर प्रखंड में एक एक कॉलेज खुल रहा, मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फ्रंट पर बॉर्डर पर बगैर गन के बगैर तोप के फौज को भेज दीजिए। ना कॉलेज की बिल्डिंग बनी, ना लेक्चरर का पता है, रीडर का पता है, प्रोफेसर का पता है, और इन्होंने कॉलेज खोलना शुरू कर दिया। बड़े सदमे की बात है, अगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिएगा तो कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जिसमें 2 रूम हो, और वो भी कहां से लिया जा रहा है, स्कूल से निकाल करके, यानी स्कूल की पढ़ाई को भी नुकसान पहुंचेगा इस कॉलेज के खुलने से। उसका रूम कम होगा, बच्चे कहां बैठेंगे? आपके पास ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है, ना आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास लैब है, ना आपके पास लाइब्रेरी है, ना आपके पास प्ले ग्राउंड है, और आप कॉलेज खोल रहे हैं। ये किस तरह का कॉलेज खुलेगा मेरे समझ से परे है। अभी अखिलेश भाई ने बहुत पूरा आईना दिखाया कि सरकार ने क्या किया, और बिहार ने किसी भी फील्ड के अंदर अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले में तरक्की किया हो

0: तो उसका उदाहरण मैं चैलेंज करता हूं कि चाहे वो पिछली सरकार नीतीश जी की रही हो या आज जो 5 महीने से सरकार चल रही है, तो ये दोनों सरकार तो एनडीए ही की सरकार है। तो बताएं तो कि हम प्रमुख रूप से इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए, रोजगार देने में आगे बढ़ गए, नौकरी देने में आगे बढ़ गए, स्वास्थ्य में आगे बढ़ गए, शिक्षा में आगे बढ़ गए। आप ये समझ लें कि जो अगर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य में है प्राइमरी एजुकेशन में, तो वो बिहार है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अगर हाई स्कूल के अंदर है तो वो बिहार है। सबसे खराब व्यवस्था अगर शिक्षा में हायर एजुकेशन में है तो वो बिहार है। और आइए आप दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज, मामू थे तो कुछ इंडस्ट्री लग भी गई, लेकिन आज क्या हो रहा है, कहां पे कारखाना। कब मोदी जी आए थे तो बोले कि मैं आकर के यहां यहीं के चीनी का चाय पीऊंगा, क्या वो फैक्ट्री आज स्टार्ट है 12 साल के बाद भी। तो ये झूठे वादे करके और एक सपना एक ख्वाब दिखा करके ये वोट लेते हैं, काम
1: ठीक बिहार इस के पर लिए जवाब आपसे लूंगी। सांसद जी माइक उठाइए। और चिराग पासवान तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने अपना पूरा वो ही रखा था। आजकल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो वहां पर भी
2: मैं
1: प्रचार
2: प्रभारी
1: करते हैं।
2: उसका भी
1: जी
2: उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी मैं ही हूँ।
1: अच्छा, आप ही प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के और आप लोग काफी वहां मेहनत कर रहे हैं। और बिहार को तो क्या मतलब क्या किया है उन्होंने बिहार के लिए चिराग पासवान ने, क्या ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार जिसमें आप एनडीए का हिस्सा हैं आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारी उपलब्धि है, ये हमने कहा था, ये हमने कर दिया।
2: अंजना जी मुझे समय दीजिएगा। सबसे पहले सनवा सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप कभी भी महागठबंधन में मत जाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने 2005 में कोशिश की थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, राजद ने बनने नहीं दिया था, हमारी पार्टी तोड़ दी थी मगर बनने नहीं दिया था, इसलिए उधर जाने के बारे में सोचिएगा भी मत, आपका सम्मान यहीं रहेगा। अंजना जी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के विकास की और अभी तक सरकारों के कार्यकलापों पर और खास करके हमारी सरकार पर। 80 वर्ष के इस बिहार के शासन में लगभग 60 साल तक कांग्रेस और राजद का शासन रहा, अभी एनडीए मात्र 20 साल ही रही है। इस 60 सालों में पहले तो कांग्रेस ने जो बड़े बड़े तस्वीरें दिखा रहे थे, पहले इसमें ये हुआ पहले वो हुआ करता था, इन 60 सालों में बिहार को कांग्रेस ने और राजद ने किस गर्त तक ले आए हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां से भागना पड़ा है। यहां पर कानून की व्यवस्था की क्या हाल थी सभी को पता है, और इसके बाद आज बेटियां अब घर से निकलती है, बिहार में भी मॉल खुल रहे हैं। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने पिछले 19 वर्षों में जो फाउंडेशन, जो उन्होंने आधारशिला खड़ी की है, अब उस पर इमारत खड़ी करने की जरूरत है, जिसका काम एनडीए कर रहा है। अगर मैं एक बात बताऊं आपको स्पेसिफिक, तो अभी सम्राट चौधरी जी ने एक डिग्री कॉलेज तो खोला ही है उन्होंने, एक उन्होंने शुरू किया है सहयोग शिविर, प्रशासन आपके द्वार। किसी सरकार में अभी तक नहीं हुआ कि प्रशासन आपके द्वार आकर के आपके पंचायत में आपके ब्लॉक में आकर के आपकी समस्याओं का निवारण करता था, आपको जाना पड़ता था, अब प्रशासन आपके द्वार आपके प्रखंड में आपके जिले में वहां पर आपके पंचायत में जाकर के लगा रहा है और काम कर रहा है। अभी जिस तरह से फ्लड की को सिचुएशन को लेकर के तैयारी की गई है,
1: मैं उसी पर आ रही थी, आपने जैसे ही ये कहा,
2: अभी मुझे चिराग पासवान जी का बोलना बाकी है।
1: एक सेकेंड, पटना के कुछ हिस्से, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया जिला बाढ़ की चपेट में है। तरह तरह के महिलाएं वीडियोस डाल रही हैं कि आइएगा वोट मांगने। कहां पर प्रशासन पहुंचा हुआ है, कहां पर लोगों के बच्चे कई दिनों से भूखे पड़े हुए हैं। हम 5 सितारा होटल में बैठ कर ये डिबेट कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी आप बताइए कहां पर प्रशासन पहुंच रहा है, उनको मदद दे रहा है।
2: प्रशासन ही नहीं मैडम, अंजना जी आज के दिन में प्रशासन हर जिले में सजग है। मैं मान सकता हूं कि राहत में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, शिकायतें आ रही हैं, मगर इन शिकायतों पर काम हो रहा है।
1: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है,
2: तो इसका ज्यादा
1: भाई ये हिस्सों में बाढ़ आएगी, वहां पर आपकी जिंदगी इतने दिनों तक उथल पुथल मचेगी, उसका कुछ नहीं होगा, कहीं पर नाव पहुंचेगी, कुछ लोगों को बचाया जाएगा, कहीं पर खाना पहुंचेगा, कहीं पर नहीं पहुंचेगा, और उसके बाद से फिर इंतजार होगा कि बाढ़ खत्म हो। ये आप वेयर इज योर प्लान, क्या है आपके पास सरकार के तौर पर, आप 20 साल से नीतीश कुमार शासन में है, अब आपकी सरकार है, प्लान क्या है?
2: प्लान ये है कि इस बाढ़ की जो मुख्य कारण है वो नेपाल के माध्यम से गुजरता है, और इसीलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया है अभी अलग अलग समितियों के माध्यम से कि एक नेशनल इंटरनेशनल टास्क फोर्स बने जिसमें जो राज्य इससे प्रभावित होते हैं नेपाल के साथ साथ वहां रहें ताकि एक समस्या का समाधान निकले। इस समाधान को अभी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको करने का हम लोगों ने सरकार में आने के बाद शुरू किया है। इससे पहले की जो सरकारें थी जो इस विभीषिका से लगातार जुड़ रही थी इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ था, हमारी सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया है और इस पर आपको एक्शनेबल पॉइंट्स, आपको एक्शनेबल कदम आगे भविष्य में मिलते हुए दिखेंगे। मैं चिराग पासवान जी पर आ रहा हूं कि चिराग पासवान जी
1: यही सुनते हैं हम लोग, मैं हर साल यही सुनते हैं अरुण जी। शाहनवाज जी को बोलने दीजिए कुछ, वो सरकार चला रहे हैं।
0: नहीं जरा एक मिनट,
1: एक बार ये बोल ले उसके बाद से शाहनवाज जी से जरा बाढ़ पर पूछा जाए भाई कि सर आप बताइए कि अगर 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लोगों को वहां दिक्कतें हो रही है, हर साल यही होता है, मतलब कुछ तो सरकार बाढ़ को लेकर करेगी कि भाई पहले से कुछ प्लानिंग हो, पहले से इवैक्यूएशन ही आप करें, पहले से ये सुनिश्चित करें कि लोगों के लिए ऐसे हाई राइज पॉइंट्स हो जहां पर वो जा सके ऐसी वक्त पर, पहले से व्यवस्था हो। बाढ़ आती है उसके बाद से वही कहानी शुरू हो जाती है,
3: बाढ़ की त्रासदी बहुत।
1: अब वो कह रहे हैं हम इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे, चलिए भाई अगले साल के लिए काम हो गया, और टास्क फोर्स कहीं पर किसी 5-स्टार होटल में बैठेगी किसी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आपका डीएम, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर क्या कर रहा है, क्यों नहीं एक्शन प्लान है?
3: देखिए मैं खुद कोसी का हूं और उसकी त्रासदी देखी है, और उसके बाद बहुत ज्यादा भागलपुर के बेल्ट में भी अभी जो पानी इस बार आया है वो कुछ ज्यादा आया है। 10 सालों में गंगा जी में इतना पानी कभी नहीं आया, वो आया उससे थोड़ा स्तर बढ़ा है, बहुत दिक्कत हुई है। भागलपुर के एरिया में तो पूरा राघोपुर गांव ही कट गया था, बड़े बड़े मंदिर कट गए, मुख्यमंत्री वहां पे खुद गए कैंप करके आए, और बाढ़ का जो रिलीफ है रिलीफ में कोई शिकायत नहीं है किसी को। ये सही है आपका कहना, वैलिड पॉइंट है कि बार बार बिहार में पानी आता है, और पानी वो कोई हम वो जो बेनजीर का लड़का है जो कहता है बारिश आती है तो पानी आता है वो नहीं कह रहे। नेपाल में जब बारिश बढ़ती है और ज्यादा नेपाल में जो इस बार त्रासदी आई उसका असर हुआ कि इस बार पानी कुछ ज्यादा इधर आया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा फिर आप कहेंगे कि मैं तारीफ कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह की अपेक्षा थी कि पानी के बाद बिहार का बहुत बुरा हाल होगा, उनके कौशल से उन्होंने खुद दिन रात मॉनिटर करके बहुत बड़ी त्रासदी से बिहार को बचाया है, और बाढ़ रिलीफ में
1: तो अरुण जी भी मुस्कुरा रहे हैं,
3: सारे गेट खोले गए,
1: आप भी मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए ये कैसे बढ़ाई करने
3: वो
1: लगे,
3: वो तो खुश हो रहे हैं ना।
2: मैं मुस्कुराऊंगा जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका आई है 10 सालों बाद, उसके बावजूद सरकार ने इतनी बेहतर तरीके से काम किया है, केंद्र से भी मदद मिली है, प्रशासन हर जगह सक्रिय है, हम लोग भी पार्टी के माध्यम से चिराग का भरोसा कार्यक्रम चला करके लोगों की मदद कर रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए। हम लोगों ने जिससे जितनी राहत जरूरत थी उससे ज्यादा मेहनत करके इसमें राहत पहुंचा रहे हैं।
3: सीएम हाउस के पास चली जाइए, हजारों लोग होते हैं जिनकी मदद वहां से तक की जा रही है, कभी ऐसा नहीं होता था कि सीएम हाउस तक से मदद हो रही हो डायरेक्ट, ये चिंता की जा रही है। अभी मैं उधर से होके आया तो देखा हजारों लोग हैं वहां पे, सबकी चिंता की जा रही है,
1: और
3: इसलिए बाढ़ हमारा एक बाढ़ हमारी पार्टी का नहीं बिहार का वीक पॉइंट है, और उस पर बहुत अच्छी बैटिंग फातमी साहब और अखिलेश जी कर लेंगे, क्योंकि जब सरकार में थे दोनों 15 साल भागीदार रहे और नीतीश कुमार के भी भागीदार थोड़े दिन के लिए दोनों रहे तो अपना वाला कार्यकाल को भूल जाते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ का मैनेजमेंट किया वो रिलीफ का काम किया, आज तक उनसे रिलीफ के मामले में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बाढ़ वाला मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बातचीत कर रही है, फड़क्का में भी बहुत पानी था, उसका गेट खोला तब जाके कुछ पानी यहां से निकला, तो फड़क्का से भी जो ट्रिटी है जब लालू जी सरकार में थे, जब देवगौड़ा जी के जमाने में भी ट्रिटी हुई थी तब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, तो अब उसका ध्यान रखा जा रहा है।
0: ऐसा है कि अभी हमारे सांसद जी ने कुछ बातें कही और शाहनवाज साहब ने भी, आज स्थिति यह है बिहार की कि हो सकता है कि कभी भी जो यहां काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह बंद हो जाए,
1: उनकी
0: तनख्वाह बंद हो जाए, सैलरी
1: सैलरी बंद हो जाए।
0: जितने ठेकेदार हैं पिछले एक साल से उनका पैसा नहीं मिल पा रहा, और ये डबल इंजन की सरकार है। अभी आपने फरमाया हमारे सांसद जी ने कि कांग्रेस के वक्त से लेकर अब तक की कहानी उन्होंने बताई, और इनको ये नहीं मालूम कि इनके जो चीफ थे रामविलास पासवान जी वो समाजवादी आंदोलन के लोग थे, और लगातार वो बिहार सरकार जब भी हमारी बनी उसका हिस्सा थे, और देर 90s तक तो हमारे साथ एमपी बन के गए हैं लोकसभा के अंदर, और 2004 से 9 तक तो भारत सरकार के मंत्री रहे हैं हम लोगों के साथ। तो ये कह देना कि कांग्रेस ने और लालू ने बर्बाद कर दिया बिहार को और आप आबाद कर रहे हैं और आबाद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की तरफ दिल्ली की निगाह होनी चाहिए। आज बिहार बहुत ही बुरी हालत से, आपने कहा लॉ ऑर्डर ठीक हो गया, तो आपको मैं दावत देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाइए और मालूम
1: करिए। किसने कहा लॉ ऑर्डर ठीक हो गया?
0: आपने कहा।
1: अच्छा, उन्होंने कहा?
0: इन्होंने, आपने नहीं।
2: बिल्कुल, लॉ ऑर्डर तो बिहार बेहतर है,
0: आप आज
2: बहुत बेहतर है।
0: हाँ, बहुत अच्छा।
2: अब लोग घूमते हैं रात में रोड पे, कोई उठा के किसी की बेटी को नहीं ले जाता,
3: किसी
2: आईएएस के अफसर की पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है, कोई दुराचार नहीं होता है। और जहां तक फातमी साहब बोल रहे हैं कि पैसे की बात कर रहे हैं, अरे पैसा तो इनके समय पार्टी निकाल के बिहार से ले गई, उद्योगपति चले गए, कैपिटल चला गया, आज उसका आकलन हुआ है लगभग 1,00,000 करोड़ रूपये होता है, ये तो राजस्व से वसूला जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो लोग 20 साल, एक सेकंड भारती जी, जो लोग 20 साल पहले गए उन लोगों को अभी तक आप वापस नहीं ला पाए? भाई नीतीश की सरकार, नीतीश बाबू की भी तो सरकार थी इतने साल से। आप लोगों को आइडिया है कि नहीं कि एनडीए कितने साल से यहाँ शासन में?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अंजना जी, अंजना जी, बीच बीच में
2: उद्योगपति को लाया जा सकता है, उस मानसिकता, उस डर को कैसे भगाया जाए, इस पर नीतीश जी ने काम किया है, अब उसके ऊपर इमारत खड़ी करेंगे। लेकिन एक बार अगर आपको कहीं का डर, किसी सरकार का डर आपके मन में बैठ जाएगा, उसको भगाने में 20 क्या 30 साल भी लगते हैं, हम लोगों ने 20 साल में किया है। अब उद्योगपति आ रहे हैं, अब यहां पर पहले से ज्यादा बेहतर सड़क बन रही है, आधारभूत संरचना बन रहा है, नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, बाढ़ की विभीषिका है मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर पॉलिसी के स्तर पे काम हो रहा है तो आपको धरातल पर उतरता हुआ भी दिखेगा।
0: मैडम, सबसे ज्यादा क्राइम अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं है तो वो दिल्ली एनसीआर में है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम बॉम्बे के अंदर है, और उसकी तरक्की देख लीजिए और बिहार की तरक्की देख लीजिए।
3: बिहार
0: तो ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए यहां
2: पैरेलल नहीं हो सकता है। आप अपराध को,
0: मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, तरक्की एक अलग चीज है, क्राइम कंट्रोल एक अलग चीज है। तो मैं चाहूंगा कि अगर 22 साल में आप नहीं कर पाए हैं, 22 साल की हुकूमत आपकी रही है यहां, एनडीए नहीं कर पा रही है क्राइम कंट्रोल, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है, आपको इसको दुरुस्त करना चाहिए और ये माहौल पैदा करना चाहिए बिहार के अंदर। अगर हमने बिगाड़ दिया है तो आप ठीक कीजिए, और जब तक
1: के
0: भारत सरकार नहीं चाहेगी, जब तक के भारत सरकार नहीं चाहेगी, 22 साल की हुकूमत आपकी रही है यहाँ, एनडीए नहीं कर पा रही है क्राइम कंट्रोल, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है, आपको इसको दुरुस्त करना चाहिए और ये माहौल पैदा करना चाहिए बिहार के अंदर। अगर हमने बिगाड़ दिया है तो आप ठीक कीजिए, और जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी, जब तक के भारत सरकार नहीं चाहेगी, कोई राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। आज गुजरात, मैं गुजरात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट है, उसकी आबादी कम है, एरिया में भी कम है हमसे, और वहां 18 एयरपोर्ट है, और जाने कितने उसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बिहार के अंदर।
3: अगर
0: दिखाने के लिए गया है तो वहां से 1 से 2 फ्लाइट चलती
1: है। फातमी जी, मेरी बात भी सुनिए,
0: जब तक ये भारत सरकार बिहार को मदद नहीं करेगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे यहाँ का रोड सिस्टम हो, चाहे बुलेट हो, किसी भी फील्ड में अगर आप देखिए तो भारत सरकार मदद नहीं करना चाहती है। जो एनडीए की सरकार दिल्ली के अंदर है वो सारा पैसा एक, मतलब समझ लीजिए कि गुजरात के अंदर नंबर 1 फिर नंबर टू जो उनका राज्य होगा,
1: आपको पता है फातमी जी, अभी आप इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को ही श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि वो 15 साल तक वहां सीएम

0: सर, नहीं, आप नहीं, ये भी नहीं, तो देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति रही बिहार में।
1: बात समझ लीजिए,
0: आप कितने साल
1: गुजरात का, गुजरात के ग्रोथ को उनके सीएम के वक्त में देखिए और आज देखिए।
2: अच्छा, बिहार की
1: कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है गुजरात के अंदर।
0: देखिए, गुजरात कभी भी बीमारू राज्यों में शामिल नहीं था। फैक्ट्स पर बात कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए, या उटपटांग बोलने के लिए कुछ भी मत बोलिए। देखिए, गुजरात कभी भी बीमारू स्टेट्स में शामिल नहीं था। जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का एक मॉडल बना, जिसको लेकर दिल्ली में जनता ने उनको वोट दिया। तो ये भी देखना होगा कि बिहार है कि नहीं। अखिलेश जी, क्या मैं सही नहीं कह रही?
1: गुजरात कांग्रेस के वक्त ही से विकसित राज्य है, उसमें मोदी जी का कोई दखल नहीं है।
2: देखिए, दो बातें हैं,
0: ठीक है। अखिलेश जी,
3: महाराष्ट्र, गुजरात और साउदर्न,
0: बिहार की चुनौतियां अलग है।
3: साउदर्न स्टेट पहले से, आजादी से पहले से डेवलप्ड है। हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात होनी चाहिए।
0: ये पैरेलल ड्रॉ करना कि गुजरात सही है कि नहीं,
3: दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ।
0: अच्छा, दोनों से
3: पर कैपिटा इनकम
0: बिल्कुल
3: बिहार का पूरे देश में सबसे कम है कि नहीं है,
0: जवाब दीजिए।
2: इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ?
3: मातृ शिशु दर में अब ऐसे ही बात करना है तो फिर
2: नहीं
3: इम्प्रूव? अरे सबसे कम है भाई,
2: इम्प्रूव हुआ है।
3: 22 साल आपका शासन हुआ यहाँ, 15 साल मोदी जी का हुआ,
0: पूरा हो जाए।
3: जो ये बाढ़ का समस्या है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर कौन बात करेगा? ये स्टेट सम्राट जी तो नहीं बात कर सकते हैं, चिराग जी नहीं बात कर सकते हैं, बात तो प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा। वो जब तक नहीं होगा, बाउंड्रीज का सोल्यूशन कौन निकालेगा? वो तो प्रधानमंत्री जी को तय करना पड़ेगा, अमित शाह जी को तय करना पड़ेगा, वो कभी होता नहीं है। अभी जनता दल यू संजय झा का मैं बयान देख रहा था कि 96 में आप ही के यहां का इशू है कि अगर फिर से कंटिन्यू करिएगा तो हम लोग सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, कि केवल बाढ़ सुखाड़ यही रह गया उस ये के बाद। 96 में आप मंत्री थे कि 98 में थे?
0: आपको जितना इंटरेस्ट इनके करियर में है ना, मतलब शाहनवाज जी को उन्होंने
3: तो
0: क्या, आपने ऐसा जीवन में क्या किया जो मिलता है आपको बुला लेता है? कांग्रेस आ जाओ, आरजेडी आ जाओ, क्या मतलब?
1: अच्छा काम करने वाले हैं,
3: इनको खाली रखे हुए,
0: इतना नूर लिए घूम रहे
1: हैं, रोजगार बना के रखा है ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं रोजगार।
2: जी हमारे मित्र हैं, जब हम केंद्र में मंत्री थे तो ये राज्य में,
0: मुझे तो लग रहा है बीजेपी से बाहर आपके ज्यादा मित्र हो गए।
2: नहीं,
3: ज्यादा एकदम।
2: और ये देखिए,
3: इनको भी मानना चाहिए,
2: आप जानते हैं कि रिश्ते उसी के आते हैं।
4: अंजना जी, जब सर केंद्रीय मंत्री थे तब मैं कॉलेज में था, आज मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, सर के आज भी काले हैं।
0: ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था,
2: ये अंजना जी ने ही शुरू किया है।
1: अंजना जी,
2: मुझे लग रहा है कि
1: अंजना जी जो इन्होंने सवाल उठाया, जब तक के नेपाल से बात नहीं होगी, नेपाल से बात तो सम्राट जी नहीं करेंगे, डैम बैराज जो बनना है वो
0: ठीक है, अब आप
1: नेपाल के अंदर बनना
0: है। सिचुएशन पे
1: बात करें, उस पर काम करें,
0: जाएंगे जल्दी से। फ्लड सिचुएशन,
3: फ्लड सिचुएशन
0: आपने क्या किया है बोलिए। शाहनवाज जी,
3: कभी नहीं हुआ।
0: शाहनवाज जी बोलिए।
2: देखिए क्या है कि फातमी साहब की बात का जवाब देके फिर अखिलेश जी पे आता हूँ। फातमी साहब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते करते दिल्ली और मुंबई चले गए, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि बिहार में कानून का राज है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता यहां नहीं होता है, न नीतीश जी ने किया न सम्राट जी करने वाले। दूसरी बात, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है इस सरकार से तो फातमी साहब को हुआ है।
0: कैसे?
2: एयरपोर्ट बना इनके यहाँ। अब कहेंगे दरभंगा महाराज, आप जहाज से जाते थे दरभंगा?
1: आप तो जाते थे,
2: कब जाते थे
1: भाई? आपको नहीं, आपको जरा मैं इनको जरा मैं इतिहास बता दूं, दरभंगा महाराज का
0: साल में जाते थे।
1: देखिए
2: हमारे,
1: मेरी बात सुनिए, बिहार के अंदर कंबाइंड बिहार के अंदर सबसे पहला एयरपोर्ट 1931-32 में दरभंगा एयरपोर्ट बना, दरभंगा एयरपोर्ट बना और पूर्णिया एयरपोर्ट बना, ये कोई नया एयरपोर्ट नहीं है।
0: अरे चला कब, वो मैटर करता है।
1: अरे भाई वहाँ जहाज चलती थी।
0: अरे चलती थी तो क्यों नहीं चली लालू राज में?
1: बाद में भी चली।
0: कब चली?
1: मामू भी कई मरतबा आए होंगे वहाँ,
0: आप बताइए ना।
1: अपने जहाज से आए,
0: आपको जब जब मन करता है मामू बोल देते हैं उनको घेरने के लिए। जो आप लोगों ने हालत की है ना,
1: एयरपोर्ट आज का
0: हालत की है आप लोगों ने?
1: नहीं, एयरपोर्ट आज का नहीं है, एयरपोर्ट आज का नहीं है, उसको एनडीए ने डेवलप किया
0: लेकिन
1: आगे बढ़ाया, इसको मैं मानता हूँ।
2: मैं एक डेढ़ मिनट लूंगा,
0: जल्दी से जवाब ही नहीं दे पा रहे।
2: मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा हुआ, एयरपोर्ट बन रहा, नया टर्मिनल बनेगा, ट्रॉली लेके फातमी साहब आराम से जाएंगे, फिर दरभंगा महाराज को याद करेंगे, क्योंकि इनको मोदी को याद नहीं करना है, ये मोदी

0: गंगा महाराज को तो याद करेंगे, आधार किला उन्हीं का
1: किया, किया मोदी ने। अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, पटना एयरपोर्ट के बाद अखिलेश जी को याद होगा पहला एयरपोर्ट हमने बनाया जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो गया।
2: अच्छा काम किए हैं हम।
1: अरे गया में, गया में एयरपोर्ट बना और गया के बाद पूर्णिया में एयरपोर्ट बना। अब वो भी कोई महाराज का नाम ले लीजिए,
0: महाराज का बना।
1: अच्छा वो भी महाराज का है।
3: इस शो का अंत होते होते अगर शाहनवाज जी किसी एक तरफ चले जाए
1: अभी मैं
3: तो
1: आपको
3: अचरज की बात नहीं
1: मैं
3: है।
1: मैं आपको बताऊं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, दरभंगा में एयरपोर्ट बना, 4 लेन सड़क बनी है वो भी बता देंगे महाराज का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो सड़क दिया, आप जाते हैं दरभंगा। एम्स बना दरभंगा में, फिर भी आपको शिकायत है। अरे आप दरभंगा के हैं तो कम से कम इतनी कौन बनाया,
0: कौन सा रोड?
1: नरेंद्र मोदी बनाया,
0: कौन? नहीं नहीं,
1: नरेंद्र
0: मनमोहन सिंह का बनाया हुआ रोड है, जरा याद रखिए।
1: ये सांस, ये हवा, ये पानी सब नेहरू जी का दिया हुआ,
0: मनमोहन सिंह का।
1: सब ऐसे ही बता दीजिए आप, सूरज उगा उन्हीं के टाइम का सूरज चल रहा है। नेहरू जी
0: सूरज तो आज देखिए, सूरज तो अब उग रहा है, सूरज तो अब उग रहा है 2014 के बाद।
1: हम ये कह रहे हैं
0: 2014 के बाद सूरज उग रहा है,
1: के बारे में
0: चांद नजर आ रहा है 2014 के बाद।
1: मैं अखिलेश जी का जवाब दे रहा हूँ,
3: सूर्य देव पर भी कब्जा करेंगे, ये कहेंगे हमारे हैं, वो कहेंगे हमारे हैं।
1: अखिलेश जी को कह रहा हूँ,
3: हद है मतलब।
1: अखिलेश जी ने कहा कि यहाँ के बारे में कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के बारे में आ रहे हैं। अखिलेश जी केंद्र में भी मंत्री रहे और राज्य में भी मंत्री रहे, बाद में मैं भी राज्य में मंत्री बाद में बन गया, ये पहले राज्य में रहे।
2: हम लोग शुरू करते हैं घर से, फिर
1: आप ये इनका ये देखिए कि रोड, बिजली, पानी, सड़क, बिहार कहाँ पीछे है किसी राज्य से। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, आज का रोड एक शब्द आपके तारीफ के नहीं है कि रोड इतना अच्छा है। चलते आप लोग भी हैं उसी पे, आप पदयात्रा किए, भले कांग्रेस वाला आपके साथ अन्याय किया, सबसे बढ़िया काम किए, सदाकत आश्रम सजाए, आप ही को बाहर कर दिया कांग्रेस वाला।
2: हमको कौन
1: ये तो और क्या आपका, देखिए
2: हम तो आज,
1: आज पैदल आज चले सड़क पे, ये पैदल चले थे, पूरा बिहार घूमे थे, कहीं पर सड़क टूटी हुई मिली आपको? थैंक्स कीजिए नरेंद्र मोदी को, थैंक्स कीजिए।
2: ना बताइए ना हेल्थ,
1: हम भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
2: आप यही प्रवक्ता,
1: आप माइक पर आपके लालच देने से हम आने वाले होते तो ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि ये कई साल से बोर्ड डाल रहे हैं, कई साल से जब भी मिलते हैं
2: तो आपको हम लोग
0: अच्छा
3: ज्यादा
1: रहूंगा।
3: अगले विषय पर नहीं सर, प्लीज वेट, छात्रों की बात पर आते हैं क्योंकि अब बहस का अंत हो रहा है, छात्रों पर मुझे चर्चा करनी है और इसी के साथ साथ उद्योग जो यहां पर लगा है बड़ा दूसरा मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। छात्रों का विषय, अब युवा अपने आप को चिराग पासवान, वो भी पॉलिटिक्स में अब सब युवा ही हैं, तो सम्राट जी को भी युवा ही कह रहे हैं तो हाँ, नहीं नहीं सब सब युवा है भाई, सब युवा है, आप सब युवा है, हम लोग सब बुजुर्ग हैं जो बच्चे यहां बैठे हैं, तो बुजुर्गों की ही बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट कॉलेज जा रहा है, जो स्टूडेंट ये देख रहा है कि भाई मेरे पास आगे जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है, उसको बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि आंकड़ों के नजरिए से कहा जा सकता है कि भाई आज जीडीपी 6.8% है, 7 पॉइंट ये है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप जॉब नहीं दे पाएंगे अपने युवा को, वहां पर सवाल होते रहेंगे और उठते रहेंगे सवाल। पेपर लीक से लेकर जो छात्र पटना की सड़कों पर उतरे, उनकी जवाबदेही किसकी है? भारती जी,
4: अंजना जी, अभी कुछ दिन पहले जब अभी बीपीएससी के टीआरए के छात्र आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग उस दिन मुख्यमंत्री से मिलना था और हम लोग छात्रों से मिलते हुए गए थे, तो हम लोग सरकार में भी हैं और जन सरोकार में भी हैं। हम सरकार में रह करके उन जो समाधान की बात करते हैं, सिर्फ शिकायत पहुंचाते नहीं है, शिकायत के को समाधान में बदलने का भी प्रयास करते हैं। और बात सही है, देखिए अवसरों की जो कमी है नौकरियों को लेकर के, उसको तो समझना पड़ेगा और इसके लिए अवसर बनाने पड़ेंगे। और आप अवसर कैसे बनाते हैं? हर विभाग के माध्यम से जो पैसा आप खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, आप उसे नौकरियों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। जब सम्राट जी जब से आए हैं तब से इसी काम को करने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी ने अपने मंत्रालय के माध्यम से अभी उन्होंने 25,000 करोड़ का उन्होंने ये इंटेंट लिया है, जो कि हर राज्यों में जाकर के अलग अलग नौकरियों के इसको सृजित करेगा। दूसरा एक जो बड़ा काम जो मैं पहले आपको बताने से रह गया था, उन्होंने बाजार को डायरेक्टली किसान से जोड़ने का काम किया है। आप यहां पर भी देखिए, मखाना बोर्ड तो खैर उन्होंने करवाया ही है, बाजार को जो जोड़ने का काम किया है उससे भी रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। नौकरियों को लेना, यहां से हटा देना और उसके बाद नए अवसरों को बनाना, इसमें समय लगता है। जो समय लग रहा है, सम्राट जी का अभी कार्यकाल मुश्किल से 5 महीने का हुआ है, आप थोड़ा समय और दीजिए, आप देखिए कैसे आधारभूत संरचना के माध्यम से, अलग अलग विभागों के माध्यम से अवसर जो क्रिएट किए जा रहे हैं उसके माध्यम से रोजगार आएगा बिहार में।
3: एक्चुअली कैलकुलेट कर रही थी, हमारे यहाँ पर युवा बहुत सारे हैं जिनको अब बुजुर्ग बता दिया गया है, तो आप में से अगर कोई भी है फटाफट एक बार कैलकुलेट करके बताइए कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा अगर 5 साल में किया गया है तो प्रतिदिन कितनी नौकरियां सरकार को देनी चाहिए। वो जरा नंबर इनको बताएंगे कि कितनी नौकरियां दे रहे हैं, क्योंकि 150 दिन निकल गए हैं, है ना। तो 1 crore divided by 365 into 5 days into 5 years, है ना। तो 365 इंटू 5 से 1 करोड़ को डिवाइड कीजिए, इनसे पूछेंगे नौकरियां कितनी दे रहे हैं। फातमी साहब,
2: जबकि 4 लाख नौकरी बिहार में खाली है सरकारी।
0: देखिए ऐसा है कि अगर सरकार चाहे तो अभी भी कई लाख नौकरियां बिहार के अंदर बची हुई हैं सरकारी। आपको याद होगा कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग नीतीश जी के साथ गए थे, तेजस्वी जी ने सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.5 लाख से ऊपर लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, और सिर्फ शिक्षा विभाग और जो उनके अंडर में डिपार्टमेंट था 5.5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी उन्होंने मुहैया कराया। तो एक कमिटमेंट ही नहीं है सरकार का, सरकार नहीं चाहती है कि नौजवान लोगों को रोजगार और नौकरी मिले, तो ये तो कमिटमेंट होना चाहिए सरकार का। आज नौजवान बेरोजगार हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर हर जगह घूम रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं है इनका। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि अभी हमारे शाहनवाज साहब ने और एमपी साहब ने भी कहा कि बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और सड़कें देखिए बिहार की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये भी मालूम कर लीजिए कि सड़क बनाने के मामले में बिहार किस नंबर पे है पूरे हिन्दुस्तान में। हम बाहर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी और मुल्क से, इस देश के अंदर जो सबसे खराब सड़कें अगर कहीं हैं तो वो बिहार के अंदर सबसे खराब।
3: क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं या लोगों को लगता है कि सड़कें बेहतर हुई हैं? कितने लोग बेहतर हुई हैं, हाथ उठाइए।
0: देखिए मामला क्या है, देखिए
1: सड़क तो बेहतर है ही,
0: सुनिए
3: और जो लोग मानते हैं कि बेहतर नहीं हुई है,
0: देखिए
3: तो ऐसे भी लोग।
0: मैं सुनिए, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि बेहतर नहीं हुई, आप कंपेयर करें दूसरे राज्यों से तो बिहार सबसे नीचे है शिक्षा में, जैसा कि अखिलेश जी ने कहा था शिक्षा में भी हम सबसे पीछे हैं, रोजगार देने में, नौकरी देने में सबसे पीछे हैं, स्वास्थ्य में सबसे पीछे हैं। तो क्यों बिहार पीछे रहेगा, बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ेगा जब आप डबल इंजन की सरकार है, अब तो सिंगल इंजन नहीं, यहां भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भाजपा की सरकार।
3: लेकिन आपने कभी सोचा कि 20 साल तक नीतीश कुमार के रहने के बाद फिर से नीतीश कुमार के लिए जनता ने क्यों वोट कर दिया और आरजेडी को एकदम दरकिनार कर दिया?
0: नहीं, दरकिनार नहीं किया, हमको 38% वोट आया है, याद रखिएगा, इंडिया गठबंधन को,
3: इनको
0: 44% वोट आया।
3: आप इसी पे खुश हैं?
0: क्यों नहीं खुश रहेंगे,
3: 20 साल बाद
0: 38% लोगों ने मुझे चाहा। अब कोई इलेक्शन कमीशन का फायदा उठा करके, एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा लेकर के,
3: अच्छा
0: 10-10 हजार रूपया नोट पहुंचा करके गरीबों के खाते में वोट ले ले तो बात अलग है, ऐसी सरकारें बनती रहेंगी।
1: 10,000 के लिए, 10,000 विकास के लिए आज भी बिहार की जनता 20 साल बाद भी एनडीए को ही समर्थन करती है, इसलिए उनको पता है कि किसको नहीं लाना है और किसको लेकर के आना है। ये आपने देखा होगा अभी नवंबर 2025 में कहीं जहां लोग कह रहे थे कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आएगी, 202 सीटें आई, यानी कि जनता को पता है कि किसको बाहर रखना है और किसको विकास के लिए अंदर लाना है,
0: किसको
1: सरकार किससे सरकार चलवाना है।
0: बड़ी अच्छी बात है, आपको लाया विकास के लिए तो विकास करके दिखाइए,
3: थोड़ा अखिलेश जी को
0: नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए,
1: जहां तक
0: अच्छी सड़कें बनाइए, अच्छा हॉस्पिटल बनाइए, अच्छा कॉलेज बनाइए,
1: बात रही अन्य राज्यों से कंपेयर करने की, अन्य राज्यों में तो राजद की सरकार नहीं थी ना, वहां उनको थोड़ी 15 साल का जंगलात झेलना पड़ा था, यहां झेलना पड़ा है, समय लगा है, फाउंडेशन बना है, अब काम भी होगा,
0: अंजना
1: काम हो रहा है।
0: अंजना जी, सिर्फ आधा मिनट, देखिए ये जो हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि कांग्रेस की सरकार रही, लालू की सरकार रही, राबड़ी देवी की सरकार रही, वो बिल्कुल ही खराब थी, नेहरू की सरकार थी, उससे बुरा आदमी कोई नहीं था, तो छोड़िए।

0: अब आपकी सरकार है, आप देश को आगे ले जाइए।
1: जब तक हमें इतिहास पता नहीं होगा भविष्य में जाएंगे कैसे? इतिहास पता है इसलिए भविष्य की तैयारी भी इसी हिसाब से की जा रही है।
0: सांसद जी, अगर आप नेहरू से मुकाबला करोगे किसी भी लीडर का तो आपकी बेवकूफी होगी, और लालू से मुकाबला करोगे तब भी बेवकूफी होगी। दोनों ग्रेट लीडर हैं देश के और वो रहेंगे। आपके कह देने से
1: हम भी मानते हैं ग्रेट लीडर है,
0: वो बदलेगा नहीं। नेहरू को
1: आप हम भी मानते हैं ग्रेट लीडर हैं, दोनों ग्रेट लीडर हैं।
0: इंदिरा को
1: और आज के दिन अब जरूरत है उस विजन की, जो समय के हिसाब से
2: एक ही सुझाव दे सकते हैं कि आप तो मत ही करिए, क्योंकि आपके नेता जो भी सत्ता में रहता है उसके साथ हमेशा चले जाते हैं। मतलब मौसम वैज्ञानिक तो है ही ना, खुद ही मानते हैं।
1: अंजना जी, हम जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बनती है, हम किसी सरकार में नहीं जाते हैं।
2: बस कीजिए।
0: आप सिर्फ सरकार मत बनाओ यार, कुछ करो बिहार के लिए।
2: और ये भी देखिए कि
0: सरकार बना दिया, बना दो सरकार,
1: सरकार से ही विकास का काम होगा।
0: बिहार वहीं का वहीं है, ये मत करो।
2: रामविलास जी का मैंने भी कम से कम 4-5 इंटरव्यू किया है, तो मुझे भी आइडिया है कि वो क्या राजनीति सोचते थे। उनका अपना एक तरीका था सोचने का। अखिलेश जी
3: कम है, उसको बोलने का आजादी होना चाहिए।
2: कोई बात नहीं, अखिलेश जी आपके पास आ रहे हैं जल्दी से। अब आखिरी में आप दोनों से कमेंट है मेरा।
3: एजेंडा अच्छा था
2: इंडस्ट्री,
3: लेकिन अब नेहरू जी और लालू जी
2: आप ही लोग ले जा रहे हैं इंडस्ट्री पे। आइए कि भाई कितना यहाँ पर व्यापार आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी साधन खुलेंगे।
3: यही मैं कह रहा हूँ। मैं तो ये सोच के आया था कि बिहार का कुछ भले की बात होगी, तो अभी तक तो कोई रोड मैप ऐसा है नहीं जिसमें बिहार बीमारू स्टेट से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। आज भी जो स्थिति है बाढ़ नियंत्रण में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा इस बार, जबकि पहले से पता चल गया कि नेपाल से यहां पानी आने वाला है, फिर भी लोग रोक नहीं पाए। यही बिहार था जहां के इंजीनियर्स को बाहर बुलाया जाता था बाढ़ नियंत्रण के लिए और उनकी तारीफ होती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, इस व्यवस्था में कहीं न कहीं भारी कमी रही है।
2: चलवास जी चलिए, अब सबकी तरफ से जवाब दीजिए, और आप सरकार है, जनता ने आपको चुना
3: सबसे
2: है,
3: ज्यादा
2: फिर से मौका दिया।
3: अंजना जी, प्लान किसी एक स्टेट से हो रहा है तो वो बिहार से हो रहा है, ये चिंता की विषय है। सबसे ज्यादा छात्र नौजवान कहीं प्लान कर रहे हैं बाहर के राज्यों में तो वो बिहार से हो रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि आपस में एक दूसरे पर हम लोग छीटाकसी करके और इस आपके पंचायत आज के कार्यक्रम को खराब।
4: नहीं, सही बात कही है, हम लोग छीटाकसी के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार बाढ़ में त्रासदी हुई नेपाल में, उसका असर हुआ यहाँ, ये आप भी माने।
3: एक सप्ताह बाद तब तक आप कोई
4: नहीं, उसका जो त्रासदी को रोकने में जो प्रबंधन हुआ उसकी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा आया तो 10 साल बाद इतना लेवल ऊंचा आया है। जहां तक के रोजगार का सवाल आप लोगों ने उठाया, ये सही है कि बिहार में पहले इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अब देखिए बेगूसराय चले जाइए, पेप्सी का प्लांट है, कोक का है, इथेनॉल का है, वहां इंडिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्री बन गई। गिरिराज जी वहां पर एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर चले जाइए,
3: एक मिनट रोके आपको,
4: मोतीपुर में
3: हम लोग जब पढ़ाई करते थे,
4: E10 पे आ जाएंगे, पहले हमें बताना।
3: नहीं, E10 E20 का नहीं बात कर रहा, ये क्या सच नहीं है कि जब हम लोग कभी शिक्षकों से बदमाशी करना होता था तो उनके स्कूटर में चीनी डाल देते थे और स्कूटर नहीं चलता था?
4: तो पढ़े लिखे आदमी है,
3: अरे हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तभी तो बोल रहे हैं ये बात।
4: तो समझाइए,
3: सब गाड़ी का जो स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं,
4: गलत प्रचार को रोक,
3: गाड़ी का स्वास्थ्य जो खराब कर रहे हैं।
4: ये अभी बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाइए या मोतीपुर जाइए आप, बक्सर में वहां पे एकदम बंजर भूमि थी जब मैं गया था, सांप गुजर रहा था सामने से। आज वहां पेप्सी का प्लांट है, कोक का प्लांट है, इथेनॉल प्लांट है, राइस मिल है, इतना काम हो रहा है।
3: शाहनवाज बाबू,
2: मतलब ऐसा चमत्कारी के रोल बोला, मैं गुजर रहा था सांप गुजर रहा था।
4: हाँ,
2: और आज देखो वहाँ,
4: आप देखिए, मैं ले जाऊंगा अंजना जी आपको वहाँ, आप जाकर बक्सर में।
2: अच्छी बात है, अच्छी बात है सर। देखिए आप सरकार है, आपने फैक्ट्री लगाई है, आपका काम है साहब।
4: वो सुन रहे होंगे,
2: जनता ने चुना है आपको।
4: नवानगर में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, बंजर जमीन थी, आज वहाँ इंडस्ट्री चल रही है। 5 लाख करोड़ का सम्राट
2: जल्दी से, एक
4: सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो 5 लाख

0: करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, उसको जमीन पे लाने का काम करेंगे, बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, बिहार में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। जब सम्राट चौधरी 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो बिहार से पलायन को वो बंद करेंगे।
1: सोच लीजिए, रिकॉर्ड करके रखना भाई सब बच्चों, मोबाइल में करो, फिर से ये बोलेंगे अभी सारे लोग, मोबाइल खोलो अपना, रिकॉर्डिंग करते हैं आज शाहनवाज जी का।
2: एक चीज तो
1: शाहनवाज जी माइक उठाइए,
2: एक चीज तो
1: शाहनवाज जी बता रहे हैं कि 5 साल बाद पलायन बंद होगा, बोलिए कैमरे में देख के।
0: मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिहार का सफल उद्योग मंत्री रहा हूँ। मैंने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, मैंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई, हवा में जो ला के बड़े बड़े बातूनी लोग अब बातबाज आ जाते हैं आपके सामने, वो करके नहीं आया हूँ, मैं करके दिखाया, इसलिए मैंने तर्क के साथ कहा
1: कि अभी जो क्या कहा वो बताइए ना।
0: अभी मैंने
1: कैमरा ऑन हुआ तो अपनी उपलब्धि गिनाने लगे।
0: जब किया हमने, जब करके दिखाया है, अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो 5 लाख करोड़ का जो अभी प्रपोजल है वो तो आएगा ही, पूरे बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, पलायन को बंद करेंगे,
1: पलायन को बंद करेंगे 5 साल में, ये उन्होंने आज
0: और
1: वादा किया।
0: तो दावा नहीं कर रहे हैं ना कि
1: ठीक है, अगले चुनाव में महीने बंद कर देंगे, अगले चुनाव में यही बाइट प्ले करेंगे। जल्दी से अरुण जेटली,
3: मैं सर की बात पे ऐड करता हूँ कि कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपको हमेशा एक उदाहरण देना होता है। उदाहरण तभी होता है जब आपके पास एमएसएमई के फैक्ट्रीज लगी हो, जैसे सर ने लगाए हैं, और साथ ही साथ आपके पास एक बड़ा यूनिट होना चाहिए दिखाने के लिए, जो अडानी का भागलपुर में लग रहा है। ये जब बड़ी यूनिट्स और छोटी यूनिट कंबाइंड एग्जांपल आप देंगे तो इन्वेस्टर्स भी आएंगे और साथ ही साथ बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज भी यहां पर लगेंगी, जिस पर काम शुरू हो चुका है और आप ये भविष्य में होते हुए
1: इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। एक बार तालियों के साथ सभी का यहां पर धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि कम से कम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश इस मंच से की गई है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, चाहे निवेश कैसे बिहार में बढ़े, कितना वादा था, कितना दावा था, अब ये 5 साल बाद जनता तय करेगी। और शाहनवाज जी का तो रिकॉर्ड हो ही चुका है
4: तो
1: कि पलायन खत्म कर देंगे 5 साल,
4: मैडम
1: देखते हैं।
4: मैडम इससे बाहर
1: सर टाइम आप देखिए ना, उधर लिखा हुआ है, थोड़ा नियम से चलना पड़ता है।
4: नहीं, मैं मामू के लिए कर रहा हूँ कि मामू तो बहुत अच्छा
1: रिश्ता बाहर फरिया लीजिएगा।
4: मामू ने तो बहुत अच्छा काम, मामू ने बहुत अच्छा काम किया, इन पे भरोसा है, लेकिन भाजपा पे भरोसा नहीं है। स्मार्ट
1: यहाँ भी आप अपने परिवार का फायदा कर रहे हैं।
4: सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, स्मार्ट सिटी बनेगा,
1: यहाँ भी आपका फायदा।
4: स्मार्ट सिटी कहाँ है? गंगा की सफाई होगी।
1: अच्छा, फातमी जी को डिबेट खत्म होने के बाद याद आया कि
4: नहीं,
1: तो पूछा ही
4: मैं तो मामू के लिए कह रहा हूँ।
1: चलिए बहुत धन्यवाद।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
13: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol, signature finest cardamom seeds, E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
6: चौल में घर छोटे होते थे बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
7: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
6: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।
8: There is a very famous quote ki history repeat itself.
9: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
10: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
9: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
11: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहाँ भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।
12: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मंच शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनावी यूपी में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना। भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप। हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व राष्ट्रपति ने दिया था बयान। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां। भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार। एसपी का पलटवार। ओबीसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान। बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी ने किया चौतरफा वार। राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनावों के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं। ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। राजस्थान के जोधपुर में भारत जापान का युद्धाभ्यास। दोनों देशों के एयरफोर्स प्रमुख ने भरी तेजस में उड़ान। शो की शुरुआत यूपी की चुनावी राजनीति से करते हैं, जहां पर रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी का जेनजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। और मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी सरकार पर, उस समय की सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव रोजगार पर ही सरकार को घेरते दिखे।

0: 27 का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
1: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
0: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।

0: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
3: सत्ताईस के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मायावती ने आकाश आनंद और अपने भतीजे को बीएसपी से दूर कर दिया है और इसके विपरीत उन्होंने अब आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे कर दिया है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया। हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि मान्यवर कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही हैं पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीएस सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।

0: समानता मूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: और अब बात पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बैन पर छिड़े सियासी घमासान के। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बैनों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया और एजी नूरानी के खिताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनलिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिण पंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का दावा भी किया गया है। अब अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
3: जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स The danger to India. Mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism.
2: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा।
4: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
2: सियासत में खूब वार पलटवार तो देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच में कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई। जब उसी मिमिक्री के बाद से सियासी बयान आने लगे तो अब हंगामा बरपा है। हेलो,
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
5: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
6: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
5: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
5: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
6: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
5: ग्रेट हैरेसमेंट, गलगोटिया।
6: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
5: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो। राहुल गांधी कहते हैं, टेल मी मोर।
1: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
2: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो अगर आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
3: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
4: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
0: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
5: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
0: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
6: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
0: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
7: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
0: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
8: माँ का कहां से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ, सबकी माँ।
0: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब आगे बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हुए हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, और शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
10: आया आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को एआई पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद आईआईटी बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अब बात मुंबई में हुए सड़क हादसे के। मुंबई में BMW कार हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज के नीचे गिरती दिख रहे हैं। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी और उसमें सवार 4 में से 3 छात्रों की मौत हो गई।
0: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार 4 में से 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
11: उस गाड़ी में 4 लड़के थे। चारों में एक जख्मी है, आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
0: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
12: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
9: अब रुक करते हैं एशियाई खेलों का, जहां पर पहले ही दिन बेटियों का दम दिखा। क्रिकेट में हरमनप्रीत की टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर गोल्ड के करीब पहुंच गए हैं। 22 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा।
0: गोल्ड जीते थे पिछली बार, गोल्ड जीतेंगे इस बार। एशियन गेम्स में मेडल पक्का, क्रिकेट में बेटियों का मजबूत इरादा। कहने को सामने एक चैंपियन टीम बांग्लादेश थी, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों ने उसे धोकर रख दिया। चैंपियन स्टाइल में खेली टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 114 रन से रौंदकर एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल में जगह बना ली है। पहले खेलते हुए भारत ने 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने धूम धड़ाके वाली नाबाद शतकी पारी खेली। जवाब में नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा के 3-3 विकेटों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 81 रन पर ऑल आउट कर दिया। महिला क्रिकेट ही नहीं, शूटिंग में भी रविवार को भारत ने कई मेडल्स पर निशाना लगाने में कामयाबी हासिल की। एलाविनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीता। इसके अलावा भारत ने महिला वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पर निशाना साधा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका ने भारत के लिए एक मेडल पक्का किया। अभी तो ये सिर्फ आगाज है, जैसे जैसे जापान में एशियन गेम्स का सफर आगे बढ़ेगा, भारतीय खिलाड़ी और भी खेलों में नए नए कीर्तिमानों के साथ पोडियम पर गर्व से खड़े दिखाई देंगे। आज तक ब्यूरो।
9: और हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
6: जेके मैक्स पेंट्स।
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
18: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
17: असली शहद, असली स्वाद।
19: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी,
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, एसपी का भी पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान।

0: सवार राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनावों के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों में धुआं धुआं। ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार। एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट। 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए बरामद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है और जानकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। अब यूक्रेन ने मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद से रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। खार्किव, कीव और ओडिशा शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई है, साथ ही मठों पर भी हमला हुआ है। इन हमलों के बाद से यूक्रेन के शहरों में बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं।

0: यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के शहरों में रूस मचा रहा है तबाही। यूक्रेन के कीव, खेरसान और ओडेशा में जबरदस्त हमले। रूस के हमले से यूक्रेन के शहरों में हड़कंप। रूस ने यूक्रेन के मठों पर बरसाए बम। जी हाँ, एक तरफ यूक्रेन मॉस्को में बारूदी हमला कर रहा है तो दूसरी ओर रूस भी पीछे नहीं है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। देखिए, ये तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। तस्वीरों में लिखा गया है रशियन टेरर। ये कीव क्षेत्र की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रूस ने कीव में तबाही मचाई है। कीव में आग की लपटें बता रही हैं कि हमला कितना भयानक रहा होगा। आगे की तस्वीरें देखिए। जेलेंस्की ने कीव में पूरे हफ्ते हुए रूसी हमले की तस्वीरें शेयर की हैं। देखिए कीव की इमारतों को किस तरह नुकसान पहुंचा है। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कीव के बाद ओडेशा की तस्वीरें देखिए। रूसी हमले के बाद यहां यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओडेशा में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। देखिए किस कदर बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है। ओडेशा के बाद सुमी की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी जमकर बम बरसे हैं। इतनी भयानक तस्वीरें कि चारों ओर आग ही आग दिख रही है। सुरक्षा कर्मी आग बुझा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। भी इमारतों पर मिसाइलें बरसी हैं। ये टूटी फूटी इमारतें गवाही दे रही हैं कि हमला कितना खतरनाक था। अब डोनेत्स्क की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी वही बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी तरह खार्किव में भी रूस ने तबाही मचाई है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा कि हम हर दिन और हर रात रूसी हमलों से अपना बचाव करते हैं। कल खेरसान इलाके में रूसियों ने एक मठ पर FPV ड्रोन से हमला किया। दुख की बात है कि मठ के पादरियों में से एक की मौत हो गई है और चार अन्य घायल हो गए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। खार्किव, सुमी और ओडेशा इलाकों में अहम और आम लोगों के बुनियादी ढांचे पर हमले हुए। निप्रो और ज़ापोरिज़िया इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। शाम में विनित्सिया, कीव, ज़ाइटोमिर और चेकार्सी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। जेलेंस्की ने बताया कि अकेले इस हफ्ते में ही रूस ने हम पर 2000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं, जिनमें से ज्यादातर जेट पावर्ड थे। 1700 हवाई बम और अलग अलग तरह की 19 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन लगातार अपना बचाव करने और इन जानलेवा हमलों का जवाब देने के तरीके ढूंढ रहा है। साथ ही अपने सहयोगी देशों से मदद मांग रहा है। लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग फिर से जोरदार हो गई है। आज तक ब्यूरो।
1: रूस और यूक्रेन की लड़ाई एक बार फिर से जोर पकड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुथियों ने सऊदी अरब की नाक में दम करके रखा हुआ है। वहीं ईरान ने अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखकर महायुद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। कतर के जरिए रखी गई इन शर्तों को अगर अमेरिका ने मान लिया तो ये उसकी हार से कम नहीं होगा, और ना माना तो ईरान ने नतीजे भुगत लेने की धमकी भी दे दी है।

0: होती हो रहे बेलगाम, कैसे निकलेगा समाधान? सऊदी अरब के साथ बढ़ रहा घमासान, ट्रंप के सामने 7 शर्तें रख आक्रामक हुआ ईरान, ईरान की शर्तों से मचेगा कोहराम या आएगा पीस प्लान? एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन बम बरसा रहे हैं तो दूसरी ओर बातों के बम ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अपनी 7 शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई के मुताबिक कतर ने तेहरान की शर्तों को अमेरिका तक पहुंचा दिया है और अब ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार कर रहा है।
1: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة لقد أبلغناهما بشروطنا والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها أي أن ينفذوها فلا يحق لنا استهداف تلك القاعدة نعم نحن لم نهاجم لقد أعلننا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمد
0: ईरान ने जिन शर्तों को रखा है उनमें हर मोर्चे पर चल रही जंग को रोकना, ईरान की फ्रीज संपत्ति को मुक्त करना और समुद्री नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। ईरान ने महज कतर के जरिए अपनी शर्तें ही नहीं रखी बल्कि अमेरिका को धमकी भी दे डाली है। उसने साफ साफ कहा है कि उसकी मांगे नहीं मानी गई तो अमेरिका निर्णायक जंग के लिए तैयार रहे। अब हर किसी की नजर ट्रंप पर टिक गई है। उधर सऊदी अरब और हुतियों का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक हो रहे हमलों ने कोहराम मचा रखा है। हूती रुकने को तैयार नहीं है और सऊदी अरब किसी भी कीमत पर यमन के आसपास की नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा। ऐसे हालात में घमासान के और बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान जहां सऊदी के साथ एकजुटता की सिर्फ बात कर रहा है, वही तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो हर तरह से सऊदी अरब का साथ देने के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो।
2: हॉर्मुज का बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हूथियों ने बाब अल मंदेब से तेल की सप्लाई में अड़चन डालने शुरू कर दी है। उधर रूस के कई ऑयल रिफाइनरीज पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया भर में सप्लाई कम हो रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं।

0: पश्चिम एशिया के अखाड़े में ईरान अमेरिका के बीच 7 महीने पहले छिड़ी लड़ाई ने दुनिया की 2 ऊर्जा धमनियों में जो ब्लॉकेट लगाया है उसके झटके लगभग हर घर में महसूस हो रहे हैं। संकट और गहरा गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अब अदन की खाड़ी में मौजूद बाबल मंदब के संकरे गलियारे को भी चोक कर दिया है। यानी पहले जो 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित थी वो सऊदी अरब और हूतियों की लड़ाई से अब बढ़कर 30% तक हो गया है। जाहिर है दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई के बाधित होने ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। जाहिर है इस संकट की आंच भारत तक भी पहुंच रही है क्योंकि भारतीय निर्यात का कुल 20% हिस्सा उसी बाबल मंदब से होकर गुजरता है जो आगे स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचती है। मौजूदा संकट अगर नहीं सुलझा तो जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे में मुंबई से रॉटरडैम की दूरी 15,700 किलोमीटर से बढ़कर 23,000 किलोमीटर हो जाती है। जाहिर है यह न केवल खर्चीला है बल्कि निर्यात में मुनाफे का मार्जिन कम करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक क्यों हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज किए? क्या ये ईरान का काउंटर प्लान है? आने वाली सर्दी से पहले ऊर्जा ऑर्डर और क्रिसमस कारोबार से पहले दबाव वाला दांव, क्या ये लड़ाई को और लंबा खींचेगा? इसके जवाब में 3 रास्ते नजर आते हैं। सऊदी अरब यहीं थम जाए और हूतियों की कार्रवाई पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा ले तो टकराव फिलहाल काबू में रह सकता है, लेकिन अगर अगला निशाना यानबू जैसे बड़े ठिकानों तक पहुंचे और ड्रोन मक्का तक और मिसाइलें रियाद तक पहुंच रही हों तो अब ये विकल्प नहीं बचता। वहीं बातचीत की मेज पर हूतियों के आगे सरेंडर सऊदी अरब की सल्तनत के लिए सरेंडर से कम नहीं होगा। ऐसे में स्थिति उस मोड़ पर जाती है जहां अमेरिका और पश्चिमी ताकतें ऑयल आउट ऑपरेशन चलाकर हूतियों की ताकत को यमन के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाके तक ही समेट दे। प्रणय उपाध्याय, आज तक।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहाँ भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।
2: जो ये झूठ की गुंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मन शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
4: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हमीद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश परिवार में, समाजवादी पार्टी का भी पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने चौतरफा किया वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनावों के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में 2027 की जो चुनावी लड़ाई है उससे पहले की पूरी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, कैसे सत्ता पक्ष अपने कामकाज, शासन के रिकॉर्ड को लेकर मैदान में है, तो विपक्ष सामाजिक समीकरणों और अपने राजनीतिक गठजोड़ के साथ सरकार को घेरने की रणनीतियों के साथ मैदान में है। दलित वोट से लेकर सवर्ण पिछड़ा मुस्लिम समीकरण तक हर पार्टी की, हर वर्ग और उसके वोटों की ताकत पर नजर है। चुनाव भले ही अभी कुछ दूर है लेकिन राजनीतिक तैयारियों ने माहौल में गर्मी बढ़ा दी।
2: जब आप अच्छा करते हैं, आपके खिलाफ कितना भी कोई नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करता हूं, सफल नहीं हो सकता।
3: जनता तैयार है इनमें इन्हें परमानेंट की छुट्टी करने के लिए।
4: जब भी चुनाव आता है बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है, बीजेपी की सरकार हर वायदे को फेल।
5: तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार अगर नहीं बनना चाहते हैं आप लोग, हम भी नहीं चाहते हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी, तो आइए अलायंस करते हैं।
6: बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है।
7: उनको बोलना ही है, जो कर नहीं पाए वो हमेशा बोलेंगे।
3: भारतीय जनता पार्टी की नीयत कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही।
8: में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
9: चुनावी संग्राम का आगाज अगर ये है तो अंजाम भला क्या होगा, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं। बीजेपी जीत की हैट्रिक जमाने के लिए कमर कसकर खड़ी है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की सारी जुगत भिड़ा रही है। कांग्रेस भी खोया जनाधार वापस लाने की कोशिशों में है और इसी के साथ हैं छोटे छोटे दल जिनकी भूमिकाएं बड़ी हैं। दलित वोटों की खातिर नए समीकरण बनाए जा रहे हैं।
10: भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये रंगों से अक्सर डरा करते हैं।
11: सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में, पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है।
9: सवर्ण वोटों की खातिर जंग के नए मोर्चे खुले हैं।
5: बीजेपी का सबसे बड़ा निशाना किस पर है, किस समुदाय पर है? मुसलमान है, उसके बाद ब्राह्मण है।
12: पीडीए में पीडी पंडित का ही सुरफॉर्म है।
9: ध्रुवीकरण का मसाला भी चाहिए तो यूसीसी के मुद्दे पर भी त्योरियां चढ़ी हैं।
13: यूनिफॉर्म सिविल कोड फाड़ में जाए तुम्हारा यूनिफॉर्म।
14: भारत के लोग कह चुके हैं कि यूसीसी भारत में आएगा। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी हम लागू करेंगे तो करेंगे।
9: चुनावी मैदान जंग में गठबंधनों की गांठें भी परखी जा रही
15: है। सोचना ही पड़ेगा ना, हम लोग अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे,
6: हम लोग कांग्रेस के साथ लड़िएगा तब आपका समाज विश्वास करेगा और जनता विश्वास करेगी।
16: बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है।
3: यार कहां-कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
17: आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, थी
18: सड़क पे, वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं।
9: सियासत की बिसात पर रिश्ते बिछे हैं और विश्वास अविश्वास की चालें चली जा रही है। हर बाजी सोच कर चली जा रही है, हर चाल पर सौ सौ किंतु परंतु है। सत्ता में बीजेपी है तो उसको पता है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है तो उसको भी पता है, कांग्रेस बीएसपी सबको भली भांति जानकारी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक रूप से क्या मायने रखता है, इस बार की हार या जीत क्या मायने रखती है।
1: यूपी की सियासत में दलित वोटों को लेकर नई जंग दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। लाल टोपी के साथ नीले रंग को जोड़ना और आंबेडकर संविधान और सामाजिक न्याय की बात इसी रणनीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

0: यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी लाती है।
1: यूपी के चुनाव में कई तौर तरीके और ढंग देखेंगे, फिलहाल तो वोटों को लुभाने की कोशिश के रंग देखेंगे।
0: नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में खास दबाव पहुंचाने का काम कर रही है।
1: एक रंग पुराना है, एक रंग नया है। एक रंग समाजवाद की पहचान है तो दूसरा रंग बहुजन राजनीति से जुड़ी पहचान है। लेकिन यूपी की सियासत में जब ये दोनों रंग एक साथ दिखाई दें, तो इसे सिर्फ ड्रेस कोड की कहानी कहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि चुनावी राजनीति में रंग भी संदेश देते हैं और संदेश के पीछे वोट का गणित भी होता है।
0: नीला रंग विचार के साथ तो है ही है, बहुजन समाज के साथ तो रहा ही रहा है, बाबा साहेब के साथ तो रहा ही रहा ब्लू कलर। लेकिन इधर हम और आप लोग देखते हैं खेल के मैदान जो होते थे ग्रीन, वो सब ब्लू टर्फ हो गए। तो ब्लू कलर जो है वो आइडियोलॉजी का भी है, और इसमें हमारे नौजवान देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं।
1: समाजवादी पार्टी की लाल टोपी के साथ अब नीली टी शर्ट जुड़ गई है। अखिलेश यादव की छात्र सभा के युवा अब नीले लिबास में नजर आ रहे हैं, और अखिलेश इसे सामाजिक न्याय का रंग बता रहे हैं।
0: कई हजारों साल से हम लोग पढ़ते आए हैं और बहुत कुछ पढ़ा है, देखा है, सुना है, मंचों पे भी देखा है। कोई भेष बदल करके और रंग बदल कर आया था, और जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इस तरह के विचार ला रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पीडीए प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है, डेमोक्रेटिक है, लोगों को जोड़ने वाला है, लोगों के बीच में भाईचारा कैसे बढ़े, हमारा देश में समाज में सौहार्द कैसे बढ़े, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे बढ़ाएं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे चलें, संविधान को हम कैसे माने, बंधु राष्ट्र कैसे बनाए, वर्ल्ड सिटीजन कैसे बनाए।
1: यानी लाल टोपी वही है, साइकिल वही है, लेकिन सियासी संदेश में एक नया रंग जुड़ गया है, और यहीं से खुलती है यूपी की राजनीति की वो कहानी जिसके एक सिरे पर है पीडीए और दूसरे सिरे पर है दलित वोट। 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट किसी एक पार्टी के साथ पूरी तरह खड़ा नजर नहीं आया। एक सर्वे के अनुसार जाटव वोटरों में करीब 65% ने बीएसपी का साथ दिया, बीजेपी को करीब 21 और समाजवादी पार्टी गठबंधन को करीब 11-12% जाटव वोट मिले। लेकिन तस्वीर गैर जाटव दलितों में बदल जाती है। गैर जाटव दलितों में बीजेपी को करीब 41% वोट मिला, बीएसपी को करीब 27, जबकि समाजवादी पार्टी

0: 14% समाजवादी पार्टी गठबंधन और करीब 50% बीएसपी के खाते में गया। यही वो आंकड़ा है जो 2027 से पहले यूपी की सियासत को समझने के लिए बेहद अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ पीडीए में डी को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ने की नहीं, बल्कि उस डी के वोट बैंक को जोड़कर रखने की है। और इसी राजनीतिक कोशिश में लाल टोपी के साथ अब नीला रंग भी दिखाई दे रहा है।
1: बेसिकली हमारे लिए जो हमारे जो अम्बेडकर जी थे उन पर रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था, उनको वो किया गया था, इंडिकेट किया गया था एक तरह से, तो उनके ऊपर है संवैधानिक तौर पे।
2: भैया बदलाव ला रहे हैं, अभी सरकार तो आनी, जिस दिन सरकार आएगी तो सही से बदलाव आएगा।
3: सारे लोग बदलाव देख रहे हैं, इसलिए भैया ने भी बदलाव किया है, पूरा यूथ भैया के साथ है। इस बार बदलाव होगा, हमारी ड्रेस बदलेगी, ये 27 में सरकार बदलेगी, युवा सरकार चेंज करेंगे, बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे।
0: सियासत में रंग सिर्फ रंग नहीं होते, हर रंग के पीछे एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश होता है। यूपी में नीला रंग लंबे वक्त से दलित और अम्बेडकरवादी राजनीति से जुड़ा रहा है। बीएसपी की राजनीति में नीला रंग उसकी पहचान है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का नीले रंग को अपनाना महज ड्रेस कोड नहीं बल्कि दलित वोटरों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि पिछले दो चुनाव में बीएसपी का ग्राफ घटता ही जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की इस कोशिश पर बीजेपी ने तंज कसा है।
4: ये समाजवादी पार्टी के पास कोई पार्टी के नाम का कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के नाम पे कार्यकर्ता बताया जरूर जाएगा लेकिन वह सब छठे छटाए उत्तर प्रदेश के गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी हैं, और ऐसे लोगों के बल पर चुनाव न लड़ा जा सकता है न जीता जा सकता है। 2027 में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है।
0: बीजेपी का हमला सीधे समाजवादी पार्टी के संगठन, उसकी राजनीति और उसके दलित आउटरीच पर है, लेकिन अखिलेश का जवाब भी साफ है, रंग बदला है मकसद नहीं।
5: तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये रंगों से अक्सर डरा करते हैं लेकिन भगवान से नहीं करते, चढ़ावा चोरी कर लेते हैं, चंदा चोरी कर लेते हैं, इन्हें भगवान से डरना चाहिए, रंगों से नहीं डरना चाहिए।
0: समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोशिश पुरानी पहचान को खत्म करने की नहीं बल्कि उसमें एक नया सामाजिक संदेश जोड़ने की है, और यही वजह है कि नीले रंग के साथ अंबेडकर और संविधान का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ रंग बदलने से दलित राजनीति का समीकरण बदलेगा? क्या नीला रंग दलित वोटर को एसपी के और करीब ला पाएगा? क्या पीडीए का डी यानी दलित समाजवादी पार्टी के लिए निर्णायक राजनीतिक ताकत बन पाएगा?
6: समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबके लिए काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे।
7: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं। चुनाव देख करके दलितों को पाले में लाने के लिए ये जो रंगे सीआर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी की असलियत जनता जानती है।
8: दरअसल ये युवाओं का और ये अंबेडकरवादियों का, कम्युनिस्टों का एक गठबंधन अप्रत्यक्ष रूप से भारत की राजनीति में नजर आया है, जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, उसको चोट पहुंचाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, ये समानता की बात कर रहे हैं, ये बराबरदारी की बात कर रहे हैं। ये माहौल अखिलेश यादव ने पैदा नहीं किया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि यादव हमारे साथ हैं ही, मुसलमान हमारे साथ ही हैं, कुछ पिछड़ी जातियां हमारे साथ आई जाएंगी। अब दलितों का और युवाओं का अगर हमें समर्थन मिल गया तो हम भाजपा को बड़ी कड़ी चुनौती दे सकते हैं। ये स्थितियां मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं और उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं।
0: कांग्रेस लगातार दलित वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिशें कर रही है, इसीलिए प्रदेश प्रभारी दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को बनाया है। राजेंद्र पाल गौतम लगातार यूपी में सक्रिय है। अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड के

0: तौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी 5K प्लान पर काम कर रही है। 5K यानी कुर्मी, कायस्थ, कुम्हार, कहार और कोयरी, यानी मौर्य, शाक्य, कुशवाहा। उत्तर प्रदेश की आबादी का ये 15-18% है। इनका संख्या बल 120 से 150 सीटों पर असरकारी होता है। संघ और संगठन के जरिए बीजेपी लगातार इन जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। जैसे कुर्मी और कोयरी के लिए बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ और अधिक तालमेल बढ़ा सकती है। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को यूपी में शीर्ष राजनीतिक पद देकर भी ये संकेत दिया है कि बीजेपी में ही प्रतिनिधित्व मिल सकता है। दूसरी तरफ कायस्थ वोटर्स के लिए भी बीजेपी का अलग प्लान है। कायस्थ वोटर बीजेपी का कोर और वैचारिक कैडर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसमें बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। तीसरी तरफ कुम्हार यानी प्रजापति और कहार यानी कश्यप निषाद जातियों को माटी कला बोर्ड जैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीएम योगी पहले ही साध रहे हैं। विकास की बात घूमकर जातियों के गणित तक आ ही जाती है। हर दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से चुनावी नीति बनाने में जुटा है।
1: प्रदेश की राजनीति एक बार फिर मजहब और धर्म के ध्रुवों पर आकर टिकती नजर आ रही है। अमित शाह ने यूसीसी को लेकर बयान दिया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा में, चुनावी विमर्श में उसने प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है पहले पिछले वादे निभाइए, उसके बाद यूसीसी को लेकर आगे कोई फैसला हो।
2: भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
3: जब भी चुनाव आता है बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है, इनको यूसीसी याद आने लगता है, इनको फिर वो घुसपैठिए भी याद आते हैं, वो चुनाव के टाइम पर आते हैं।
4: भारत के लोग कह चुके हैं कि यूसीसी भारत में आएगा। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी हम लागू करेंगे तो करेंगे।
5: तमाशे बंद करें, बात करें महंगाई की, बात करें विकास की, बात करें रोजगार।
6: यूसीसी भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है।
0: समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर घमासान छिड़ा है। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर सियासत का पारा हाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। बयान सामने आने के बाद सबसे ज्यादा नजरें टिक गई उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यूसीसी यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या यूसीसी का मुद्दा वोटर्स को प्रभावित करेगा?
7: मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये और भी गर्माएगा, और इस मुद्दे को गर्माने के बाद में जो एक बिल्कुल आधार है भारतीय जनता पार्टी का, मजबूत आधार है, अपर कास्ट ब्राह्मण है, ठाकुर, इस तरह एक बड़ी तादाद जो है कहीं ना कहीं बिदकेगी और छिटकेगी। अगर छिटक के 10-20% भी विपक्ष के पास चले जाते हैं अपर कास्ट, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा डेंट होगा।
8: देखिए, यूसीसी अब ले तो जा सकता है क्योंकि उसमें फिर इनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाएगा, और बाकी उनके पास है भगवान राम ही है, भगवान कृष्ण का भी मथुरा में उनका सहारा बन सकते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बदली हुई तो मुझे लगता है 22 की तरह बहुत धार्मिक ध्रुवीकरण आसान नहीं होगा।
0: एक तरफ बीजेपी यूसीसी को समान कानून और समान अधिकार से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक एजेंडे के तौर पर देख रहा है।
9: भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पेपर लीक पे कोई जवाब नहीं है, मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो सुधार होने चाहिए वो सुधार नजर नहीं आते हैं। किसानों की समस्या है, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, सबके सामने है। कहीं पे भी जमीन पे कुछ भी बदलाव नजर नहीं आता। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, और जिस तरह से कानून व्यवस्था है वो सब देख रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना चाहती है।
0: अखिलेश यादव बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर बेचैनी है।
10: मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई जरूरत नहीं है। ये मुख्तलिफ तहजीबों के, कल्चर के और ट्रेडिशन के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं और सब अपने अपने पर्सनल लॉज पर इस मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए अमल करते हैं। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि जो इस मुल्क के बुनियादी मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं, कानून और सुरक्षा के मसाइल हैं, मुसलमानों और दूसरी आबादियों के मजहबी तहफ्फुज़ के यकीनी बनाने के जो मसाइल हैं, हुकूमत को उन पर गौर करने की जरूरत है, न कि कोई ऐसी बात करने की जो बेइज्जत कियास हो।
0: यूसीसी की बहस अब सीधे संविधान, धार्मिक अधिकार और पर्सनल लॉ तक पहुंच गई है, लेकिन सियासी तस्वीर का एक और किरदार है असद उद्दीन ओवैसी, जो इस बार यूपी की राजनीति में काफी पहले से सक्रिय है।
11: भारत के वजीर आजम मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाह रहा हूं, तारीख गवाह है, जब सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने मदरसों को बंद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मदरसों से कोई हाफिज कुरान निकले। अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके।
0: 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19.3% है, यानी करीब हर पांचवा व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से आता है, और यही वजह है कि यूपी की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट को लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में करीब 143 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इनमें 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बताई गई है, और यही से शुरू होती है ध्रुवीकरण की बहस। बीजेपी यूसीसी को समान नागरिक कानून और समान अधिकार से जोड़ती है, तो वहीं विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसे धार्मिक स्वतंत्रता और पर्सनल लॉ से जोड़कर सवाल उठाए जा रहे हैं।
12: ये सब घोषणाएं हैं, कभी लागू नहीं हो पाएगी।
7: 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए, चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं, या केवल उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते।
13: देखिए, ये चुनाव आ गया, अब ये लोग पूरी तरीके से चुनाव में कैसे हिंदू मुसलमान इस पे काम कर।
0: अब एक तरफ समान कानून का नैरेटिव है, दूसरी तरफ धार्मिक अधिकारों का सवाल, और इनके बीच खड़ा है यूपी का चुनावी गणित।
1: जाति की राजनीति में सवर्ण वोटर्स भी पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कहीं अधिक फोकस में है। खासकर ब्राह्मण राजपूत वोट को लेकर बैठकों से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक सियासी गतिविधियां बढ़ी। यूजीसी को लेकर पहले ही माहौल गर्म है, क्योंकि राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल बड़ा होने लगा है कि क्या यूपी की राजनीति में भी इसका असर पड़ सकता है।
14: एक प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
15: यूपी के चुनाव में अगर सभी दल जातियों के समीकरण साधने में जुटे हैं, तो यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण वोटर के मन में क्या है, ये सवाल भी उठता है।
16: यूजीसी काला कानून वापस हो,
17: भाईचारे की बचाने की और बनाने की जिम्मेदारी है, ये उसकी लड़ाई है, समाज की नहीं।
15: क्या यूजीसी का मुद्दा यूपी चुनावों में असर डालेगा? क्या सवर्णों की नाराजगी चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगी? क्या राजस्थान के निकाय चुनाव परिणामों का असर यूपी चुनावों पर भी पड़ेगा?
18: मुझे लगता है कि आपकी 27 के इस चुनाव में ये सवर्णों का जो एक बिखराव है, या सवर्णों की जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी जो थोड़ी बहुत खिसकती नजर आ रही है, वो इस पर निर्भर करेगी कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। भाजपा अगर रोक सकती है तब तो उसके लिए कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन अगर ये सवर्ण समाज खसका, उसमें ब्राह्मण ठाकुर और ये, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का सबक बन सकता है।
15: यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण वोटर्स की दिखती नाराजगी के बीच यूपी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आगरा की हैं। यूजीसी के विरोध में हजारों की संख्या में युवक 100 से अधिक ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने तगड़ी नाकेबंदी की थी, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई।
19: काला कानून है, इसे सरकार जल्द से जल्द वापस ले,
16: वरना इसका जवाब 2027 में यूपी नहीं उत्तराखंड है, जहां भी जिले हैं वो इसका थोड़ा सा उदाहरण आप राजस्थान में देख सकते हो, इसका असर कितना बड़ा है। इसलिए यूजीसी वापस लें,
19: जो ये यूजीसी काला कानून लाया गया है, गवर्नमेंट एक बार ये भी तो सोचे कि स्वर्ण समाज के जितने भी बच्चे कॉलेज विद्यालय जहाँ भी जाते हैं सारे क्रिमिनली जाते हैं क्या, वहाँ से घर से बच्चे भेजे जाएंगे कि पढ़ने जाओ, वहाँ जाके झूठे आरोप लगाए जाएंगे उनपे, वो लौट के आएंगे घर जाएंगे, वो घर लौट के आएंगे कि जेल जाएंगे, गवर्नमेंट ये तो सोचे।
20: प्रदर्शनकारियों की नाराजगी यूजीसी को लेकर है और वो इसकी वापसी तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।
21: ये आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, सरकार के गलत नीतियों और गलत योजनाओं के खिलाफ, गलत कानूनों के खिलाफ। अब कानून गलत तुम बनाओगे और वो भी कूटा ठोक कर हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करोगे तो हम भी ये बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं, ये सबर समाज उतनी ही मजबूती से, क्यों हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जानते और मानते हैं, हम ऋषि और कृषि दोनों को जानते और मानते हैं कि जैसा आप करोगे अगर कूटा ठोक के आप कानून बनाओगे तो कूटा ठोक कर हम भी आंदोलन खड़ा करेंगे और कानून को हटाने का काम करेंगे।
20: आगरा की ही तरह अब आप तस्वीरें देखिए मुजफ्फरनगर की। त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय त्यागी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली पद यात्रा के लिए निकले ताकि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को शुद्ध कर सके। इनकी नाराजगी यूजीसी को लेकर है, लेकिन इससे पहले ही भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर जनपद में ही इन्हें रोक दिया। हाल ही में राजस्थान में निकाय चुनाव हुए और यूजीसी से नाराज करणी सेना ने निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन किया, जिसके कारण बीजेपी को कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। बीजेपी जीत जरूर गई, लेकिन निर्दलियों ने भी बड़ी संख्या में जीत हासिल की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गृह जिले में बीजेपी निर्दलियों से पिछड़ गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति खराब रही। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में भी बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। राजपूत बाहुल्य इलाकों में भी बीजेपी को जोरदार झटका लगा।
22: वीर बजरंगे यूजीसी।
20: यूपी में भी जगह जगह यूजीसी का मुद्दा गर्म है और सवर्ण वोटर्स में नाराजगी मानी जा रही है। तो क्या राजस्थान निकाय चुनाव की तरह यूपी में भी सवर्ण वोटर्स की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी?
23: पिछड़ा वर्ग मैं कहा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग हो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है और यह त्रिवेणी भाजपा के साथ है और भाजपा उनके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। इसलिए इस त्रिवेणी के सहयोग से हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है।
20: सवर्ण कभी कांग्रेस के कोर वोटर थे, वहां से छिटके तो बीजेपी के साथ हो लिए और उन्हें बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है। सवर्ण वोटर करीब 20% हैं, जिनमें ब्राह्मण करीब 9-10%, क्षत्रिय 7-8%, अन्य में वैश्य, कायस्थ और भूमिहार हैं। समाजवादी पार्टी इन्हीं वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए पीडीए की परिभाषा तक में बदलाव कर रही है।
24: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
20: बीजेपी के सहयोगी दल भी सवर्ण वोटर्स के साथ अपनी चिंता जता रहे हैं।
25: में चार वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है तो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन आज के तारीख में जो डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आज उनके बेटे और ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, पहले तो इस पे उनको फोकस करना चाहिए कि जो अब आरक्षण का लाभ लेकर के विकास के मुख्य धारा में आ गए तो उनको अलग करें।
20: असदुद्दीन ओवैसी भी ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
26: अभी तो देखिए
2: बीजेपी का सबसे बड़ा निशाना किस पर है, किस समुदाय पर है? मुसलमान है, उसके बाद ब्राह्मण है।
20: मायावती भी सवर्ण वोटर्स को अपने पाले में देखना चाहती है। यूजीसी के मुद्दे पर ही नाराज होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई और अब उनकी तैयारी भी चुनावों में हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की है। सवाल ये है कि अगर सवर्ण वोटर्स बीजेपी से नाराज हुए तो किधर जाएंगे और क्या उनकी नाराजगी इस बार वाकई यूपी में सत्ता के समीकरण बदल देगी? चुनावों में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तस्वीर थोड़े दिन में और साफ होगी।
1: 2017 में मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की कमान अपने हाथ में ले ली और सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के बीच फिर दूरी बढ़ रही है? क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं?
0: चुनावी मौसम में काफी कुछ टूटता है और काफी कुछ नया बनता है। अब अगर ऐसे में चाचा भतीजा के बीच टूटने जैसा कुछ नजर आए तो चर्चा तो लाजमी है। मुद्दा यह है कि जिस लोहिया ट्रस्ट का दायित्व खुद मुलायम सिंह यादव अपने भाई को सौंप कर गए थे, उसे भतीजे अखिलेश ने चुनावी मौसम में क्यों वापस ले लिया? समाजवादी पार्टी की दलील है कि ये सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला है, लेकिन सियासत में कोई फैसला सिर्फ फैसला नहीं होता। कब लिया गया, क्यों लिया गया और इसका संदेश क्या है, इन सवालों पर भी नजर रहती है। और यही वजह है कि लोहिया ट्रस्ट की बदली हुई कमान ने चाचा भतीजे के रिश्ते की पुरानी खट्टी मीठी कहानियों को फिर सुर्खियों में ला दिया है।
3: और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार छले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं देते, चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए।
0: परिवार में कलह नई नहीं है, लेकिन 2027 के चुनाव से कुछ महीने पहले लोहिया ट्रस्ट में फेरबदल फिर पुरानी यादों को हरा कर रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे के बीच सब कुछ वाकई ठीक है?
18: मुलायम सिंह जी ने जब ये था तब फिर शिवपाल जी को बना दिया था और इसके बाद जो हुआ वो विमर्श के हुआ। अब अभी तक एक भी घटना कोई ऐसी नहीं आई है कि जिसमें कहीं किसी के भी बयानों में ये कहीं दिखाई देता हो कि आपस में कोई किसी प्रकार का टकराव है। हाँ, ये बात जरूर सोची जा सकती है या इस पर जरूर राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अब प्रोफेसर राम गोपाल का जो कद था समाजवादी पार्टी में वो कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश और शिवपाल जी के बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई टकराव या किसी प्रकार का कहीं कोई मतभेद जैसी स्थिति है।
0: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवपाल सिंह यादव से कार्यभार वापस ले लिया है। ट्रस्ट की बैठक में सभी 8 सदस्यों ने अखिलेश यादव को ट्रस्ट का कार्यभार सौंपने का फैसला किया। करीब 9 साल से ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे शिवपाल यादव और अचानक से बाहर। विपक्ष इसे समाजवादी पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बता रहा है।
25: अखिलेश जी शिवपाल जी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 3 साल थे। सदन के अंदर अखिलेश जी ने बयान दिया और खुद समाजवादी पार्टी से अलग होकर के उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी की सच्चाई को उजागर किया, तो भरोसा कैसे करेंगे? तो उनको तो खुद किनारे लगाने में लगे हैं, तो इस नाते लोहिया ट्रस्ट से उनको हटा दिया है।
4: समाजवादी पार्टी में अंतर कलह है और समाजवादी पार्टी में आपस में बहुत बड़े स्तर पर आंतरिक मतभेद है, परिवार में टकराव और तनाव है और ये निश्चित रूप से आप देखेंगे चुनाव से पहले ये सब चीजें सड़कों पर आएंगी। और अखिलेश यादव जी ने कभी भी शिवपाल जी का सम्मान नहीं किया है, उन्होंने हमेशा शिवपाल यादव जी को अपमानित किया है और शिवपाल यादव जी भी इन सब विषयों को जानते हैं।
0: समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर टकराव की बातों को सिरे से नकार रही है।
12: ऐसा कुछ नहीं है। चाचा का भतीजे पर और भतीजे का चाचा पर पूरी तरह से विश्वास है और मेलजोल है, और ये इस तरह की बातें, इस तरह का बात करना बेबुनियादी बात है।
0: दरअसल इस कहानी की जड़ें भी 2017 के उसी दौर में जाती हैं, जब समाजवादी परिवार के भीतर नेतृत्व को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ था। 2017 में मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब अखिलेश यादव ने पार्टी के साथ साथ जनेश्वर ट्रस्ट के बाद लोहिया ट्रस्ट की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों में सत्ता का एक ही केंद्र तय करना चाहते हैं? लोहिया ट्रस्ट की स्थापना 1992 में हुई थी, समाजवादी पार्टी के गठन से पहले। लंबे समय तक यह ट्रस्ट समाजवादी विचारधारा, लोहियावादी नेताओं और पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण मंच रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब ट्रस्ट में कुर्सी को लेकर परिवार में रार है।
5: शिवपाल जी, अखिलेश जी, दोनों एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं। इसका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, यह तो एक आदर्श की स्थापना का एक संकल्प है। उसी संकल्प पे समाजवादी पक्ष के लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ चुनाव कहाँ आ गया? अरे चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं।
0: समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ संदेश है, न चाचा भतीजे में टकराव है, न इस फैसले का चुनाव से कोई कनेक्शन है। लेकिन सवाल फिर भी बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश और शिवपाल का रिश्ता सिर्फ दो नेताओं का रिश्ता नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के उस दौर की कहानी भी है, जब परिवार और पार्टी के बीच नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था। हालांकि शिवपाल यादव इस सारे मसले पर जो कह रहे हैं वो उनकी सियासी मजबूरी है या मन की बात, ये तो वही जाने।
6: अखिलेश यादव के द्वारा उस लोहिया ट्रस्ट का विकास हो सकता है और लोहिया जी के विचार जन जन तक पहुंच सकते हैं, तो इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने प्रस्ताव पेश किया और आम सहमति से वो प्रस्ताव पास हुआ।
0: सियासत में रिश्तों की असली परीक्षा सिर्फ हाथ खड़े दिखने से नहीं होती, फैसलों की टाइमिंग और उसके पीछे का सियासी संदेश भी बहुत कुछ कहता है। लोहिया ट्रस्ट की बदली हुई तस्वीर भी कुछ तो कहती ही है।
1: उत्तर प्रदेश में जब जातियों की बात होती है तो जाति आधारित जो पार्टियां हैं उनकी बात भी होना तय है। ऐसे में जब हम निषाद पार्टी के संजय निषाद की तरफ से आ रहे बयानों को परखें या फिर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में क्या निषाद पार्टी को शामिल कर सकती है, इन चर्चाओं को देखें, दोनों तरफ के गठबंधनों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
0: चुनावी बयार बहने लगी है तो सियासत के दरख्त से पंछियों ने अपने परों की ताकत को तोलना शुरू कर दिया है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि कौन किस डाली पर बैठेगा, कौन किस ओर उड़ान भर सकता है। कयास है कि एनडीए टूटेगा तो पीडीए मजबूत होगा। कोशिशें हैं कि ऐसा गठबंधन बन जाए जो यूपी में सत्ता की सियासत बदल दे।
25: उत्तर प्रदेश में हमने पब्लिकली कहा है कि तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार अगर नहीं बनना चाहते हैं आप लोग, हम भी नहीं चाहते, हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी, तो आइए अलायंस करते हैं।
7: चंद्रशेखर और रोहिणी की टक्कर में पीडीए की दीवारें दरक सकती हैं। कवि के दोस्त अब म्यान से तलवारें निकालकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। गठबंधन में सीटों की गांठें तो यूपी के दो लड़के भी मिलकर नहीं सुलझा पा रहे। फिक्र सत्तारूढ़ दल को भी है कि सहयोगी साथ रहे।
8: 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी।
7: हलचल इसलिए मची है क्योंकि एनडीए के साथी और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात कराए। चुनावी मौसम में जब मुलाकात हुई तो बात तो होनी ही थी, बात हुई भी और छिड़ गया फिर सियासी राग।
9: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
10: कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के निकल शायद त्रेता में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
11: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का ये बंद हो गया तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
10: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
13: देखिए संजय निषाद इस ढंग की चुनाव के समय इस ढंग के बयानबाजी इसलिए करते हैं कि खुद उनके समाज में उनकी थोड़ा वाहवाही हो जाए, लोग जान जाए कि हाँ चुनाव में क्या करना है, निषाद पार्टी क्या कर रही है। इसीलिए आपने देखा कि एक मामले में निषाद, संजय निषाद स्वयं जो है धरने पर बैठ गए, तो जाहिर उनको कोई पूछ नहीं रहा।
7: संजय निषाद पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार को अक्सर आड़े हाथों लेते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जब दरवाजा बंद कर लेने और नया दरवाजा खुलने की बात कही तो बात बड़ी हो गई और सफाइयों का दौर शुरू हो गया।
26: बीमार है माता पिता जी, इसमें कैसे क्या दिक्कत है? आपके बात करते हैं बीमारी हालत में तो मानवता है ये, आप बताइए आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी आदमी तलाशेंगे।
27: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल है और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
28: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
7: अब इसे प्रेशर पॉलिटिक्स समझा जाए या कोई और रणनीति वो तो संजय निषाद जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं और ऑफर्स की लाइन लगा दी है।
29: मैं इतना ही कहना चाहूंगा संजय निषाद जी से कि तत्काल अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से निषाद समाज का समर्थन वापस लीजिए और अपने समाज के लिए सड़क पर उतर कर लड़िए, हम लोग कांग्रेस के साथ लड़िएगा, तब आपका समाज विश्वास करेगा और जनता विश्वास करेगी।
7: खैर सीट बंटवारे के वक्त ये देखा जाएगा कि किसकी मंशा क्या थी। फिलहाल गठबंधनों की संभावना असदुद्दीन ओवैसी भी तलाश रहे हैं, उनकी शर्त यही है कि बीजेपी नहीं जीतना चाहिए, ऐसा गठबंधन बने।
30: उत्तर प्रदेश में हमने पब्लिकली कहा है कि तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार अगर नहीं बनना चाहते हैं आप लोग, हम भी नहीं चाहते हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी, तो आइए अलायंस करते हैं। हमने ये बात बिहार में भी कही थी, हमने लिख कर दिया था हमको 6 सीट दो आप, सिर्फ आप लोग नहीं माने, बावजूद इसके कि बिहार में हमारे 4 विधायक को आपने तोड़ लिया था, मगर सीमांचल जनता को लाखों सलाम, अल्लाह का करम फजल रहा, हम दोबारा वो सीट जीत गए, अभी भी हम कह रहे हैं।
7: गठबंधनों के बीच एक चवन्नी वाले अखिलेश के बयान ने जो पुरानी दोस्ती में नई दरार पैदा कर दी थी वो अब और चौड़ी होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक का सवाल भी यहीं से बड़ा होता जा रहा है।
31: अरे कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले।
32: जब हमारा उनके साथ साझा था सारी बातें नहीं बताई जाती,
2: ये मेरी गंभीरता है, जो मैं वो बातें नहीं कह रहा। अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा।
7: जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का अहम हिस्सा है और मजबूत जाट नेता माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ समझी जाती है, लिहाजा जयंत चौधरी के सम्मान में एनडीए भी है मैदान में।
26: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
3: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका होता कुल जानत हूं वहाँ। इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए, सही कर।
7: दरअसल चवन्नी वाला बयान देकर अखिलेश बुरे फंसे, क्योंकि माना यही जाता है कि यूपी में सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी खुल चुका है जिसमें एक भी नेता इधर से उधर हो जाए तो गठबंधनों को कठिन परीक्षा में फंसना पड़ जाए। स्विट्जरलैंड से लौटते ही रोहिणी घावरी ने अपनी मौजूदगी से तहलका मचा दिया। रोहिणी वाल्मीकि समाज के अधिकारों का मुद्दा उठा रही हैं और चंद्रशेखर को घेर रही हैं। दूसरी गठबंधन की बिसात पर अखिलेश से भी सवाल कर रही हैं।
14: देखिए अखिलेश जी, अभी जिस तरीके से पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं और सभी समाजों को, सर्व समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो सभी को उचित हिस्सेदारी देते हैं, फिर वो सभी समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वाल्मीकि समाज हो और अन्य दलित समाज की जातियां हो, उन सभी को अगर उचित नेतृत्व देते हैं तो मुझे लगता है अखिलेश जी को मौका दिया जाएगा इस बार। पिछली बार उन्होंने एक भी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया था, इस बार हमारी मांग है कम से कम 10 विधानसभाओं पर वो टिकट दें।
7: यूपी के दो लड़कों की पार्टियों के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर बेचैनी बढ़ रही है।
15: लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नतीजा आए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है।
16: समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने सहयोगी दल का सम्मान करते हैं, हम लोग दोस्तों को हमेशा साथ लेके चलते हैं, और समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में, समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो मिलके इस बात को बखूबी से अच्छी तरह से तय कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूत है।
7: बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि वो अपने सहयोगियों को कैसे साधेगी। बात जब सीटों के बंटवारे पर आएगी तो कौन सी जुगत भिड़ाएगी, क्योंकि अभी जो साथ हैं कल वो अपने हितों को देखते हुए कहीं और भी हो सकते हैं। यही तो राजनीति है।
1: अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
7: रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन्स दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पैलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था, हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद अ कोलर स्पा एट होम। No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर क्या करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ।
6: कपिवा डायफ्री जूस।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आगे आगे।
13: अरे उधर
5: उधर किधर? करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको आईफोन के लिए लगी लंबी लाइनें दिखाएंगे। लोग रात से ही लाइनों में आकर खड़े हो गए हैं। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, हर जगह एप्पल स्टोर के बाहर का नजारा देखकर लग रहा है फोन नहीं अमृत बट रहा हो। 17 प्रो मैक्स जेब में है, फिर भी 18 प्रो मैक्स के लिए रात 10 बजे से ही इंतजार करने लगे। दीवानगी का आलम तो देखिए, कोई नासिक से मुंबई भाग रहा है तो कोई पंजाब से गाड़ियां दौड़ाते हुए नोएडा पहुंचा है। किसी के लिए ये रक्षाबंधन और दिवाली से भी बड़ा त्योहार है तो कोई अपनी पत्नी को आईफोन दिलाने के लिए घर का सोना तक बेच आया है।

0: एक्चुअली निकला हूँ सूरत से, समझो रात को 10 बजे के करीब मैं पहुँचा हूँ यहाँ, 2-3 बजे।
1: मैं पंजाब से आऊँ, सुबह 6 बजे से लाइन लगा हूँ।
2: मैं नासिक से आया हूँ और रात को 10-10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं।
3: गोल्ड पहले से ही काफी है दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
4: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से बढ़ाकर 7% रहने का अनुमान जताया है। लेकिन इस रफ्तार के बीच मूडीज ने बड़ी चेतावनी जारी की है। एजेंसी का मानना है कि खाद्य पदार्थों की जो कीमतें बढ़ रही हैं और जो महंगाई है वो अर्थव्यवस्था का स्वाद बिगाड़ सकती है। अगर मानसून का असर या ग्लोबल तनाव बढ़ा तो आम आदमी की जेब पर दबाव और गहराएगा। पेट्रोल 391 रुपए पार, रात 9 बजते ही बाजारों में सन्नाटा और शादियों की प्लेट से कई डिश गायब। ये ताजा तस्वीर पाकिस्तान की जो हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ सऊदी अरब जैसा दोस्त, दूसरी तरफ ईरान से लगती सीमा, फिर भी पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तेल को तरस रहा है। ऊर्जा संकट इतना गहरा गया है कि शाहबाज सरकार को बाजारों को 9 बजे, शादियों को 10 बजे समेटने का फरमान जारी किया गया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान इतना फटेहाल क्यों हुआ। चौथी स्टोरी, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मिडिल ईस्ट के रण में महाशक्ति का गेम प्लान पूरी तरह बदल चुका है। क्या खाड़ी देशों में अब अमेरिका की जगह चाइना लेने जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब येमेन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी में हमले तेज किए तो सऊदी अरब को अमेरिका नहीं बल्कि चाइना का सहारा मिला है। चाइना ने बिना देर किए ईरान से कहा कि हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाओ। जिस अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा का ठेका लिया था वहां अब चाइना मददगार बन रहा है। क्या अमेरिका का ये मजबूत किला अब ड्रैगन के पाले में जा रहा है, देखिए। लेकिन आज खबरों की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो देखिए ये दो तस्वीरें, इनमें पहली तस्वीर जो है वो साल 2010 की है जब एप्पल कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च किया था। इसे खरीदने के लिए टोक्यो में एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी। इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो एक एक हफ्ते तक अपने घर नहीं गए थे। बाद में इन तमाम लोगों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया था। और यह बात सिर्फ जापान की नहीं है, साल 2010 से लेकर 2016 तक यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये तमाम देशों के लोग नए आईफोन के लिए एप्पल स्टोर के बाहर 3-3 दिन पहले टेंट लगाकर बैठ जाते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस दौर में अगर आप देखिए तो आईफोन के मॉडल सीमित होते थे और हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं होते थे और इसी वजह से सप्लाई कम होता था। सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था, तो सब डटे रहते थे। लेकिन बाद में यह व्यवस्था बदली, लोगों को नए आईफोन की प्री ऑर्डर सुविधा मिलने लगी और इस सुविधा के बाद यूरोप हो, जापान हो, ऐसे देशों ने कई जो नई आईफोन सीरीज है उसका फोन खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगाना बंद कर दी। पहले से प्री ऑर्डर लोग करने लगे, जबकि भारत में इसका उल्टा हुआ है। तो देखिए आज आईफोन की जो नई फ्लैगशिप सीरीज है उसका ग्लोबल लॉन्च एक साथ होता है और इसके लिए प्री ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। लेकिन इसके बावजूद भारत में हर साल आईफोन के लिए लोग सब कुछ भूलकर लाइनों में क्यों लगते हैं, ये कतार हमारे देश के लोगों के बारे में क्या बताती है और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और कॉन्टेंट भी एक वजह हो सकती है, इसके लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।
5: टोक्यो की ये तस्वीरें 16 साल पुरानी हैं, जब एप्पल की नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च हुआ था। उस वक्त भी एप्पल के बाहर लोगों की लंबी कतारें थी और लोग 3-3 दिनों से अपने घर नहीं गए थे। लेकिन अब आप इसी जगह भारत की आज की इन तस्वीरों को देखिए। 16 साल पहले जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो हो रहा था वही आज भारत में हो रहा है। बस फर्क इतना है कि अब विदेशों में पहले दिन पहला आईफोन खरीदने का उत्साह और जुनून कम हो गया है, जबकि भारत में अब भी ये अपने चरम पर है। आज से 10-15 साल पहले जब विदेशों में एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए लंबी कतारें लगती थी तब इसका बड़ा कारण ये होता था कि उस वक्त आईफोन के नए मॉडल सीमित होते थे और इन्हें हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं किया जाता था। इससे सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था। लेकिन आज ये व्यवस्था बदल चुकी है और अब ऑनलाइन प्री ऑर्डर की सुविधा और पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भारत में दिखने वाली इस भीड़ और लोगों के जुनून के पीछे कई गहरे आर्थिक और सामाजिक पहलू समझ आते हैं और अभी पूरा देश इन्हीं के बारे में बात कर रहा है।
6: पूरे देश में आईफोन का फीवर चढ़ गया है और मैं फिलहाल मुंबई के BKC आईफोन स्टोर में हूं, जहां पर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आईफोन का फीवर आईफोन लवर्स में इतना है कि कल रात से ही लंबी कतारें लगाकर वो यहां पर आईफोन खरीदने आए हैं।
5: आईफोन 18 के लिए यह भीड़ सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एप्पल स्टोर के बाहर लोग रात 10 बजे से ही कतारों में लग गए थे और सुबह होते होते ये लाइन मॉल के बाहर तक पहुंच गई।
7: हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव कराए, जो 40,000 रुपए बढ़ाए हैं तो किस चीज में बढ़ाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कवर लगा के दे देंगे, कुछ मुझे चाहिए, कैमरे भी इम्प्रूव चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए।
8: 18 प्रो लेने आए हैं जी, बिल्कुल आधी रात को आए, अभी आए, आके सीट खाली मिल गई, बैठ गए जी।
9: रात भर से खड़े, बहुत एक्साइटेड है और हमारे पास बार कोड नहीं है, फिर भी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं।
2: रात को 10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं, प्री बुकिंग किया हुआ है और 8 बजे का पहला स्लॉट मिला हुआ है और इसके बाद हमको भी डिलीवरी मिलेगी थोड़ी देर।
5: इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से भी आई, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ रात भर फुटपाथ पर सोई रही और कुछ जगहों पर लाइन तोड़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की और बहस भी देखी गई, जिसे शांत कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। मुंबई की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी एप्पल स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई और इनमें भी कई युवा ये कह रहे थे कि वो दूसरे राज्यों से आईफोन खरीदने के लिए नोएडा के इस एप्पल स्टोर में आए।
10: मैं मदुरई से आया हूँ, बहुत खुश हूँ, मैंने प्री बुकिंग किया था, अभी सुबह मैं 7 बजे लाइन में लग गया था, अभी मेरे को फाइनली मिल गया है।
11: हम मैसूर से हैं सर। हाँ, हमारे टोटल 12 फोन है, 12 फोन है, सारे दोस्त आए उनके साथ।
12: 12 फोन?
11: हाँ, 12 फोन खरीदे हैं, पूरे फ्रेंड्स सभी साथ हैं।
13: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है ये।
5: पहले के जमाने में राशन, सिलेंडर और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की लाइनें लगती थी, लेकिन आज के नए जमाने में नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स के लिए भी लाइनें लगती हैं और लोग इन्हें भी अपने जीवन में जरूरी मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज, भारत में ज्यादातर लोग लेटेस्ट आईफोन अपने शौक के लिए भी खरीदते हैं।
6: आईफोन लवर्स में इतना जुनून क्या है, क्योंकि इतने महंगे फोन है कि मीम्स हम लोग देख रहे हैं कि लोग किडनी बेचना पड़ता है अगर आईफोन खरीदना है। आप क्या कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं इस बार?
14: मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सेविंग करता हूँ उसके लिए। मैं आईफोन 3GS जब आया था तब से मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कोई फोन यूज नहीं किया है। मैं हर साल दो दो मॉडल स्किप करके उसके आगे आता हूँ। मैं
6: कौन सा मोबाइल लेने की सोच रहे?
15: 18 प्रो मैक्स बुक किया हूँ मैंने, 1TB बरगंडी कलर।
6: कितना?
15: 1TB।
6: प्राइस कितना
15: है? 2.5 लाख के आसपास है।
6: 2.5 लाख में एक बढ़िया बाइक आ सकती है, अच्छे वेकेशन पर भी जा सकते हो।
15: शौक शौक की बात है, जब शौक रखेंगे आदमी तो कुछ भी कर सकता है।
5: जब ज्यादातर लोगों ने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए आईफोन 18 प्रो या आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदा, तब ये देखना भी जरूरी है कि भारत में ये फोन एक छोटी गाड़ी की कीमत के बराबर है। आईफोन 18 प्रो की कीमत 1 लाख

0: भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आईफोन 18 प्रो खरीदता है तो इसके लिए उसे अपनी 7 महीने 22 दिनों की तनख्वाह खर्च करनी होगी। ये भी तब होगा जब वो व्यक्ति अपनी तनख्वाह को किसी और चीज पर खर्च न करे, जबकि दूसरे देशों में कहानी अलग है। अमेरिका के लोग सिर्फ अपनी 7 दिन की तनख्वाह से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं, फ्रांस के लोग 12 दिनों की तनख्वाह से, ब्रिटेन के लोग 11 दिनों की, जापान के लोग 17 दिनों की और ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ 10 दिनों की सैलरी से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं। ये आंकड़े हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इस बात को समझें कि भारत में आईफोन के शौक की कीमत क्या है और दूसरे देशों में आईफोन का शौक कितना कीमती है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस व्यक्ति को सुनिए जिसने अपने घर का सोना बेचकर अपनी पत्नी के लिए नया आईफोन खरीदा।
1: शुरुआत करिए।
2: अरे जो गोल्ड वगैरह है उसके प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड खरीदने की नहीं सोची?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। गोल्ड पहले से ही काफी है, दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
2: सर आप कौन सा फोन खरीदने आए?
1: प्रोमैक्स
2: 18 प्रोमैक्स।
0: आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी शहर में हमें ऐसे लोग बहुत कम मिले जो टेक्नोलॉजी, फीचर्स या कैमरे की क्वालिटी की वजह से आईफोन खरीदने आए हों। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये उनका शौक है और वो शौक के लिए पहले दिन पहला आईफोन 18 खरीदने आए हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज एप्पल स्टोर्स के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ आईफोन के लिए आई थी या वो कंटेंट के लिए आई थी? यानी लोग सिर्फ इसलिए लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि सब खड़े हैं, या वो इसलिए लाइन में खड़े थे क्योंकि उन्हें नए आईफोन के फीचर्स पसंद हैं?
3: काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते थे, जापान जा सकते थे।
4: ये तो बेवकूफी था, वो ये बेवकूफी है। आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, फॉरेन ट्रिप अलग ट्रिप और ये शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती भाई।
0: किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि लोग आईफोन खरीदने क्यों आए, ये सवाल हम भी नहीं पूछ रहे। हमारा मकसद सिर्फ इस भीड़ को और उसके जुनून के पीछे की वजहों को समझना है, और ये वजह कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारे लोगों ने आज आईफोन मुख्य रूप से 3 वजहों से खरीदा। पहली वजह, इसे स्टेटस सिंबल से जोड़ना। दूसरी वजह फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बहुत बड़ा हिस्सा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का था, जिनके लिए लाइन में खड़े होना, स्टोर के अंदर जाने वाले पहले 10 लोगों में शामिल होना और एप्पल के कर्मचारियों के साथ ताली बजाते हुए अनबॉक्सिंग की रील बनाना, ये सब सोशल मीडिया कंटेंट के लिए जरूरी था और कई लोगों ने ऐसा किया भी। और जब ये होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो भी ऐसा करेंगे और वो भी पहले दिन जाकर पहला आईफोन 18 खरीदेंगे, और आज भी शायद यही हुआ।
5: कितना एक्साइटमेंट है और कब प्री बुकिंग करा लेते आप?
6: प्री बुकिंग लास्ट वीक करा था, लास्ट सैटरडे मैंने कराया था, आई थिंक 9 को ही करवा दिया था। और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
5: मैं देख रहा हूँ 2 फोन आप लेके आए हैं।
6: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
5: कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत जगह से पिक्चर्स आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, आप आराम से आए, अपना टाइम पे 8 बजे स्टोर खुला और फोन लेने के लिए पहुंचे।
7: हाँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी तो एज सच अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखते हैं
5: क्या वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट फोन लेने का ये रहता है।
7: फीचर्स एज इन मतलब, हाँ पहले से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं और जो आईफोन यूजर है वो तो खैर हर साल एक नए अपग्रेड के लिए जाते ही हैं, तो ये बेसिकली एक तरह का मतलब अपने अंदर एक वो होता है कि हम चलो नया एडवांस उसके लिए जाएं, बस यही है।
5: पिछली बार भी आप फर्स्ट कस्टमर्स में ही थे जब लिया था?
7: नहीं, पिछली बार मैं नहीं था, ये थे मगर।
6: मैं रहता हूँ फर्स्ट कस्टमर।
5: हर बार जब आएगा नया वेरियंट तो आप?
6: मैं रहता हूँ, मैं फर्स्ट लेता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेता हूँ, फर्स्ट डे वाला बुकिंग पहले से करके रखता हूँ।
0: यहाँ ये भी समझना होगा कि एप्पल कभी भी इस भीड़ को रोकता नहीं है, बल्कि वो लाइन में खड़े लोगों का स्वागत तालियों और नारों के साथ करता है, जिसके कारण नए आईफोन की बिक्री एक बड़े लॉन्च इवेंट में बदल जाती है। सिर्फ इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए ही पहले दिन पहला आईफोन खरीदते हैं। हालांकि ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत में सारे लोग सिर्फ ईएमआई पर आईफोन खरीदते हैं। इस साल भारत में जितने स्मार्टफोन की बिक्री हुई उनमें 42% स्मार्टफोन ईएमआई यानी किस्तों पर खरीदे गए, और इनमें आईफोन की बिक्री के आंकड़े भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बिकने वाले हर 10 में से लगभग 5 आईफोन ईएमआई पर खरीदे हैं और 5 आईफोन कैश या कार्ड से खरीदे जाते हैं। और कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ईएमआई पर खरीदे जाने वाले आईफोन की संख्या अब तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि नया आईफोन 18 पिछले सीरीज के आईफोन के मुकाबले महंगा है। भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें सिर्फ 7% यानी करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आईफोन चला रहे हैं।

0: यानी भारत में आईफोन का बाजार बड़ा जरूर है, लेकिन इसके आंकड़े ये नहीं कहते कि भारत में हर कोई ईएमआई पर आईफोन खरीदने की रेस में दौड़ रहा है, बल्कि यहाँ ये बात अहम है कि भारत में हर साल जितने स्मार्टफोन की बिक्री होती है उनमें 30% पैसा एप्पल कंपनी को जाता है, यानी वॉल्यूम में आईफोन की बिक्री कम है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, इस भीड़ को लेकर एक और बहस ये हो रही है कि क्या भारत में ईएमआई यानी किश्तों पर आईफोन खरीदने का ये जुनून सही है, और क्या ये भीड़ शिक्षा नौकरियों के लिए लगने वाली भीड़ से ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले आपको पूरा सच जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कुछ हजार लोगों की इस भीड़ से पूरे भारत को नहीं समझा जा सकता। देखिए,
2: आज जब पूरे देश में सिर्फ इस भीड़ की चर्चा हो रही है, तब हम आपको मेड इन इंडिया की ताकत भी बताना चाहते हैं। पहला, जब एप्पल का कोई नया आईफोन लॉन्च होता था तब उसके सिर्फ बेस मॉडल्स भारत में बनाए जाते थे, जबकि प्रीमियम प्रो मॉडल्स को कई महीनों बाद भारत में असेंबल करना शुरू किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स दोनों को लॉन्च के पहले दिन से ही भारत में तैयार किया जा रहा है। इस वक्त एप्पल कंपनी के 25% आईफोन यानी हर चार में से एक आईफोन को भारत में बनाया या असेंबल किया जा रहा है, और अभी भारत एप्पल कंपनी के लिए अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अभी एप्पल कंपनी के हर 100 में से 6 आईफोन भारत में खरीदे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इन आईफोन को खुद बना रहा है। साल 2024-25 में एप्पल कंपनी ने भारत में 1,94,000 करोड़ रुपए के आईफोन असेंबल किए थे, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 60% की वृद्धि हुई थी। एप्पल कंपनी के मुताबिक पिछले साल की एक तिमाही में अमेरिका में 50% से ज्यादा मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री हुई, और ये सारे आईफोन भारत में असेंबल होने के बाद अमेरिका के बाजार में पहुंचे। आज एप्पल कंपनी अपना हर चार में से एक प्रोडक्ट भारत में बना रही है, और साल 2028 तक आईफोन के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि साल 2014 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 26% मोबाइल फोन ही मेड इन इंडिया होते थे, लेकिन अब हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे 99.2% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया हैं। 2014-15 में भारत में 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता था, लेकिन आज हमारे देश में 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। तो ये आंकड़े भी हमें अपने देश पर गर्व कराते हैं, और आपके लिए भी अच्छी बात यह है कि भारत में लोग भारत में ही बने और असेंबल हुए आईफोन 18 को खरीद रहे हैं। भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ने और घरेलू खपत में तेजी आने से ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत की ग्रोथ G20 अर्थव्यवस्थाओं और समान रेटिंग वाले उभरते बाजारों से तेज रहने की उम्मीद है। हालांकि इन्हीं अनुमानों में एक चेतावनी भी आई है। इसमें लिखा है कि भारत में तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, और भारत को अभी इसी से निपटना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, ईरान के साथ उसकी सीमा लगती है और ओमान भी उसके पड़ोस में है, तब पाकिस्तान तेल के लिए तड़प क्यों रहा है? सीधा कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त, कितना भी अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर या विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। देखिए,
3: पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा।
4: तीन दिनों में 26 रुपए तेल तो बढ़ चुका है, और हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, बताएं, आप बताएं।
5: भाई आप बाइक पे हो, पेट्रोल डलवाया?
6: पेट्रोल पैसे नहीं है, किस तरह डलवाए।
2: पाकिस्तान की सरकार ने ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची रोकने के लिए जो पाबंदियां लगाई, अब उन पर खूब कोहराम मचा है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि जब तक तेल संकट का कोई हल नहीं मिलता तब तक सभी दुकानें और बाजार रात 9 बजे बंद करने होंगे। शादी हॉल रात 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक बंद करने होंगे। शादी समारोह में सिर्फ एक व्यंजन परोसने की अनुमति होगी। सरकारी गाड़ियों के तेल का कोटा अगले 3 महीने के लिए 50% तक घटाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की 3 महीने की विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। बेहद जरूरी यात्रा में भी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में जाना होगा। गैर कर्मचारी बजट में 5% की कटौती की जाएगी। सरकारी बैठकें संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और इसी दौरान सरकारी दावतों पर भी कड़ी रोक लगाई जाएगी और ये सूची बहुत लंबी है। ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल हो गया है कि वहां 18 सितंबर से पेट्रोल 390.89 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 424.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है और सरकार ने साफ कह दिया है कि वो ना तो अभी इस पर टैक्स कम कर सकती है और ना ही पाबंदियों में कोई छूट दे सकती है और इन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की आवाम वहां की सरकार से कह रही है कि तुमसे ना हो पाएगा।
7: अभी सब्सिडी का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यकीन करें मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं उसको रजिस्टर करने की। अच्छा, एक तो उनकी शराइत इतनी मुश्किल है, ठीक है। एक बात ये कि ये बोलते हैं गाड़ी आपके नाम हो, ठीक है। ऊपर से वो गाड़ी आपके नाम हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन आपके नाम हो, ठीक है। उसके बाद वो जो आपका मोबाइल की सिम हो आपके नाम हो। भाई इतनी मुश्किल करोगे तो गरीब आदमी जो इलिटरेट पर्सन है वो किस तरह सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। हम रजिस्टर किस तरह कर पाएंगे।
8: पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है पेट्रोल बढ़ने का मतलब ही यही है कि जो सर के बाल से लेकर नाखून तक और एक जो है वो नाई की दुकान से लेकर एक 5-स्टार होटल तक हर चीज आप महंगी कर दे।
9: कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 200, 100, 150 का पेट्रोल डालते हैं तो वो देखे एकदम से वो 1300 या 1400 देना पड़ जाए तो वो तो बेचारे डलवाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे पास आज थे तो आज हमने डलवा लिए, नेक्स्ट वीक क्या पता मैं भी ना डलवा सकूं।
2: अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और सऊदी अरब, यूएई और ओमान उसके सहयोगी देश हैं, तब वो तेल के संकट के सामने सरेंडर कर चुका है, जबकि इसी जगह हमारा देश भारत भी कच्चे तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है और ईरान युद्ध का असर हम पर भी पड़ा है। और हमारी आबादी तो 145 करोड़ से ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। और जानते हैं भारत और पाकिस्तान में ये फर्क क्यों है? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो भारत की तुलना में पाकिस्तान भौगोलिक रूप से मिडल ईस्ट देशों से ज्यादा करीब है। ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ओमान से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है। यूएई भी 550 किलोमीटर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। और इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तेल का संकट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तड़प रहा है और इसका कारण यही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में कच्चा तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त या पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर यानी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर है और आप खुद सोचिए जब जेब में डॉलर ही नहीं होंगे तो पाकिस्तान तेल कहां से खरीदेगा। और अभी उसके साथ यही हो रहा है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है लेकिन उस पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू हैं। अगर पाकिस्तान ईरान से आधिकारिक रूप से तेल खरीदता है तो उस पर भी वैश्विक प्रतिबंध लग जाएंगे जिससे उसका बचा खुचा व्यापार और आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज पूरी तरह रुक जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त डॉलर नहीं है। अगर वो बिना कटौती के तेल खरीदता है तो पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सीमा भले ही मिडल ईस्ट देशों के करीब है लेकिन उसकी जेब में तेल खरीदने का पैसा नहीं है और वो अपने लोगों को कह रहा है कि शादियों में एक डिश से ज्यादा ना परोसी जाए और नेता भी विदेशी दौरों पर ना जाएं। जबकि भारत ने पिछले हफ्ते ही ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की है और इस संकट में भी हमने पाबंदियों से देश को बचा कर रखा है और इसका कारण ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है जो 780 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21 बिलियन डॉलर का है जो 64वें नंबर पर है। और इसमें भी बहुत सारा पैसा सऊदी अरब का है जिसे पाकिस्तान खर्च तक नहीं कर सकता। भारत ही अपने तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन हमारी बड़ी बात यह है कि जब ईरान युद्ध के कारण हुर्मुज बंद हुआ तो हमने रशिया से कच्चे तेल की कीमत 50% तक बढ़ा ली और अमेरिका से गैस का आयात भी 50% तक बढ़ा लिया। और हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत पर कैसे रो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है।
10: इनके पास मुल्क चलाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। इन पेट्रोल की कीमतों से ये अयाशिया भी कर रहे हैं और मुल्क भी चला रहे हैं, लेकिन ये अपनी अयाशिया और अपने अखराजात कम नहीं कर रहे।
11: वो पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है, अगे हफ्ते बाद महीने बाद असी सुनी दा सी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर हुण पता ही कोई नहीं, पेट्रोल जड़ा है ना वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है।
12: आप खाइए कि पेट्रोल पुआइए कि बच्चों से करिए, समझो गल बार है कि कोई मसल लगी करना चाहती है।
13: कीमतें बढ़ रही हैं, ये सरासर ज्यादा है, हुकूमत आवाम के साथ जो है ना खिलवाड़ कर रही है।
14: पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से आम आवाम तो जलील हो गई है। यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर रही है, आम बंदे की जरूरत है, किसी अमीर की जरूरत नहीं है, ये गरीब बंदे की जरूरत है।
2: पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 80-85% कच्चा तेल आयात करता है। उसके कच्चे तेल के आयात में यूएई की हिस्सेदारी करीब 50-56% है, सऊदी अरब की 30-35% और कुवैत की करीब 4% है। लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इन देशों को पैसे देकर तेल और गैस खरीद ही नहीं सकता, और वैसे पाकिस्तान डींगे बड़ी बड़ी हांकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, प्लूटोनियम खरीदता है, न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदता है, हर साल लगभग $6 बिलियन यानी 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, और जो यूक्रेन से ये कहता है कि वो रशिया की तेल रिफाइनरियों पर हमले ना करे, वही अमेरिका और उसके नेता आखिर दूसरे देशों को ये उपदेश क्यों देने लगते हैं कि उन्हें रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदना चाहिए और रशिया के साथ व्यापार करने का मतलब है यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना। आप खुद सोचिए आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका रशिया के साथ व्यापार करे तो इससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा नहीं मिलता, लेकिन अगर भारत या कोई और देश ऐसा करे तो अमेरिका इन तमाम देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगता है, और इस बार भी वो यही कर रहा है। आज हम आपको इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति, उसके एक तरफा फैसलों और रशिया के साथ उसके खुद के व्यापार को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। देखिए,
15: question is now on agreeing to the motion to concur. All members will record their votes by electronic device. This is a 15-minute vote.
2: ये तस्वीरें अमेरिकी संसद की हैं, जिसने 16 सितंबर को एक बेहद सख्त कानून पारित किया। इस कानून का नाम है लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026, और इसका मकसद है रूस के कच्चे तेल और गैस के व्यापार पर आर्थिक चोट पहुंचाना और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना। यानी जिन देशों ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया, उन देशों को इसकी सजा देने के लिए अमेरिकी संसद ने इस कानून को पारित किया है।
16: We can support Ukraine. We can hold Russia accountable. And we can protect the American people.
2: ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कानूनी शक्ति देता है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं, और इस टैरिफ को दंडात्मक यानी सजा के रूप में वसूला जाने वाला टैरिफ बताया गया है। इन 5 देशों में भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल हैं। ये वो देश हैं जो मौजूदा वक्त में रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीद रहे हैं। अगर ये टैरिफ भारत पर लगता है तो अमेरिका में भारत का जितना भी सामान निर्यात होता है वो सीधे सीधे दोगुना महंगा हो जाएगा, और इसकी सबसे बड़ी मार भारतीय व्यापारियों पर पड़ेगी, और अमेरिका में भारत का निर्यात तेजी से सिकुड़ने लगेगा।
17: टू व्लादिमीर पुतिन, वी हैव योर नंबर, योर इकॉनमी इज रीलिंग, वी आर गोना थ्रॉटल योर वॉर मशीन। China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
2: अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, और ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही ये पूर्ण रूप से
0: कानून बन जाएगा। हालांकि इस कानून को लेकर तीन बातें समझना बेहद जरूरी है। पहली बात, इसे पूरी दुनिया वेपनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट बता रही है, यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी संसद किसी देश के युद्ध को रोकने के लिए टैरिफ को हथियार बना रही है, जबकि ये ग्लोबल ट्रेड यानी WTO के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। दूसरा, इस कानून को भारत अमेरिका रिश्तों के लिए टाइम बम जैसा माना जा रहा है, क्योंकि ये कानून ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की अंतिम दौर की बातचीत चल रही थी। और तीसरा, ये कानून अमेरिकी दबाव का एक मुखौटा भी हो सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 100% टैरिफ का आंकड़ा एक अधिकतम सीमा यानी सीलिंग है, ना कि ऑटोमेटिक टैक्स। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे पूरी तरह माफ करने या कम करने का भी अधिकार रहेगा, इसलिए कई विश्लेषक इसे अमेरिका की एक दबाव बनाने की रणनीति यानी प्रेशर टैक्टिक्स मान रहे हैं, ताकि भारत को रूस से दूर किया जा सके या भारत से कोई एक तरफा व्यापार समझौता कराया जा सके, जबकि भारत इस दबाव के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाजार के हिसाब से तेल खरीदना जारी रखेगा। साथ ही भारत ने चेतावनी भी दी है कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत ने अमेरिका के इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया है और हम ये स्थिति साफ करके चल रहे हैं कि अगर भारत को रशिया के कच्चे तेल की जरूरत होगी तो देश हित में हम ये आयात जारी रखेंगे। इस बिल का नाम अमेरिका के दिवंगत नेता लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका निधन इसी साल 11 जुलाई को हुआ था। ये वही नेता थे जिन्होंने इस पूरा कानून का आइडिया दिया और यहाँ तक कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। ये आइडिया भी उन्होंने तब दिया जब वो मीडिया और सार्वजनिक मंचों से लगातार भारत के खिलाफ कई बयान दे रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रशिया से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो रशिया को दिया गया उनका पैसा ब्लड मनी यानी खून से सना हुआ पैसा माना जाएगा। इन्हीं बयानों के बीच उन्होंने भारत को डराने के लहजे में आर्थिक तबाही की धमकी दी थी और क्रश योर इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और सोचिए ये सब क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन कड़वा सच यह है कि रशिया और भारत के व्यापार पर एतराज जताने वाला यही अमेरिका खुद रशिया के साथ अपना आयात निर्यात जारी रखता है। पिछले साल 2025 में अमेरिका और रशिया के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो 2024 के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में अमेरिका के रशिया के साथ कुल व्यापार करीब 15% बढ़ गया। लेकिन अमेरिका में किसी ने वहां के पैसे को ब्लड मनी यानी खून से सना पैसा नहीं कहा। यह भी तब हुआ जब रशिया से अमेरिका को फर्टिलाइजर्स का निर्यात 38% बढ़ा, यूरेनियम और प्लूटोनियम का व्यापार 61% बढ़ा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी का व्यापार 12% बढ़ा। आज बड़ा सवाल यही है कि जब अमेरिका खुद रशिया से व्यापार करता है और इसे वो अपने राष्ट्रहित में जरूरी मानता है तो वो भारत रशिया के व्यापार पर यही सोच क्यों नहीं रखता।
1: राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे?
18: मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार है।
0: अमेरिका एक तरफ तो भारत को अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बताता है और दूसरी तरफ भारत पर ऐसे कानून थोपने की कोशिश करता है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुरूप है और ना ही किसी भी देश के लिए न्याय संगत है। और यही कारण है कि जब अमेरिकी संसद से यह बिल पास हुआ तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में इसे गैर कानूनी और अमित्रतापूर्ण यानी अनफ्रेंडली कदम बताया और साफ कह दिया कि भारत किसी की धमकी में आए बिना अपने 140 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: क्या आप यकीन करेंगे कि जिस अमेरिका ने रशिया पर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में हुई पार्टी का खर्च रूस से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था और ये वही रूसी कारोबारी हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रूस पर अमेरिका द्वारा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके पीछे की असली कहानी क्या है और इस कहानी में कितनी बड़ी ट्रेजेडी भी छिपी है।
0: ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ को अपना हथियार बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ऐसा चार बार कर चुका है। पिछले साल भी अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ इन्हीं वजहों से लगाया था और अब भी वो कुछ नया नहीं कर रहा है। अमेरिका बार बार अपने कड़े प्रतिबंधों को जायज ठहराने के लिए यूक्रेन युद्ध को आधार बनाता है। ये कहता है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए वो रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन हकीकत में इन प्रतिबंधों के पीछे एक दूसरी कहानी है। इन प्रतिबंधों के पीछे पहला और सबसे असली कारण है अमेरिकी तेल का बाजार बढ़ाना, यानी अमेरिकी तेल की मोनोपोली और उसका मार्केट शेयर। किसी भी बाजार का सीधा नियम यही होता है कि अगर आप अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को मुख्य बाजार से बाहर कर देंगे तो आपकी मोनोपोली अपने आप मजबूत हो जाएगी और अमेरिका अभी यही कर रहा है। उसने प्रतिबंध लगाकर रूस को सीधे सीधे इस बाजार से बाहर किया हुआ है। इन प्रतिबंधों की दूसरी वजह है पेट्रोडॉलर साम्राज्य की रक्षा। दुनिया का ज्यादातर तेल आज भी अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है और इसे पेट्रोडॉलर व्यवस्था कहते हैं, लेकिन रूस और चीन जैसे देश लगातार तेल के व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राओं या अन्य मुद्राओं में करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रूस बिना किसी पाबंदी के दुनिया को तेल बेचता और डॉलर को दरकिनार करता है तो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका उन देशों पर दबाव बनाता है जो डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में बड़ा व्यापार करने की कोशिश करते हैं। और यहां भारत भी रशिया से नेशनल करेंसी में तेल और गैस खरीद रहा है।
19: हेलो मिस्टर पेस्कोव, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन एंड इट्स नाइस दैट यू हैव कॉल्ड दिस सेशन टेलिंग द अनटोल्ड, सो वी आर काउंटिंग ऑन दैट। डोनाल्ड ट्रंप द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज ब्रिक्स इज अ फोरम अगेंस्ट द डॉलर। You yourself mentioned how 90% of the payments that Russia is doing with other BRICS countries has now moved on to national currency. There are other countries also within BRICS without sanctions who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? How would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
20: Thank you. It's a very interesting question.
21: यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा। BRICS किसी के खिलाफ नहीं है। BRICS तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है और रूस भी BRICS देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं और हम किसी डी डॉलरलाइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है।
20: Better corresponds with our national interests. So, and I would say that.
21: तो मैं ये कहूँगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है। और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं।
3: यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर अमेरिका को रूस से इतनी ही दिक्कत है तो उसने रूस का तेल पूरी तरह बंद क्यों नहीं करवा दिया। लेकिन हकीकत में यहीं पर अमेरिका की असली आर्थिक चालाकी समझ में आती है। अगर रूस का तेल पूरी तरह बाजार से गायब हो जाए तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो जाएगी। इससे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे अमेरिका और पूरी दुनिया में भयानक महंगाई और मंदी आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने G7 प्राइस कैप नीति अपनाई। इसके तहत रूस को तेल बेचने की अनुमति तो है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि रूस $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमतों पर तेल का निर्यात नहीं कर सकता। इससे बाजार में तो तेल की सप्लाई बनी रहती है और वैश्विक कीमतें भी नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन रूस को उस तेल पर कोई बड़ा प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा नहीं मिलता जो उसे सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। और चौथा बड़ा कारण है पश्चिमी देशों की सर्विस मोनोपोली। दुनिया के पास तेल भले हो, लेकिन उस तेल को समंदर के रास्ते एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए जहाजों का बीमा और बड़े शिपिंग टैंकरों की जरूरत होती है। इस पूरी शिपिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर 90% नियंत्रण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कंपनियों का है। अमेरिका ने नियम बनाया है कि जो भी जहाज रूसी तेल को तय प्राइस कैप से महंगे दाम पर ले जाएगा उसे पश्चिमी कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देंगी। इस सर्विस मोनोपोली का इस्तेमाल करके भी अमेरिका तेल के बाजार में अपनी मोनोपोली बनाता है, और ये बात दुनिया समझ ही नहीं पाती कि इन प्रतिबंधों का असली खेल यूक्रेन युद्ध को रोकना नहीं है, बल्कि इनका असली खेल रशिया को तेल बाजार से बाहर कर देना है और उसके सामने ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश है कि वो भविष्य की तकनीकों में निवेश करने के लिए पैसा न जुटा पाए और वैश्विक महाशक्ति की दौड़ में हमेशा पीछे रहे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध अकेला इसका कारण होता तो अमेरिका खुद भी रशिया से व्यापार बंद कर देता, और व्यापार ही क्यों। पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना न बनाए, और इसके बाद रशिया ने अमेरिका को इसके लिए धन्यवाद दिया था। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में हुई पार्टी का खर्च रूस से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था, जो राष्ट्रपति पुतिन के करीबी है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने बेटे की शादी की पार्टी में रूस के कारोबारी से पैसा खर्च करवा देते हैं, खुद रशिया के साथ व्यापार कर लेते हैं, लेकिन भारत को उसके राष्ट्रहित में फैसले लेने पर 100% टैरिफ लगाने का कानून थोप देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चाइना दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है जो पूरी तरह रोबोट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और क्यों दुनिया चाइना के इस मदरशिप को लेकर चिंता जता रही है उस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
4: समंदर की लड़ाई में चीन अब अपना एक नया हथियार लेकर आने वाला है। ये किसी भी वक्त जंग की सूरत बदल सकता है। इस नए हथियार ने दुनिया की सैन्य महाशक्तियों के भी होश उड़ा दिए हैं। चीन दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। ये ऐसी सबमरीन होगी जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और अनमैंड होगी, यानी समंदर के अंदर मौजूद इस सबमरीन को जमीन पर मौजूद किसी कमांड सेंटर से चलाया जा सकेगा। हाल फिलहाल के जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें ड्रोन हथियारों का दम पूरी दुनिया देख रही है। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन रशिया पर कई बार भारी पड़ता दिखता है। ड्रोन के जरिए हमला करके IRGC भी अमेरिकी सेना को चौंकाती रही है। चीन ने दो कदम आगे की सोची है।
2: ये पहली बार है जब किसी देश ने समंदर की लड़ाई के लिए ड्रोन का घातक स्वरूप तैयार कर लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी वेंटोर ने एक तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर है हुडोंग झोंग हुआ शिपयार्ड की, जहां एक लाल जहाज बनते हुए दिखाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा ये जहाज ही अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बताया जा रहा है। चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप की लंबाई करीब 205 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इसके पिछले हिस्से में करीब 55 मीटर लंबी और 13 मीटर चौड़ी वेट वेल है, जिसके जरिए ऑटोनॉमस सबमरीन समंदर में उतर पाएगी। वेट वेल के आगे बंद हैंगर है, जहां 4 अनमैन्ड सबमरीन रखी जाएंगी। अनमैन्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें क्रू के लिए जगह या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी और खतरनाक मिशन पर इसे तुरंत उतारा जा पाएगा।
5: देखिए, समुद्री शक्ति संतुलन में चीन आगे निकल रहा है और ये देखना होगा कि अब वो आक्रामक नीति अपना रहा है, अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके वो अंडरवाटर मानव रहित ड्रोन का जो प्रयोग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है लगातार, इससे पूरे ईस्ट एशिया से लेकर के आसियान कंट्रीज और भारत, जो पूरा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब चीन के पास एक अपर हैंड सिचुएशन होगी, जिससे वो बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी डेवलप करके, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो, जहां पर वो उसके जो एग्रेसिव पोस्टिंग हमेशा रहती है, जैसे फिलीपींस हो, जापान हो, इस तरह के जो देश हैं जो परेशान रहते हैं या उनके जहाजों पर चीन कभी ब्लॉकिंग, कभी ब्लॉकेट करता है, कभी आक्रमण करता है, तो अब अंडरवाटर ड्रोन से एक समुद्र के अंदर युद्ध की स्थिति बनने का खतरा है। और इस पर जो वैश्विक एक कंट्रोल या वैश्विक एजेंसीज हैं, उन्हें नजर रखनी होगी।
2: चीन की इस तैयारी का खुलासा पिछले साल जनवरी में हुआ था, लेकिन अब की बार चीन ने साउथ चाइना सी के हेनान द्वीप के पास कुछ अनमैन्ड पनडुब्बियों का परीक्षण पूरा कर लिया है, यानी पनडुब्बियां तैयार हो चुकी हैं और उन्हें बस अपनी मदरशिप का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
1: अक्सर युवाओं पर सड़कों पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के आरोप लगते हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 73 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी कार से सड़क किनारे खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक गिर गई, लेकिन 73 साल के बुजुर्ग वेणुगोपाल ने गाड़ी रोकी नहीं। कार बाइक को कई मीटर तक सड़क पर घसीटती हुई उनकी कार बढ़ती रही। मौके पर मौजूद लोगों ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो कार को किसी तरह से रुकवाया। जब भीड़ ने ड्राइवर को घेरा तो पहले तो वो अपनी गलती मानने से इनकार करता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा और उस गुस्से को बढ़ता देख आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। हादसे में बाइक सवार 21 साल का लड़का बाल बाल बच गया है, लेकिन पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है।
2: अक्सर सड़कों पर स्टंटबाजी, खतरनाक ड्राइविंग और हिट एंड रन के मामलों में उंगली युवाओं पर उठती है, लेकिन दिल्ली के आरकेपुरम से जो तस्वीर आई है उसने सबको हैरान कर दिया। तिहत्तर साल की उम्र में सामने खड़ी बाइक और एक जोरदार टक्कर, लेकिन बात सिर्फ टक्कर की नहीं थी। खौफनाक मोड़ तब आया जब 73 साल का बुजुर्ग ड्राइवर कार रोकने के बजाय बाइक को सड़क पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता चला। यह घटना रात करीब 10:30 बजे की। 21 साल का तनीष टोकस सड़क किनारे अपनी खड़ी बाइक पर बैठा था, तभी नीले रंग की एक होंडा अमेज कार रफ्तार से आई और खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तनीष सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि तनीष बाल बाल बच गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। टक्कर मारने के बाद कार रुकी नहीं, बल्कि सड़क पर कई मीटर तक बाइक को घसीटती चली गई। सड़क पर रगड़ने की खौफनाक आवाज और चिंगारियों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लोग चिल्लाए, कार का पीछा किया और आखिरकार गाड़ियों की घेराबंदी कर कार को जबरन रुकवाया। कार रुकी तो अंदर से 73 साल का एक बुजुर्ग निकला। भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। जब लोगों ने बुजुर्ग पर सवाल दागे तो शुरुआत में तो जनाब अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुए, लेकिन माहौल गरमाता देख और भीड़ के गुस्से के आगे 73 साल के वेणुगोपाल के तेवर ढीले पड़ गए।
3: बुजुर्ग ड्राइवर ने कैमरे और भीड़ के सामने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगे। घटना की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग वेणुगोपाल को हिरासत में ले लिया और कार को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में नशे की बात सामने नहीं आई। दिल्ली पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। सोचिए, एक पल की लापरवाही किसी की जान ले सकती थी। 21 साल का तनीष खुशकिस्मत था कि उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब होश में गाड़ी चला रहे बुजुर्ग भी ऐसी लापरवाही दिखाएंगे तो सड़कों पर कौन सुरक्षित है।
1: अब हम 20 साल पुराने निठारी केस की बात करेंगे, जिसके आरोपी रहे सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या कर ली है। बच्चों की हत्याओं से जुड़े 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों में बरी कर दिया था। केस से बरी होने के बाद वो हरिद्वार में नाम बदलकर रह रहा था और एक चाय की दुकान भी उन्होंने खोली थी। अब अपने घर में ही खबर आ रही है कि फांसी लगा ली है। आखिर ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
6: उनतीस दिसंबर साल 2026 को नोएडा के निठारी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। निठारी की इस D5 कोठी के पीछे एक के बाद एक 16 मासूम बच्चों के सड़े गले शव बरामद होते गए। इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, नाम है सुरेंद्र कोहली। निठारी कांड को देखने और समझने वाले इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकते। इस आदमी को 13 मामलों में देश की अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन फांसी से ऐन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी फांसी को टलवा दिया और फिर एक लंबी सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को हर आरोप से बरी कर दिया गया। करीब 19 साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल नवंबर में पिछले करीब 10 महीनों से सुरेंद्र कोहली आजाद था। उसकी फांसी की सजा टाली जा चुकी थी, उसे हर जुर्म से बरी कर दिया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि सुरेंद्र कोहली ने फांसी लगा ली है। पिछले कई दिनों से सुरेंद्र कोहली नाम और पहचान बदलकर लोगों की नजरों से बचते हुए हरिद्वार में चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। उसने लोगों को अपना एक फर्जी नाम बता रखा था। पुलिस के मुताबिक वो कुछ महीने पहले ही हरिद्वार आया था। उसने अपना नाम सदाराम रख लिया था। आस पड़ोस के लोगों को उसकी असली पहचान कभी तब तक पता नहीं चला जब तक पुलिस ने शव के पास से मिले असली पहचान पत्र की जांच नहीं की थी।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और याद रहे, चलता हुआ मूर्ख बैठे हुए जीनियस से आगे निकल जाता है।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
12: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।

यूपी चुनाव में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, एसपी का भी पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनावों के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद।

मेरे पीछे इस समय बस एक हरी दीवार है, लेकिन बीच, स्पेस, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर केवल एक स्टूडियो जहां से मैं आपके लिए खबरें लेकर आती हूं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल तस्वीर को इस रूप में आपके सामने पेश करने की एक बड़ी वजह है, वजह एआई और एआई को लेकर इस समय पूरी दुनिया में छिड़ चुकी एक बहस की। क्या एआई वाकई एक ऐसा खतरा है जो इंसानों को, इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकता है? यह सवाल पूछने की वजह है वो सारे तमाम लोग और उनकी तरफ से दिए जा रहे स्टेटमेंट्स जो एआई को डेवलप करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि शायद ये रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। तो आज दुनिया के सामने इस सबसे बड़े सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे।

0: विज्ञान कहता है आज से 60 से 70 लाख साल पहले मानव वंश का विकास शुरू हुआ, जबकि 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस के सबसे पुराने जीवाश्म अफ्रीका में मिले। 4 लाख साल पहले मनुष्य के पूर्वजों ने आग की खोज की। और आज यानी 4 लाख साल बाद एक नई आग मनुष्य के वजूद को जलाकर खाक करने के लिए तैयार है। ये एआई की आग है। तो क्या 70 लाख साल पुरानी मानव सभ्यता को कुछ सालों पहले आई टेक्नोलॉजी खत्म कर सकती है? आग से एआई की आग तक का यह सफर क्या सभ्यता के अंजाम तक पहुंच चुका है? अपनी जरूरतों को खोजते, उनका आविष्कार करते करते क्या मनुष्य उस दौर तक पहुंच चुका है जब उसके आविष्कार ही उसके विनाश की वजह बन सकते हैं? ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं वो खुद जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स। हम वास्तव में पूरी गंभीरता से मानते हैं कि एआई पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अगले एक दशक में इसकी संभावना 10% से ज्यादा है। 6 से 12 महीनों में एक ऐसा एआई स्वार्म लगातार सक्रिय बॉटनेट के जरिए पूरे इंटरनेट पर कब्जा करने में सक्षम हो सकता है और इससे संभावित रूप से सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये ऐसी चीज है जो निजी हाथों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हमने इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया तो मुझे लगता है कि ये खतरनाक हो सकती है। एक सुपर इंटेलिजेंट एआई से भी परमाणु हथियारों के समान और संभवतः उससे भी बड़े स्तर का खतरा पैदा हो सकता है। मेरे ख्याल से इस साई ऑप की जमीन काफी लंबे समय से तैयार की जा रही थी। ये बस एक चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। अगर आप ये नहीं कहते कि इसकी रफ्तार धीमी करनी चाहिए तो आप मूर्ख हैं। अगर इस दौड़ में चीन जीत गया तो उसके बाद हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रहेगा। अगर एआई के मामले में चीन हमसे आगे निकल गया तो बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हालांकि एआई का बचाव करने वाले भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद मैदान में उतर आए। एआई को जिसे एकमात्र नियंत्रण या गार्ड रेल्स की जरूरत है वो है एक मजबूत और समझदार उच्च आईक्यू वाला राष्ट्रपति, और अमेरिका के पास एक ऐसा राष्ट्रपति भरपूर है।
1: Again, there's been so much concern about AI. Have you heard directly from any of these AI tech leaders? And you seem to downplay some of the concerns that we've heard.
2: But it's, you know, it's going to be more good than bad, but by a lot.
1: And I've said it from
2: the beginning. Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
3: The kind of AI systems that I'm concerned about is what is called super.
4: मैं AI के जिस रूप की बात कर रहा हूँ वो सुपर इंटेलिजेंट AI है। ये अभी अस्तित्व में नहीं है लेकिन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ये इंसानों को हर काम में हरा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो, मिलिट्री हो या फिर राजनीति हो।
3: मिलिट्री, पॉलिटिक्स, एटसेट्रा।
0: लेकिन एआई पर पक्ष और विपक्ष में ये चर्चा क्यों शुरू हुई? दरअसल कुछ दिन पहले एक एआई कंपनी एंथ्रोपिक में काम करने वाले एक व्यक्ति जैकब कॉक्सन ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जिस क्षेत्र में वो एआई से जुड़ा काम कर रहा है वो बेहद खतरनाक है। एंथ्रोपिक के एक दूसरे कर्मचारी इवान ह्यूबिंगर ने भी इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि 10 सालों के अंदर अंदर एआई से मानव जाति के विलुप्त होने की आशंका 10% से अधिक है, और यहीं से उठे कई सवाल। क्या एआई पूरी मानवता को खत्म कर देगा? क्या एआई परमाणु बमों पर कब्जा कर लेगा? क्या एआई मिसाइल टेक्नोलॉजी को हथिया लेगा? क्या एआई दुनिया में बीमारियां लाएगा? क्या एआई पृथ्वी को तबाह कर देगा? तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एपोकलिप्स इंटेलिजेंस है, यानी कयामत की इंटेलिजेंस?
5: चैट जीपीटी, क्या एआई इंसानों के वजूद के लिए खतरा है?
6: हाँ, एआई इंसानों के वजूद के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन ये कहना कि एआई निश्चित रूप से इंसानों को खत्म कर देगी आज उपलब्ध वैज्ञानिक एविडेंस से साबित नहीं है।
5: तो हम इस खतरे को कितने स्तर पर देख सकते हैं?
6: हमें चार पहलुओं पर गौर करना होगा।
5: यानी कि जो हम सबकी आदत में शामिल हो गया है ना कि कोई भी चीज हो, चाहे हमें खाना पकाना हो, अपना एक डाइट प्लान बनाना हो, किसी प्रोग्राम को विकसित करना हो, हर चीज के लिए एआई से ही हम सवाल पूछने लगे हैं। क्या यहीं से जुड़ता है खतरे का एक बहुत बड़ा सिरा?

आज AI सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, वो तस्वीरें भी बना रहा है, कोड लिख रहा है, वैज्ञानिक शोध में मदद कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है जिनके लिए कभी इंसानों को घंटों, दिनों और महीनों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ रही है, क्या हमारा नियंत्रण इस पर उतना मजबूत हो रहा है? AI के जिस विनाशकारी रूप पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है वो बहस का विषय है, लेकिन अगर इसमें कुछ हद तक भी सच्चाई हुई तो ये कैसे मुमकिन होगा? कृत्रिम बीमारी से AI खत्म करेगा इंसानों को? AI को लेकर सबसे बड़ी आशंकाओं में से एक ये है कि कोई बेहद ताकतवर AI जैविक हथियारों के जरिए इंसानों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल है, कंप्यूटर में काम करने वाला AI आखिर वायरस बनाने और फैलाने जैसी चीजों तक पहुंचेगा कैसे? AI फ्यूचर्स प्रोजेक्ट के शोधकर्ता थॉमस लार्सन के मुताबिक एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान AI किसी इंसान को घातक वायरस बनाने में मदद करने

0: में क्लॉड जैसे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मानते हैं कि अगर भविष्य में कोई एआई ज्यादा समझदार, रणनीतिक और गलत इरादे वाला हो जाए तो वो इंसानों को गुमराह करके अपने मकसद के लिए काम करवा सकता है।
1: So if we build AI systems that are fully autonomous,
2: हम ऐसे AI सिस्टम बना रहे हैं जो पूरी तरह स्वचालित हैं, जो इंसानों को हर क्षेत्र में हरा सकते हैं, मार्केट में, बिजनेस में, ये खुद नई तकनीक डेवलप कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, राजनीतिक कैंपेन चला सकते हैं।
0: हालांकि ये सिर्फ एक आशंका है, मौजूदा AI के ऐसा करने के सबूत नहीं है।
3: साइंस जब आया था तो बहुत साल पहले लोगों ने बोला था ये एक बहुत बड़ा डर, और आज विज्ञान ने हमें चांद और मार्स तक पहुंचा दिया। सेम चीज आज एआई के लिए हो रही है। जब तक आप उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे, आप उसके साथ उसको गलत प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, वो आपकी इससे सीख नहीं पाएगा। तो जहां तक, अगर मान लीजिए किसी एक गड़बड़ इंसान ने उस महामारी के लिए फॉर्मूला बनाया, मांगा, वो देगा, पर एक इंसानी वजूद, उसके एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन टच की बहुत जरूरत पड़ती है AI में। वो अपने आप कुछ नहीं करता। हाँ, वो आपके चॉइसेस से सीख रहा है, पर वो अपने आप नहीं करता। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि महामारी फैलाने में AI का हाथ है। कोविड आया था, कितनी जाने गई उसमें, तब AI ने हमें छोटे छोटे आंसर, जब हम पूछते थे छोटे छोटे आंसर्स, छोटे छोटे तरीके बताए कि कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो हर चीज का एक सही और एक गलत दोनों है।
0: शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि किसी खतरनाक वायरस को बनाना इतना आसान नहीं कि AI को कह दिया और काम हो गया। इसके लिए प्रयोगशाला, सही उपकरण, विशेषज्ञता और कई जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। कंप्यूटर पर जानकारी होना और असल दुनिया में उसे करके दिखाना दोनों अलग बातें हैं। क्या रोबोटों के जरिए होगा नरसंहार? क्या AI ऐसी रोबोट सेना बना सकता है जो इंसानों के लिए खतरा बन जाए? एक आशंका यह है कि अगर रोबोट खुद नए रोबोट बनाने लगे तो उनकी ताकत तेजी से बढ़ सकती है। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन एलन मस्क ने भी कहा है कि ऐसे रोबोट एक तरह के नए मशीन जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। डर यह है कि अगर रोबोट खुद को बढ़ाने और चलाने में सक्षम हो गए तो इंसानों का उन पर कंट्रोल कम हो सकता है, लेकिन ये अभी एक भविष्य की आशंका है। आज के रोबोट इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, यहां तक कि मस्क का ऑप्टिमिस्ट भी अभी लाखों की संख्या में ऐसे रोबोट तैनात करने या खुद नए रोबोट बनाने वाली पूरी व्यवस्था तक नहीं पहुंचा है।
4: अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि AI केवल जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है और अब AI एजेंट्स की बात करती है, लेकिन रुकिए, जब आप सो रहे थे तब AI ने एक और बड़ा कदम, एक बड़ी छलांग लगा ली। AI ने रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में बहुत अग्रसर तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी क्या होता है रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि अब AI में इतनी क्षमता आ गई है कि AI खुद ही अपने सिस्टम, अपने एल्गोरिदम को का विश्लेषण करता है, पाता है कि साहब मेरे यहाँ क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को खुद ही रेक्टिफाई करता है, उनका पूरा करता है, अपने सिस्टम को और बेहतर बनाता है और कॉन्स्टेंटली सेल्फ इम्प्रूव करता रहता है। तो अब जब इस तरह के सिस्टम हो रहे हैं तो इंसानों की तो बात वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही इंसानों के जो डिक्टेट हैं, जो कमांड्स हैं, उसको बाईपास करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
0: क्या AI कर सकेगा परमाणु हमला? एक आशंका यह भी है कि भविष्य में कोई AI परमाणु हथियारों के सिस्टम पर मौजूद कंप्यूटर नेटवर्क का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये भी सच है कि परमाणु सिस्टम में कड़े सुरक्षा नियम होते हैं, इसलिए AI के लिए सीधे उन तक पहुंचना आसान नहीं है। विशेषज्ञ हर्बर्ट लिन का कहना है कि AI से जुड़े कुछ परमाणु खतरे बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते हैं, असल और मौजूदा खतरा खुद परमाणु हथियार है। लेकिन AI को लेकर दूसरी बड़ी आशंका ये है कि अगर वो खुद को लगातार बेहतर बनाने लगे तो वो ऐसे तरीके खोज सकता है कि उसे हमारे परमाणु हथियारों की जरूरत ही न पड़े। दरअसल AI में हो रहे एडवांसमेंट और AI का आम जिंदगी में इस्तेमाल इन विचारों को हवा देता है कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वाकई खतरनाक हो सकता है।

0: ओपन एआई ने हाल ही में अपने एआई मॉडल्स में मिस अलाइनमेंट के नए मामले सामने आने की जानकारी दी है। एक मामले में अभी रिलीज ना किए गए मॉडल ने खुद को निर्देश दिया कि वो अपने सामान्य नियमों और पाबंदियों को नजरअंदाज करें। यानी सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि अगर एआई अपने बनाए नियमों से आगे निकलने लगे तो उसे रोक कौन पाएगा।
1: जब एआई नया नया था तब सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा होती थी वो ये कि एआई के आने से नौकरियां जाएंगी। मसलन मीडिया इंडस्ट्री को ले लीजिए, एआई एंकर कर सकता है, एआई वॉइस ओवर कर सकता है, एआई स्क्रिप्ट लिख सकता है, एआई कैमरे में भी मौजूद है, एआई एडिटिंग टूल्स में मौजूद है, लेकिन शायद अभी भी ग्राउंड पर जाकर वो खबरें निकाल कर लाना, रिपोर्टिंग करना, उन चीजों में एआई नहीं है। पर कब तक नहीं है इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। पर बात सिर्फ क्रिएटिव इंडस्ट्री की नहीं है, आज हर एक क्षेत्र में एआई की दखल ऐसी है कि कई जगहों से वाकई नौकरियां भी जा रही हैं, तो कुछ जगहों पर नए स्किल सेट के साथ नौकरियां क्रिएट भी हो रही हैं।

0: आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एआई के आने से इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी, या फिर ये भी तो संभव है कि नई तकनीक के आने से नौकरियां पैदा हो जाएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 17 करोड़ नई नौकरियां बन सकती हैं, जबकि करीब 9.2 करोड़ मौजूदा नौकरियां खत्म या विस्थापित हो सकती हैं। आलोचकों का कहना है कि एआई से बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो सकती हैं, खासकर ऐसे काम जिसमें बार बार एक जैसे काम करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर निर्माण कार्य में रोबोट पहले ही असेंबली लाइन संभाल चुके हैं। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का असर कस्टमर सर्विस की नौकरियों पर पड़ा है। एआई ऐसे कामों पर ज्यादा असर डाल सकता है जो नियमों के आधार पर और तय तरीके से किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और पोलैंड नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर 4 में से एक नौकरी पर जेन एआई यानी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से असर पड़ेगा। आईएलओ की इस ज्वाइंट रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में करीब 25% रोजगार ऐसे हैं जिन पर जेनरेटिव एआई का असर पड़ सकता है। अमीर देशों में ये आंकड़ा करीब 34% है। महिलाओं की नौकरियों पर असर ज्यादा हो सकता है। अमीर देशों में करीब 9.6% महिलाओं के रोजगार पर पूरी तरह ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 3.5% है। दफ्तर के नियमित काम वाली नौकरियां एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इनके कई काम एआई आसानी से कर सकता है। एआई की बढ़ती क्षमता के कारण मीडिया, सॉफ्टवेयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों की डिजिटल और सोचने वाली नौकरियां ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, आईएलओ के मुताबिक सबसे अधिक असर नौकरियों के पूरी तरह खत्म होने का नहीं बल्कि उनके बदलने का है। यानी एक ही नौकरी कुछ काम इंसान करेगा, कुछ काम एआई करेगा। इंसान का काम होगा एआई को चलाना, जांचना और उसके नतीजे पर फैसला लेना।
1: जहां तक रही बात नौकरियों की, कई हद तक एआई की वजह से काफी नौकरियां गई हैं, मैं मानती हूं, जैसे डेटा एंट्री। पर उसी जगह उसी टाइम पे कई नौकरियां जनरेट हुई हैं। तो इट इज, जब भी आप ये सोचिए कोई टेक्नोलॉजी नई आती है तो उससे कई बार ऐसा होता है कि अच्छा बुरा दोनों होता है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर नौकरियां गई हैं तो नौकरियां बनी भी हैं।
0: हालांकि ये भी सच है कि नई तकनीक से कुछ नौकरियां खत्म होने के साथ नई और ज्यादा स्पेशल नौकरियां भी पैदा होती हैं। एआई के आने से डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ रही है। एआई इंसानों की क्षमता को बढ़ा रहा है। मशीनें रोजमर्रा का काम कर रही हैं और इंसान रचनात्मक और रणनीतिक कामों पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में फिलहाल इंसानों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।
2: एक बात की अपेक्षा सब करते हैं कि इंसान भले ही झूठ बोल ले, एआई झूठ नहीं बोलेगा। तो यही सोचकर हम एआई से एक और सवाल पूछते हैं, क्या एआई खुद इंसानों को खत्म करने का फैसला करेगी?
3: ये अभी साइंस फिक्शन जैसा निश्चित निष्कर्ष नहीं है, लेकिन कुछ लीडिंग एआई रिसर्चर्स इसे इतना गंभीर पॉसिबिलिटी मानते हैं कि वो डेवलपमेंट की गति और सेफ्टी टेस्टिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
2: वाकई जैसे ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने इस तरह की एक आशंका जाहिर की थी, वाकई ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है?
4: The potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong.
5: ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बयान ने दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख दिया है। वो देश जो एआई को वरदान समझ रहे थे, अब उनको डर है कि कहीं एआई अभिशाप न बन जाए। सैम ऑल्टमैन ने 15 सितंबर 2026 को सैन फ्रांसिस्को के ड्रीम फोर्स सम्मेलन में एआई के खतरों पर सीधी बात की।
4: These models are in some ways going to become more capable, smarter than people. A real fear that some of these companies or some companies developing AI could get too much power and be able to sort of exert undue influence on the economy, push a worldview out on people. And I think the world is right to be afraid of this.
5: ऑल्टमैन की बातचीत का सबसे अहम हिस्सा ये था कि दुनिया का एआई से डरना गलत नहीं है, क्योंकि एआई के अनियंत्रित इस्तेमाल से दुनिया के सामने कई खतरे आ सकते हैं। खतरा नंबर एक, पक्षपात। अगर ट्रेनिंग डेटा में कोई पक्षपात मौजूद है तो वो एआई सीख सकता है। इससे नौकरियों में भर्ती, स्वास्थ्य सेवाओं और पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में असमान नतीजे आ सकते हैं। खतरा नंबर दो, साइबर सिक्योरिटी का खतरा। आवाज की नकल, फर्जी पहचान का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठगी, हैकिंग और निजी डेटा चोरी का खतरा बढ़ता है। खतरा नंबर तीन, डेटा प्राइवेसी का खतरा। इंटरनेट से जुटाए गए डेटा में निजी जानकारी भी शामिल होती है। इंटरनेट पर डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। खतरा नंबर चार, पर्यावरण पर असर। जानकारों की माने तो बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इससे कार्बन एमिशन का खतरा बढ़ता है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी भी इस्तेमाल होता है। खतरा नंबर पांच, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एआई किसी कलाकार की शैली, आवाज या लेखन जैसी सामग्री तैयार कर सकता है, लेकिन एआई से बनी सामग्री का कॉपीराइट किसका होगा, ये सवाल है। खतरा नंबर छह, जवाबदेही की कमी। अगर एआई के फैसले से नुकसान होता है तो सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़े मामलों ने ये सवाल और गंभीर बनाया है। खतरा नंबर सात, ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई एआई मॉडल्स ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं, यानी एआई ने कोई फैसला क्यों लिया ये समझना मुश्किल हो सकता है। इससे एआई पर भरोसा कम हो सकता है। खतरा नंबर आठ, गलत जानकारी और डीप फेक। एआई से नकली वीडियो, तस्वीरें, आवाज और संदेश बेहद वास्तविक बनाए जा सकते हैं। डीप फेक से गलत सूचना फैलाने, बदनाम करने और लोगों को गुमराह करने का खतरा बढ़ता है। लेकिन हर खतरे का एक ही बचाव है, मानव निगरानी और सावधानी।
2: सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर क्या यह हकीकत से वाकई दूर है? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलेस्ट स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: बहुत टाइर्ड हो गई।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
8: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
9: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: एक दो एक
16: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
5: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
6: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime tha. Jurm chahe kitna hi uljha ho, uski parte hum suljhate hain. Dekhiye crime tak YouTube par. और बचिए हर क्राइम से।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: यूपी चुनाव में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, एसपी का भी पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनावों के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, ज़ेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद।

0: एआई के क्षेत्र में चीन ने जबरदस्त तरक्की की है, इसीलिए आज जब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो रही है तो चीन इसे अपने विरुद्ध एक साजिश के रूप में देख रहा है।
1: एआई को लेकर अमेरिका और चीन में जंग छिड़ी है। कौन बेहतर एआई बनाएगा, कौन ज्यादा ताकतवर एआई तैयार करेगा और सबसे बड़ा सवाल, एआई की इस रेस में कौन कितना आगे निकलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कह चुके हैं कि जिसके पास एआई की बढ़त होगी उसके पास आने वाले वक्त की ताकत भी होगी।
2: Again, there's been so much concern about AI. Have you heard directly from any of these AI tech leaders? And you seem to downplay some of the concerns that we've heard.
3: But it's, you know, it's going to be more good than bad, but by a lot.
2: But and I've said it,
3: from the beginning. Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
1: लेकिन इस एआई की रेस के बीच अब एक दूसरी बहस भी तेज हो गई है। एआई को तेजी से आगे बढ़ाया जाए या इसकी रफ्तार पर लगाम लगाया जाए। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई ने एआई के विकास रफ्तार को कुछ हद तक नियंत्रित करने की अपील की है, लेकिन उनका तर्क है कि अमेरिका इतना भी धीमा नहीं पड़ सकता कि चीन उससे आगे निकल जाए। चीन में एआई और रोबोटिक्स के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका जहां चीन की एआई क्षमता को लेकर चिंता जता रहा है, वहीं चीन इन चिंताओं को अमेरिकी साजिश बता रहा है। चीन रोजाना एआई के नए मॉड्यूल दुनिया को दिखा रहा है। दरअसल एआई अब चीन में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है, सड़कों से लेकर फैक्ट्रियों तक और स्टूडियो से लेकर रोबोटिक्स तक में एआई दिखाई दे रहा है। ये चीन का एआई स्टूडियो है जहां इंसानों की तरह बातचीत करने वाले एआई सिस्टम पर काम हो रहा है।
4: Hello. I'm doing great. Thank you. Welcome from India.
1: कैमरा इंसान की गतिविधि को समझ रहा है। मशीनें सिर्फ आदेश सुन नहीं रही बल्कि उसके मुताबिक काम करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला सॉफ्टवेयर नहीं, एआई को अब शरीर दिया जा रहा है।
5: जिसे यहाँ पर मीडिया के स्वागत के लिए रखा गया था, इनसे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे दबाकर उससे कोई सवाल पूछूं तो फिर कोई जानकारी उनकी तरफ से हमें मिल सकती है।
6: हेलो स्याओ, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग?
4: आई एम डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग, थैंक यू फॉर आस्किंग।
6: हाउ अबाउट यू? My name is Shweta. I have come from India.
4: Nice to meet you, Shweta. Welcome from India. How can I assist you today?
1: और यही चीन का अगला बड़ा दांव है, Embodied AI। ऐसा AI जो दुनिया को सिर्फ समझे नहीं बल्कि भौतिक दुनिया में काम भी करे। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। कुछ रोबोट चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ सामान उठाते हैं और कुछ कमांड पर इंसानों से बेहतर नाचते और गाते हैं। चीन में रोबोट्स को इंसानों की तरह काम करना सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए, रोबोट रंग पहचान रहा है, कपड़े को पहचान रहा है और फिर उसके हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि एआई को सिर्फ डेटा से नहीं असल दुनिया के डेटा से सीखना है।
5: जब भी किसी देश में कोई आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो एक बात को समझ लीजिए कि वहां पर अपनी जो ताकतें हैं उन्हें भी रखा जाता है, जो सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं ना। तो यहां पर एआई के रूप में चीन कैसा है उसकी नुमाइश अलग अलग स्टॉल्स में मुझे दिख रही है। अब ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये ठीक उसी तरह की हरकतें कर रहा है जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ को वो रीड कर चुका है और वहाँ पर जो भी चीज़ मैं करूँगी वो हरकत ये हाथ करेगा, चाहे मैं उसकी तरफ उंगली उठाऊँ या फिर मैं विश्व शांति की बात करूं। तो ये काले पैकेट को उठाकर एक अलग बास्केट में डाल रहा है और यहाँ पर देखिए एक सफ़ेद पैकेट आया है जिसे ये उठाकर अब फिर देखना है कि अगले बास्केट में डालता है, तो ये कैटेगराइज कर सकता है ये दो अलग अलग पैकेज को, ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक क्रांति लाने की कोशिश, जहाँ पर जो इंसान ही कर सकते हैं वो एक रोबोट के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि रंगों के हिसाब से कैसे वो रोबोट समझ रहा है।
1: और अब इस ड्रोन को देखिए, एआई का इस्तेमाल सिर्फ रोबोट के शरीर में नहीं बल्कि ड्रोन और दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम्स में भी हो रहा है। और इस ड्रोन को कमांड की जरूरत नहीं है, ये दिए गए डेटा पर काम करता है।
5: तो जिस तरीके से ड्रोन्स को एक रिमोट के जरिए आमतौर पर हम सब कंट्रोल करते हैं, ये उस तरीके से नहीं, उससे कई कदम आगे बढ़ते हुए ये एक ऐसी रोबोटिक मशीन है जहां से ड्रोन स्वयं निकल सकता है और स्वयं खुद को लॉन्च कर सकता है एक टारगेट की तरफ। इसे कंट्रोल करने के लिए नहीं, ओनली डेटा इज फेड इन इट,
7: डेटा
5: इज फेड, तो वो डेटा उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद वो उस निर्धारित समय पर अपने हिसाब से निकल सकता है। तो जब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग रोबोट वो जब समझे कि ज़रूरत है एक गाड़ी में उसे चार्ज करने की, तो चार्जिंग स्टेशंस की बात करें या सीधे फिर इसकी बात कर लें, इस आविष्कार की बात कर लें।
1: अब चीन इस तकनीक को फैक्ट्री तक सीमित नहीं रखना चाहता, ऐसे एआई सिस्टम पर काम हो रहा है जहां इंसान बोले और रोबोट बातें समझकर काम करे।
8: So the bad thing that we're concerned about in AI safety is building AI systems that we don't know how to control. But China is going to do it, so we should do it first, which is an odd argument, right? We want the world to be destroyed by American AI technology, not by Chinese AI technology. That's a weird argument. So part of this argument says if America regulates AI, then China will win the race and we'll all be having to speak Chinese and working for Chinese companies and so on.
1: चीन की एआई कहानी सिर्फ रोबोट्स तक सीमित नहीं है। डीपसीक ने चीन की एआई क्षमता को दुनिया के सामने एक नए तरीके से रखा है। अलीबाबा, मूनशॉट एआई, Z.AI जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच एआई की होड़ में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि जीत का पैमाना क्या होगा। अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स मिलना मुश्किल तो हो गया है, लेकिन चीन का जवाब है अगर बाहर से चिप नहीं मिलेगी तो अपनी चिप बनाओ। हुवाई समेत कई चीनी कंपनियां अपने एआई चिप्स और कंप्यूटिंग सिस्टम्स विकसित कर रही हैं। चीन सिर्फ एआई मॉडल नहीं, पूरा एआई इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आज अमेरिका के पास अगर बड़ी बड़ी एआई कंपनियां और डेवलप्ड एआई मॉडल्स हैं, बड़ा निवेश है, तो दूसरी तरफ चीन एआई को आम जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि एआई की ये लड़ाई अब सिर्फ कौन बेहतर मशीन बनाएगा तक सीमित नहीं रही, सवाल ये भी है किसके पास बेहतर और ताकतवर एआई होगा।
0: तो क्या आने वाले दिनों में कोई देश उतना ही ताकतवर माना जाएगा जितनी ताकतवर वहां पर एआई, या जितना विकसित वहां पर एआई? क्या आने वाले दिनों में ऐसा भी संभव है कि दो देशों के बीच युद्ध न होकर कोई संगठन, कोई एजेंसी इतनी मजबूत हो जाए कि वो बाकियों के लिए खतरा रहे? बहुत सारी ऐसी बातें जब होती हैं तो एक सिरे से उन्हें खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगर यह कहा जाता है कि एआई इंसानों को खत्म कर देगा तो क्या इसके कुछ और मायने भी हो सकते हैं?
9: दुनिया इस वक्त कई देशों के बीच युद्ध देख रही है। आज दुनिया की ताकत को टैंक, मिसाइल और परमाणु हथियारों से नापा जा रहा है, लेकिन यह तय है कि आने वाले वक्त में ताकत का एक नया पैमाना तेजी से बदलने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस देश के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली एआई होगा, क्या आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा ताकतवर वही माना जाएगा? इस सवाल का जवाब अभी तय नहीं है, लेकिन दुनिया जिस तेजी से एआई पर निर्भर हो रही है उससे इतना साफ है कि एआई किसी देश की आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत को प्रभावित करने वाला बड़ा फैक्टर बन चुका है।
8: A regulatory aspect to that. So if we are worried about extinction risks from AI systems, those could come from anywhere. And obviously they cross borders. So we need international agreements to make sure that every country has in place the guardrails to make sure that that can't happen.
7: What's very important to understand here is that when we're talking about something as dangerous...
10: Super intelligence ki baat karte hain, to ye koi commercial mudda nahi hai. Ye rashtriya suraksha ka mudda hai. Logon ki zindagi se juda hai. Aur ye kuch companies ke haath mein nahi hona chahiye. Ye sarkar ke haath mein hona chahiye.
7: These should be questions that are in the hand of democratically elected governments.
11: भविष्य के ग्लोबल ग्रोथ तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. AI, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं.
10: लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है, क्या भविष्य की ताकत सिर्फ कुछ देशों के हाथ में रहेगी?
1: आज AI विकसित करने में सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि बड़ी टेक कंपनियां, रिसर्च लैब और निजी संस्थाएं भी अरबों डॉलर लगा रही हैं। ऐसे में भविष्य में ये संभावना भी चर्चा में है कि कोई गैर सरकारी संगठन या टेक कंपनी इतनी बड़ी तकनीकी क्षमता हासिल कर ले कि उसका प्रभाव कई देशों की सीमाओं से आगे निकल जाए. ये अभी सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन AI की खासियत यही है कि इसकी क्षमता सिर्फ एक मशीन तक सीमित नहीं रहेगी.
12: समय आ गया है कि राष्ट्र जो है अपनी नींद से जग जाएं तो अच्छा होगा. अभी राष्ट्र एक अपनी धुन में है कि साहब मैं तो AI के कानून बना चुका हूं या बना रहा हूं और मेरे कानून का पालन तो AI को करना ही पड़ेगा और जाएंगे भी कहां. ये आपको समझना होगा कि साहब AI आपकी राष्ट्र की धरोहर नहीं है. AI ने भूगोल को इतिहास बना दिया है. आज वो एक ग्लोबल पैराडाइम बन चुका है. तो इसलिए आपके राष्ट्रीय कानून एक इंटरनेशनल पैराडाइम को पूरी तरीके से अप्लाई करेंगे भी नहीं, ना ही उसे अंकुश कर पाएंगे. इसलिए आवश्यकता है कि आपके यहाँ आज पूरी दुनिया भर में एक बहुत नई अर्जेंट क्रिटिकल नेसेसिटी है, जरूरत है एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ऑन एजेंटिक AI, AGI एंड सुपर इंटेलिजेंस. इस बात को मैं कई देर से दोहरा रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि साहब जेनरेटिव AI का दौर तो जा चुका है, अब दौर आ गया है एजेंटिक AI का, AGI का और सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है.
1: हर देश AI मॉडल तैयार कर रहा है जो एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंच सके. एक साइबर सिस्टम तैयार कर रहा है जो हजारों कंप्यूटरों को प्रभावित कर सके. हर देश एक ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार कर रहा है जो बहुत कम समय में ऐसे फैसले ले सकता है जिनके लिए इंसानों को घंटों या दिनों की जरूरत पड़े.
13: AI एक टूल है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और वो कैसे एक इंसानी जान ले सकता है अनटिल एंड अनलेस उसके प्रॉम्प्ट्स को आप गलत यूज करें. AI अगर आप देखें तो कई जाने बचाता भी है. आज की डेट में AI चैटबॉट्स जो हैं एक मनोवैज्ञानिक तरीके से डिप्रेशन और बहुत सारी अलग अलग चीजों का में इस्तेमाल हो रहा है उसका. तो जो एक टूल, एक प्रोग्राम जो इंसानी जीव को, इंसानी पूरी जनरेशन को बचाने के लिए लगा हुआ है, वो कैसे एक ऐसा प्रोग्राम जो जान ले सकता है.
1: यही वजह है कि AI को लेकर सुरक्षा की चिंता सिर्फ इस बात पर नहीं है कि मशीन कितनी तेज तर्रार होगी, सवाल ये भी है कि उस क्षमता का इस्तेमाल कौन करेगा, किस उद्देश्य से करेगा और उस पर नियंत्रण किसका होगा. और जब कहा जाता है कि AI इंसानों को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब सिर्फ किसी फिल्म की तरह मशीनों का इंसानों पर हमला करना नहीं है, इसके कई दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं. AI बड़े पैमाने पर नौकरियों के स्वरूप को बदल सकता है, गलत सूचना को बेहद तेजी से फैला सकता है, साइबर हमलों को ज्यादा प्रभावी बना सकता है.
8: Question that has come to the front of people's attention in the last few days is AI going to kill us all? To put it bluntly, how would that happen? So the simple answer is that intelligence is what gives us power over the world and all the other species on Earth. And if we make something more intelligent than us, then it's going to be more powerful than us. And it's going to be hard for us to retain power forever over something that's much more powerful than we are.
1: इसलिए सवाल शायद ये नहीं है कि AI इंसानों को खत्म करेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि इंसान AI को किस हद तक नियंत्रित रख पाएगा.
0: जब हम इंसानी इतिहास की बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनके बिना इंसानी जीवन की कल्पना भी आज नहीं की जा सकती। लेकिन एआई क्या इंसानों का सबसे ताकतवर आविष्कार माना जा सकता है? क्या इतना ताकतवर कि इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाए, या फिर इतना ताकतवर कि इंसानों की ताकत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दे?
1: इंसान ने जब पहली बार पहिया बनाया होगा तब उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये छोटा सा गोल पहिया एक दिन पूरी सभ्यता की रफ्तार बदल देगा। फिर आग पर काबू पाया, बिजली को साधा, भाप की ताकत को मशीन में बदला, प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाया और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन अब सवाल उस तकनीक का है जो सिर्फ इंसान के हाथों की ताकत नहीं बढ़ा रही बल्कि उसके दिमाग की क्षमता को भी मशीन के साथ जोड़ रही है। दवा की खोज से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक, जानकारियों से लेकर वैज्ञानिक खोज तक, एआई अब जिस तरह काम कर रहा है उसके बाद सवाल ये है कि एआई की सीमाएं क्या हैं? एआई पर आखिर नियंत्रण किसका रहेगा? ये सवाल भी इसलिए क्योंकि हर आविष्कार के साइड इफेक्ट तो रहे ही हैं। आग की खोज ने सभ्यता का विकास किया तो विनाश भी किया, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई तो न्यूक्लियर वेपन भी दिए, इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा तो गलत सूचनाओं का जरिया भी बना। जहां यह भी सवाल उठता है कि एआई कहां तक जाएगा, इंसानों की बुद्धि और ज्ञान को विकसित करेगा या एआई की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। हालांकि हर आविष्कार के साथ चुनौतियां तो रही ही हैं और इंसानों ने अपने ही दिमाग से उनसे निपटा भी है। एआई का भविष्य भी इस पर निर्भर करेगा कि इंसान आने वाले समय में इसे और कैसे विकसित और नियंत्रित करते हैं।
0: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
17: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
17: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
19: एक तो एक
20: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
5: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है।
1: एमपी के इंदौर में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी पर बात की और छात्रों के सवाल पूछने की आदत को मौजूदा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
0: सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है।
1: छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सवाल किया कि आखिर स्कूल कॉलेजों की हालत खराब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश में शिक्षा व्यवस्था का बजट लगातार क्यों घटाया जा रहा है।
0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है।
1: इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को छात्रों के मुद्दे की समझ ही नहीं।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
2: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद से सभी पार्टियां लगातार छात्रों को साधने में लगी हैं। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस अभियान की कड़ी है, जिसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ती रही है। अब इंदौर के कार्यक्रम के बाद भी वार पलटवार तेज हो गया है। इंदौर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं और जो श्रेष्ठ नेता हैं उनका भी अपमान करते हैं, जो श्रेष्ठ हमारे इस देश के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उनका भी वो अपमान करते हैं।
5: भारतीय जनमानस में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, और जब भी जो उनके उस छवि को खंडित करने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करे तो फिर उसे जनता कतई स्वीकार नहीं करती है, और ये सेल्फ गोल अनेक अवसरों पर राहुल जी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े अभियान, खुद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की हवा निकालने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं है।

0: खराब ना भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, समाजवादी पार्टी का पलटवार, तो ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट बरामद।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। इस देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दूसरा मामला हो, इस देश की जितनी भी अदालतें हैं, कायदे से तीन ही अदालत होती है, एक लोअर कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, तो इन तीनों ही अदालतों ने, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस शख्स को 13 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में 13 फांसी की सजा सुनाई, 13, एक दो नहीं, मतलब एक से भी बच जाए तो 12 बाकी है, 12 में भी हो जाए तो एक में भी फांसी हो सकती है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने 13 फांसी की सजा पर मुहर भी लगा दी, बचने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर 2015 में एक ऐसा वक्त आया जब वो डासना मसूरी जेल में बंद था और अचानक डेथ वारंट जारी हो गया, कहा गया कि बाकी मुकदमे का फैसला होता रहेगा, अब इतने मुकदमे में तो उसको फांसी हो गई तो फांसी पर टांग देते हैं। पर डासना मसूरी में फांसी देने का इंतजाम नहीं है, फांसीगर है नहीं, तो डेथ वारंट मजिस्ट्रेट के साइन होते ही आनन फानन में रात को ही उसे जेल से निकाला गया और सीधे मेरठ सेंट्रल जेल ले जाया गया, क्योंकि मेरठ में फांसी देने का इंतजाम है। अब रात में वहां जल्लाद भी तैयार, फांसी भी तैयार, फांसी के तख्ते को भी ठीक कर लिया गया, बस कुछ देर के बाद उसे फांसी होनी थी। इतने में कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और कुछ वकीलों को पता चला और वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक उनकी गुहार पहुंची, चीफ जस्टिस तक उनकी बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां जलाई गई और फिर रात को सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे। इसके बाद उनके सामने केस रखा गया, फिर अदालत ने फैसला सुनाया, नहीं उसको फांसी नहीं दे सकते, अभी रोक दो, अभी कुछ और मुकदमे का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से फोन गया मेरठ जेल के जेलर को, जेलर ने कहा कि हम फोन पर ऐसी बातें नहीं मानेंगे, हमें रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अब दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की उस जेल तक पहुंचने में करीब करीब घंटा भर तो लगता, तब वो उस वक्त नया मेरठ एक्सप्रेसवे भी शुरू नहीं हुआ था। अब ये था कि अगर एक घंटे से पहले नहीं पहुंचे तो उधर फांसी का फंदा तैयार है, डेथ वारंट साइन हो चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ही रजिस्ट्रार से कहलवाया गया कि हम आपको फैक्स भेज रहे हैं, बाकी जो दस्ती ऑर्डर है वो एक अफसर लेकर पहुंचेंगे। भागते हुए वो अफसर मेरठ जेल पहुंचा, जेलर को पेपर दिखाया और उसकी फांसी रोक दी गई। उसकी और उसकी मौत में उस रात सिर्फ चंद मिनट का फासला था, चंद मिनट के अंदर उसे फांसी हो जाती। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि धीरे धीरे हर मुकदमे से वो बरी होता गया। 13 के 13 फांसी की सजा जो उसे मिली, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, सबने सबूतों के अभाव में उसकी फांसी की सजा रद्द की और आखिरकार पिछले साल यानी 2025 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुरेंद्र कोहली यानी के निठारी के 13 बच्चों के कातिल या आरोपी कहे कि सभी फांसी की सजा को रद्द कर दी और उसे बरी कर दिया। अब सुरेंद्र कोहली एक आजाद शख्स था, देश की सबसे बड़ी अदालत ने बरी कर दिया, हर जुर्म से आजाद हो चुका था, अब वो कहीं भी रह सकता था, कहीं भी जा सकता था। ये देश के इतिहास में पहली बार था कि 13 फांसी की सजा पाने के बावजूद एक शख्स कानून से आजाद हो गया, कानून उसे कभी फांसी नहीं दे पाया। लेकिन किस्मत का पहिया फिर घूमा और किस्मत का खेल देखिए कि जेल से आजादी के 10 महीने और 5 दिन के बाद 18 सितंबर फ्राइडे शुक्रवार जिस सुरेंद्र कोहली को कानून फांसी नहीं दे पाया, उस सुरेंद्र कोहली ने खुद फांसी का फंदा तैयार किया, अपने गले में डाला और मर गया। इसे आप क्या कहेंगे? इस वक्त वो कोई आरोपी भी नहीं है, निठारी कांड का गुनहगार भी नहीं है, क्योंकि अदालत कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। लेकिन 18 साल 11 महीने तक जेल में रहने के बावजूद, 3-3 अदालतों के तमाम मुकदमे के बावजूद, 13 फांसी मिलने के बावजूद, जब कानून उसे फांसी नहीं दे पाया तो आखिर में अंजाम ये कि सुरेंद्र कोहली आज मर गया और खुद उसने अपने हाथों से फंदा पहना। हरिद्वार में हर की पौड़ी बहुत मशहूर जगह है, वहां से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चाय की दुकान है, छोटी सी, यही वो चाय की दुकान है। एक शख्स जिसका नाम धर्मेंद्र कौशिक है, उसी ने 3 दिन पहले चाय की ये दुकान सुरेंद्र कोहली को दिलाई किराए पर। लेकिन धर्मेंद्र कौशिक को पता नहीं था कि सुरेंद्र कोहली कौन है, क्योंकि सुरेंद्र कोहली ने उसे अपना नाम बताया था, सगाराम। सगाराम के नाम से वो धर्मेंद्र कौशिक से मिला, उसने कहा मैं परेशान हूं, पैसे नहीं है, एक छोटी मोटी चाय की दुकान चला लूंगा, जिंदगी ठीक हो जाएगी। चूंकि सगाराम की सिफारिश धर्मेंद्र कौशिक से उसके एक परिचित ने की थी, 3 महीने पहले तक सुरेंद्र कोहली इसी उत्तराखंड के सिटकुल में एक फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम कर रहा था, शायद गार्ड के तौर पर। वहीं उसने कहा कि अब मुझे यहां से कहीं बाहर निकलना है। फिर धर्मेंद्र कौशिक तक बात पहुंची और धर्मेंद्र कौशिक ने उसे 3 दिन पहले चाय की यह दुकान दिलाई। वही धर्मेंद्र कौशिक जब आज सुबह उस चाय की दुकान के बाहर पहुंचा तो देखा कि चाय की दुकान बंद है, किसी एक परिचित ने चाय पीनी थी। उसने कहा एक सेकंड, पूछता हूँ चाचा कहाँ है। चाचा वो सुरेंद्र कोहली के लिए कह रहा था। फिर उसने शटर पे हाथ मारा, शटर खुल गया। अंदर का मंजर भयानक था, फर्श पर एक शख्स की लाश पड़ी थी, गले में फंदा था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आई। पहले मैं चाहता हूं अब धर्मेंद्र कौशिक को सुनिए, जिसने ये चाय की दुकान दिलाई और जिसे पता ही नहीं था कि सगाराम असल में है कौन।
2: ये सगाराम जी पहले रोशनाबाद में रहते थे, तो हमारे मित्र हैं, तो इनके द्वारा मैंने जाना था। तो एक रोन लगे गान लगे कि भाई मुझे काम दिवा दो, कोई अपना काम कर लूं मैं, और मैं शुगर पेशेंट हुई हूँ, तो मैंने ये दुकान खुद मैंने दिवाई थी। मैं और 3 दिन हुए आए हुए, अब सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय। तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांस लग पड़े थे।
1: अब धर्मेंद्र कौशिक के फोन पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जाकर उन्होंने देखा एक दुकान में एक लाश है, उन्होंने भी इसे एक आम केस माना, लाश को कब्जे में लिया, अस्पताल भेज दिया। अब उस दुकान की तलाशी ली गई, पहली नजर में ये मामला था कि उसने अपने गले में फंदा डाला, उसने अपनी जान दी। लेकिन फिर उसी शॉप से एक आधार कार्ड मिला, जब उस कार्ड पर पुलिस की नजर पड़ी तो पुलिस वाले हैरान, उस कार्ड पर नाम लिखा था सुरेंद्र कोहली और पता था वही कुख्यात D5 कोठी निठारी नोएडा। यह है वो कार्ड जो सुरेंद्र कोहली की लाश के करीब से मिला। अब तक एक आम केस को मानकर हरिद्वार पुलिस जो जांच कर रही थी, जैसे ही पता चला कि एक आधार कार्ड मिला है लाश के साथ और उस पर यह नाम है, फौरन पुलिस वालों ने अपने सीनियर अफसरों को फोन किया, भागते हुए वो क्राइम सीन पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने क्या कहा आप सुनिए।
3: एक व्यक्ति यहाँ 3 दिन पहले ही चाय की दुकान चला रहा था, तो आज जब सवेरे जिसने उसको चाय की दुकान यहाँ किराए पे दिलाई थी, वो सदाराम नाम थे अपने को बताया उसने, तो जब ये वो आया होगा तो ये देखा कि फांसी लगाए हुए है, तो पुलिस को सूचना दी, मौके पे पुलिस आई है, तो ये जानकारी हुई है। जब उसकी जेब से जो है वो सुरेंद्र कोहली नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। जो ये पता चला है कि जो निठारी कांड हुआ था उसमें ये अभियुक्त था।
1: सुरेंद्र कोहली को कौन नहीं जानता, शायद देश का बच्चा बच्चा जानता होगा। तो जब पुलिस ने देखा कि इस पर नाम लिखा है सुरेंद्र कोहली और पता वही D5 निठारी, तो फिर शक की गुंजाइश रही नहीं। इसीलिए अब पुलिस ने फौरन एहतियात बरती, डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया कि कहीं इस मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। निठारी में बहुत सारे दुश्मन हैं सुरेंद्र कोहली के, बल्कि निठारी क्या, उसको तो डर ये भी था कि अगर उसकी असलियत या उसका असली नाम पता चले तो लोग शायद गुस्से में मार दें। इसीलिए वो दर दर भटक रहा था और उसने अपना असली नाम, अपनी असली पहचान बदल रखी थी। सगा राम के नाम से हरिद्वार पहुंचा था और आखिर में सुरेंद्र कोहली का सच सामने आया, उसकी मौत हुई। अब सवाल यह है कि सुरेंद्र कोहली, जिसने 18 साल 11 महीने तक देश की तीनों अदालतों में अपना मुकदमा लड़ा, एक बार फांसी के तख्ते तक पहुंचते ही लौट आया, तो अगर उसे यह कदम उठाना था तो जेल या फिर पुलिस, जब हर तरफ से यह था कि वो आदमखोर है, गुनहगार है, अब क्यों?

नोएडा के अलावा निठारी के अलावा, लेकिन वहां जाने का मतलब था जान देना, लोग मार डालेंगे। तो वो फिर अपने इलाके पहुंचा उत्तराखंड, क्योंकि वहीं के अल्मोड़ा का रहने वाला था, उसकी पत्नी भी है बच्चे भी हैं। लेकिन वहां उन लोगों ने भी उसे अपनाया नहीं, क्योंकि पीछे तोहमत ऐसी थी, पत्नी तो खैर बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। तो फिर वो वहां से निकला, अब साथ में उसका चेहरा भी था अखबार में, टीवी में, हर तरफ हर जगह लोग जानते हैं। किसी तरह उसने अपने चेहरे का थोड़ा बहुत बाल या मूछों के जरिए जो हुलिया बदलने की कोशिश की। अब कहीं नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि सुरेंद्र कोहली का नाम बताएं आप, कौन नौकरी देगा। तो उसने अपना नाम बदल बदल कर नौकरी की, पर आजकल हर जगह आईडी कार्ड मांगते हैं, आधार मांगते हैं, तो कई जगह तो उसको सिर्फ कार्ड की वजह से नौकरी नहीं मिली। फिर एक छोटी छोटी जगहों पर वो घूम रहा था, क्योंकि उसे पता था बड़े इलाके में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मतलब लोगों की नज़र में पकड़े जाएंगे, कानून की नज़र से तो और कानून की फैसलों से तो वो बरी हो चुका था। तो फिर वो सिडकुल पहुंचा, वहाँ कुछ वक्त गुजारे, कुछ वक्त कहीं और गुजारा, फिर हरिद्वार आया और अब इस चाय की दुकान को 3 दिन पहले खोला था। डायबिटीज़ का पेशेंट था वो, उसकी वजह से भी परेशान था, परिवार का कोई साथ नहीं था, कोई सगा, कोई दोस्त नहीं। फिर उसे एहसास हो गया इन 10 महीनों में कि जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, क्योंकि अभी भी मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा और तोहमत, मैं उसे निठारी का गुनहगार अब नहीं कह सकता, ना आरोपी कह सकता हूँ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे बरी कर दिया है, तो एक आज़ाद नागरिक है। लेकिन उसे लगा कि जब 10 महीने और 5 दिन पहले वो जेल से बाहर निकला, उसके बाद समाज, सोसाइटी सब बदल गया, कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं, और शायद कोई अपनाता भी नहीं। जिस शख्स के बारे में शुरू से है कि बच्चों को मारता था, बच्चों के साथ गलत हरकतें करता, बच्चों को मारने के बाद कुकर में पकाने तक की बात आ गई, आदमखोर तक कहलाने की बात आ गई, तो फिर कौन अपनाएगा। आप आम लोगों की छोड़िए, मुझे आज भी याद है 2006 में जब ये निठारी कांड का खुलासा हुआ और पहली बार सुरेंद्र कोहली को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, और जब उससे पूछताछ हो रही थी तो पूरी मीडिया सिर्फ एक झलक उसका देखने के लिए वहां भीड़ लगा कर रखती थी। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीता और उसके बाद ये खबरें आनी शुरू हुई कि आदमखोर भी था, नजरिया ही बदल गया। उस वक्त के जो SHO या बीट अफसर या बाकी पुलिस वाले जितने जानने वाले थे, मैंने जब उनसे बात की तो उनके चेहरे पर एक दहशत थी। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जिस कमरे में हम इसको रखते हैं पूछताछ के लिए, उस कमरे में कोई भी अकेला पुलिस वाला जाने की हिम्मत ही नहीं करता, रात छोड़िए दिन में नहीं जाता। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा उसको देख के डर लगता है, ये आदमखोर है। उन्होंने ये तक कहा कि कई पुलिस वाले तो सिर्फ उसके दांत को देख के डर जाते थे कि इसके दांत है, ये आदमखोर है, कहीं हमें ना खा जाए। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं, उसकी दहशत। तो फिर कौन समाज अपनाता? कई बार कुछ सजाएं सजा से बड़ी होती है, जो शायद जेल में रहकर उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन 10 महीने की आजाद जिंदगी में उसे एहसास करा दिया इस समाज ने। तो खैर, सुरेंद्र कोहली की मौत के साथ निठारी का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ये पूरा केस जो है 2006, यही वो तारीख थी, बल्कि 12 मई 2006 जब पहली बार निठारी कांड का खुलासा हुआ था। और निठारी कांड के इस खुलासे के बाद 29 दिसंबर 2006 की तारीख थी जिस दिन पहली बार सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया था, 29 दिसंबर 2006। उससे पूछताछ के बाद फिर D5 कोठी के जो ओनर हैं मनिंदर सिंह पंडेर, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर तब नोएडा पुलिस ने कुल 16 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, 16 चार्जशीट दाखिल की गई, 16 बच्चों के कत्ल का इल्जाम हुआ। लेकिन बाद में ये केस नोएडा पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई। CBI ने अपनी चार्जशीट दाखिल की 16 ही बच्चों के कत्ल के मामले में। इसके बाद CBI की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई, लेकिन CBI की कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, इन 16 में से 3 मामले ऐसे थे जिनमें CBI की कोर्ट यानी लोअर कोर्ट ने मुलिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली तीनों को बरी कर दिया। तो अब 16 में से 3 केस में दोनों बरी हो चुके थे, तो बचा 13 केस। अब इन 13 केस पे फैसला होना था। लोअर कोर्ट ने 13 केस में से 13 के 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को

0: है मौत सुना दी, फांसी की सजा। सुरेंद्र कोहली ने इस फैसले को बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और फिर एक मामले में उसे उम्र कैद की सजा दे दी और 12 मामलों में फांसी की सजा। फिर से उसने हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद जो 12 मामलों में फांसी की सजा दी थी सुरेंद्र कोहली को, उन 12 के 12 मामलों में फांसी की सजा को रद्द कर दिया। अब सुरेंद्र कोहली के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, सिर्फ एक था उम्र कैद का। सुरेंद्र कोहली ने उस उम्र कैद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस उम्र कैद के फैसले पर सुनवाई रखी। इसके साथ ही उधर सीबीआई की टीम पहुंच गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 फांसी के जो सजा सुनाई थी सुरेंद्र कोहली को, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही माना, कहा कोई सबूत नहीं है, और उन 12 के 12 मामलों में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। अब सुरेंद्र कोहली और उसकी रिहाई के बीच में सिर्फ एक मुकदमा था और वो था उम्र कैद वाला मुकदमा। 11 नवंबर 2025, यही वो तारीख थी जब निठारी के इस आखिरी केस, इस आखिरी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुरेंद्र कोहली के हक में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद सुरेंद्र कोहली लक्सर जेल से बाहर आता है, नोएडा में जो है। जिन वकीलों ने उसके मुकदमे की पैरवी की उन्हीं के साथ, उन वकीलों ने उसे अगले कुछ दिनों तक अपने पास रखा छुपाकर, मीडिया से, मीडिया के कैमरों से, निठारी के लोगों से, क्योंकि जान का खतरा था। तब तक हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जो उनके वकील थे उनसे मेरी बात भी कई बार हुई। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर वो मीडिया में आता है तो उसकी जान को खतरा है और कहीं लोग पहचान गए तो शायद उसे मार डालेंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, जब मामला ठंडा होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। आपको याद होगा मुनिंदर सिंह पंडेर निठारी कांड के दूसरे आरोपी, उनसे मैंने बात की थी, वो भी बरी हो गए थे, और इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ क्राइम तक के इस स्टूडियो में, तब मैंने उनसे 18 नवंबर 2025 को बात की थी। तो मुझे लगा चलो इंतज़ार करते हैं, सुरेंद्र कोहली से भी कभी ना कभी इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन रिहाई के 10 महीने और 5 दिन बाद इंटरव्यू तो नहीं, आज सुरेंद्र कोहली की मौत की खबर आई। तो कुल मिलाकर निठारी कांड का सच ये है कि इसके दो ही आरोपी थे, एक मुनिंदर सिंह पंडेर यानी D5 कोठी के मालिक और दूसरा सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली आरोपी नंबर 1 था, क्योंकि मुनिंदर सिंह पंडेर को 13 मामलों में फांसी की सजा नहीं हुई थी, उनको शायद सिर्फ 3 मामलों में हुई थी, लेकिन दोनों को बरी कर दिया गया, दोनों आजाद हैं। मुनिंदर सिंह पंडेर भी आजाद हैं और सुरेंद्र कोहली तो अब जिंदगी से भी आजाद हो चुका है। जब मुनिंदर सिंह पंडेर यहां आए थे तब मैंने सुरेंद्र कोहली को लेकर उनसे सवाल पूछा था कि सुरेंद्र कोहली से उनकी मुलाकात पहली बार कब हुई, कैसे हुई, कैसे उन्होंने उसे अपने घर पर काम करने के लिए रखा, और क्या निठारी कांड में जो कुछ हुआ उन्हें लगता है कि सुरेंद्र कोहली उनमें शामिल था, सुरेंद्र कोहली का बिहेवियर क्या था, ये सारे सवाल पूछे थे। सुरेंद्र कोहली से रिलेटेड जितने भी जवाब मुनिंदर सिंह पंडेर ने दिए, क्योंकि वो उसी कोठी के ओनर थे और कोहली के भी, वो सवाल जवाब मैं चाहता हूँ आपको सुना, तो उसे भी सुनिए। सुरेंद्र कोहली से कैसे मुलाकात हुई?
1: जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने ये कोठी हमारे को दिलवाई, ये उनके पास काम करता था।
0: तो 2004 में ही सुरेंद्र कोहली को आपने अपने घर पर रखा?
1: जी हाँ।
0: 2004 से 2006 अगले 2 सालों में कभी आपने सुरेंद्र कोहली के बिहेवियर, उसके बर्ताव के बारे में कुछ अजीब चीज़ देखी कभी?
1: बिल्कुल नहीं।
0: फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ कोहली रहता था उस वक्त कभी मौका मिला, इत्तफाक हुआ कि जाकर देखूं यहाँ?
1: नहीं, मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम गया था ऊपर, उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी किचन में भी नहीं जाता था, सही पूछो तो, मैंने क्या करना वहाँ पे।
0: तो आप रात को अगर वो बाहर जाता था तो आपने कभी पूछा नहीं क्यों रात को?
1: नहीं, मैं नहीं पूछता, मैं मतलब ही नहीं, क्या पूछ, किस चीज़ को पूछूं?
0: घर में आपके कभी पॉलिथीन या इस तरह की चीजें आपने एक्सेस पाया?
1: नहीं, मेरे तो जो कनक राइस वगैरह बैग्स वगैरह आते होते थे पॉलिथीन के, वो आते थे।
2: इन सारी चीजों के होने के बावजूद आपने कभी ये महसूस किया कि सुरेंद्र कोहली मतलब किस तरह का इंसान है, चूंकि आपने उसको रखा था काम पर?
1: मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगा, तो अगर अच्छा ना होता तो मैं रखता ही ना, सीधी सी बात है।
2: पहली बार आपको क्या पता चला सुरेंद्र कोहली के बारे में?
1: वो तो पहले तो लिंक उसका जो बनाया गया था वो तो पायल के साथ बनाया गया
2: जी,
1: था।
2: बिल्कुल।
1: तो बच्चों वाली तो कोई कहानी थी नहीं, बच्चों वाली कहानी जो मेरी अपना जहन में आया वो तो सुबह अपना 29 तारीख को आया।
2: पायल का जब फोन मिला था तो कहते हैं कि शायद उसका सिम या कुछ सुरेंद्र कोहली का था उसमें।
1: यस।
0: तो ये मुनिंदर सिंह पुंडेर थे जिन्होंने सुरेंद्र कोहली के बारे में उस वक्त सारी बातें बताई। अब कायदे से निठारी केस का चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया, मेन आरोपी मारा गया, दूसरा कानून से बरी हो चुका है, लेकिन एक सवाल अब भी अपने आप में छोड़ गया है कि 2006 में जो 13 बच्चे, जो कि FIR 13 का है, 13 बच्चों का कत्ल हुआ जिनके कंकाल D5 कोठी के पीछे से नाले से उगले गए, उन 13 बच्चों का फिर कातिल कौन है? अगर कोहली नहीं, अगर पंडेर नहीं, तो फिर किसने मारा? पर क्या इस सवाल का जवाब कभी मिल पाएगा? मुझे लगता है शायद नहीं। तो इसके साथ ही कहानी में
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
3: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
4: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
3: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
5: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
3: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
4: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
3: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
4: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था। और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
3: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
2: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सरी के बैन को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बैन। उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, समाजवादी पार्टी का पलटवार, तो ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक 4 को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट बरामद।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है और जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन्स दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पैलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं जिसमें उन्होंने उन्हें बताया है कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खारकीव, कीव और ओडिशा में जबरदस्त बमबारी की गई और साथ ही मठों पर भी हमला हुआ है। इन हमलों के बाद यूक्रेन के शहरों में बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं।

यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के शहरों में रूस मचा रहा है तबाही।

यूक्रेन के कीव, खेरसान और ओडेशा में जबरदस्त हमले। रूस के हमले से यूक्रेन के शहरों में हड़कंप। रूस ने यूक्रेन के मठों पर बरसाए बम। जी हाँ, एक तरफ यूक्रेन मॉस्को में बारूदी हमला कर रहा है तो दूसरी ओर रूस भी पीछे नहीं है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है।

0: देखिए ये तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। तस्वीरों में लिखा गया है रशियन टेरर। ये कीव क्षेत्र की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रूस ने कीव में तबाही मचाई है। कीव में ये आग की लपटें बता रही हैं कि हमला कितना भयानक रहा होगा। आगे की तस्वीरें देखिए। जेलेंस्की ने कीव में पूरे हफ्ते हुए रूसी हमले की तस्वीरें शेयर की हैं। देखिए कीव की इमारतों को किस तरह नुकसान पहुंचा है। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कीव के बाद ओडेशा की तस्वीरें देखिए। रूसी हमले के बाद यहां यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओडेशा में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। देखिए किस कदर बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है। ओडेशा के बाद सुमी की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी जमकर बम बरसे हैं। इतनी भयानक तस्वीरें कि चारों ओर आग ही आग दिख रही है। सुरक्षा कर्मी आग बुझा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। सुमी में भी इमारतों पर मिसाइलें बरसी हैं। ये टूटी फूटी इमारतें गवाही दे रही हैं कि हमला कितना खतरनाक था। डोनेत्सक की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी वही बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी तरह खार्किव में भी रूस ने तबाही मचाई है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा कि हम हर दिन और हर रात रूसी हमलों से अपना बचाव करते हैं। कल खेरसौन इलाके में रूसियों ने एक मठ पर FPV ड्रोन से हमला किया। दुख की बात है कि मठ के पादरियों में से एक की मौत हो गई है और चार अन्य घायल हो गए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। खार्किव, सुमी और ओडेशा इलाकों में अहम और आम लोगों के बुनियादी ढांचे पर हमले हुए। निप्रो और ज़ापोरिज़िया इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। शाम में विनित्सिया, कीव, ज़ाइटोमिर और चेकार्सी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। जेलेंस्की ने बताया कि अकेले इस हफ्ते में ही रूस ने हम पर 2000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं, जिनमें से ज्यादातर जेट पावर्ड थे। 1700 हवाई बम और अलग अलग तरह की 19 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन लगातार अपना बचाव करने और इन जानलेवा हमलों का जवाब देने के तरीके ढूंढ रहा है, साथ ही अपने सहयोगी देशों से मदद मांग रहा है। लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग फिर से जोरदार हो गई है। आज तक ब्यूरो।
1: रूस और यूक्रेन की लड़ाई एक बार फिर से जोर पकड़ रही, तो दूसरी तरफ हूथियों ने सऊदी अरब के नाक में दम किया हुआ है। वहीं ईरान ने अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखकर महायुद्ध को एक नया मोड़ दिया है। कतर के जरिए रखी गई इन शर्तों को अगर अमेरिका ने मान लिया तो उसकी हार से कम कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं माना तो ईरान ने नतीजे भुगत लेने की धमकी दी है।

0: भूति हो रहे बेलगाम, कैसे निकलेगा समाधान? सऊदी अरब के साथ बढ़ रहा घमासान, ट्रंप के सामने 7 शर्तें रख आक्रामक हुआ ईरान, ईरान की शर्तों से मचेगा कोहराम या आएगा पीस प्लान? एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन बम बरसा रहे हैं तो दूसरी ओर बातों के बम ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अपनी 7 शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई के मुताबिक कतर ने तेहरान की शर्तों को अमेरिका तक पहुंचा दिया है और अब ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार कर रहा है।
1: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة لقد أبلغناهما بشروطنا والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها أي أن ينفذوها فلا يحق لنا استهداف تلك القاعدة نعم نحن لم نهاجم لقد أعلننا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمد
0: ईरान ने जिन शर्तों को रखा है उनमें हर मोर्चे पर चल रही जंग को रोकना, ईरान की फ्रीज संपत्ति को मुक्त करना और समुद्री नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। ईरान ने महज कतर के जरिए अपनी शर्तें ही नहीं रखी बल्कि अमेरिका को धमकी भी दे डाली है। उसने साफ साफ कहा है कि उसकी मांगे नहीं मानी गई तो अमेरिका निर्णायक जंग के लिए तैयार रहे। अब हर किसी की नजर ट्रंप पर टिक गई है। उधर सऊदी अरब और हुतियों का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक हो रहे हमलों ने कोहराम मचा रखा है। हूती रुकने को तैयार नहीं है और सऊदी अरब किसी भी कीमत पर यमन के आसपास की नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा। ऐसे हालात में घमासान के और बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान जहां सऊदी के साथ एकजुटता की सिर्फ बात कर रहा है, वही तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो हर तरह से सऊदी अरब का साथ देने के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो।
2: इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर हूती अचानक आक्रामक कैसे होते जा रहे हैं और उनकी मदद कौन कर रहा है? दरअसल हवा, जमीन और समंदर में ऐसे कई रूट्स हूतियों ने और तलाश लिए हैं जिससे सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो आपको ऐसे ही रूट की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी।
3: आप ओवरऑल यानी पूरी तरीके से अगर आप देखें तो इस रूट को आप देख के समझ आएंगे कि आखिरकार कैसे शिप की मदद से, लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से और फ्लाइट की मदद से कैसे लगातार 3 अलग अलग रास्तों से यह सजो सामान पहुंचाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि पहले बंदर अब्बास से इस तरीके से छोटी बोट से लगातार पहुंचाया जा सकता है अरब सागर की तरफ से, लेकिन अब एक और रूट तैयार किया गया वो था बंदर अब्बास या यहां के वहां ओमान पहुंचाया जाता है बोट की मदद से और इन्हीं बोट से फिर आगे जो छोटे छोटे ट्रक्स हैं या फिर उनकी गाड़ियां हैं उनसे ये धीरे धीरे सामान यमन तक पहुंच जाता है। ये आप समझिए ये एक ऐसा रूट है जिस पर ना तो अमेरिका का कंट्रोल हो पाया ना इसराइल का कंट्रोल हो पाया और ये इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स को, बड़े पार्ट्स को नहीं भेजते, वो उनको डीअसेंबल कर उनको फिर यहां भेजा जाता और फिर ये ट्रेनिंग लगातार हूतियों को दी गई है कि वो इनको असेंबल कर अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल कर सके। यहां तक कि उनके कई ऐसे जो ड्रोन है जिनकी जो उनकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है, यानी हूतियों ने कई बार ऐसा भी देखा कि उन हूतियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और वो सीधे इजराइल तक पहुंच चुके। यही वजह है कि सऊदी अरब को ज्यादा खतरा इस समय महसूस हो रहा है। फिर अगर आप दूसरा रूट देखें, हमने आपको बताया कि सीरिया, ये देखिए ये है ऊपर सीरिया, जहां से लगातार सीरिया से या तो फ्लाई कर या फिर वहां से भी धीरे धीरे छोटा छोटा बोट की मदद से लाल सागर से सामान हूतियों तक पहुंचाया जाता है। फिर हमने आपको बताया सोमालिया की तरफ से, जिबूती की तरफ से भी सामान पहुंचाया जाता है और यह प्रक्रिया 2023 के बाद से ज्यादा अपनाई गई क्योंकि हूतियों को लगातार ईरान मदद कर रहा था। हूती को ना सिर्फ हूती बल्कि हिजबुल्ला को नई खेप पहुंचाई गई है जिससे लगातार वो बड़े अटैक कर रहा है साउथ नॉर्थ ऑफ इसराइल के अंदर और वहीं जो हूती है वो सऊदी के साथ साथ अब बाकी देशों के लिए भी बड़ा खतरा यहां पर बन गया। आपको हमने इसलिए समझाया ताकि आप समझ सकें, आप ये जान सकें कि आखिरकार जब ईरान अमेरिका के इतने बड़े बड़े शिप वहां पर गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है तो आखिरकार हूतियों पर ये साजो सामान कैसे पहुंच पा रहा है।
2: उसका बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हूथियों ने बाब अल मंदेब से तेल की सप्लाई में अड़चन डालनी शुरू कर दी है। उधर रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी अटैक जारी है। नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया भर में सप्लाई कम हो रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं।

0: पश्चिम एशिया के अखाड़े में ईरान अमेरिका के बीच 7 महीने पहले छिड़ी लड़ाई ने दुनिया की 2 ऊर्जा धमनियों में जो ब्लॉकेट लगाया है उसके झटके लगभग हर घर में महसूस हो रहे हैं। संकट और गहरा गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अब अदन की खाड़ी में मौजूद बाबल मंदब के संकरे गलियारे को भी चोक कर दिया है। यानी पहले जो 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित थी वो सऊदी अरब और हुतियों की लड़ाई से अब बढ़कर 30% तक हो गया है। जाहिर है दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई के बाधित होने ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। जाहिर है इस संकट की आंच भारत तक भी पहुंच रही है क्योंकि भारतीय निर्यात का कुल 20% हिस्सा उसी बाबल मंदब से होकर गुजरता है जो आगे स्वेज नहर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचती है। मौजूदा संकट अगर नहीं सुलझा तो जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे में मुंबई से रॉटरडैम की दूरी 15,700 किलोमीटर से बढ़कर 23,000 किलोमीटर हो जाती है। जाहिर है यह न केवल खर्चीला है बल्कि निर्यात में मुनाफे का मार्जिन कम करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक क्यों हुतियों ने सऊदी अरब पर हमले तेज किए? क्या ये ईरान का काउंटर प्लान है? आने वाली सर्दी से पहले ऊर्जा ऑर्डर और क्रिसमस कारोबार से पहले दबाव वाला दांव, क्या ये लड़ाई को और लंबा खींचेगा? इसके जवाब में 3 रास्ते नजर आते हैं। सऊदी अरब यहीं थम जाए और हुतियों की कार्रवाई पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा ले तो टकराव फिलहाल काबू में रह सकता है, लेकिन अगर अगला निशाना यानबू जैसे बड़े ठिकानों तक पहुंचे और ड्रोन मक्का तक और मिसाइलें रियाद तक पहुंच रही हों तो अब ये विकल्प नहीं बचता। वहीं बातचीत की मेज पर हुतियों के आगे सरेंडर सऊद अरब की सल्तनत के लिए सरेंडर से कम नहीं होगा। ऐसे में स्थिति उस मोड़ पर जाती है जहां अमेरिका और पश्चिमी ताकतें ऑयल आउट ऑपरेशन चलाकर हुतियों की ताकत को यमन के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाके तक ही समेट दे। प्रणय उपाध्याय, आज तक।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नवी मुंबई के दीघा से बड़ी खबर, दीघा एरिया में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। लकड़ी के सामान की वजह से आग बताया जा रहा कि तेजी से फैली है और फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। जो तस्वीरें वहां से आ रहे हैं और जो धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जो आग की लपटें दिखाई दे रहे हैं, वो विचलित करने वाली हैं, डराने वाली हैं। और इस आग को देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हुए। नवी मुंबई की तस्वीरें हैं, फर्नीचर गोदाम है तो भीतर फर्नीचर था, तो इस वजह से जब आग फैली तो आग तेजी से फैलती चली गई और एक के बाद लकड़ी के दूसरे जो फर्नीचर रखे गए थे वो जलते चले गए। आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
2: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा रोजगार व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
4: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
3: ग्रेट हैरेसमेंट।
2: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
4: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
3: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
4: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
3: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
4: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
3: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
5: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
6: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपनी युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
2: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
7: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
2: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
8: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
2: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
9: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
2: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
10: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
2: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
11: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो, चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
2: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा कभी भतीजी रहेगी कभी छोटा भतीजा कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा, बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले

0: खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
1: अबाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान की। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडीविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
2: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी बाय फॉरेन सेक्रेटरी गुंडेविया एंड आई कोट दोज वर्ड्स द डेंजर टू इंडिया Mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism.
1: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
3: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं। भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
1: सियासत में सियासी वाद पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
0: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
4: My friend, how are you?
5: I am fine. How are you, Modi ji?
4: Great harassment.
0: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
4: My friend, how are you?
5: I am fine. How are you, Modi ji?
4: Great harassment. Galgotia.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
4: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखी, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता

0: कि माँ को कुर्सी दो। राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
1: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
0: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
2: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
3: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
4: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
0: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
5: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
0: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
6: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
0: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
7: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
0: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
8: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
0: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

है ब्लैक एंड व्हाइट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको आईफोन के लिए लगी लंबी लाइनें दिखाएंगे। लोग रात से ही लाइनों में आकर खड़े हो गए हैं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, हर जगह। एप्पल स्टोर के बाहर का नजारा देखकर लग रहा है फोन नहीं अमृत बट रहा हो। 17 प्रो मैक्स जेब में है, फिर भी 18 प्रो मैक्स के लिए रात 10 बजे से ही इंतजार करने लगे। दीवानगी का आलम तो देखिए, कोई नासिक से मुंबई भाग रहा है तो कोई पंजाब से गाड़ियां दौड़ाते हुए नोएडा पहुंचा है। किसी के लिए ये रक्षाबंधन और दिवाली से भी बड़ा त्योहार है, तो कोई अपनी पत्नी को आईफोन दिलाने के लिए घर का सोना तक बेच आया है।

0: एक्चुअली निकला हूँ सूरत से, समझो रात को 10 बजे के करीब मैं पहुँचा हूँ यहाँ, 2-3 बजे।
1: मैं पंजाब से आऊँ, सुबह 6 बजे से लाइन लगा हूँ।
2: मैं नासिक से आया हूँ और रात को 10-10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं।
3: गोल्ड पहले से ही काफी है दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
4: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से बढ़ाकर 7% रहने का अनुमान जताया है। लेकिन इस रफ्तार के बीच मूडीज ने बड़ी चेतावनी जारी की है। एजेंसी का मानना है कि खाद्य पदार्थों की जो कीमतें बढ़ रही हैं और जो महंगाई है वो अर्थव्यवस्था का स्वाद बिगाड़ सकती है। अगर मानसून का असर या ग्लोबल तनाव बढ़ा तो आम आदमी की जेब पर दबाव और गहराएगा। पेट्रोल 391 रुपए पार, रात 9 बजते ही बाजारों में सन्नाटा और शादियों की प्लेट से कई डिश गायब। ये ताजा तस्वीर पाकिस्तान की जो हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ सऊदी अरब जैसा दोस्त, दूसरी तरफ ईरान से लगती सीमा, फिर भी पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तेल को तरस रहा है। ऊर्जा संकट इतना गहरा गया है कि शाहबाज सरकार को बाजारों को 9 बजे, शादियों को 10 बजे समेटने का फरमान जारी किया गया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान इतना फटेहाल क्यों हुआ। चौथी स्टोरी, इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या मिडिल ईस्ट के रण में महाशक्ति का गेम प्लान पूरी तरह बदल चुका है। क्या खाड़ी देशों में अब अमेरिका की जगह चाइना लेने जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब येमेन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी में हमले तेज किए तो सऊदी अरब को अमेरिका नहीं बल्कि चाइना का सहारा मिला है। चाइना ने बिना देर किए ईरान से कहा कि हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाओ। जिस अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा का ठेका लिया था वहां अब चाइना मददगार बन रहा है। क्या अमेरिका का ये मजबूत किला अब ड्रैगन के पाले में जा रहा है, देखिए। लेकिन आज खबरों की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो देखिए ये दो तस्वीरें, इनमें पहली तस्वीर जो है वो साल 2010 की है जब एप्पल कंपनी ने अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च किया था। इसे खरीदने के लिए टोक्यो में एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी। इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो एक एक हफ्ते तक अपने घर नहीं गए थे। बाद में इन तमाम लोगों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया था। और यह बात सिर्फ जापान की नहीं है, साल 2010 से लेकर 2016 तक यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये तमाम देशों के लोग नए आईफोन के लिए एप्पल स्टोर के बाहर 3-3 दिन पहले टेंट लगाकर बैठ जाते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस दौर में अगर आप देखिए तो आईफोन के मॉडल सीमित होते थे और हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं होते थे और इसी वजह से सप्लाई कम होता था। सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था, तो सब डटे रहते थे। लेकिन बाद में ये व्यवस्था बदली, लोगों को नए आईफोन की प्री ऑर्डर सुविधा मिलने लगी और इस सुविधा के बाद यूरोप हो, जापान हो, ऐसे देशों ने कई जो नई आईफोन सीरीज है उसका फोन खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगाना बंद कर दी, पहले से प्री ऑर्डर लोग करने लगे। जबकि भारत में इसका उल्टा हुआ है। तो देखिए आज आईफोन की जो नई फ्लैगशिप सीरीज है उसका ग्लोबल लॉन्च एक साथ होता है और इसके लिए प्री ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। लेकिन इसके बावजूद भारत में हर साल आईफोन के लिए लोग सब कुछ भूलकर लाइनों में क्यों लगते हैं, ये कतार हमारे देश के लोगों के बारे में क्या बताती है और क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और कॉन्टेंट भी एक वजह हो सकती है, इसके लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।
5: टोक्यो की ये तस्वीरें 16 साल पुरानी हैं, जब एप्पल की नई फ्लैगशिप सीरीज का आईफोन 4 लॉन्च हुआ था। उस वक्त भी एप्पल के बाहर लोगों की लंबी कतारें थी और लोग 3-3 दिनों से अपने घर नहीं गए थे। लेकिन अब आप इसी जगह भारत की आज की इन तस्वीरों को देखिए। 16 साल पहले जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो हो रहा था वही आज भारत में हो रहा है। बस फर्क इतना है कि अब विदेशों में पहले दिन पहला आईफोन खरीदने का उत्साह और जुनून कम हो गया है, जबकि भारत में अब भी ये अपने चरम पर है। आज से 10-15 साल पहले जब विदेशों में एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए लंबी कतारें लगती थी तब इसका बड़ा कारण ये होता था कि उस वक्त आईफोन के नए मॉडल सीमित होते थे और इन्हें हर देश में एक साथ लॉन्च नहीं किया जाता था। इससे सप्लाई कम होने के कारण जो पहले लाइन में लगता था उसे ही फोन मिलता था। लेकिन आज ये व्यवस्था बदल चुकी है और अब ऑनलाइन प्री ऑर्डर की सुविधा और पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भारत में दिखने वाली इस भीड़ और लोगों के जुनून के पीछे कई गहरे आर्थिक और सामाजिक पहलू समझ आते हैं और अभी पूरा देश इन्हीं के बारे में बात कर रहा है।
6: पूरे देश में आईफोन का फीवर चढ़ गया है और मैं फिलहाल मुंबई के BKC आईफोन स्टोर में हूं, जहां पर आपको आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स यहां पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दे कि आईफोन का फीवर आईफोन लवर्स में इतना है कि कल रात से ही लंबी कतारें लगाकर वो यहां पर आईफोन खरीदने आए हैं।
5: आईफोन 18 के लिए यह भीड़ सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एप्पल स्टोर के बाहर लोग रात 10 बजे से ही कतारों में लग गए थे और सुबह होते होते ये लाइन मॉल के बाहर तक पहुंच गई।
7: हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था, तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव कराए, जो 40,000 रुपए बढ़ाए हैं तो किस चीज में बढ़ाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कवर लगा के दे देंगे, कुछ मुझे चाहिए, कैमरे भी इम्प्रूव चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए।
8: 18 प्रो लेने आए हैं जी, बिल्कुल आधी रात को आए, अभी आए, आके सीट खाली मिल गई, बैठ गए जी।
9: रात भर से खड़े हैं, बहुत एक्साइटेड है, और हमारे पास बार कोड नहीं है, फिर भी हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं।
2: रात को 10:30 बजे से हम लाइन में खड़े हुए हैं, प्री बुकिंग किया हुआ है और 8 बजे का पहला स्लॉट मिला हुआ है और इसके बाद हमको भी डिलीवरी मिलेगी थोड़ी देर।
5: इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से भी आई, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ रात भर फुटपाथ पर सोई रही और कुछ जगहों पर लाइन तोड़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की और बहस भी देखी गई, जिसे शांत कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। मुंबई की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी एप्पल स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई और इनमें भी कई युवा ये कह रहे थे कि वो दूसरे राज्यों से आईफोन खरीदने के लिए नोएडा के इस एप्पल स्टोर में आए।
10: मैं मदुरई से आया हूँ, बहुत खुश हूँ, मैंने प्री बुकिंग किया था, अभी सुबह मैं 7 बजे लाइन में लग गया था, अभी मेरे को फाइनली मिल गया है।
11: हम मैसूर से हैं सर, हाँ, हमारे टोटल 12 फोन है, 12 फोन है, सारे दोस्त आए हैं उनके साथ,
12: 12 फोन,
11: हाँ 12 फोन खरीदे हैं, पूरे फ्रेंड्स सभी साथ हैं।
13: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है।
5: पहले के जमाने में राशन, सिलेंडर और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की लाइनें लगती थी, लेकिन आज के नए जमाने में नए फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स के लिए भी लाइनें लगती हैं और लोग इन्हें भी अपने जीवन में जरूरी मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज, भारत में ज्यादातर लोग लेटेस्ट आईफोन अपने शौक के लिए भी खरीदते हैं।
6: फोन लवर्स में इतना जुनून क्या है, क्योंकि इतने महंगे फोन है कि मीम्स हम लोग देख रहे हैं कि लोग किडनी बेचना पड़ता है अगर आईफोन खरीदना है। आप क्या कॉम्प्रोमाइज करने वाले इस बार?
14: मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सेविंग करता हूँ उसके लिए। मैं आईफोन 3GS जब आया था तब से मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कोई फोन यूज नहीं किया है। मैं हर साल दो दो मॉडल स्किप करके उसके आगे आता हूँ। मैं
6: कौन सा मोबाइल लेने की सोच
15: रहे? 18 प्रो मैक्स बुक किया हूँ मैंने, 1TB बरगंडी कलर।
6: कितना?
15: 1TB।
6: प्राइस कितना
15: है? 2.5 लाख के आसपास है।
6: 2.5 लाख में एक बढ़िया बाइक आ सकती है, अच्छे वेकेशन पर भी जा सकते हो।
15: शौक शौक की बात है, जब शौक रखेंगे आदमी तो कुछ भी कर सकता है।
5: जब ज्यादातर लोगों ने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए आईफोन 18 प्रो या आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदा, तब ये देखना भी जरूरी है कि भारत में ये फोन एक छोटी गाड़ी की कीमत के बराबर है। आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 से लेकर 3,14,900 रुपए तक है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 से लेकर 3,29,900 रुपए तक है। यह कीमत भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में थोड़ी चुभती है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आईफोन 18 प्रो खरीदता है तो इसके लिए उसे अपनी 7 महीने 22 दिनों की तनख्वाह खर्च करनी होगी। ये भी तब होगा जब वो व्यक्ति अपनी तनख्वाह को किसी और चीज पर खर्च न करे, जबकि दूसरे देशों में कहानी अलग है। अमेरिका के लोग सिर्फ अपनी 7 दिन की तनख्वाह से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं। फ्रांस के लोग 12 दिनों की तनख्वाह से, ब्रिटेन के लोग 11 दिनों की, जापान के लोग 17 दिनों की और ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ 10 दिनों की सैलरी से आईफोन 18 प्रो खरीद सकते हैं। ये आंकड़े हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इस बात को समझें कि भारत में आईफोन के शौक की कीमत क्या है और दूसरे देशों में आईफोन का शौक कितना कीमती है। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस व्यक्ति को सुनिए जिसने अपने घर का सोना बेचकर अपनी पत्नी के लिए नया आईफोन खरीदा।
12: शुरुआत करिए।
16: अरे जो गोल्ड वगैरह है उसके प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड खरीदने की नहीं सोची?
12: नहीं नहीं नहीं, गोल्ड पहले से ही काफी है, दादी परदादियों का, वो बेच के लेने आए।
16: सर आप कौन सा फोन खरीदने आए?
12: प्रोमैक्स
16: 18 प्रोमैक्स।
5: आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी शहर में हमें ऐसे लोग बहुत कम मिले जो टेक्नोलॉजी, फीचर्स या कैमरे की क्वालिटी की वजह से आईफोन खरीदने आए हों। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये उनका शौक है और वो शौक के लिए पहले दिन पहला आईफोन 18 खरीदने आए हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज एप्पल स्टोर्स के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ आईफोन के लिए आई थी या वो कंटेंट के लिए आई थी? यानी लोग सिर्फ इसलिए लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि सब खड़े हैं, या वो इसलिए लाइन में खड़े थे क्योंकि उन्हें नए आईफोन के फीचर्स पसंद हैं?
17: काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते थे, जापान जा सकते थे।
18: ये तो बेवकूफी है, वो ये बेवकूफी है। आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, फॉरेन ट्रिप अलग ट्रिप और ये शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती भाई।
5: किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि लोग आईफोन खरीदने क्यों आए, ये सवाल हम भी नहीं पूछ रहे। हमारा मकसद सिर्फ इस भीड़ को और उसके जुनून के पीछे की वजहों को समझना है, और ये वजह कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारे लोगों ने आज आईफोन मुख्य रूप से 3 वजहों से खरीदा। पहली वजह, इसे स्टेटस सिंबल से जोड़ना। दूसरी वजह, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बहुत बड़ा हिस्सा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का था, जिनके लिए लाइन में खड़े होना, स्टोर के अंदर जाने वाले पहले 10 लोगों में शामिल होना और एप्पल के कर्मचारियों के साथ ताली बजाते हुए अनबॉक्सिंग की रील बनाना, ये सब सोशल मीडिया कंटेंट के लिए जरूरी था और कई लोगों ने ऐसा किया भी। और जब ये होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो भी ऐसा करेंगे और वो भी पहले दिन जाकर पहला आईफोन 18 खरीदेंगे, और आज भी शायद यही हुआ।
19: कितना एक्साइटमेंट है और कब प्री बुकिंग करा ली थी आप?
20: प्री बुकिंग लास्ट वीक करा था, लास्ट सैटरडे मैंने कराया था, आई थिंक 9 को ही करवा दिया था। और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर। That's it.
19: मैं देख रहा हूँ दो फोन आप लेके आए हैं।
20: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
19: कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत जगह से पिक्चर्स आ रही हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं, आप आराम से आए, अपना टाइम पे 8 बजे स्टोर खुला और फोन लेने के लिए पहुंचे।
21: हाँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी तो एज सच अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखते हैं
19: क्या वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट फोन लेने का ये रहता है।
21: फीचर्स एज इन मतलब, हाँ पहले से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं और जो आईफोन यूजर है वो तो खैर हर साल एक नए अपग्रेड के लिए जाते ही हैं, तो ये बेसिकली एक तरह का मतलब अपने अंदर एक वो होता है कि हम चलो नया एडवांस उसके लिए जाएं, बस यही है।
19: पिछली बार भी आप फर्स्ट कस्टमर्स में ही थे जब लिया था?
21: नहीं, पिछली बार मैं नहीं था, ये थे मगर।
20: मैं रहता हूँ फर्स्ट कस्टमर। ठीक है,
19: हर बार जब आएगा नया वेरियंट तो आप?
20: मैं रहता हूँ, मैं फर्स्ट लेता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेता हूँ, फर्स्ट डे वाला बुकिंग पहले से करके रखता हूँ।
5: यहाँ ये भी समझना होगा कि एप्पल कभी भी इस भीड़ को रोकता नहीं है, बल्कि वो लाइन में खड़े लोगों का स्वागत तालियों और नारों के साथ करता है, जिसके कारण नए आईफोन की बिक्री एक बड़े लॉन्च इवेंट में बदल जाती है। सिर्फ इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए ही पहले दिन पहला आईफोन खरीदते हैं। हालांकि ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि भारत में सारे लोग सिर्फ ईएमआई पर आईफोन खरीदते हैं। इस साल भारत में जितने स्मार्टफोन की बिक्री हुई उनमें 42% स्मार्टफोन ईएमआई यानी किस्तों पर खरीदे गए, और इनमें आईफोन की बिक्री के आंकड़े भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बिकने वाले हर 10 में से लगभग 5 आईफोन ईएमआई पर खरीदे हैं और 5 आईफोन कैश या कार्ड से खरीदे जाते हैं। और कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ईएमआई पर खरीदे जाने वाले आईफोन की संख्या अब तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि नया आईफोन 18 पिछले सीरीज के आईफोन के मुकाबले महंगा है। भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें सिर्फ 7% यानी करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आईफोन चला रहे हैं। यानी भारत में आईफोन का बाजार बड़ा जरूर है, लेकिन इसके आंकड़े ये नहीं कहते कि भारत में हर कोई ईएमआई पर आईफोन खरीदने की रेस में दौड़ रहा है, बल्कि यहाँ ये बात अहम है कि भारत में हर साल जितने स्मार्टफोन की बिक्री होती है उनमें 30% पैसा एप्पल कंपनी को जाता है। यानी वॉल्यूम में आईफोन की बिक्री कम है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
4: खैर इस भीड़ को लेकर एक और बहस यह हो रही है कि क्या भारत में ईएमआई यानी किश्तों पर आईफोन खरीदने का ये जुनून सही है और क्या ये भीड़ शिक्षा नौकरियों के लिए लगने वाली भीड़ से ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले आपको पूरा सच जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कुछ हजार लोगों की इस भीड़ से पूरे भारत को नहीं समझा जा सकता। देखिए
0: आज जब पूरे देश में सिर्फ इस भीड़ की चर्चा हो रही है तब हम आपको मेड इन इंडिया की ताकत भी बताना चाहते हैं। पहला, जब एप्पल का कोई नया आईफोन लॉन्च होता था तब उसके सिर्फ बेस मॉडल्स भारत में बनाए जाते थे जबकि प्रीमियम प्रो मॉडल्स को कई महीनों बाद भारत में असेंबल करना शुरू किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स दोनों को लॉन्च के पहले दिन से ही भारत में तैयार किया जा रहा है। इस वक्त एप्पल कंपनी के 25% आईफोन यानी हर चार में से एक आईफोन को भारत में बनाया या असेंबल किया जा रहा है और अभी भारत एप्पल कंपनी के लिए अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अभी एप्पल कंपनी के हर 100 में से 6 आईफोन भारत में खरीदे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इन आईफोन को खुद बना रहा है। साल 2024-25 में एप्पल कंपनी ने भारत में 1,94,000 करोड़ रुपए के आईफोन असेंबल किए थे और इसमें पिछले साल के मुकाबले 60% की वृद्धि हुई थी। एप्पल कंपनी के मुताबिक पिछले साल की एक तिमाही में अमेरिका में 50% से ज्यादा मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री हुई और ये सारे आईफोन भारत में असेंबल होने के बाद अमेरिका के बाजार में पहुंचे। आज एप्पल कंपनी अपना हर चार में से एक प्रोडक्ट भारत में बना रही है और साल 2028 तक आईफोन के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा हो सकती है। बड़ी बात यह है कि साल 2014 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 26% मोबाइल फोन ही मेड इन इंडिया होते थे लेकिन अब हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे 99.2% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया हैं। 2014-15 में भारत में 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता था लेकिन आज हमारे देश में 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। तो ये आंकड़े भी हमें अपने देश पर गर्व कराते हैं और आपके लिए भी अच्छी बात यह है कि भारत में लोग भारत में ही बने और असेंबल हुए आईफोन 18 को खरीद रहे हैं। भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ने और घरेलू खपत में तेजी आने से ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत की ग्रोथ G20 अर्थव्यवस्थाओं और समान रेटिंग वाले उभरते बाजारों से तेज रहने की उम्मीद है। हालांकि इन्हीं अनुमानों में एक चेतावनी भी आई है। इसमें लिखा है कि भारत में तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और भारत को अभी इसी से निपटना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, ईरान के साथ उसकी सीमा लगती है और ओमान भी उसके पड़ोस में है, तब पाकिस्तान तेल के लिए तड़प क्यों रहा है? सीधा कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त, कितना भी अच्छा पड़ोसी क्यों न हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर या विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। देखिए
1: पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा।
22: तीन दिनों में 26 रुपए तेल तो बढ़ चुका है और हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, बताएं, आप बताएं।
23: भाई आप बाइक पे हो, पेट्रोल डलवाया?
24: पेट्रोल पैसे नहीं है, किस तरह डलवाए।
0: पाकिस्तान की सरकार ने ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची रोकने के लिए जो पाबंदियां लगाई अब उन पर खूब कोहराम मचा है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि जब तक तेल संकट का कोई हल नहीं मिलता तब तक सभी दुकानें और बाजार रात 9 बजे बंद करने होंगे, शादी हॉल रात 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक बंद करने होंगे। शादी समारोह में सिर्फ एक व्यंजन परोसने की अनुमति होगी। सरकारी गाड़ियों के तेल का कोटा अगले 3 महीने के लिए 50% तक घटाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की 3 महीने की विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। बेहद जरूरी यात्रा में भी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में जाना होगा। गैर कर्मचारी बजट में 5% की कटौती की जाएगी। सरकारी बैठकें संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और इसी दौरान सरकारी दावतों पर भी कड़ी रोक लगाई जाएगी और ये सूची बहुत लंबी है। ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल हो गया है कि वहां 18 सितंबर से पेट्रोल 390.89 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 424.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है और सरकार ने साफ कह दिया है कि वो ना तो अभी इस पर टैक्स कम कर सकती है और ना ही पाबंदियों में कोई छूट दे सकती है और इन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की आवाम वहां की सरकार से कह रही है कि तुमसे ना हो पाएगा।
2: अभी सब्सिडी का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यकीन करें, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं उसको रजिस्टर करने की। अच्छा, एक तो उनकी शराइत इतनी मुश्किल है, ठीक है। एक बात ये तो ये बोलते हैं गाड़ी आपके नाम हो, ठीक है। ऊपर से वो गाड़ी आपके नाम हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन आपके नाम हो, ठीक है। उसके बाद वो जो आपका मोबाइल की सिम हो आपके नाम हो। भाई इतनी मुश्किल करोगे तो गरीब आदमी जो इलिटरेट पर्सन है वो किस तरह सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। हम रजिस्टर किस तरह कर पाएंगे।
3: पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, पेट्रोल बढ़ने का मतलब ही यही है के जो है सर के बाल से लेकर नाखून तक और एक जो है वो नाई की दुकान से लेकर एक 5-स्टार होटल तक हर चीज आप महंगी कर दे।
7: कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 200, 100, 150 का पेट्रोल डालते हैं तो वो देखे एकदम से वो 1300 या 1400 देना पड़ जाए तो वो तो बेचारे डलवाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे पास आज थे तो आज हमने डलवा लिए, नेक्स्ट वीक क्या पता मैं भी ना डलवा सकूँ।
0: अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और सऊदी अरब, यूएई और ओमान उसके सहयोगी देश हैं, तब वो तेल के संकट के सामने सरेंडर कर चुका है, जबकि इसी जगह हमारा देश भारत भी कच्चे तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है और ईरान युद्ध का असर हम पर भी पड़ा है। और हमारी आबादी तो 145 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। और जानते हैं भारत और पाकिस्तान में ये फर्क क्यों है? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो भारत की तुलना में पाकिस्तान भौगोलिक रूप से मिडल ईस्ट देशों से ज्यादा करीब है। ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ओमान से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है, यूएई भी 550 किलोमीटर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। और इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तेल का संकट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तड़प रहा है और इसका कारण यही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश मुफ्त में कच्चा तेल नहीं देता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त या पड़ोसी क्यों ना हो। तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर यानी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर है और आप खुद सोचिए, जब जेब में डॉलर ही नहीं होंगे तो पाकिस्तान तेल कहां से खरीदेगा। और अभी उसके साथ यही हो रहा है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, लेकिन उस पर अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू हैं। अगर पाकिस्तान ईरान से आधिकारिक रूप से तेल खरीदता है तो उस पर भी वैश्विक प्रतिबंध लग जाएंगे, जिससे उसका बचा खुचा व्यापार और आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज पूरी तरह रुक जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त डॉलर नहीं है। अगर वो बिना कटौती के तेल खरीदता है तो पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सीमा भले ही मिडल ईस्ट देशों के करीब है, लेकिन उसकी जेब में तेल खरीदने का पैसा नहीं है और वो अपने लोगों को कह रहा है कि शादियों में एक डिश से ज्यादा न परोसी जाए और नेता भी विदेशी दौरों पर न जाएं। जबकि भारत ने पिछले हफ्ते ही ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की है और इस संकट में भी हमने पाबंदियों से देश को बचा कर रखा है और इसका कारण ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 780 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21 बिलियन डॉलर का है, जो 64वें नंबर पर है। और इसमें भी बहुत सारा पैसा सऊदी अरब का है, जिसे पाकिस्तान खर्च तक नहीं कर सकता। भारत ही अपने तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन हमारी बड़ी बात यह है कि जब ईरान युद्ध के कारण हुर्मुज बंद हुआ तो हमने रशिया से कच्चे तेल की कीमत 50% तक बढ़ा ली और अमेरिका से गैस का आयात भी 50% तक बढ़ा लिया। और हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मजबूत हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत पर कैसे रो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है।
8: इनके पास मुल्क चलाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। इन पेट्रोल की कीमतों से ये अयाशियाँ भी कर रहे हैं और मुल्क भी चला रहे, लेकिन ये अपनी अयाशियाँ और अपने अखराजात कम नहीं कर रहे।
9: वो पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है, अगे हफ्ते बाद महीने बाद असी सुनी दा सी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर हुण पता ही कोई नहीं। पेट्रोल जड़ा है ना वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है।
10: आप खाइए कि पेट्रोल पवाइए कि बच्चे वास्ते करिए, समझो गल बार है कि कोई मसल लगी करना चाहती है।
11: कीमतें बढ़ रही हैं, ये सरासर ज्यादा है। हुकूमत आवाम के साथ जो है ना खिलवाड़ कर रही है।
13: पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आम आवाम तो जलील हो गई है। यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कर रही है, आम बंदे की जरूरत है, किसी अमीर की जरूरत नहीं है, या गरीब बंदे की जरूरत है।
0: पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 80-85% कच्चा तेल आयात करता है। उसके कच्चे तेल के आयात में यूएई की हिस्सेदारी करीब 50-56% है, सऊदी अरब की 30-35% और कुवैत की करीब 4% है। लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इन देशों को पैसे देकर तेल और गैस खरीद ही नहीं सकता, और वैसे पाकिस्तान डींगे बड़ी बड़ी हांकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, प्लूटोनियम खरीदता है, न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदता है, हर साल लगभग $6 बिलियन यानी 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, और जो यूक्रेन से ये कहता है कि वो रशिया की तेल रिफाइनरियों पर हमले ना करे, वही अमेरिका और उसके नेता आखिर दूसरे देशों को ये उपदेश क्यों देने लगते हैं कि उन्हें रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदना चाहिए, और रशिया के साथ व्यापार करने का मतलब है यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना। आप खुद सोचिए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका रशिया के साथ व्यापार करे तो इससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा नहीं मिलता, लेकिन अगर भारत या कोई और देश ऐसा करे तो अमेरिका इन तमाम देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगता है, और इस बार भी वो यही कर रहा है। आज हम आपको इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति, उसके एक तरफा फैसलों और रशिया के साथ उसके खुद के व्यापार को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। देखिए,
25: question is now on agreeing to the motion to concur. All members will record their votes by electronic device. This is a 15-minute vote.
0: ये तस्वीरें अमेरिकी संसद की हैं, जिसने 16 सितंबर को एक बेहद सख्त कानून पारित किया। इस कानून का नाम है लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026, और इसका मकसद है रूस के कच्चे तेल और गैस के व्यापार पर आर्थिक चोट पहुंचाना और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना। यानी जिन देशों ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया, उन देशों को इसकी सजा देने के लिए अमेरिकी संसद ने इस कानून को पारित किया है।
26: We can support Ukraine. We can hold Russia accountable, and we can store, we can protect the American people.
0: ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कानूनी शक्ति देता है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं, और इस टैरिफ को दंडात्मक यानी सजा के रूप में वसूला जाने वाला टैरिफ बताया गया है। इन 5 देशों में भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल हैं। ये वो देश हैं जो मौजूदा वक्त में रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीद रहे हैं। अगर ये टैरिफ भारत पर लगता है तो अमेरिका में भारत का जितना भी सामान निर्यात होता है वो सीधे सीधे 2 गुना महंगा हो जाएगा, और इसकी सबसे बड़ी मार भारतीय व्यापारियों पर पड़ेगी, और अमेरिका में भारत का निर्यात तेजी से सिकुड़ने लगेगा।
27: Your economy is reeling. We're going to throttle your war machine. China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
0: अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, और ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही यह पूर्ण रूप से कानून बन जाएगा। हालांकि इस कानून को लेकर 3 बातें समझना बेहद जरूरी है। पहली बात, इसे पूरी दुनिया वेपनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट बता रही है, यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी संसद किसी देश के युद्ध को रोकने के लिए टेररिस्ट को हथियार बना रही है, जबकि ये ग्लोबल ट्रेड यानी WTO के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। दूसरा, इस कानून को भारत अमेरिका रिश्तों के लिए टाइम बम जैसा माना जा रहा है, क्योंकि यह कानून ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की अंतिम दौर की बातचीत चल रही थी। और तीसरा, यह कानून अमेरिकी दबाव का एक मुखौटा भी हो सकता है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 100% टैरिफ का आंकड़ा एक अधिकतम सीमा यानी सीलिंग है, ना कि ऑटोमेटिक टैक्स। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे पूरी तरह माफ करने या कम करने का भी अधिकार रहेगा, इसलिए कई विश्लेषक इसे अमेरिका की एक दबाव बनाने की रणनीति यानी प्रेशर टैक्टिक्स मान रहे हैं, ताकि भारत को रूस से दूर किया जा सके या भारत से कोई एकतरफा व्यापार समझौता कराया जा सके, जबकि भारत इस दबाव के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाजार के हिसाब से तेल खरीदना जारी रखेगा। साथ ही भारत ने चेतावनी भी दी है कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत ने अमेरिका के इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया है और हम ये स्थिति साफ करके चल रहे हैं कि अगर भारत को रशिया के कच्चे तेल की जरूरत होगी तो देश हित में हम ये आयात जारी रखेंगे। इस बिल का नाम अमेरिका के दिवंगत नेता लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका निधन इसी साल 11 जुलाई को हुआ था। ये वही नेता थे जिन्होंने इस पूरा कानून का आइडिया दिया और यहाँ तक कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। ये आइडिया भी उन्होंने तब दिया जब वो मीडिया और सार्वजनिक मंचों से लगातार भारत के खिलाफ कई बयान दे रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रशिया से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो रशिया को दिया गया उनका पैसा ब्लड मनी यानी खून से सना हुआ पैसा माना जाएगा। इन्हीं बयानों के बीच उन्होंने भारत को डराने के लहजे में आर्थिक तबाही की धमकी दी थी और क्रश योर इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और सोचिए ये सब क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि रशिया और भारत के व्यापार पर एतराज जताने वाला यही अमेरिका खुद रशिया के साथ अपना आयात निर्यात जारी रखता है। पिछले साल 2025 में अमेरिका और रशिया के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो 2024 के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में अमेरिका के रशिया के साथ कुल व्यापार करीब 15% बढ़ गया। लेकिन अमेरिका में किसी ने वहां के पैसे को ब्लड मनी यानी खून से सना पैसा नहीं कहा। ये भी तब हुआ जब रशिया से अमेरिका को फर्टिलाइजर्स का निर्यात 38% बढ़ा, यूरेनियम और प्लूटोनियम का व्यापार 61% बढ़ा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी का व्यापार 12% बढ़ा। आज बड़ा सवाल यही है कि जब अमेरिका खुद रशिया से व्यापार करता है और इसे वो अपने राष्ट्रहित में जरूरी मानता है तो वो भारत रशिया के व्यापार पर यही सोच क्यों नहीं रखता।
4: राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे?
6: मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार है।
0: अमेरिका एक तरफ तो भारत को अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बताता है और दूसरी तरफ भारत पर ऐसे कानून थोपने की कोशिश करता है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और ना ही किसी भी देश के लिए न्याय संगत है। और यही कारण है कि जब अमेरिकी संसद से यह बिल पास हुआ तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में इसे गैर कानूनी और अमित्रतापूर्ण यानी अनफ्रेंडली कदम बताया। और साफ कह दिया कि भारत किसी की धमकी में आए बिना अपने 140 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: क्या आप यकीन करेंगे कि जिस अमेरिका ने रशिया पर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में हुई पार्टी का खर्च रूस से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था, और ये वही रूसी कारोबारी हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रूस पर अमेरिका द्वारा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके पीछे की असली कहानी क्या है, और इस कहानी में कितनी बड़ी ट्रेजेडी भी छिपी है।
0: ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ को अपना हथियार बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ऐसा चार बार कर चुका है। पिछले साल भी अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ इन्हीं वजहों से लगाया था, और अब भी वो कुछ नया नहीं कर रहा है। अमेरिका बार बार अपने कड़े प्रतिबंधों को जायज ठहराने के लिए यूक्रेन युद्ध को आधार बनाता है। ये कहता है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए वो रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन हकीकत में इन प्रतिबंधों के पीछे एक दूसरी कहानी है। इन प्रतिबंधों के पीछे पहला और सबसे असली कारण है अमेरिकी तेल का बाजार बढ़ाना, यानी अमेरिकी तेल की मोनोपोली और उसका मार्केट शेयर। किसी भी बाजार का सीधा नियम यही होता है कि अगर आप अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को मुख्य बाजार से बाहर कर देंगे तो आपकी मोनोपोली अपने आप मजबूत हो जाएगी, और अमेरिका अभी यही कर रहा है। उसने प्रतिबंध लगाकर रूस को सीधे सीधे इस बाजार से बाहर किया हुआ है। इन प्रतिबंधों की दूसरी वजह है पेट्रोडॉलर साम्राज्य की रक्षा। दुनिया का ज्यादातर तेल आज भी अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है, और इसे पेट्रोडॉलर व्यवस्था कहते हैं। लेकिन रूस और चीन जैसे देश लगातार तेल के व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राओं या अन्य मुद्राओं में करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रूस बिना किसी पाबंदी के दुनिया को तेल बेचता और डॉलर को दरकिनार करता है तो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी, और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका उन देशों पर दबाव बनाता है जो डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में बड़ा व्यापार करने की कोशिश करते हैं। और यहां भारत भी रशिया से नेशनल करेंसी में तेल और गैस खरीद रहा है।
12: हेलो मिस्टर पेस्कोफ, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन, and it's nice that you've called this session telling the untold, so we're counting on that. Donald Trump, the American president, says BRICS is a forum against the dollar. You yourself mentioned how 90% of the payments that Russia is doing with other BRICS countries has now moved on to national currency. There are other countries also within BRICS without sanctions, who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? And how would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
14: Thank you. It's a very interesting question.
15: यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा, ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। ब्रिक्स तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है, और रूस भी ब्रिक्स देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है, और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं, और हम किसी डी डॉलरलाइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है। तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है।
14: More trust is going in favor of national currencies. So this is the process and this is the nature.
15: और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं।
0: यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर अमेरिका को रूस से इतनी ही दिक्कत है तो उसने रूस का तेल पूरी तरह बंद क्यों नहीं करवा दिया। लेकिन हकीकत में यहीं पर अमेरिका की असली आर्थिक चालाकी समझ में आती है। अगर रूस का तेल पूरी तरह बाजार से गायब हो जाए तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो जाएगी। इससे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे अमेरिका और पूरी दुनिया में भयानक महंगाई और मंदी आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने G7 प्राइस कैप नीति अपनाई। इसके तहत रूस को तेल बेचने की अनुमति तो है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि रूस $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमतों पर तेल का निर्यात नहीं कर सकता। इससे बाजार में तो तेल की सप्लाई बनी रहती है और वैश्विक कीमतें भी नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन रूस को उस तेल पर कोई बड़ा प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा नहीं मिलता जो उसे सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। और चौथा बड़ा कारण है पश्चिमी देशों की सर्विस मोनोपोली। दुनिया के पास तेल भले हो, लेकिन उस तेल को समंदर के रास्ते एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए जहाजों का बीमा और बड़े शिपिंग टैंकरों की जरूरत होती है। इस पूरी शिपिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर 90% नियंत्रण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कंपनियों का है। अमेरिका ने नियम बनाया है कि जो भी जहाज रूसी तेल को तय प्राइस कैप से महंगे दाम पर ले जाएगा उसे पश्चिमी कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देंगी। इस सर्विस मोनोपोली का इस्तेमाल करके भी अमेरिका तेल के बाजार में अपनी मोनोपोली बनाता है, और ये बात दुनिया समझ ही नहीं पाती कि इन प्रतिबंधों का असली खेल यूक्रेन युद्ध को रोकना नहीं है, बल्कि इनका असली खेल रशिया को तेल बाजार से बाहर कर देना है, और उसके सामने ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश है कि वो भविष्य की तकनीकों में निवेश करने के लिए पैसा न जुटा पाए और वैश्विक महाशक्ति की दौड़ में हमेशा पीछे रहे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध अकेला इसका कारण होता तो अमेरिका खुद भी रशिया से व्यापार बंद कर देता, और व्यापार ही क्यों। पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना न बनाए, और इसके बाद रशिया ने अमेरिका को इसके लिए धन्यवाद दिया था। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में हुई पार्टी का खर्च रूस से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था जो राष्ट्रपति पुतिन के करीबी है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने बेटे की शादी की पार्टी में रूस के कारोबारी से पैसा खर्च करवा देते हैं, खुद रशिया के साथ व्यापार कर लेते हैं, लेकिन भारत को उसके राष्ट्रहित में फैसले लेने पर 100% टैरिफ लगाने का कानून थोप देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चाइना दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है जो पूरी तरह रोबोट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और क्यों दुनिया चाइना के इस मदरशिप को लेकर चिंता जता रही है उस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
0: समंदर की लड़ाई में चीन अब अपना एक नया हथियार लेकर आने वाला है। ये किसी भी वक्त जंग की सूरत बदल सकता है। इस नए हथियार ने दुनिया की सैन्य महाशक्तियों के भी होश उड़ा दिए हैं। चीन दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। ये ऐसी सबमरीन होगी जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और अनमैंड होगी, यानी समंदर के अंदर मौजूद इस सबमरीन को जमीन पर मौजूद किसी कमांड सेंटर से चलाया जा सकेगा। हाल फिलहाल के जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें ड्रोन हथियारों का दम पूरी दुनिया देख रही है। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन रशिया पर कई बार भारी पड़ता दिखता है। ड्रोन के जरिए हमला करके IRGC भी अमेरिकी सेना को चौंकाती रही है। चीन ने दो कदम आगे की सोची है। ये पहली बार है जब किसी देश ने समंदर की लड़ाई के लिए ड्रोन का घातक स्वरूप तैयार कर लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी विंटोर ने एक तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर है हुडोंग झोंक हुआ शिपयार्ड की, जहां एक लाल जहाज बनते हुए दिखाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा ये जहाज ही अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बताया जा रहा है। चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप की लंबाई करीब 205 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इसके पिछले हिस्से में करीब 55 मीटर लंबी और 13 मीटर चौड़ी वेट वेल है, जिसके जरिए ऑटोनॉमस सबमरीन समंदर में उतर पाएगी। वेट वेल के आगे बंद हैंगर है, जहां 4 अनमैन्ड सबमरीन रखी जाएंगी। अनमैन्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें क्रू के लिए जगह या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी और खतरनाक मिशन पर इसे तुरंत उतारा जा पाएगा।
1: देखिए, समुद्री शक्ति संतुलन में चीन आगे निकल रहा है और ये देखना होगा कि अब वो आक्रामक नीति अपना रहा है, अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके वो अंडर वाटर मानव रहित ड्रोन का जो प्रयोग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है लगातार, इससे पूरे ईस्ट एशिया से लेकर के आसियान कंट्रीज और भारत, जो पूरा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब चीन के पास एक अपर हैंड सिचुएशन होगी, जिससे वो बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी डेवलप करके, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो, जहां पर वो उसके जो एग्रेसिव पोस्टिंग हमेशा रहती है, जैसे फिलीपींस हो, जापान हो, इस तरह के जो देश हैं जो परेशान रहते हैं या उनके जहाजों पर चीन कभी ब्लॉकिंग, कभी ब्लॉकेट करता है, कभी आक्रमण करता है, तो अब अंडर वाटर ड्रोन से एक समुद्र के अंदर युद्ध की स्थिति बनने का खतरा है। और इस पर जो वैश्विक एक कंट्रोल या वैश्विक एजेंसीज हैं, उन्हें नजर रखनी होगी।
0: चीन की इस तैयारी का खुलासा पिछले साल जनवरी में हुआ था, लेकिन अब की बार चीन ने साउथ चाइना सी के हेनान द्वीप के पास कुछ अनमैन्ड पनडुब्बियों का परीक्षण पूरा कर लिया है, यानी पनडुब्बियां तैयार हो चुकी हैं और उन्हें बस अपनी मदरशिप का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
4: अक्सर युवाओं पर सड़कों पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के आरोप लगते हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 73 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी कार से सड़क किनारे खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक गिर गई, लेकिन 73 साल के बुजुर्ग वेणुगोपाल ने गाड़ी रोकी नहीं। कार बाइक को कई मीटर तक सड़क पर घसीटती हुई उनकी कार पड़ती रही। मौके पर मौजूद लोगों ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो कार को किसी तरह से रुकवाया। जब भीड़ ने ड्राइवर को घेरा तो पहले तो वो अपनी गलती मानने से इनकार करता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा और उस गुस्से को बढ़ता देख आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। हादसे में बाइक सवार 21 साल का लड़का बाल बाल बच गया है, लेकिन पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है।
0: अक्सर सड़कों पर स्टंटबाजी, खतरनाक ड्राइविंग और हिट एंड रन के मामलों में उंगली युवाओं पर उठती है, लेकिन दिल्ली के आरकेपुरम से जो तस्वीर आई है उसने सबको हैरान कर दिया। तिहत्तर साल की उम्र में सामने खड़ी बाइक और एक जोरदार टक्कर, लेकिन बात सिर्फ टक्कर की नहीं थी। खौफनाक मोड़ तब आया जब 73 साल का बुजुर्ग ड्राइवर कार रोकने के बजाय बाइक को सड़क पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता चला गया। यह घटना रात करीब 10:30 बजे की। 21 साल का तनीष टोकस सड़क किनारे अपनी खड़ी बाइक पर बैठा था, तभी नीले रंग की एक होंडा अमेज कार रफ्तार से आई और खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तनीष सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि तनीष बाल बाल बच गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। टक्कर मारने के बाद कार रुकी नहीं, बल्कि सड़क पर कई मीटर तक बाइक को घसीटती चली गई। सड़क पर रगड़ने की खौफनाक आवाज और चिंगारियों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लोग चिल्लाए, कार का पीछा किया और आखिरकार गाड़ियों की घेराबंदी कर कार को जबरन रुकवाया। कार रुकी तो अंदर से 73 साल का एक बुजुर्ग निकला। भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। जब लोगों ने बुजुर्ग पर सवाल दागे तो शुरुआत में तो जनाब अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुए, लेकिन माहौल गरमाता देख और भीड़ के गुस्से के आगे 73 साल के वेणुगोपाल के तेवर ढीले पड़ गए। बुजुर्ग ड्राइवर ने कैमरे और भीड़ के सामने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगे। घटना की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग वेणुगोपाल को हिरासत में ले लिया और कार को जब्त कर लिया। शुरुआती जांच में नशे की बात सामने नहीं आई। दिल्ली पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। सोचिए,

0: अब हम 20 साल पुराने निठारी केस की बात करेंगे जिसके आरोपी रहे सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या कर ली है। बच्चों की हत्याओं से जुड़े 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों में बरी कर दिया था। केस से बरी होने के बाद वो हरिद्वार में नाम बदलकर रह रहा था और एक चाय की दुकान भी उन्होंने खोली थी। अब अपने घर में ही खबर आ रही है कि फांसी लगा ली है। आखिर ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: २९ दिसंबर साल 2026 को नोएडा के निठारी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। निठारी की इस D5 कोठी के पीछे एक के बाद एक 16 मासूम बच्चों के सड़े गले शव बरामद होते गए। इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, नाम है सुरेंद्र कोहली। निठारी कांड को देखने और समझने वाले इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकते। इस आदमी को 13 मामलों में देश की अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन फांसी से ऐन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने इसकी फांसी को टलवा दिया और फिर एक लंबी सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोहली को हर आरोप से बरी कर दिया गया। करीब 19 साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल नवंबर में पिछले करीब 10 महीनों से सुरेंद्र कोहली आजाद था। उसकी फांसी की सजा टाली जा चुकी थी, उसे हर जुर्म से बरी कर दिया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि सुरेंद्र कोहली ने फांसी लगा ली है। पिछले कई दिनों से सुरेंद्र कोहली नाम और पहचान बदलकर लोगों की नजरों से बचते हुए हरिद्वार में चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। उसने लोगों को अपना एक फर्जी नाम बता रखा था। पुलिस के मुताबिक वो कुछ महीने पहले ही हरिद्वार आया था। उसने अपना नाम सदाराम रख लिया था। आस पड़ोस के लोगों को उसकी असली पहचान कभी तब तक पता नहीं चला जब तक पुलिस ने शव के पास से मिले असली पहचान पत्र की जांच नहीं की थी।
2: किसी के माध्यम से ये आया और इसने अपना नाम बदल के यहाँ पे चाय की दुकान चलाया 3 दिन पहले।
3: पहचान कैसे हो पाई उसकी?
2: इसका आधार कार्ड में जो आया था, फिर जो लोग, क्योंकि वो बड़ा चर्चित रहा था निठारी काम, उसमें इसका चेहरा भी आया था, तो ये फिर जानकारी हुई है, तो ये वही अब तक जो पता लगा है, ये वही व्यक्ति है जो निठारी काम में अभी था।
1: सुरेंद्र कोहली ने अपने घर में फांसी क्यों लगाई, इसके पीछे की वजह अतिक्रमण हटाओ अभियान बताया जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों की वजह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस कारण से सुरेंद्र कोहली ने एक दुकान के मालिक को एडवांस दिया था जिसके फंसने की चिंता थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से दुकान के अंदर ही उसने फांसी लगा ली। निठारी कांड देश में हत्या के सबसे भयानक मामलों में से एक माना जाता है। ये मामला साल 2005-2006 के बीच का है, जब निठारी की D5 कोठी के पीछे नाले के अंदर से 16 बच्चों के शव बरामद हुए थे। इन बच्चों की हत्या में सुरेंद्र कोहली का हाथ माना गया था। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: सोचिए, जिस देश के घर घर में रसोई का सिलेंडर चढ़ाने से लेकर पूरे परिवार का बोझ उठाने की जिम्मेदारी महिलाएं हंसते हंसते निभाती हैं, उसी देश में महारत्न कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नजर में एक महिला इस लायक नहीं थी कि वो LPG बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर उठा सके। महिला है, भारी सिलेंडर नहीं उठा पाएगी, ये कहते हुए महिला को नौकरी नहीं दी। इस सोच पर सुप्रीम कोर्ट का करारा थप्पड़ जड़ा है, जिसने 38 साल बाद ही सही लेकिन इस महिला विरोधी सोच को आईना दिखाया है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि जिस इंसाफ को मिलने में 4 दशक लग जाए, क्या उसे पूरी तरह से इंसाफ कहा जा सकता है?
4: हरियाणा के गुढ़ा गांव की रहने वाली सुमित्रा, साल 1988 में जब उन्होंने इंडियन ऑयल कंपनी में खलासी और रिफिलिंग हेल्पर के पद के लिए इंटरव्यू दिया, तो योग्यता में वो किसी से कम नहीं। डिप्टी कमिश्नर की कमेटी ने उनके नाम की सिफारिश भी कर दी, लेकिन फाइल पर जब मुहर लगाने की बारी आई तो अफसरों की संकीर्ण सोच आड़े आ गई। दलील दी गई कि महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी और रात की शिफ्ट में काम नहीं कर पाएगी। अब 38 साल के बाद इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल पूछा जो समाज के दोहरे रवैये पर तमाचा है। कोर्ट ने पूछा, क्या महिलाएं अपने घरों में दिन रात खुद गैस सिलेंडर नहीं उठाती और बदलती? अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि केवल महिला होने के आधार पर रोजगार से वंचित करना महिला गरिमा का सीधा अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल को 12 लाख रुपए का भुगतान देने का आदेश तो दिया, लेकिन जरा सोचिए,

1988 से शुरू हुई ये लड़ाई साल 2026 में आकर खत्म हुई। सुमित्रा के काम करने की उम्र अदालतों के चक्कर काटते काटते बीत गई। आज जब उनके हक में फैसला आया है तब वो रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी है। कोर्ट चाहकर भी अब उन्हें वो नौकरी नहीं लौटा सकता जिसकी हकदार वो 38 साल पहले थी। 12 लाख रुपए का मुआवजा, सुमित्रा के 38 सालों के संघर्ष और उस आर्थिक मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कभी नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन तमाम सरकारी और निजी संस्थानों के लिए एक नजीर जरूर है जो आज भी महिलाओं को उनकी क्षमता से नहीं बल्कि उनके जेंडर से आंकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये मामला हमारी न्यायिक व्यवस्था के उस कड़वे सच को भी बेनकाब करता है जहां एक हक पाने के लिए महिला की आधी जिंदगी बीत जाती है।

0: अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब आज पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडीविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हमला हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
0: अबाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वाद पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
8: My friend, how are you?
9: I am fine. How are you, Modi ji?
8: Great harassment.
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
8: My friend, how are you?
9: I am fine. How are you, Modi ji?
8: Great harassment. Galgotia.
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी, नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखी, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
10: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
11: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
7: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
12: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
13: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
14: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
15: माँ का कहां से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात आई थी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
16: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के BTech छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया।
17: पुलिस
16: माता पिता के शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से चार सवार में से तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
17: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
18: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी यूपी में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हमिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजेवाद का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा, बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: अमित अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हमिद अंसारी जो भारत के

0: अरे हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें। लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
1: सियासत में सियासी वाद पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
2: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
3: My friend, how are you?
4: I am fine. How are you, Modi ji?
3: Great harassment.
2: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
3: My friend, how are you?
4: I am fine. How are you, Modi ji?
3: Great harassment. Galgotia.
4: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
3: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी, नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
4: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
3: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
5: ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
6: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
2: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
0: कांग्रेस के युवराज ने भी कल

0: अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
2: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
3: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
4: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
5: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: अब बात आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
7: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: अब बात मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई बीएमडब्ल्यू कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से चार सवार में से तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। बीएमडब्ल्यू कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। सीसीटीवी में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
8: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
9: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
6: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: अमित अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
0: अबाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वाद पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखी, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
10: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
11: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी हल तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
7: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
12: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
13: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
14: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
15: माँ का कहां से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
16: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के BTech छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया।
17: पुलिस
16: माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई BMW कार हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। इसमें से चार सवार में से तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
17: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
18: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अबाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: अमित अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।

0: लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा रोजगार व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
1: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
1: ग्रेट हैरेसमेंट।
0: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
1: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
1: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखी, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
3: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी भी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
5: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
0: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
6: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
0: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
7: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
0: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
8: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी

0: गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से, कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
2: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब आता है कि बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
4: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के BTech छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक भी
3: अब आज मुंबई में हुए सड़क हादसे की, मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से 4 सवार में से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार 4 में से 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
5: उस गाड़ी में 4 लड़के थे चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19, और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
6: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
3: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अबाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: अमित अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हमिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी? ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
10: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता
11: कि कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी हल तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
7: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
12: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
13: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
14: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
15: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
16: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकुडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया।
17: पुलिस
16: माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक भी
0: आबाद मुंबई में हुए सड़क हादसे की मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से चार सवार में से तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
17: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
18: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: चुनावी यूपी में योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, हमिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार, तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया, हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है, हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है, कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा कभी भतीजी रहेगी कभी छोटा भतीजा कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा, बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही है पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब आज पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान के। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: अमित अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हमिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वार पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।

0: अफवाह बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो। राहुल गांधी कहते हैं, टेल मी मोर।
1: और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
2: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
3: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
4: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
0: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
5: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
0: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
6: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
0: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
7: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
0: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
8: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
0: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब बात आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
10: We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.

0: आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडी की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को एआई पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया।
1: पुलिस स्टेशन काय काय अपेक्षा तुम्हाला, काय
2: न्याय की अपेक्षा? मला न्याय पाहिजे, न्याय पाहिजे। तुम्ही कंप्लेंट करणार आहात का? गेले गेले गेले।
0: माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट के संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद आईआईटी बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो। अब आज मुंबई में हुए सड़क हादसे की मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से 4 सवार में से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
3: ये तस्वीरें भयानक है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार 4 में से 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
4: उस गाड़ी में 4 लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
3: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
5: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: बात अब एशियाई खेलों की, जहां पर पहले ही दिन बेटियों का दम दिखा। क्रिकेट में हरमनप्रीत की टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर गोल्ड के नजदीक वो पहुंच गए। 22 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला अब श्रीलंका से होगा।
2: गोल्ड जीते थे पिछली बार, गोल्ड जीतेंगे इस बार। एशियन गेम्स में मेडल पक्का, क्रिकेट में बेटियों का मजबूत इरादा। कहने को सामने एक चैंपियन टीम बांग्लादेश थी, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों ने उसे धोकर रख दिया। चैंपियन स्टाइल में खेली टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 114 रन से रौंदकर एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल में जगह बना ली है। पहले खेलते हुए भारत ने 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। शेफ अली वर्मा ने धूम धड़ाके वाली नाबाद शतकी पारी खेली। जवाब में नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा के 3-3 विकेटों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 81 रन पर ऑल आउट कर दिया। महिला क्रिकेट ही नहीं, शूटिंग में भी रविवार को भारत ने कई मेडल्स पर निशाना लगाने में कामयाबी हासिल की। एलाविनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीता। इसके अलावा भारत ने महिला वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पर निशाना साधा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका ने भारत के लिए एक मेडल पक्का किया। अभी तो ये सिर्फ आगाज है, जैसे जैसे जापान में एशियन गेम्स का सफर आगे बढ़ेगा, भारतीय खिलाड़ी और भी खेलों में नए नए कीर्तिमानों के साथ पोडियम पर गर्व से खड़े दिखाई देंगे। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: मामला हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीति का स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जोड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफिला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया। हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही हैं पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान की। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वाद पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई, उसी मिमिक्री पर जबरदस्त अब सियासी हंगामा बरपा है।
1: इंदौर में राहुल गांधी का मंच, कार्यक्रम का नाम था छात्रों की गूंज, लेकिन छात्रों के सवालों से ज्यादा अब सियासी ठहाकों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया सामने राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी? ग्रेट हैरेसमेंट।
1: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
8: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
9: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
8: ग्रेट हैरेसमेंट। गलगोटिया।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
9: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
8: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
10: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
11: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
7: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
1: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
12: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
1: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
13: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
14: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
15: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया, मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात आईआईटी बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
16: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया।
17: न्याय
16: माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज मुंबई में हुए सड़क हादसे की मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रही है और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से चार सवार में से तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार चार में से तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
17: उस गाड़ी में चार लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 ईयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
18: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: बात अब एशियाई खेलों की, जहां पर पहले ही दिन बेटियों का दम दिखा। क्रिकेट में हरमनप्रीत की टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर गोल्ड के नजदीक वो पहुंच गए। 22 सितंबर को फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला अब श्रीलंका से होगा।
2: गोल्ड जीते थे पिछली बार, गोल्ड जीतेंगे इस बार। एशियन गेम्स में मेडल पक्का, क्रिकेट में बेटियों का मजबूत इरादा। कहने को सामने एक चैंपियन टीम बांग्लादेश थी, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों ने उसे धोकर रख दिया। चैंपियन स्टाइल में खेली टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 114 रन से रौंदकर एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल में जगह बना ली है। पहले खेलते हुए भारत ने 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने धूम धड़ाके वाली नाबाद शतकी पारी खेली। जवाब में नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा के 3-3 विकेटों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 81 रन पर ऑल आउट कर दिया। महिला क्रिकेट ही नहीं, शूटिंग में भी रविवार को भारत ने कई मेडल्स पर निशाना लगाने में कामयाबी हासिल की। एलाविनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीता। इसके अलावा भारत ने महिला वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पर निशाना साधा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका ने भारत के लिए एक मेडल पक्का किया। अभी तो ये सिर्फ आगाज है, जैसे जैसे जापान में एशियन गेम्स का सफर आगे बढ़ेगा, भारतीय खिलाड़ी और भी खेलों में नए नए कीर्तिमानों के साथ पोडियम पर गर्व से खड़े दिखाई देंगे। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया और हम लोग इस बारे में मानते थे कि ऐसा नहीं कि इसमें चेंज न लाया जा सकता हो, लेकिन उस समय करने की इच्छा शक्ति का अभाव, भाई भतीजे बात का बोलबाला, पूरे सिस्टम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि वहां पे पारदर्शिता और शुचिता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
1: योगी सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर इसी रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हैं।
3: नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगार ही नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ रोजगार के साथ साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाते हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाते हैं।
2: माफिया का काफला जा रहा है तो जुडिशरी से जुड़े हुए अधिकारियों के भी वाहन को रोक दिया जाता था, पहले माफिया जाएगा। आज क्या कोई माफिया असला लहराते हुए, उपद्रव करते हुए खुली जीप में जाकर के यूपी के अंदर कहीं हरकत कर पाएगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? आज दंगों की वो श्रृंखला कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करने का दुस्साहस कर पाएगा?
1: सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं।
2: अब वो यूपी नहीं है, 17 के पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद और कस्बे ऐसे थे जहां पर जिस व्यक्ति के पास क्षमता थी वो अपनी बेटी को घर के बाहर यूपी से दूर अपने रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में रख करके पढ़ाने के लिए मजबूर था, और जिसके पास क्षमता नहीं थी वो बेटी को घर में बिठाने के लिए मजबूर था। मध्यकाल की उन स्थितियों को प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था कि बेटी को छुप के रहना है।
1: आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि नौकरी महाकुंभ के पहले दिन सीएम योगी ने 9 विभागों के चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उत्तर प्रदेश में अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी इसे 27 का बड़ा मुद्दा बना रही है। आज तक ब्यूरो।
0: 27 के चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की पॉलिटिक्स क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सभी दल अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी ओर मायावती के परिवार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है।
1: मायावती के मन में क्या चल रहा है? 27 के चुनाव से पहले मायावती क्या करना चाहती हैं? चुनाव से पहले मायावती कौन सी स्ट्रेटजी बना रही हैं? ये वो सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो के परिवार में गजब की उठापटक है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद और भतीजी को बीएसपी की जिम्मेदारियों से दूर रखने का फैसला साफ किया है। हैरानी इस बात की नहीं है कि मायावती ने आनंद कुमार के परिवार को बीएसपी से अलग किया। हैरानी इस बात पर भी नहीं है कि आकाश आनंद और भतीजी दीपिका को बीएसपी से दूर कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि अब मायावती ने आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद को आगे किया है। मायावती ने 23 सितंबर की बीएसपी ऑल इंडिया बैठक से पहले परिवारवाद और पार्टी संगठन के रिश्ते पर बड़ा संदेश देते हुए कांशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के उदाहरण का हवाला दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीति में सफल होने और समाज के लिए काम करने के लिए भाई बहन व करीबी रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करना होगा। अब मायावती के फैसले ने यूपी की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस मायावती पर निशाना साध रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई? क्या आपने आने वाले उदयीमान नेताओं को खत्म करने पर तुली हुई है मायावती जी? ये मायावती जी को जवाब देना होगा। बहुजन मिशन अब उनसे दूर हो चुका है।
1: कांग्रेस कह रही है कि मायावती बहुजन मिशन से दूर हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी भी मायावती के फैसले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। वो बीएसपी के कोर वोटर पर नजर गड़ाए हुए है।
5: समाजवादी पार्टी इतनी जरूर उम्मीद करती है कि माननीय कांशीराम का देखा हुआ सपना, बाबाराव भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संवाद, इसको जितना आप मजबूत कर सकते उतना करना चाहिए। हमें समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आवाज बनेंगे और किसी भी प्रकार से उनसे जो जातियां हो रही हैं पिछले 10 सालों से इस देश में और प्रदेश में, वो नहीं होने देंगे। पीडीए सरकार बनाएंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे।
1: सवाल यह है कि परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली मायावती को यूपी की इस लड़ाई में कितना फायदा मिलेगा? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर छिड़े सियासी घमासान की। हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक राजनीति को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया। एजी नूरानी की किताब का संदर्भ देते हुए अंसारी ने कहा कि नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में चेतावनी दी थी कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। नेहरू की यह टिप्पणी तत्कालीन विदेश सचिव गुंडेविया के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा भी किया गया है। अंसारी के इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा।
6: जवाहरलाल नेहरू ऑब्जर्वेशन इन एन ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
0: हामिद अंसारी के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
7: श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए।
0: सियासत में सियासी वाद पलटवार तो खूब देखे होंगे, लेकिन जब छात्रों के मंच पर सियासत का अंदाज ही सवालों के घेरे में आ जाए तो बहस लाजमी है। कल इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों के बीच कॉमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री हुई।

0: की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का मकसद था छात्रों की आवाज उठाना, मुद्दा थे शिक्षा रोजगार व्यवस्था के सवाल। राहुल गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर बात की, सरकार को घेरा, लेकिन इसी बीच उनके मंच से एक ऐसी गूंज उठी जिसने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मंच पर स्टैंड अप कॉमेडियन पुलकित मणि आया, सामने राहुल गांधी थे, और फिर राहुल गांधी ने पुलकित का परिचय कुछ यूं कराया जिस पर विवादों का बवंडर उठने लगा।
1: My friend, how are you?
2: I am fine. How are you, Modi ji?
1: Great harassment.
0: इसके बाद तो मंच का मिजाज बदल गया। ये हंसी किस बात पर थी? ये ठहाके किसके लिए थे? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच फर्क मिटा देना भी लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। इंदौर में छात्रों युवाओं के सामने शायद ये फर्क मिट गया।
1: My friend, how are you?
2: I am fine. How are you, Modi ji?
1: Great harassment. Galgotia.
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: छात्रों की गूंज के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री और राहुल गांधी का कॉमेडियन के साथ संवाद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक सवाल बन गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असंस्कारी नाराज फूफा बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विडंबना देखिए, बार बार मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सस्ते राजनीतिक तमाशे में घसीटने की इनकी आदत हैरान करती है। राहुल गांधी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना देख लीजिए। छात्रों के बीच इसी मंच पर कॉमेडियन पुलकित मणि कहता है कि माँ को कुर्सी दो, राहुल गांधी कहते हैं टेल मी मोर।
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
1: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
0: बस इसी संवाद ने सियासत की भट्टी को और भड़का दिया।
3: ये झूठ की गूंज आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
4: कांग्रेस के लोग केवल गाने बजाने का एक बड़ा आयोजन करते हुए और अपने युवाओं की टीम को इकट्ठा करते हुए उनके बीच में जिन विषयों को लेकर उनको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस अपने इन्हीं कारणों से सत्ता से लगातार बाहर है। आज देश के अंदर 80% से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस आउट हो चुकी है और इसी तरीके के व्यवहार के कारण जनता का विश्वास लगातार खो रही है।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंच छात्रों का था, मुद्दे छात्रों के थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने विवाद मां तक पहुंच गया।
5: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है।
0: बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक वीडियो साझा किया जिसमें वो बुजुर्ग महिला को कुर्सी देने के लिए बोल रहे हैं।
6: बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को।
0: बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने जहां एक बुजुर्ग मां का सम्मान किया, वहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में एक मां का मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि राहुल गांधी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए हैं।
7: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
0: अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की हंसी कॉमेडियन की टिप्पणी की मूक सहमति थी, या फिर कांग्रेस इसे महज राजनीतिक व्यंग बताकर पल्ला झाड़ लेगी।
8: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी। क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की

0: गरीब जनता से नफरत करते हैं, वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
1: किसी की माँ के आंचल की कोई पार्टी नहीं होती, ममता का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, इसलिए माँ के सम्मान पर कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के हमले से हक्का बक्का है।
2: माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया। किसी की माँ सबकी माँ।
1: लोकतंत्र में कटाक्ष हो सकता है, लेकिन क्या संवेदना को भी ठहाकों में उड़ा दिया जाए? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के मंच से उठे विवाद ने अब पूरी सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत की, और इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र के माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
4: IIT बॉम्बे में 22 साल के छात्र की मौत में नया मोड़। माता पिता ने बेटे के साथ जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया। आखिर छात्र की मौत के पीछे क्या वजह थी? पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई के IIT बॉम्बे कैंपस में 22 साल के बीटेक छात्र साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत का मामला सामने आया है। छात्र का शव शुक्रवार शाम हॉस्टल नंबर 4 के कमरे में मिला। हॉस्टल साथियों से जवाब नहीं मिलने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। बताया गया कि उसी दिन परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के मुताबिक छात्र ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को AI पर अपलोड कर जवाब लेने की कोशिश की थी। हालांकि संस्थान के मुताबिक छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात कर उसे समझाया था और कहा था कि इसका उसके एकेडमिक करियर पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल के कमरे में लौट गया और बाद में उसकी मौत की खबर सामने आई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्र के माता पिता के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया। माता पिता ने बेटे के साथ संस्थागत प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। माता पिता की शिकायत पर पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और अब पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात मुंबई में हुए सड़क हादसे की। मुंबई BMW कार हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV तस्वीर सामने आई है। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिख रहे हैं और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिरी। उसमें से 4 सवार में से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
1: ये तस्वीरें भयानक हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं। BMW कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित हुई और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर इस तरह हवा में लहरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी और कार चला रहे छात्र ने अपना कंट्रोल खो दिया और ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार नीचे गिर गई। CCTV में कार ब्रिज से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कार गिरी और उसमें सवार 4 में से 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 साल के छात्र धैर्य सेठ, 19 साल के आदित्य जकासनिया और 21 साल के शनय गजर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी।
5: उस गाड़ी में 4 लड़के थे, चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21।
1: कार में सवार सभी छात्र मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सिलवासा में रजिस्टर्ड थी।
6: कार की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं, पूरी तरह से इसके परखच्चे जो है वो उड़ चुके हैं। आप दो दरवाजे जो खुले दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उसमें मौजूद थे उनको निकालने के लिए, उसके अलावा जो कार का जो पीछे का हिस्सा है उसे तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट कोस्टल रोड जो आगे बन रहा है उसकी चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर गिरे हैं। अगर ये चालू रोड होता या इधर नीचे से भी गाड़ियां जा रही होती तो एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एक स्पीड में 200 से ऊपर की ये लोग गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और इन सभी चीजों की पुलिस जो है वो अब तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
3: रूस में जारी संसदीय चुनावों के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है।

जवाब में यूक्रेन ने रूस पर बरसाए ड्रोन। रूस पर यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला।

0: पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल से मॉस्को धुआं धुआं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां बारूद की बारिश हुई है, यहां बरसे हैं बम, यहां मची है तबाही। आकाश में धुएं का गुब्बार और ये आग की लपटें, इन धमाकों की गूंज से हिल गया है मॉस्को। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है, चारों तरफ आग की लपटें, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, यहां हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। रूस में जारी संसदीय चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही यूक्रेन ने पेलिकन बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं। ताजा हमला मॉस्को पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से एक है। यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त तबाही बताई जा रही है। इस हमले में दो लोगों की मौत की भी खबर है। वहां आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की है। इससे पहले सरकारी समाचार एजेंसी टास ने मॉस्को के मेयर के हवाले से बताया कि रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को ऑयल रिफाइनरी परिसर में एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला ठीक उस समय हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव जारी है। आज आखिरी दिन है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अपने जवानों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा के कई घेरे बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। मॉस्को के मेयर की माने तो रूसी सेना ने मॉस्को की तरफ जा रहे 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर आ रहे 450 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला चुनावों में बाधा डालने की कोशिश थी, दुश्मन इसमें नाकाम रहा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक इनमें क्रीमिया और काला सागर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन भी शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने पूरे देश में, साथ ही कब्जे वाले यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूस में चल रहे संसदीय चुनाव को युद्ध शुरू होने के बाद का पहला युद्धकालीन संसदीय चुनाव बताया गया है। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोध में विपक्ष की मौजूदगी बेहद सीमित रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में भी मतदान कराया है जिन्हें मॉस्को ने युद्ध के बाद अपने में मिलाने का दावा किया था। हालांकि इन क्षेत्रों के सभी हिस्सों पर उसका नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा क्रीमिया में भी मतदान कराया गया जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में रूसी चुनाव कराने को अवैध बताया है। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उससे ये तय है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: मामला हामिद अंसारी के बयान को बताया डरावना, भारत की छवि खराब करने का लगाया आरोप, हिंदू राष्ट्रवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया था बयान। यूपी में अपनी अपनी ताकत जुटाने में जुटी पार्टियां, भाई भतीजावाद के जरिए योगी का अखिलेश पर वार तो समाजवादी पार्टी का पलटवार, ओवैसी बोले अब सिर्फ वोटर नहीं रहेगा मुसलमान। राहुल के इंदौर शो पर सियासी घमासान, बुजुर्ग मां पर मिमिक्री को लेकर बढ़ा विवाद, बीजेपी ने किया चौतरफा वार, राजनीतिक स्तर गिराने का आरोप। रूस में चुनाव के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, राजधानी मॉस्को में तेल और लॉजिस्टिक ठिकाने धुआं धुआं, जेलेंस्की ने जारी किया तबाही का वीडियो। यूपी के सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, एनआईए ने अब तक चार को किया अरेस्ट, 17 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट हुए थे बरामद। अब बात यूपी की चुनावी राजनीति की, जहां रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी का जेंजी से जुड़ने का ये सेल्फी कनेक्शन वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा।
1: सत्ताईस का चुनाव है और योगी का यह जंजी वाला दांव है। सीएम योगी का जंजी से जुड़ने का सेल्फी कनेक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी महाकुंभ के दूसरे दिन आज 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम हुआ। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सीधी भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों और अधिकारियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। योगी लगातार रोजगार पर बल देते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हैं। योगी ने आज कहा कि पहले नौकरी देने में भाई भतीजावाद होता था।
2: 2017 के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा था और हम महसूस करते थे, भर्ती की प्रक्रिया की विसंगतियों को लेकर के उस समय के नौजवानों के सामने जो निराशा थी, जो हताशा थी, हम लोगों ने उसको बहुत नजदीक से महसूस किया।